मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 3 अक्टूबर सन 2026। सुबह के 5:56:40 हो चुके हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा। सभी श्रोताओं को नमस्कार, शुभ प्रभात।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉ. सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित में होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर में ये देशगान।

श्रोता साथियों, अब सुनिए शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जो है भजन।

अनूप जलोटा और साथियों का गाया ये भजन अभी आपने सुना। आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं। कार्यक्रम की ये अगली प्रस्तुति स्वर पायला सिंह का है।

श्रोता साथियों, अभी आपने सुना पामेला सिंह का गाया ये भजन। लीजिए अब कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति सुनिए। स्वर काशीनाथ शंकर बोडस, पूर्णिमा ढाकर, चतर सेन और धीरा घोष का है।

श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ ही कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और प्रस्तुत है चिंतन। हम आपको सुनवा रहे हैं महात्मा गांधी एक यात्रा, इसका भाग दो, आलेख एवं वाचन सुमित गौतम का है।

0: गांधी भारत की आत्मा की आवाज, आवाज जो गूंजती रहेगी सदियों तक। जब सत्य लड़खड़ाता है तो उसे सहारा देती है एक लाठी, वो लाठी है गांधी। जब बुद्ध मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहट है गांधी। भारतीय इतिहास का एक समूचा कालखंड है गांधी। सभी अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब है गांधी। गांधी एक मनुष्य नहीं, एक यात्रा, एक सतत यात्रा। आइए चले इस यात्रा में।
1: पेट्रिस लुमुम्बा अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतिम योद्धा था। वह कवि था, केवल कवि ही नहीं अपनी संघर्षरत जनता का सक्रिय साझीदार। गांधी जी के निर्वाण पर उसने कविता लिखी थी, महात्मा तुमने आदमी को प्यार, अहिंसा और सद्भावना देनी चाहिए। कैसी जुर्रत की तुमने गांधी, कैसा था दुस्साहस। ऐसा ही दुस्साहस किया था यीशु ने, फिर यीशु से इतर तुम्हारी परिणति क्या होती। यह अंत कितना अपूर्व है, कितना मोहक। क्या मौत इतनी मेहरबान होती है। अगर ऐसी मौत मिलनी हो तो मैं आज ही नहीं अभी इसी क्षण मरना चाहूंगा। मृत्यु इतनी श्लाघ्य, मृत्यु इतनी वरेण्य, ऐसी ही मृत्यु मुझे भी देना मेरे अंतर्यामी। घाना के भूतपूर्व राष्ट्रपति, अफ्रीकी स्वतंत्र संघर्ष के अप्रतिम सेनानी और कवि नक्रुमा ने अपने स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण दस्तावेज में अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। घने जंगल में थका हारा सिपाही हताशा में सो गया था, उसके सपनों को कृतार्थ किया एक महात्मा ने, एक गुरुदेव ने। एक ने मुस्कुराते हुए अग्निपथ पर चलने की प्रेरणा दी अपने आचरण के उदाहरण से, एक ने अपनी अमृतवाणी से मूर्छित चेतना को झकझोर दिया, और उस सिपाही की हार, उसकी थकान अब अतीत का दस्तावेज मात्र रह गई है, और उसके हाथ में आ गई है अहर्निश संघर्ष की एक सुलगती मसाल। मेरे नमन लो महात्मा, मेरे नमन लो गुरुदेव। मार्टिन लूथर किंग स्वयं को गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहते थे। कैसा संयोग था यह कि उत्तराधिकार में उन्होंने महात्मा गांधी जी जैसी मौत पाई थी। वे महात्मा गांधी को स्मरण करते हुए लिखते हैं, मुझे नहीं मालूम किस धातु का बना था वह। उसकी आंखों में गंगा जल ही नहीं, टेम्स, मिसिसिपी, वोल्गा और वांगहो सभी तो लहराती थी। उसमें हिमालय ही नहीं, अल्प्स की ऊंचाई भी समाहित थी। उनमें हिंद महासागर ही नहीं, काला सागर, प्रशांत महासागर सभी अपनी गहनता लिए बैठे थे। कैसे थे उनके संघर्ष के हथियार, नमक सत्याग्रह, दांडी प्रयाण, चरखा, खादी, असहयोग और अनशन। कैसी थी उनकी लड़ाई जिसमें विद्वेष घृणा के लिए कोई जगह नहीं थी। हड्डियों के उस ढांचे में कैसा था वह आत्मबल। मैं सर्वदा उनके प्रसाद का अभिलाषी रहा हूँ, रहूंगा। जापान के संत कवि तोशियो साका की कविता के कुछ अंश इस तरह हैं। गांधी प्रथमतः और अंततः एक वैष्णव हिंदू थे, हिंदू जो अंतिम रूप से कभी नहीं मरता। जब तक इस धरती का एक भी व्यक्ति उदास है, दुखी है, गांधी उसकी उदासी, उसके दुख में हिस्सा बटाने के लिए बराबर आते रहेंगे। वे आवागमन से न कभी मुक्त होंगे और न होना चाहेंगे। तोशियो की इन पंक्तियों में आशा है गांधी के लौटने की। गांधी तुम लौट आओ, दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आज का चिंतन, महात्मा गांधी एक यात्रा, इसका भाग दो। आलेख एवं वाचन सुमित गौतम का था। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब सुनिए मानस गान।

एक दिन अवध नरेश महाराज दशरथ दर्पण में अपनी छवि देखते हुए राजमुकुट को व्यवस्थित कर रहे थे कि कनपटी पर के बाल सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा हो कि हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद देकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। महाराज ने अपनी अभिलाषा कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को जा सुनाई। उनकी मंगल कामना तथा आनंददायी वाणी सुनकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। श्री राम के अभिषेक के लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये संवाद सुनकर मंत्री सुमंत्र तथा राजप्रासाद के सेवकगण ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे को जल मिल गया हो। महाराज का आदेश पाकर मुनिवर वशिष्ठ द्वारा बताई गई सामग्री का प्रबंध किया गया। सभी तीर्थों के जल, औषधि, मूल, फल फूल, चंवर, मृगछाला, नाना प्रकार के वस्त्र, मणियां तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जाने लगी।

0: श्रोताओं, ये थी आज की श्री रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब सुनिए कृषि चर्चा। जानकारी का आज का विषय है, अधिक लाभ के लिए मशरूम उत्पादन। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, मशरूम का उत्पादन व्यवसाय के रूप में करें। मशरूम अल्पकालिक स्वयं रोजगार का अच्छा स्रोत है। मशरूम में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए मशरूम सड़ती हुई लकड़ियों, धान के पुआल, भूसा से आसानी से भोजन ग्रहण करते हैं। मशरूम पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत होने के साथ साथ इसमें पाचनशील प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन्स भी अच्छे मिलते हैं। जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोग से पीड़ित होते हैं, उनके लिए मशरूम दवा का कार्य करता है, क्योंकि मशरूम में फॉलिक अम्ल पाया जाता है जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। मशरूम को उगाने के लिए पैरा या भूसा के 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लिए जाते हैं। कटे हुए टुकड़ों को ताजे पानी के बड़े टैंक में 8 से 12 घंटों तक अच्छी तरह भिगो दिया जाता है, और जब पैरा पूरी तरह भीग जाता है, जब उसे निथा लिया जाता है। इसके बाद निथरे हुए पैरा को जीवाणु रहित करने के लिए पैरा को किसी बड़े ड्रम या टब में 30 मिनट तक उबले हुए पानी में डुबो दिया जाता है। जीवाणु रहित होने के बाद अधिक पानी को निथाल लिया जाता है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि पैरा में 70% से नमी कम न हो। मशरूम को पॉलीथीन के बैगों में आसानी पूर्वक उगा सकते हैं। 50 सेंटीमीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी पॉलीथीन में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर सुराख कर देते हैं और भीगे भूसे को पॉलीथीन के बैगों में भर देते हैं। इसके साथ ही मिश्रित विधि से बीज भी 3 परतों में बो देते हैं। बीज बोने के बाद थैलों को ऊपर से बांध देते हैं और पॉलीथीन के बैगों को सुरक्षित जगह पर उचित तापमान में रख देते हैं। 12 से 15 दिन में कवक जाल थैलों में अच्छी तरह फैल जाता है। बैगों को गीले बोरों से ढक देते हैं और आवश्यकता अनुसार 1 या 2 बार बैगों की बाहरी सतह पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं। कवक जाल फैलने के बाद मशरूम 1 सप्ताह बाद निकलना शुरू हो जाते हैं। जब मशरूम 6 से 8 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, जब भूसे के ठोस आधा से डंठल जुड़े हुए भाग को तोड़ लिया जाता है, जब पहली फसल समाप्त हो जाती है, जब भूसे के ठोस आधार की बाहरी परत को छीलकर अलग कर दें, जिससे पुरानी फसल के छोटे टुकड़े अवशेष पूर्णतः निकल जाएं और नई फसल निकलना आरंभ हो जाए। दूसरी फसल 8 से 10 दिन बाद निकलना आरंभ हो जाती है। इसी तरह मशरूम उगाते रहते हैं। मशरूम कवक जाल फैलते समय या मशरूम बढ़ते समय पैरा की ढेरी पर काली

0: हरी फफूंद दिखाई दे उस भाग को खुरच कर अलग कर दें और 1 ग्राम बावस्टीन दवा को 1 लीटर पानी के अनुपात में घोल बनाकर छिड़काव करते रहें, जिससे मशरूम को फफूंदजनित रोगों से बचाव कर सकते हैं। जब मशरूम निकलना बंद हो जाए तो रेस्ट मटेरियल को खाद के रूप में फसलों में प्रयोग कर सकते हैं और मशरूम में जल्दी ही उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है, जिससे आर्थिक रूप से सहयोग देने में अच्छा स्रोत है। व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए अगर मशरूम उत्पादन किया जाए तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि मशरूम उगाने से मौसमी बेरोजगारी दूर होती है और आर्थिक लाभ होता है। मशरूम उत्पादन करना आसान है, शुरुआत करने में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, कम लागत में व्यवसाय शुरू हो जाता है। जरूरत है समय समय पर देखरेख करने की और नियमित रूप से आवश्यक कार्य करने की, जिससे मशरूम स्वस्थ रहेंगे और उत्पादन अधिक मिलेगा।
1: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अधिक लाभ के लिए मशरूम उत्पादन, इस विषय पर जानकारी और जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम। 26 जनवरी से 2400 घंटे उपलब्ध है डीटीएच पर, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
3: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
4: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
7: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
8: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
7: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में, हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in।
1: अभी आपने सुना सूचना पर कार्यक्रम दर्पण। हम आकाशवाणी ग्वालियर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार होंगे।
9: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः भारतीय विमान चालकेन कैप्टन स्मित मछार इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन संवादं कृतवान्। सः चालकेन कृतस्य आक्रमणस्य प्रतिरोधं कुर्वता तेन फ्लाई दुबई विमाने दुबईतः तल अवीव नगरं प्रति गच्छताम् 80+ यात्रिणां प्राणाः रक्षिताः। कैप्टन मछार इत्यनेन प्रधानमंत्रिणे स्वस्य अनुभवस्य विस्तृत विवरणं प्रदत्तम्। सममेव घटनाक्रमे तस्मै साहस कुतः प्राप्तमिति कथितम्। प्रधानमंत्री तस्य साहसं प्रशंसितवान्, तस्य शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय शुभकामनाः च अयच्छत्। श्रीमोदी अवदत् यत् सम्पूर्ण राष्ट्रं तस्य स्वास्थ्यलाभाय प्रार्थनां करोति। प्रधानमंत्री अवोचत् यत् कैप्टन स्मितः साहसेन यथा समयं उचित निर्णयेन क्षमताया धैर्येण च जनानां प्राणान् अरक्षत्। प्रधानमंत्री स्मितस्य साहसस्य प्रशंसां कुर्वन् अवदत् यत् देशः गर्वेण वक्तुं शक्नोति यत् भारतीयाः प्राणान् रक्षितुं स्वजीवनं संकटे स्थापयितुं सज्जाः भवन्ति। वार्तालापस्य समये भावुकः स्मितः अवदत् यत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्य सर्वाधिकः आदर्शः अस्ति, अथ च प्रधानमंत्रिणः दूरभाष संवादं प्रति गौरवानुभूतिः प्रकटिता।
10: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
11: मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को इसे कॉल करके मेरी फ्रेंड्स कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
9: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अमेरिका देशस्य मिलवोकी नगरे G20 वाणिज्य मंत्रीणां सम्मेलनस्य समापन दिने वैश्विक व्यापार विकृतिभ्यः निवारणार्थं WTO इत्यस्य अनुरूपं कार्याचरणाय आह्वानम् अकरोत्। संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमतायाः उत्पादनस्य च विषये प्रवदन् श्री गोयलः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य द्रुतगत्या वर्धमाना बृहत् अर्थव्यवस्था अस्ति, यत्र देशीय याचनाधारित अर्थव्यवस्था 4.1 अरब जनानां सेवां करोति। सः अवदत् यत् भारतस्य विनिर्माण क्षमतया तस्य देशीय वैश्विक आवश्यकतां पूरयति, तथा च भारतस्य G20 अध्यक्षेन अभिधीयमानेषु क्षेत्रेषु संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नास्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
12: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स् पटले HAIR न्यूज़ अलर्ट्स् इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति वाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
9: केन्द्रीय पत्तन नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ह्यः भारतीय नौवहन निगमं भारतं स्वावलम्बीकर्तुं नौकायान निर्माणस्य समुद्रीय क्षमतायाः च वैश्विक स्पर्धात्मकतायां च प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुम् आह्वयत्। पंजाब राज्य सीमा सुरक्षा बलेन ह्यः तरन तारण क्षेत्रे द्वौ पाकिस्तानी अवैधजनौ मारितम्। बीएसएफ इत्यस्यानुसारं ते अवैधरूपेण सीमायां प्रति आगतवन्तः। एशियन गेम्स क्रीडा महाकुंभे ह्यः भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकैः मल्लस्पर्धिभिः धनुर्धरैः च स्वर्ण पदकानि षट् पदकानि विजितानि इति वार्ताः।
13: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विश्वसनीय रूप से डिजाइन और विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन समारोह में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की, प्रगति पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने रोबोटिक सर्जरी समिति के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक तथा जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं का नया तंत्र विकसित होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय नौवहन निगम से देश को जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। श्री सोनोवाल कल निगम के 65 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा में भारतीय नौवहन निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। नौसेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। सम्मेलन में नौसेना की तैयारियों, रसद, रखरखाव, प्रशिक्षण और मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा हुई। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्वायत्त और चालक रहित प्रणालियों पर भी चर्चा हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने तकनीक को तेजी से अपनाते हुए सेमीकंडक्टर, AI और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की क्षमताएं मजबूत करने की आवश्यकता बताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल में नौसेना में शामिल युद्ध पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि 90% से अधिक महिला श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाले 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया है कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू हो गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापानी एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला कुश्ती, हॉकी और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। अन्वेषण और प्रयोग के कवि अज्ञेय, ये वार्ता आप सुन पाएंगे सुबह 7:20 पर। वार्ताकार होंगी डॉक्टर ज्योति उपाध्याय। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा सुबह 7:30 पर। समाचार प्रभात 8:00, मॉर्निंग न्यूज़ 8:15 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। सुबह 8:30 स्टूडियो से हम प्रसारित करेंगे पॉडकास्ट मानव और वन्यजीव सह अस्तित्व की राह। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे लवित भारती IFS से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर लेकर आएंगे सुबह 9:00।

9:30 पर शास्त्रीय संगीत का प्रसारण होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद अली अहमद हुसैन का शहनाई पर बजाया राग तोड़ी। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे भोपाल केंद्र से सुबह 10 बजे। 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। कार्यक्रम के अंतर्गत तो आप सुनेंगे पेट की बीमारियों और आयुर्वेदिक उपचार विषय पर जानकारी डॉक्टर अखिलेश भारद्वाज से तुलिका शर्मा की बातचीत आप सुन पाएंगे। इस घंटे की खास खबरें आप सुनेंगे प्रातः 10:58 पर। दिन में 11 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा दिन में 12 बजे। कार्यक्रम संग्रहालय से लेकर आएंगे दिन में 12:30 पर। महिला कार्यक्रम दोपहर 1 बजे, लोक संगीत का कार्यक्रम 1:30 पर, सुगम संगीत का कार्यक्रम 1:45 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन पाएंगे। और ये तीनों ही कार्यक्रम रीवा केंद्र की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा दोपहर 2 बजे। प्रादेशिक समाचार 2:10 पर अनुप्रसारित होंगे। दोपहर समाचार आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे दोपहर 2:15 पर।

2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, 2:30 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और श्रोताओं, आइए अब जानकारी देते हैं हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। शाम की सभा आरंभ होगी 5:00। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा 5:33 पर। भजन संध्या कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 6:00। 6:30 पर

पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। शाम 7:30 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण आप सुन पाएंगे रात्रि 8:00, समाचार संध्या 8:45 पर, 9:00 News@9 दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। और रात्रि 9:30 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। 7:10 होने को हैं, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में गौपालकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित, कई अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने देश की रणनीतिक सुरक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत 30,000 नए आवास मंजूर करने का लक्ष्य। और राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई 10 अक्टूबर तक होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें 35,000 से ज्यादा गोपालक हिस्सा लेंगे। श्री शाह इस दौरान डेयरी और सहकारिता क्षेत्र की कई परियोजनाओं का शुभारंभ और भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर गोपालकों को 101 करोड़ रूपये की राशि अनुदान राशि वितरित करेंगे। श्री शाह नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा मुक्ति अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। गोपालक सम्मेलन के बारे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया।
1: ये राज्य में पहली बार हो रहा है कि दूध उत्पादकों को बुला करके दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए भविष्य में उन्नत नस्ल के पशु और हमारे राज्य के अंदर सहकारी संघों को मजबूत करते हुए सांची ब्रांड को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा।
0: नौसेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रणनीतिक सुरक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि हाल में नौसेना में शामिल युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इस सम्मेलन में नौसेना की तैयारियों, रसद, रखरखाव, प्रशिक्षण और मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा हुई। सम्मेलन में बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और एआई के बढ़ते उपयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्वायत्त और चालक रहित प्रणालियों पर भी चर्चा हुई। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने तकनीक को तेजी से अपनाने पर जोर देते हुए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की क्षमताएं मजबूत करने की आवश्यकता बताई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है, इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचा जा सकता है और डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर भारत ने वैश्विक व्यापार में असंतुलन दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों का पालन करने पर जोर दिया। श्री गोयल ने कहा कि ज्यादा उत्पादन अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या तब होती है जब छिपी हुई सरकारी मदद या सब्सिडी के कारण किसी देश में उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि उत्पादन और सप्लाई चेन को अलग अलग देशों में फैलाना जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर WTO के नियमों से बाहर जाकर कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। प्रदेश में इस साल भी सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत होगी।

0: किसानों के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन आज से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा और खादे के सत्यापन के लिए पंजीयन के दौरान ₹1 का ट्रांजेक्शन होगा। किसान ग्राम पंचायत सहकारी समितियों और सुविधा केन्द्रों पर निःशुल्क पंजीयन करा सकेंगे, जबकि एमपी ऑनलाइन और सीएससी से अधिकतम ₹50 शुल्क देकर पंजीयन की सुविधा भी रहेगी। प्रदेश में कल मद्य निषेध सप्ताह की शुरुआत हुई। गांधी जयंती से शुरू हुए इस अभियान में लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान नशा मुक्ति रैलियां, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थी नशा ना करने और दूसरों को भी इससे दूर रहने की शपथ लेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत सेवा संकल्प अभियान के जरिए 17 अक्टूबर तक 30,000 नए मकान मंजूर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश के नगरीय निकायों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पात्र लोगों को योजना और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी। नगर परिषदों को कम से कम 50, नगर पालिकाओं को 100 और नगर निगमों को 500 मकान मंजूर करने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही पहले से स्वीकृत मकानों की पहली और दूसरी किस्त समय पर जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत सरकार आपके द्वारा अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत आज और कल विकासखंड स्तर और नगरीय क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर दिलाया जाएगा। खासतौर पर किसान, ग्रामीण श्रमिक, महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोगों के लंबित काम और आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। शिविरों में स्वास्थ्य जांच के साथ अलग अलग विभागों के कम से कम 25 स्टॉल भी लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश अन्नमैया जिले के मदनपल्ले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद थे। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई 10 अक्टूबर तक होने की संभावना है। अगले 3 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप के साथ दिन में गर्मी, जबकि रात में हल्की ठंडक रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मानसून की विदाई सबसे पहले ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग से शुरू होने के बाद दूसरे हिस्सों से होगी। आपको समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में पंचायत उप निर्वाचन के अंतर्गत हुई मतदान की मतगणना आज होगी। विकासखंड रानापुर की जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 6 के सदस्य पद और थांदला विकासखंड की ग्राम पंचायत पलासडोर के सरपंच पद के लिए 29 सितंबर को मतदान हुआ था। सेवा संकल्प अभियान के तहत कल आगरमालवा जिले के बड़ौ क्षेत्र के आंगनवाड़ी पर आयोजित हुए आंगन मिलन कार्यक्रम में ग्राम दाबड़िया में विधायक मधु गहलोत भी शामिल हुए। खंडवा में राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 5 से 30 अक्टूबर तक विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क मोतियाबिंद जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। नर्मदापुरम में 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। अभियान के तहत 1 से 19 साल तक के बच्चों को कृमि नाशक दवा पिलाई जाएगी। भोपाल शहर में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षित आवाजाही को लेकर कल रात बड़ी संख्या में महिलाओं ने पैदल मार्च निकाला। पुराने शहर के कमला पार्क से शुरू हुआ यह मार्च गैमन इंडिया मॉल पहुंचकर समाप्त हुआ। कटनी में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जिले में किसान पंजीयन का कार्य जारी है। पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। डिंडौरी जिले में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के कैच द रेन अभियान के अंतर्गत रिफॉर्म महोत्सव 2026 का आयोजन जनपद पंचायत बजाक की ग्राम पंचायत सिंहपुर में कल संपन्न हुआ। उज्जैन में सवैया सम्राट दुले सिंह सिकरवार की स्मृति में 19वें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कालिदास अकादमी में किया गया। बैतूल में अस्पृश्यता निवारणार्थ जिला स्तरीय सद्भावना शिविर का आयोजन कल विकासखंड आमला के ग्राम ससुंदरा में किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 में। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब सुनिए वार्ता अन्वेषण और प्रयोग के कवि अज्ञेय। वार्ताकार हैं डॉक्टर ज्योति उपाध्याय।
1: अज्ञेय हिंदी में अन्वेषण एवं प्रयोग के अग्रणी कवि रहे हैं। उनके काव्य में परंपरा से हटकर कुछ नई विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। अज्ञेय ने लिखा है, मैंने कविता का उपयोग करना नहीं चाहा, क्योंकि मैंने नहीं माना कि मेरे उपयोग करने से वह उपयोगी होती है। मैं मानता हूँ वह तब तक उपयोगी होती है जब मैं स्वयं उपयोगी हूँ। उसमें जीवन की पूर्णता तब है जब मैंने पूर्ण जीवन के प्रति अपने को समर्पित किया है। दुहाई देने से कविता नहीं निकलती और प्यार के बदले अपनी भूख का दुखड़ा रोने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। केवल श्रोता के लिए वह दुखड़ा और भी कम प्रीतिकर हो जाता है। वस्तुतः प्रेम, व्यक्तिवाद, यौन भावना, पाश्चात्य, भारतीय संस्कृति, रूढ़ी और परंपरा इत्यादि प्रायः सभी विषयों पर अज्ञेय के मतों में परिवर्तन हो गया है। इस परिवर्तन के मूल में जितना हाथ उनके सजग चिंतनशील व्यक्तित्व का है, उतना ही आत्मविश्लेषण एवं अन्वेषण का भी है। अज्ञेय की प्रारंभिक कविताओं में तीखा आत्मगौरव या दर्प का भाव मिलता है। अज्ञेय को अपने कवि व्यक्तित्व पर नाज है। विश्व की कृतज्ञता के प्रति शिकायत का प्रबल भाव भी है। कहीं संसार या समाज से समायोजन ना होते देखकर कवि अनुभव करता है कि मैं वह धुन हूँ जिसे साधने में प्रत्यंचा टूट गई है। कवि में भविष्य के प्रति संदेह भी है और विषाद का भाव भी। कवि थकान का अनुभव करता है और भीतर के देवता से प्रार्थना भी करता है। अनचेती ही रहे बांसुरी, सांस फूंक दो चाहे उन्मन, मेरे सूखे प्राणदीप में एक बूंद तो रस बरसा दो। आज थका ही हारिल मेरा कविता में भी कवि प्रेसी को छोड़कर शेष दुनिया से कटा हुआ सा महसूस करता है और थकान की अनुभूति भी करता है। इस सूखी दुनिया में प्रीतम मुझको और कहाँ रस होगा, सुबह तुम्हारी स्मृति के सुख से प्लावित मेरा मानस होगा। फिर भी उसके अहम का गर्वोन्नत शिखर प्रेम के लिए भी झुकना स्वीकार नहीं करता और कहीं याद की तीखी किरण से कवि का हृदय भिंद भी गया है तो कवि अपने को पराजित समझता है। कवि के इस अहम का मूल कारण उसकी प्रतिभा है। उड़चल हारिल कविता में कवि अनुभव करता है कि वह अकेला है और उसे अकेले ही मार्ग तय करना है, परंतु हारिल के हाथों में तिनका है जो उसकी अमरता का साधन है। हारिल कवि का प्रतीक है, तिनका उसकी प्रतिभा का। अज्ञेय को अपनी सृजन शक्ति में अपार विश्वास है और अपनी प्रतिभा में। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। कवि अपनी स्थिति को प्रकाशित करता हुआ अपनी सृजन शक्ति से कहता है, कांपना यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नव घेर रहा है, रुकना यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। जीवन के प्रति आकर्षण, सृजन शक्ति में आस्था एवं जबरदस्त आत्मविश्वास की परिचायक यह कविता उड़चल हारिल अज्ञेय के प्रारंभिक कवि कृतित्व की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कवि का प्रारंभिक भाव बोध धीरे धीरे जीवन के चिंतन एवं आत्मान्वेषण से परिवर्तित हो गया। जन्मदिवस अज्ञेय की विशिष्ट व्यंग्यात्मक कविता है जो व्यंग्य के गंभीर प्रयोग का उदाहरण है। मनुष्य का जन्म वैसे एक संयोग है और किसी को जन्म देने में गौरव का भाव निरर्थक ही नहीं वंचनापूर्ण भी है, परंतु जन्म लेने की व्यवस्था को स्वीकार करने के उपरांत जब कोई उसके साथ निर्विकल्प खेलता है, प्रत्येक क्षण को सार्थकता देता हुआ पंच तत्वों से बनी इस काया को शून्य में बिखेर देता है, तभी वो दाता भी है और सुखी होकर मरता है। यह सार्थकता प्रत्येक क्षण को जीवन के प्रति विस्मित होकर आनंद भोग करने से प्राप्त होती है। कवि सृष्टि के उन सभी उपादानों के प्रति कृतज्ञ है जिनके कारण उसे सौंदर्य की अनुभूति मिलती है। आगे हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह के बाद ही प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न कवि के रूप में उपस्थित हुए।

0: है, उसे हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, शिवता, सुंदरता हम उसे दे सकते हैं अभी, किंतु जीवन, अंतहीन तपस्या जिससे हम मुँह मोड़ नहीं सकते, यह संबंध शाश्वत है, क्योंकि इसे हम चाहे जिस अर्थ में ले सकते हैं। सब कुछ मरण धर्म है, परंतु इस कारण उसे निरर्थक नहीं माना जा सकता, ना विरक्ति की ओर जाने की आवश्यकता है। फूल को प्यार करो, पर झरे तो झर जाने दो, जीवन का रफ लो, देह मन आत्मा की रफना से, पर जो मरे उसे मर जाने दो। यहाँ दृष्टव्य जीवन के प्रति यह उन्मुखता एवं आकर्षण अज्ञेय के लिए आसक्ति नहीं है, आनंद है। कवि के सम्यक जीवन दृष्टिकोण को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कविता है देना जीवन। यह आलोचना का दुर्भाग्य है कि हम नदी के द्वीप हैं जैसी कविता की ओर अतिरिक्त ध्यान दिया गया, और देना जीवन और यही एक अमृत है जैसी मार्मिक प्रभविष्णु रचनाओं की विशेष चर्चा ही नहीं हुई है। अज्ञेय की वर्तमान में आस्था है। कवि के विचार प्यार के लिए अलग हैं। वह कहते हैं कि प्यार की स्वीकार से दर्द का भार भी हल्का हो जाता है। जीवन के सभी दुखों और विरूपताओं का सामना इसी एक प्यार के बल पर किया जा सकता है। उनका कहना है, क्या कहीं प्यार से इतर ठौर है कोई जो इतना दर्द संभालेगा। पर मैं कहता हूँ, अरे आज पा गया प्यार में वैसा दर्द नहीं अब तुझको सालेगा। ब्रह्म मुहूर्त स्वस्ति वचन में कवि का अहभाव है, जियो उस प्यार में जो मैंने तुम्हें दिया है, उस दुख में नहीं जिसे बेझिझक मैंने पिया है। अंत में कभी कहता है, सागर के किनारे तक तुम्हें पहुंचाने का उदार उद्यम ही मेरा हो, फिर वहाँ जो लहर हो, तारा हो, सौंतरी हो, अरुण सवेरा हो, वैसा वो मेरा वर्ण तुम्हारा हो, तुम्हारा हो, तुम्हारा हो। आगे की कविता में आत्मान्वेषण के धरातल पर दो व्यक्तियों के बीच एक संवाद सा दिखाई देता है। एक व्यक्तित्व है सामान्य व्यक्ति का, दूसरा उनके आदर्श कवि व्यक्तित्व का, जिसकी अनवरत खोज उनके मन में चलती रहती है। प्रयोगवाद के लिए कवि कहते हैं कि प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुआ है उनमें आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण होना चाहिए जिन्हें अभी नहीं छुआ गया है या जिन्हें अभेद्य मान लिया गया है। 1943 में आज्ञेय जी ने अपनी पीढ़ी के 6 कवियों के सहयोग से तार सप्तक का प्रकाशन किया। यद्यपि नई धारा के अन्य सभी कवियों ने अपने अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त किए हैं और वे परस्पर मेल भी नहीं खाए हैं, इसके लिए आज्ञेय ने कहा है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी एक मंजिल पर पहुंचे नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी। उनमें मतेक नहीं है, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में समाज धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के छंद और तुक्के कवि के दायित्वों के प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। यहाँ तक कि हमारे जगत के ऐसे सर्वमान्य और स्वयं सिद्ध मौलिक सत्यों को भी वे सामान्य रूप से स्वीकार नहीं करते, जैसे लोकतंत्र की आवश्यकता, उद्योगों के समाजीकरण, यांत्रिक युद्ध की उपयोगिता, वनस्पति घी की बुराई अथवा कानन बाला और सहगल के गानों की उत्कृष्टता इत्यादि। तथापि इतनी विपरीतता के होते हुए भी काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है। इस प्रकार आज्ञेय जी के काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रणयानुभूति, रहस्यानुभूति, जीवन दर्शन, भोगवाद, निराशा एवं वेदना, बौद्धिकता, विषयगत नवीनता, भाषा, छंद, विधान सभी नए प्रयोगों की अभिव्यक्ति है। अंत में मैं श्री विश्वनाथ गौड़ के शब्दों में कहना चाहूँगी, आज्ञेय का कवि अपने में सर्वथा नूतन शब्द, शिल्प, भावभूमि और मान्यताएं लेकर चलता है, इसीलिए वह अपनी जगत के साथ भी उतना ही मजबूत दिखता है जितना अकेले में प्रारंभिक नकार से अंतिम लीक तक काव्य क्षेत्र में आज्ञेय का मार्ग कटा हुआ नहीं लगता। निरंतरता और सृजन निरंतरता स्थापित करने में मदद करती है। कभी लोक की स्वच्छंद प्रक्रियाओं में जीवन जीते हुए आचार लोक की मान्यताओं और पुरानी मान्यताओं पर आमूल परिवर्तन के लिए चोट करने में आज्ञेय ही अपने साथी कवियों में सबसे आगे रहे हैं।
1: अन्वेषण और प्रयोग के कवि आज्ञेय, ये वार्ता अभी आपने सुनी। वार्ता का अर्थी डॉक्टर ज्योति उपाध्याय। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म साथी का ये गीत। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था और इसे संगीतबद्ध किया नौशाद ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनी फिल्म बॉबी से। स्वर एक बार पुनः लता मंगेशकर का है, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म अंधा कानून का ये गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और इसे इसके लिए धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म आँखें का ये गीत, लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार हैं साहिर, संगीतकार रवि।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आखिर क्यों का ये गीत, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ें थीं। इंदिवर का लिखा गीत और संगीतबद्ध इस गीत को किया राजेश रोशन ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म आपकी परछाइयां से। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है और इस गीत को लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, संगीतकार मदन मोहन।

0: आठ बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की, प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
3: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel

0: from their heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
1: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
5: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
6: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गाँव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूं में चावल में इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रुपए तक की इनकम कर ली।
5: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
7: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
8: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी शैक्यों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वन संरक्षक लवित भारती जी को, जो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। स्वागत करते हैं सर आपका हमारे स्टूडियो में।
1: जी नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को भी मेरी ओर से नमस्कार।
0: पहली बार आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि आकाशवाणी से आपका परिचय करो, प्रथम परिचय की कोई स्मृति, कोई अनुभव अगर है तो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
1: आकाशवाणी से परिचय मेरा बहुत पुराना है, बचपन से ही, क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ। जनरली हम लोगों को टीवी देखने नहीं मिलता था, तो कभी भी जब मैच वगैरह के प्रसारण होते थे और कुछ होते थे तो उसका विवरण है हम लोगों को जनरली आकाशवाणी से ही मिलता था। और उस टाइम पे और अन्य चैनल भी नहीं थे इतने, तो हम लोग ऑल इंडिया रेडियो को ही सुनते थे, विविध भारती सुनते थे। और भी ज़्यादा संबंध घनिष्ठ हुआ हमारा जब हम लोगों ने तैयारी की, और तैयारी के समय पे हमारे बैकग्राउंड में हमेशा विविध भारती चलता रहता था और उसको सुन के ही हमने अपनी पूरी तैयारी की है। म्यूज़िक के साथ पढ़ाई करना एक अलग कनेक्ट बनाता है, कुछ लोगों को कंसंट्रेशन और बढ़ जाती है जब म्यूज़िक के साथ सुनते हैं। और बहुत ही सूदिंग, जितने भी एंकर्स थे उनकी आवाज़ बहुत सूदिंग है। कभी भी विविध भारती आप सुनते हैं तो वो डिस्टर्बिंग नहीं होती है, लाउड नहीं होता है, बहुत ही स्मूद और ऐसे जेंटली जो बातें होती हैं वो बहुत अच्छी लगती थी हमें म्यूज़िक के साथ में।
0: बोर्डिंग में टीवी नहीं था आपको पता है
1: जी,
0: लेकिन आपने शुरुआती जीवन और शिक्षा दीक्षा के बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा और बताइए।
1: मेरा स्कूलिंग नवोदय विद्यालय हटा दमोह जिला से हुआ है और सिक्स क्लास से मैं वहीं पर पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन फॉरेस्ट्री में हुआ है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर मैंने FRI देहरादून से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट में किया है। मेरी पढ़ाई भी फॉरेस्ट्री में ही रही है, फॉरेस्ट हमेशा से इंटरेस्ट रहा है उसमें। रिमोट सेंसिंग मेरा स्पेशलाइजेशन है।
0: सवाल जो अब मैं पूछ रही हूँ, मुझे थोड़ा शुरुआत में ही पूछना चाहिए था, लवित जी आपका नाम बहुत अनकॉमन है, कई लोगों ने आपको पहले बोला भी होगा, तो इस नाम का अर्थ क्या है और इससे जुड़ा कोई वाकया है, ये नाम आपको दिया गया
1: जी,
0: तो आज आप बता दीजिए।
1: अच्छी मेमोरी तो ये है कि लवित नाम इतना यूनिक है कि जब भी कोई सुनता है तो वो हमेशा इस टॉपिक पे बात शुरू हो ही जाती है। मेरा जो UPSC का इंटरव्यू भी हुआ था तो वो जनरली शुरुआत भी यहीं से होती है, लवित नाम से। उसका एडवांटेज भी मुझे काफ़ी मिला। और लवित का मतलब होता है प्यारा, जो आपके स्नेह के लायक है, जो आपको अफेक्शनेट है, ऐसा व्यक्ति, तो उसको लवित बोलते हैं।
0: ये अर्थ बना लिया गया है या लव से लवित?
1: ये बहुत सारी जगह मैंने सर्च किया, मैंने अपने नाम के पहले कभी ये नाम नहीं सुना था,
0: बाद में भी नहीं सुना होगा।
1: जी
0: आप नहीं जानते होंगे किसी दूसरे?
1: नहीं, मैं दूसरे लवित को नहीं जानता, लेकिन फिर लोगों ने इसको, जैसे हम लोग संधि विच्छेद कर देते हैं वैसे ही उन्होंने संधि विच्छेद करके बोला लव इट, ऐसे करके बोलना शुरू किया।
0: मैं शायद यही पूछने वाली थी कि ये लव इट तो नहीं स्पेल करते जी, इंग्लिश
1: स्पेलिंग में मेरे नाम की स्पेलिंग LOVIT है, तो ई नहीं है, लेकिन इन कंटिन्यूशन देखेंगे तो लोग
0: लव इट ही। किसने दिया था ये नाम आपको?
1: पापा जी ने नाम दिया था, मुझे नहीं पता कि उनको कैसे ये ख्याल आया और उनको कहाँ से मिला, लेकिन जब भी ये नाम मैं सुनता हूँ तो बहुत यूनिक लगता है और अच्छा लगता है।
0: अच्छा भी लगता है
1: जी।
0: आपने फादर से पूछा नहीं फिर?
1: नहीं, फादर से इस बारे में बात तो काफ़ी हुई, लेकिन उनको भी अब याद नहीं है कि उन्होंने कहाँ से ये एकदम से आ गया। हर कोई अपने बच्चे का नाम बहुत ही स्पेशल और यूनिक रखना चाहता है, मुझे लगता है कि पापा ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं इस बारे में।
0: हम सभी धन्यवाद देते हैं उनको इस प्यारे से नाम के लिए। अब हमें बताइए कि IFS जो सर्विस है आपकी, क्या रीज़न था कि आपको फॉरेस्ट, आपने जैसे बताया वाइल्ड लाइफ का विषय आपको बहुत पसंद है, तो क्या इतना अच्छा लगता है आपको?
1: जब हम लोग बचपन में जैसे कभी चैनल देखते थे या वाइल्ड लाइफ चैनल वगैरह देखते थे, तो हम लोगों को एक जो एनिमल बिहेवियर है उसके बारे में जानने के लिए बहुत सारी उत्सुकताएं होती थी। ऐसा लगता था कि ये एक फील्ड है जिसमें आप काम करेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही हर किसी को बचपन से ही किसी न किसी तरीके से बच्चे वाइल्ड लाइफ के प्रति रुझान रखते हैं। उनके कैरेक्टर जो है, फेवरेट मैस्कॉट जो है, वो भी कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ से प्रेरित होते हैं। डोनाल्ड डक हो गया, कोई वाइल्ड लाइफ, कोई एनिमल, पेपा पिग हो गया, मिकी माउस हो गया, तो कहीं ना कहीं एनिमल को वो आइडलाइज करके उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो मेरा भी अफेक्शन हमेशा से वाइल्ड लाइफ में रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ा तो पर्यावरण, प्रकृति और नेचर से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता था मैं, इसलिए शुरुआती पढ़ाई भी मैंने फॉरेस्ट्री में करी है और उसके बाद इंटरेस्ट भी वाइल्ड लाइफ में रहा है, तो वाइल्ड लाइफ में ही काम करना ज़्यादा पसंद किया है।
0: इसी वजह से आपने ये सर्विस चुनी थी?
1: इसी वजह से मैंने ये सर्विस चुनी थी, और इसके अलावा मैंने किसी और सर्विस में पार्टिसिपेट भी नहीं किया।

0: आपने दिया ही नहीं?
1: दिया ही नहीं मैंने।
0: वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है और हमारा प्रदेश जो मध्य प्रदेश है, विशेष रूप से हमारा जो क्षेत्र है, ये वन्य जीव संरक्षण के मामले में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
1: वन्य जीव संरक्षण के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। अगर हम कैटेगराइज करें तो इसमें पहली चुनौती है कि उनके जो प्राकृतिक हैबिटेट है वो श्रिंक हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की नीड बढ़ रही है, डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा है, तो एक रीज़न वो है। दूसरा, लोगों की नीड के हिसाब से तो फिर भी पर्याप्त है, लेकिन ग्रीड ऐसा है कि किसी के पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है तो उसको लगता है कि 25 हो जाए, फिर जंगल की तरफ बढ़ते हैं, एनक्रोचमेंट करते हैं, हैबिटेट की क्वालिटी थोड़ा सा डिग्रेड हो रही है, तो इस प्रकार के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। दूसरा ये भी है कि बहुत सारे लोग जो इतने परस्पर साथ में रहे आ रहे हैं इतने सालों से, अब उनके साथ चैलेंज ये है कि वाइल्ड लाइफ की संख्या में भी वृद्धि हो रही है और ह्यूमन पॉपुलेशन में भी वृद्धि हो रही है। जब दोनों का टकराव होता है तो कहीं ना कहीं खामियाजा इंसानों को भुगतना होता है किसी फॉर्म में, और कभी वो वाइल्ड लाइफ को भुगतना होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी एक कॉमन ग्राउंड तैयार है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी पॉपुलेशन का मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जब वो एक कॉमन स्पेस शेयर कर रहे हैं। जैसे कोई गांव है जो जंगल से लगा हुआ है, वहाँ पर उनकी खेती जो जंगली जानवर हैं वो कभी उजाड़ देते हैं, नुकसान पहुँचा देते हैं, दूसरा कभी जंगली जानवर से उनका एनकाउंटर हो जाता है, वो जंगल में गाय को या बकरियों को चराने जाते हैं और वहाँ पे किसी हिंसक जीव से उनका सामना हो जाता है, कई बार घायल कर देता है, कई बार विषम परिस्थितियों में किसी की मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अब उसको आपसी परस्पर उन लोगों का समन्वय बना रहे, किस तरीके से दोनों का सह अस्तित्व हम लोग स्थापित कर पाएँ, ये हमारे लिए एक चैलेंज है और उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास भी करते हैं, लोगों को विभिन्न मंचों के माध्यम से जोड़ते हैं, लोगों की सहभागिता से हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए कदम उठाते हैं, लोगों को रोज़गार से जोड़ते हैं जिससे कि कम से कम वनों पर उनकी निर्भरता हो। इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए जो भी आवश्यक उपाय हैं वो सारे करने की कोशिश करते हैं।
0: जी, एक जो कॉम्प्रिहेंसिव एक क्वेश्चन है फॉरेस्ट और उसके कंजर्वेशन को लेकर, कि जब डेवलपमेंट की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि आप अर्बनाइजेशन की तरफ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब तक की सर्विस में आपको कुछ एक्सपीरियंस या कुछ इंसाइट्स डेवलप हुए हैं कि आप विकास भी कर लें और अपने वन्य जीवों का जो हैबिटेट है उसको भी संरक्षित कर लें?
1: ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आज के परिदृश्य में, क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे कि डेवलपमेंट एक नीड है, और आज अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन एक ऐसी पॉपुलेशन है या ह्यूमन एक ऐसी स्पीसीज है जो पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोब कंट्रोल कर रही है। सारी स्पीसीज़ का अस्तित्व उनके विवेक पर निर्धारित है, कैसे वो उस स्पीसीज़ को डील करेंगे उनका अस्तित्व उस पर निर्भर करता है। अब जैसे डेवलपमेंट की बात आती है तो हम लोग जो फॉरेस्ट सर्विस है या जो एनवायरनमेंट की लॉबी है या जो लोग भी इसमें काम करते हैं,
0: स्टेक होल्डर्स
1: हैं, जो प्रकृति प्रेमी हैं, वो सभी लोग ये चाहते हैं कि विकास ना रुके, लेकिन विकास किस कॉस्ट पे होना है, किस गति से होना है और कितना मिनिमल डिस्ट्रक्शन हो, कितना कम इम्पैक्ट पड़े प्रकृति पर कि हम लोग प्रकृति को भी बचा लें और डेवलपमेंट भी ना रुके। उसको बचाए रखने के लिए ये सारे उपाय किए गए हैं और यही हमारे सर्विस का एक प्राइम मैंडेट भी है।
0: अभी आपने कॉन्फ्लिक्ट की बात कही, जैसे कि अर्बनाइजेशन या जो शहरी इलाका है और जो फॉरेस्ट है वो तो दो अलग अलग, हम मान के चलते हैं कि दो अलग अलग यूनिट्स हैं या दो अलग अलग एंटिटी हैं
1: जी।
0: लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका जीवन जंगलों पर ही आधारित है, ऐसे भी कई लोग अभी हैं क्षेत्र में, तो खेतों और बस्तियों के आसपास ये वन्य जीवों की जो मौजूदगी भी होती है, जब ये बढ़ती है तो वन विभाग और जो स्थानीय समुदाय हैं किस तरह संतुलन बना सकते हैं?
1: संतुलन बनाए रखने के लिए हम अपेक्षा करते हैं कि जानवर ज़्यादा समझदारी दिखाए इंसान की अपेक्षा, जहाँ समझदारी जिसको भगवान ने दिमाग दिया है, और जो जंगलों की तरफ बढ़ रहा है वो इंसान है। जंगल कभी भी जहाँ थे वहीं हैं और जंगल कम ही हुए हैं, बड़े नहीं हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास जो एनिमल्स के पास जो स्पेस है वो कम है, और जब कभी भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो अपने सर्वाइवल के लिए वो बाहर निकलते हैं या फाइट करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इंसान की ही है कि उसे अपने दायरों को सीमित रखना होगा, उसको समझना होगा, एक एनिमल के स्पेस को सम्मान देना होगा। और कभी ऐसा होता है कि एक ही स्पेस पर दोनों ना हो, वही कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। अगर एनिमल है तो इंसानों को कुछ रिस्पेक्ट दे के पीछे हट जाना चाहिए, और जहाँ पर ह्यूमन होता है तो एनिमल अपने आप पीछे हट जाता है वहाँ से। तो वो दोनों को एक पारस्परिक रिस्पेक्ट की ज़रूरत है और एक सहानुभूति की भी ज़रूरत है इंसानों को जानवर के प्रति, क्योंकि वो अपने लिए कहीं भी कोई मंच नहीं है जहाँ पर वो अपनी जाके अपनी पुकार लगा सकते हैं। तो उनके लिए आवाज़ भी हमें बनना है, उनकी समस्या भी हम हैं और समाधान भी हमें बनना है।
0: ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जो जानवर हैं उनकी समस्या भी हम ही हैं और समाधान के जो रास्ते हैं वो भी हम ही को निकालने हैं। ऐसा कोई अनुभव या घटना जिसे आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें जिसने आपको प्रकृति और जो वाइल्ड लाइफ है उसके प्रति अधिक सेंसिटाइज किया है?
1: मेरी इसके पहले जो प्रीवियस पोस्टिंग थी, मैं डिप्टी डायरेक्टर बांधवगढ़ था, तो डिप्टी डायरेक्टर बांधवगढ़ के तौर पर मैंने देखा कि एक केस हमारे नॉलेज में आया था जब एक टाइगर के कब हैं और उसकी माँ की डेथ हो गई और बच्चे छोटे छोटे बच्चे 2-3 महीने के जिनको कि कोई सपोर्ट नहीं, जब उन बच्चों की आंखों में आप देखते हैं तब आपको ये फील होता है कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो कुछ ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि अब मेरा जीवन या मेरा अस्तित्व आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वो जो एक जिम्मेदारी आपको फील होती है उनके साथ काम करके, वो आप मुझे मोटिवेट करती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करूं कि वो इनकी संवेदनशीलता को समझें और ये समझें कि ये इनके अस्तित्व को भी बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, नॉट फॉरेस्ट सर्विस, हम सारे नागरिकों की और हमारे एक मानवता के तौर पे हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है। फील्ड का यही क्षण है कि जब मैंने उस बच्चे को रेस्क्यू किया और जब मैंने उसको देखा और उसके बाद उसको लगभग 1.5 साल 2 साल हम लोगों ने उसको वाइल्ड से रिवाइल्डिंग किया, उसको बड़ा किया, उसको बड़ा होते हुए देखा और फिर उसको बाद दोबारा वाइल्ड में रिलीज़ किया और वो जब वो नेचुरल अपने वातावरण में एडजस्ट हो गया, काफ़ी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बना, वो आपको एक खुशी देती है एक अपने बच्चों की तरह कि आपने उस बच्चे को रेयर किया था, आपने उसको प्रोटेक्ट किया था। तो इस प्रकार से जब घटनाक्रम होता है तो बहुत ही आपको संतुष्टि देता है, सेटिस्फाइंग होता है।
0: तो हमेशा याद रहता
1: है, हमेशा याद रहता है।
0: कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर आप पर्सनली क्या एनिमल लवर हैं?
1: मैं बहुत बड़ा एनिमल
0: पेट्स हैं।
1: मेरे पास रिसेंटली एक डॉग था, लास्ट मंथ ही उसकी डेथ हुई है, नाम मैंने डेनिस दिया था, सेंट बर्नार्ड ब्रीड थी। जब कोई ऐसा अनकंडीशनल लव आपको मिलता है किसी भी एनिमल से, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन उसके लिए पूरी लाइफ आप हो, पूरी लाइफ में वो आपके इंतज़ार में रहता है, घर आने पे सबसे ज़्यादा खुश वो आपको देखकर होता है, आपके पूरे फैमिली के मेंबर कोई कहीं भी चला जाए लेकिन वो हमेशा आपके साथ होता है। एक कनेक्शन जो एनिमल के साथ आपका बनता है, वो बोल नहीं सकता लेकिन उसकी आंखें सारी चीज़ें बोलती हैं, सारे एक्सप्रेशंस देते हैं। एक ऐसी खुशी जो आपकी लाइफ में कोई फुलफ़िल करता है, वो एक्सपीरियंस ही मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई एनिमल ही दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के मन में एक ग्रीड आ जाती है या एक मैनिपुलेशन आता है
0: रिलेशनशिप
1: को लेकर, आप हाइड करते हैं, लेकिन वो जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ भी हाइड नहीं करते हैं। जो एक्सप्रेशन है, जो फीलिंग्स हैं, वो आपको पूरा बिल्कुल नेचुरल प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और वही आपको कनेक्शन देता है, नेचर से भी वही कनेक्शन देता है और वही आपको प्रकृति के पास भी लेके जाता है।
0: लवित जी, ये बताइए कि आज के समय में वन्यजीव को लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, आपको कौन सी गलतफहमियां लगती हैं कि ये मेजर एक मिथ है लोगों के बीच और जिसको बदलना चाहिए?
1: मिथ को तो ऐसा है कि वो अलग अलग एनिमल्स को लेके अलग अलग मिथ है। लोगों को ये लगता है कि एनिमल जो भी हिंसक एनिमल है वो सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए ही है और वो फर्स्ट होते हैं जो अटैक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनिमल बहुत ही शाय होते हैं, चाहे वो कितना ही पावर क्यों ना हो, टाइगर के केस में देखें तो टाइगर भी बहुत पावर होता है, लेकिन वो हमेशा ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट या एनकाउंटर अवॉइड करता है। वो कोशिश करता है कि कम से कम इंसान के साथ उसकी आमना सामना हो, कम से कम उसका इंसानों के साथ ऐसी स्थिति बने जहाँ पर कि उसको 1-to-1 आना पड़े। वो तो हमारी गलती होती है कि हम जानवर को ना पहचानते हुए कि कहाँ बैठा है, किस झाड़ी में बैठा है, और हम उसके इतने नज़दीक पहुँच जाते हैं कि जो पर्सनल स्पेस है एनिमल का और एक सेफ स्पेस है उसको हम लोग पार कर जाते हैं। उसके बाद जो एक्शन लेता है वो रिटेलिएशन या एक भय में वो घबरा कर लेता है। मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं, मैंने ह्यूमन डेथ के भी केसेस देखे हैं, और उसमें हमेशा ये देखा है कि टाइगर ने उसको मारा लेकिन खाया नहीं और वो चला गया। क्यों? क्योंकि उसको एकदम से घबराहट हुई, उसने एनकाउंटर फील किया, उसने अपने आप को ऐसा लगा कि उस पर अटैक होने वाला है, और उसने अटैक करके और उसके बाद चला गया। लेकिन एक इतना पावरफुल एनिमल जब थोड़ा सा भी अटैक करता है, उसके पास पावर इतना है कि एक ह्यूमन बॉडी उसको नहीं झेल पाती है, और बहुत ही दुखद घटनाएं घटती हैं ऐसी। तो उस सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करने के लिए और मिथ को निकालने के लिए कि एनिमल हमेशा अटैकिंग फॉर्म में ही होता है या अग्रेसिव ही होता है, ऐसा नहीं है। हम अगर उसके स्पेस को या उसके भाव को समझें और रिस्पेक्ट करें तो ये घटनाएं टाली जा सकती हैं। और हम लोगों को यही जागरूकता संदेश भी देते हैं कि जब आपको पता है, हम लोग मुनादी कराते हैं कि यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट है या यहाँ पर हाथी आए हुए हैं, तो आप लोग इस क्षेत्र में ना जाएं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में ना आए। अगर आप उस टाइम पे उस वार्निंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नहीं जाते तो वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो सकता है। और एनिमल हमेशा रेजिडेंट नहीं होता, वो आता है और चला जाता है, एक स्पेस को यूज़ कर रहा है वो, बस एक ही टाइम पे दोनों का होना ज़रूरी नहीं है।
0: अवेयरनेस से ये जो इंक्रोचमेंट कई बार कर देते हैं जी, लोकल लोग हैं या कोई भी, वो बच सकता है।
1: बिल्कुल बच सकता है, अवेयरनेस से ही बच सकता है। और दूसरा, हम लोग ये जानते हैं कि जब तक लोगों को नॉलेज नहीं होगा, एजुकेट नहीं होंगे क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा है कि एलिफेंट के केस में कि उनको लगता है कि हाथी तो इतना बड़ा है, इससे तेज तो मैं भाग जाऊंगा, लेकिन जब हाथी दौड़ता है तो उसके सामने इंसान नहीं दौड़ पाता है, इंसान से काफ़ी तेज़ दौड़ता है हाथी, और उसका जो स्ट्रेटजी है, दिमाग है हाथी का, बहुत तेज़ है। जब ऐसे मिथ में कभी वो पड़ जाते हैं, उनको लगता है कि मैं तो छू के दौड़ लगा दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और ऐसे मिथ के कारण या लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण या जानकारी नहीं होने के अभाव में उसके इतने पास चले जाते हैं और फिर घटनाएं दुर्घटनाएं घट जाती हैं।
0: प्रामाणिक जानकारी अगर किसी को लेनी है किसी एरिया में जाने से पहले, तो वो कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं?
1: जहाँ पर भी टाइगर रिजर्व हैं या कोई भी एनिमल रिजर्व है, सेंचुरीज हैं, पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे बिना पास के प्रवेश ही प्रतिबंधित है। अगर आपको जाना है तो आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाइए, आपके लिए बिल्कुल डेजिग्नेटेड जोन है, सफारी है, आपको पूरी सुरक्षा के साथ में, गाइड के साथ में भेजा जाता है। जो जानकार होता है वो आपको जानकारी भी देगा और आपको सुरक्षित वापस भी लेकर आएगा। और जहाँ पर गांव लगे हुए हैं वहाँ पे हम लोग शिविर आयोजित करके गांव वालों को जागरूक करते हैं और उनको जानवर और एनिमल के बिहेवियर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि एनिमल का बिहेवियर कैसा है और आपको किस तरीके से उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके रहना है।
0: कई सारी दुर्घटनाएं उस बीच भी होने की संभावना रहती है जब आप अननेसेसरीली मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए सेल्फीज और उनके साथ वीडियोग्राफी करते हैं, उस समय भी सावधानियां संभवतः बहुत जरूरी होती होंगी।
1: बिल्कुल, पार्क में आप कभी जाओगे तो आपको देखा होगा कि निर्देश रहते हैं कि किसी भी स्थिति में आपको जंगल में उतरना नहीं है। वो नहीं उतरने का रीज़न यही है कि वो आपकी सेफ्टी से रिलेटेड है, क्योंकि एनिमल कहाँ छुपा है, कहाँ बैठा है, हमारी नज़रें कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, लेकिन एनिमल वो हमें सब देख रहे होते हैं और छुप के देख रहे होते हैं। उतरना हमारी सेफ्टी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आप अगर सेफ जोन पे हैं, आप जिप्सी पर हैं, सेल्फी लीजिए, वीडियो बनाइए, आप आराम से सारा सब कुछ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ आप अपनी सेफ्टी के साथ खुद कंप्रोमाइज़ करते हैं, कई लोग ऐसे देखे गए हैं, मतलब गाड़ी रोक के वो कहीं उतर जाते हैं, एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ उतरना अलाउड होता है, उसके अलावा कहीं और उतर जाते हैं, और फिर ऐसे आप अनवांटेड घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। ऐसी चीज़ों को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं।
0: लवित जी, हमारे श्रोताओं को, खासकर बच्चे और युवा हमें जो सुन रहे हैं, उनको वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं बच्चों को और हमारे श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगा, भगवान ने हमें इंसान बनाया है, हमारी जिम्मेदारी उतनी ही महत्वपूर्ण बन जाती है कि हम अपने साथ साथ प्रकृति को भी सुरक्षित रखें, और जो अन्य स्पीसीज़ हैं, जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उनको भी हम संभाल कर एक साथ प्रकृति के फॉर्म में इंटरेक्ट करते हुए उनको भी साथ लेकर चलें, जिसमें उनका भी अस्तित्व रहे, हमारा भी अस्तित्व रहे, एक सामंजस्य रहे, आपसी सामंजस्य रहे, एक तालमेल रहे। जैसे हम लोगों को बचपन से ही हमारी स्टोरीज़ में बताया गया कि हमारे दोस्त होते हैं, हाथी मेरा साथी है, हम लोगों को हर एनिमल से कुछ ना कुछ लिंक करके स्टोरीज़ बनाई गई हैं, हमारे देवताओं के सारे वाहन किसी न किसी वन्य प्राणी को लेकर बनाए गए हैं। उसका मतलब ही ये है, संदेश देने का, कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व इन्हीं जानवरों पर निर्भर करता है और हमें सह अस्तित्व की तरफ ही जाना है, जहाँ पर कि वो भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी यही कहती हैं, प्रकृति को साफ रखना है, नदियों को साफ रखना है, वातावरण को और हमारे एनवायरनमेंट जंगलों को सुरक्षित रखना है। तो जब हम अधिकार की बात करते हैं तो हमारे दायित्व भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं और हम अपने दायित्वों को निभाएं और प्रकृति और जंगली जानवरों को सुरक्षित रखें, उनके वातावरण को सुरक्षित रखें, उनके रहवास को सुरक्षित रखें, तभी हम एक खूबसूरत हरी भरी पृथ्वी की परिकल्पना कर सकते हैं और सह अस्तित्व की परिकल्पना कर सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम जो हम बोलते हैं वो सारी स्पीसीज़ के लिए है, उसी अवधारणा पर हमें चलने की जिम्मेदारी, लीडरशिप इंसानों को लेने की ज़रूरत है।
0: लवित जी, अब वो मौका है जब चलते चलते हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत सुनाएंगे, तो आप बताइए आपको कौन सा गीत पसंद है जो आज आप अपनी तरफ से श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं।
1: मुझे विविध भारती पर चलने वाले सारे गाने बहुत पसंद हैं। कई बार जब मैं रात को सुनता था तो गाने बहुत ही अच्छे लगते थे, जैसे ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सोने के पहले जब आप म्यूज़िक सुनते हुए सोते थे, एक अलग अनुभव रहा है, और विविध भारती और ऑल इंडिया रेडियो से मेरा एक अलग कनेक्शन रहा है। इस वार्ता के लिए आपने हमें ये मौका दिया कि लोगों को इस संबंध में बता पाऊँ, लोगों को जागरूक कर पाऊँ, और बहुत सारे हो सकता है इस मंच के माध्यम से भी बहुत सारे लोग ऐसे हों जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जहाँ पर कि हम सह अस्तित्व की परिकल्पना कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। ये गीत रात का है लेकिन इस वक्त आपको सोने की इजाज़त नहीं है, तो जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो इस गीत को सुनकर और एनर्जेटिक होकर अपना काम करें। लवित जी, वन्य जीव संरक्षण और प्रकृति से जुड़े अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये विशेष पॉडकास्ट मानव और वन्य जीव सह अस्तित्व की राह। लवित भारती IFS से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत आपने सुनी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी ग्वालियर से बोल रहे हैं।

0: धरती बाकी यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। आज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे साथ। आप सुनते हैं कार्यक्रम में लेटेस्ट न्यूज़, ढेर सारी खबरें, सूचनाएं, समाचार और रोचक जानकारियां। साथ ही साथ हम करियर अलर्ट की भी बात करते हैं और साथ ही साथ होता है ढेर सारा गीत और संगीत। चलिए, देर किस बात की है, आपका मनोरंजन भी कराएंगे और साथ में आपको ज्ञानवर्धक जानकारियां भी देते रहेंगे। दोस्तों, एक बात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। जीवन को सही दिशा देने के लिए हमें अपने मन, वाणी और कर्म, इन तीनों पर ध्यान देना चाहिए। समय समय पर खुद का निरीक्षण करना चाहिए कि हमारे विचार कैसे हैं, हमारी वाणी कैसी है और हमारे कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। जीवन में सही दिशा और सफलता पाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वचन और कर्म में एक रूपता होनी चाहिए। मन के विचार कैसे हैं, उनमें सत्य, शुद्धता और सद्भाव है या नहीं, इसका आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। हमारी वाणी मधुर और प्रिय होनी चाहिए। हमारे शब्द किसी को पीड़ा न दें और उसमें कटुता या कर्कशता न आए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी वाणी व्यवहार में छल कपट न हो। हम जो कहें और जो करें उसमें सच्चाई और स्पष्टता भी रखनी चाहिए। अपनी इच्छाओं पर संयम रखना चाहिए। मन हमें गलत दिशा की ओर अनियंत्रित रूप से ले जाने की कोशिश करता है, इस बात के लिए भी हमें सतर्क रहना चाहिए। अपने स्वभाव, प्रकृति और आदतों में ज़रूरी सुधार करना चाहिए। गलत बातों से दूर रहना चाहिए। माता पिता और अन्य वरिष्ठ लोगों के द्वारा दिए गए अच्छे संस्कारों को जीवन में उतारना चाहिए। व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। दूसरों के साथ हमारा आचरण भी विनम्र होना चाहिए। समय समय पर खुद से पूछें, क्या मेरे विचार, वाणी और कर्म सही दिशा में हैं। यही आत्मचिंतन हमें अपने जीवन को निरंतर सुधारने की प्रेरणा देता है।

दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वन्य जीव सप्ताह की। भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष आधिकारिक प्रसारण पोर्टल के अनुसार 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य और इसका महत्व हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को वन्य जीव और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के प्रति जागरूक करना, प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में जीवों की भूमिका को समझाना, सरकार, स्कूलों और आम जनता द्वारा मिलकर संरक्षण के प्रयास करना। इस दौरान कुछ गतिविधियां भी होती हैं, जैसे कई प्रतियोगिताएं हैं, जागरूकता कार्यक्रम होते हैं, निशुल्क प्रवेश की भी योजनाएं चलाई जाती हैं। प्रतियोगिताओं में स्कूलों में चित्रकला, रंगोली, निबंध और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं होती हैं। नुक्कड़ नाटक, नेचर वॉक और मैराथन का आयोजन किया जाता है जागरूकता फैलाने के लिए। कई शहरों के चिड़ियाघरों में भी बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा जाता है। तो दोस्तों, हमें भी इस प्रयास में आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वन्य जीवों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा कैसे करें और उसमें जितना सहयोग दे सकें हमें देना चाहिए। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला है एक गीत का, हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मोहरा से ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर मेरे साथ। दोस्तों जीवाजी यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में NEP 2020 के प्रमुख घटक शिक्षा में आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण तथा व्यक्तित्व का समग्र विकास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ शुक्रवार को जीवाजी यूनिवर्सिटी के गालब सभागार में हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी, मुख्य अतिथि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता डॉक्टर कोठारी ने कहा कि समाज और सरकार साइकिल के 2 पहिए हैं। यदि दोनों पहिए एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे तभी देश का विकास संभव है। विजया राजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरार में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आयोजित 30 दिवसीय निःशुल्क स्वरोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर SK श्रीवास्तव ने की। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस शिविर में 100 से अधिक छात्राओं को बैंकिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। समापन अवसर पर छात्राओं द्वारा तैयार किए गए कृत्रिम आभूषणों की आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई। दोस्तों अब बात करते हैं करियर अलर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के 250 पदों पर भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नौकरी करने का सपना देख रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट ग्रुप बी के 250 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.sci.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता

अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ कंप्यूटर संचालन का ज्ञान और अंग्रेजी में कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड जरूरी है। आयु सीमा 1 सितंबर 2026 को। अभ्यर्थी की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। दोस्तों, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म वीर सारा का ये गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर मेरे साथ। दोस्तों 70 की उम्र में भी क्रिएटिविटी की उड़ान अभिनय और गीत लेखन में भी सक्रिय हैं हमारे शहर के अनिल गुप्ता जी। उम्र भले ही 70 वर्ष पार हो चुकी है, लेकिन हमारे शहर के अभिनेता, राइटर और गीतकार अनिल गुप्ता के भीतर क्रिएटिविटी का उत्साह बरकरार है। अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय रहने के साथ उन्होंने लिखना पढ़ना भी नहीं छोड़ा। कविता, कहानी, नाटक और हास्य व्यंग के साथ गीत लेखन में उनकी रुचि ने उन्हें अलग पहचान दी है। उनकी लिखी रचनाओं को चर्चित भजन गायकों की आवाज़ भी मिली है। अनिल गुप्ता के लिखे गीतों को भजन गायक अनूप जलोटा, सुमित टप्पू और विधि शर्मा ने अपनी आवाज़ दी है। अनूप जलोटा द्वारा गाए गए उनके चार गीतों में हमें माँ दर्शन मिलेंगे, राम को पुकार ले, शुभदायक, सुखदायक, गणपति और माता पिता के श्री चरणों में शामिल है। वहीं सुमित टप्पू ने उनके जय गणेश, गणपति और भजन की महिमा अपरंपार गीत गाए हैं। लेखन से अभिनय तक जारी है उनका सफ़र। अनिल जी बताते हैं कि लिखने, पढ़ने और रचनात्मक कार्यों से उनका जुड़ाव लगातार बना हुआ है। उन्होंने कविता, नाटक, कहानी और हास्य व्यंग जैसी विभिन्न विधाओं में लेखन किया है। उनके लिए लेखन केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को देखने और महसूस करने का तरीका भी है। अब वे अभिनय के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। उनकी एक वेब सीरीज आखिर कौन मैं उन्होंने अभिनय के साथ पटकथा और संवाद लेखन का काम भी किया है। इसके अलावा उनकी चार फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। क्रिएटिविटी के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। अनिल जी का कहना है कि जीवन में क्रिएटिविटी के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। यही कारण है कि वे आज भी अभिनय और लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

एक गौतम बुद्ध से जुड़ा किस्सा हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। बुद्ध अपने शिष्यों को रोज़ जीवन में जुड़े उपदेश दिया करते थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे, उनकी बातें सुनते और अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता भी पूछते। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य के मन में एक सवाल उठा। उन्होंने विनम्रता से पूछा, जो लोग आपका सत्संग रोज़ सुनते हैं, क्या उन सभी का जीवन बदल जाता है? क्या उनके दुख दूर हो जाते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कुछ लोगों को तो लाभ होता है और कुछ लोगों को नहीं। शिष्य को आश्चर्य हुआ। उसने फिर पूछा, जब सभी लोग आपके उपदेश सुनते हैं तो फिर सभी को शांति क्यों नहीं मिलती? सभी का जीवन क्यों नहीं बदलता? बुद्ध बोले, मान लो कोई व्यक्ति तुमसे राजमहल जाने का रास्ता पूछता है, तुम उसे सही रास्ता समझा देते हो, लेकिन वो तुम्हारे बताए रास्ते पर चलने के बजाय अपनी इच्छा से किसी दूसरी दिशा में चला जाता है और रास्ता भटक जाता है, तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, तथा

पहुंचने के लिए उस रास्ते पर चलना भी पड़ता है। दोस्तों अब समय हो चला है कि हम आपको एक और गीत सुनवा दें। चलिए फिल्म मिशन कश्मीर का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि हम कार्यक्रम को यहीं समेटें। अगले कार्यक्रम में कुछ नए सूचनाओं, समाचारों और रोचक जानकारियों, ढेर सारे गीत संगीत के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए अनुमति दीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। प्रस्तुत है कार्यक्रम में उस्ताद अली अहमद हुसैन का शहनाई पर बजाया राग तोड़ी।

0: ابھی آپ سن رہے تھے استاد علی احمد حسین کا شہنائی پر بجایا راگ توڑی۔ اس پرستوتی کے ساتھ ہی شاستری سنگیت کا یہ کاریکرم اب یہیں سمپن ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کا گوالیئر کیندر ہے۔ صبح کے 10 بجنے کو ہیں، کچھ ہی پلوں میں آکاشوانی بھوپال سے سنیے جلی کی چٹھی۔
1: سات فلم سنگیت کا کاریکرم یہیں پر سمپن ہوا۔ یہ آکاشوانی بھوپال کا پرسارن ہے۔ لیجیے پرستوت ہے بھوپال ضلع کی چٹھی۔ آلیکھ ہے طاہر خان کا، واچن سور ہیں دیپک سنگھ کے۔
2: آکاشوانی سے پرستوت ہے بھوپال ضلع کی چٹھی۔ آلیکھ طاہر خان، واچن سور دیپک سنگھ۔ राजधानी भोपाल से अब मानसून की विदाई हो रही है। ऐसे में दिन के समय तेज धूप निकलने से लोगों को तपिश का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुबह और देर रात्रि में गुलाबी ठंड का एहसास भी होने लगा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी जी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचार को आज नए रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के जरिए देश में ही उत्पाद को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश हो रही है। प्रदेश में 21 साल बाद सरकारी बस सेवा की वापसी हो गई है। विगत दिनों भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन

0: यादव ने 351 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें 7 शहरों में इंटरसिटी और इंट्रासिटी सेवा देंगी। सरकार ने पहले साल की बसों की संख्या 1500 और 2031 तक 15000 करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायतों पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टरों को 100 दिन से लंबे शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने को कहा है। मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व और जनजातीय कार्य विभाग के लंबे शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। भोपाल में बीते दिनों बिजली के खंभे से करंट लगने से वकील और भाजयुमो नेता दिव्यऋषि तिवारी की मौत के मामले में नगर निगम ने कार्रवाई की है। जांच रिपोर्ट के बाद सहायक यंत्री सुमित सिंह को निलंबित कर दिया गया, जबकि कार्यपालन यंत्री आशीष श्रीवास्तव के निलंबन का प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वर्गीय दिव्यऋषि तिवारी के निवास पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। सड़क हादसों में गंभीर चोट और मौत के मामलों को कम करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर 10 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 8 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के दौरान प्रदेश के प्रमुख चौराहों, राष्ट्रीय और राजमार्गों के साथ दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट पर विशेष चेकिंग की जाएगी। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार चालकों के खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। एशियन गेम्स 2026 में पदक जीतकर मध्य प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम में मुलाकात की। इस दौरान श्री सारंग ने एशियन गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले स्टार खिलाड़ियों आशी चौकसे और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। दोनों खिलाड़ियों ने शूटिंग में रजत पदक जीतकर देश और मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश की जेलों में कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। जेल विभाग और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात के मध्य अगस्त माह में हुए समझौता ज्ञापन के तहत प्रोजेक्ट पहरी के अंतर्गत केंद्रीय जेल भोपाल में प्रदेश के प्रथम साइको सोशल केयर सेंटर की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन जेल DG वरुण कपूर ने किया। इस सेंटर के जरिए जेल में बंद कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य की नियमित जांच, काउंसलिंग और आवश्यकता के अनुसार मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भोपाल के कोलार में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों भाजपा नेताओं के साथ बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश देखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नीब करौली बाबा के जीवन चरित्र पर केंद्रित हनुमान अंश फिल्म हमारी आस्था, आध्यात्मिक परंपरा और भगवान हनुमान की भक्ति के मार्ग को समझने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि भक्ति से समाज सुधार की शक्ति पाने की पटकथा वाली इस फिल्म ने हम सबके आराध्य भगवान हनुमान की आराधना और सेवा की भावना को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। भोपाल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख था ताहिर खान का, वाचन स्वर दीपक सिंह के। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: श्रोता साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज कार्यक्रम में जानकारी का विषय है पेट की बीमारियों और आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर अखिलेश भारद्वाज से तुलिका शर्मा की बातचीत आप सुनेंगे।

0: सेहत की बात तरानों के साथ एक बार फिर हम इस कार्यक्रम के ताज़ा तरीन अंक के साथ हाजिर हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है पेट की बीमारियां और आयुर्वेदिक उपचार, और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश भारद्वाज। आप आयुर्वेद में MS हैं, यानी सर्जरी स्पेशलिस्ट हैं आप। डॉक्टर अखिलेश भारद्वाज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। कहते हैं कि यदि किसी का पेट साफ है और उसके ऊपर कर्ज नहीं है तो वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता है।
1: जी,
0: तो ये जो पेट है बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है, आयुर्वेद क्या मानता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद में उदर रोग कहा गया है,

0: पेट के रोगों को, और इसका अधिकांश रोगों से भी संबंध जोड़ा गया है। जनरली ग्रामीण क्षेत्र में ये बहुत चलता है कि पेट में हमारे बाधी आ रही है, या पित्त बढ़ा हुआ है, या कफ बढ़ा हुआ है। तो हमारे आयुर्वेद के रोग बात पित्त कफ के सिद्धांत पर रहते हैं। तो जनरली कई लोग हम लोगों से कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है तो वॉमिटिंग होती है, तब हम लोग उनको ये कहते हैं आपको पित्त के साथ कफ भी है। तो आयुर्वेद के जितने भी हम लोग अभी उदर रोगों की विस्तृत चर्चा करेंगे, तो उसमें हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि दोषानुसार भी कैसे एक ही रोग के अलग अलग लक्षण लोगों में आते हैं। तो हम लोगों की प्रकृति भी अलग अलग होती है सभी की। तो एक व्यक्ति जब वो कोई तला भुना खाना खाता है, तो एक कहता है मुझे कुछ नहीं होता, दूसरा कहता है मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो व्यक्ति विशेष की प्रकृति पर भी निर्भर करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो कई लोग कहते हैं मैं कचौड़ी समोसे 10 खा सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। तो ये फिर हम लोग अभी आगे और इसके बारे में बताएंगे कि प्रकृति कैसे इस पर निर्भर रहती है रोगों पर। ठीक है, जितने भी हम लोग उदर रोग या पेट के रोगों की चर्चा करेंगे, एक मॉडर्न साइंस से भी कोरिलेट करके करेंगे, ताकि लोगों को ये जानकारी हो। क्योंकि सोसाइटी में जनरली हाइपर एसिडिटी शब्द चलते हैं, अमीबिस शब्द चलते हैं, तो मैं आयुर्वेदिक लैंग्वेज में भी उनके आपको डिटेल अभी बताऊंगा।
1: मुख्य उदर रोग आयुर्वेद में क्या क्या माने जाते हैं?
0: एक्चुअली उदर रोगों का जो प्राचीन डिस्क्रिप्शन है हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में, उसमें मुख्य रूप से उन्होंने दोषानुसार ही कहे। तो एक शब्द होता है बातोदर, तो इसका मतलब होता है कि बात पेट में बढ़ रहा है, तो हम लोग मॉडर्न साइंस में फ्लैटुलेंस बोल देते हैं,
1: वायु विकार।
0: हाँ, वायु विकार। तो उससे फिर कई प्रॉब्लम होती हैं, तो वो वायु विकार से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। मैं पूरे मॉडर्न शब्दों से चर्चा करूंगा, ठीक है। उससे फ्यूचर में उसको हेपेटोमेगैली हो सकता है, इसके लिए कहते हैं लीवर आपका इनलार्ज हो रहा है। और भी उसके फैक्टर होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन ये सामान्य बातें होती हैं। फिर पित्तोदर होता है, आपके बॉडी में बाइल बढ़ा हुआ है, एसिड बढ़ा हुआ है, जिसको गैस्ट्रिक सीक्रेशन या गैस्ट्रिक जूस की वजह से, तो उससे पित्त के रोग होते हैं। फिर कफ, हमारे स्टमक में कुछ कफ पाया जाता है, आयुर्वेद में उसको क्लेदक कफ कहा जाता है। कई बार जब किसी को वॉमिटिंग होती है, तो पेशेंट ये कंप्लेंट करता है सुबह सर वॉमिटिंग होती है, तो हमारे बाइल के साथ कफ भी बाहर आता है। तो आयुर्वेद में कफ के भी रोग कहे गए हैं बहुत सारे। पेशेंट जनरली कहता है सर लैट्रिन पास करते हैं तो कफ जैसा आता है, म्यूकस आता है, उसको हम आगे अमीबिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी टाइप से ये तीनों मिलके भी एक साथ आते हैं। लोग कहते हैं सर पेट भी फूल जाता है, एसिड भी है, लैट्रिन से कफ भी आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, तो इसको हम लोग तीनों को मिला के त्रिदोषज उदर रोग कहते हैं। और फिर आगे जो आयुर्वेद के पुराने आचार्य हुए हैं, उन्होंने अगर लीवर से रिलेटेड रोग रहा तो उसको आयुर्वेद में यकृतोदर के नाम से वर्णित है, स्प्लीन से रिलेटेड था तो प्लीहोदर के नाम से वर्णित है। कई बार इंटेस्टाइन परफोरेट कर जाती हैं, कोई आपने हार्ड चीज खा ली तो उसको भी आयुर्वेद में इन्होंने अलग अलग रोगों के नाम से इसमें वर्णित किए गए हैं। मैं अभी आगे उसको और डिटेल बताऊंगा आपको। दूसरा एक फाइनली लीवर की प्रॉब्लम की वजह से या पोर्टल हाइपरटेंशन से पेट में पानी जमा हो जाता है, जिसको जनरली जलोदर हम लोग कहते हैं, मॉडर्न में एसाइटिस शब्द यूज किया जाता है। तो जलोदर भी अब उतना देखने को नहीं मिलता, पहले बहुत कॉमन था, लीवर सिरोसिस वालों को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से 8 तरह से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है पूरा आयुर्वेद में।
1: ये मुख्य पेट की बीमारियों के बारे में आपने बताया है, इसके विस्तार में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये जो आयुर्वेद है कितना पुराना है और कब से हमारे देश में चला आ रहा है।
0: एक्चुअली आयुर्वेद नेचुरली सबसे पुराना है। आयुर्वेद की जो उत्पत्ति है वेदों से कही गई है। तो हमारे हिंदू संस्कृति में 4 वेद हैं, उसमें जो चौथा वेद अथर्ववेद है उसमें औषधियों का बहुत वर्णन मिलता है। तो इसलिए कुछ लोग आयुर्वेद को पंचम वेद बोलते हैं। तो आयुर्वेद तो जब से पृथ्वी पे परंपरा शुरू हुई है मनुष्य की, तभी से ही आया हुआ है लगभग। लेकिन तो भी जो इतिहासकार हैं, उन्होंने सबसे जो मुख्य ग्रंथ है हम लोगों का, वो चरक संहिता है। तो लगभग वो 3000 साल पुराना माना जाता है। तो
1: डॉक्टर साहब आपने MS किया है आयुर्वेद में, यानी मास्टर ऑफ सर्जरी। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आयुर्वेद में भी सर्जरी होती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जो सर्जरी के जनक है आयुर्वेद में वो आचार्य सुश्रुत हैं। और प्राचीन समय में अभी भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं महाभारत और रामायण में, ये जनरली पढ़ते हैं युद्ध हुआ, किसी का पैर कट गया, अगले दिन ही उन्होंने जोड़ दिया। तो प्राचीन समय से ही सर्जरी की परंपरा भारत में बहुत विख्यात रही है, और जब मॉडर्न साइंस की

0: वो जो ये हिप्पोक्रेटस ने जब खोज की थी, तो उनके साइंस में केवल मेडिसिन डेवलप हुआ था। हम लोगों के यहाँ एनेस्थीसिया उतना अच्छा डेवलप नहीं था। जैसे ही मॉडर्न साइंस में एनेस्थीसिया आया, तो उन्होंने पूरा आयुर्वेद का ही सर्जरी को पूरा एडप्ट किया और उसको और अच्छा साइंस को मिला के, फिजिक्स को मिला के डेवलप कर लिया है। तो अब लोग ये समझते हैं कि सर्जरी केवल एलोपैथी में होती है, आयुर्वेद में नहीं।
1: जबकि
0: अभी भी
1: आयुर्वेद में एलोपैथी से
0: हाँ,
1: पहले से
0: पहले से
1: सर्जरी
0: ही है
1: मौजूद है।
0: पूरा। अभी भी भारत में सर्जरी के लिए आयुर्वेद के कई सेंटर फेमस हैं, जैसे बनारस तो है ही फेमस, शिमला के पास पपरौला है हिमाचल प्रदेश में,
1: जी
0: वो सर्जरी के लिए बहुत फेमस हैं। वो लोग पूरी आर्थो की सर्जरी करते हैं आयुर्वेदिक तरीके से।
1: अच्छा
0: हाँ, पूरा जनरल सर्जरी भी करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी से लेके छोटी माइनर मेजर हर टाइप की सर्जरी आयुर्वेदिक तरीके से की जाती है। बस इतना हम लोग हेल्प उनसे ले लेते हैं कि इन्फेक्शन ना हो। तो हम लोगों के यहाँ एक मॉडर्न डॉक्टर रहता है साथ में, वो एंटीबायोटिक अपने प्रिस्क्राइब करते हैं। सर्जरी के जो तरीके होते हैं बेसिकली, वो टोटली हम लोग अपने आयुर्वेदिक
1: आयुर्वेदिक
0: तरीके से
1: तरीके।
0: रखते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बीमारियों पर चर्चा हम आगे भी करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ का फॉर्मेट ऐसा है
0: जी
1: कि हम
0: हाँ,
1: डॉक्टर साहब से बात करते हुए उनके पसंद के कुछ गीतों को अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। आज हमारे डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर अखिलेश भारद्वाज क्या हमारे
0: जी
1: श्रोताओं को
0: हाँ,
1: सुनवाना चाहते हैं?
0: चलिए। हम लोग जब यूजी में पढ़ते थे, तो हम लोगों के रैगिंग के टाइम पे जगजीत सिंह की गज़लें बहुत सुनी जाती थी, तो मैं चाहूँगा जगजीत सिंह की गज़ल सुना जाए, ओंठों से छू लो तुम।
1: चलिए, प्रेम गीत की एक गजल आपको अपने कॉलेज डेज में लेके जाएगी। तो चलिए अपने श्रोताओं के साथ और आपके साथ सुनते हैं जगजीत सिंह की ये गजल।

0: एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश भारद्वाज। हम आपसे बात कर रहे हैं पेट की बीमारियां और आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। डॉक्टर साहब, पेट जो है बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है, आपसे बात करके इतना तो हमें पता चल गया है। सबसे मुख्य समस्या लोगों को होती है कब्ज की, मुख्य रूप से इसका कारण क्या है कब्ज का, और ये क्या क्या बीमारियाँ अपने साथ लेकर आती है?
1: जनरली कब्ज की समस्या आप भी देखते हैं शहरों में ज़्यादा हो गई है तुलनात्मक रूप से ग्रामीण परिवेश में के लोगों को देखा जाए। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। हम लोगों का एक तो आहार विहार बदल गया, खान पान बदला हुआ है। पहले के समय में लोगों का सीजनल सब्जियां ज़्यादा खाई जाती थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण, हम लोगों की डाइट में फाइबर काफ़ी कम हो गए हैं। पहले हम लोग गेहूं का आटा यूज करते थे तो पूरा फाइबर रहता था, अब काफ़ी हद तक आप मार्केट से खरीदते हैं तो कंपनियां उनमें फाइबर कम कर देती हैं थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा दिखने के लिए। एक नया कॉन्सेप्ट ये आ गया कि घी कम खाइए, मोटापा बढ़ रहा है। आयुर्वेद में घी खाने पर बहुत जोर रहता है। पहले के लोग वर्कआउट बहुत था, काम बहुत करते थे, तो नेचुरली घी खाने से इंटेस्टाइन कहीं ना कहीं स्मूथ रहती हैं, वर्कआउट करने से इंटेस्टाइन का मूवमेंट बहुत अच्छा रहता है, तो इस वजह से ये भी प्रॉब्लम आई है। वर्तमान समय में भागम भाग वाली जिंदगी हो गई है, डाइट लोगों की इस टाइप से हो गई है, जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, तो अब उतना अच्छे से आयुर्वेद में एक वर्णन है कि आप कम से कम एक कौर को 32 बार चबाइए। अब इस कितना किसी के पास टाइम है कि बैठ के एक घंटा तक वो खाना खाएगा,
0: 32 कौर में पूरा खाना खा लेते हैं,
1: तो वो ये हो गया है
0: जी।
1: दूसरा, हम लोगों के यहाँ फास्ट फूड का प्रचलन बहुत आ गया है, पैकिंग फूड का प्रचलन बहुत आ गया है शहरी लाइफ में। जनरली आप मेट्रो सिटी में जाइएगा, पैक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स वाले खाना बढ़ गए हैं। जितने भी मार्केट में सब्जियां आ रही हैं बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं, उनमें केमिकल्स हैं, तो ये भी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को इनहिबिट करते हैं। इंटेस्टाइन की एक नेचुरल मूवमेंट होती है, उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, तो ये एक कारण हो गया है। दूसरा, शहरी लोगों की लाइफ जनरली इस टाइप की भी हो गई है कि लगातार वर्कआउट आप कर रहे हैं, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेस भी इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। हाइपर एसिडिटी जो अम्लपित्त बोलते हैं हम लोग, उसका भी सबसे जो मेन रूट कॉज है वो स्ट्रेस है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आती है कि जो हम लोगों के गैस्ट्रिक जूस बनते हैं या डाइजेस्टिव जूस बनते हैं वो एक प्रॉपर नहीं बन रहे हैं। एक डाइजेस्टिव जूस ज़्यादा बन रहा है तो दूसरा बाइल जूस कम बन रहा है, तो ये सब प्रभावित कर रहे हैं। जो आपकी लाइफ स्टाइल पेस्टिसाइड या हाइब्रिड फ्रूट या इस टाइप की जो चीज़ें खा रहे हैं उससे लीवर के फंक्शन इनहिबिट हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा लीवर हमारा शहरी लोगों में मैं देखता हूँ कि सप्रेसिव है, उतना बर का उसका अच्छा नहीं है, तो इसीलिए कब्ज की समस्या जहाँ तक मेरा अंदाज है शहरी लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी या कस्बे या तहसील प्लेस में भी अब आ गया, क्योंकि वो भी शहरी तौर तरीकों से प्रभावित रहने लगे हैं। आप देखिएगा जितने भी ये फास्ट फूड कुरकुरे और ये सब चीज़ें अब गाँव में भी पहुँचने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खाने लगे हैं, तो ये भी हम लोग फील करते हैं कि अब गांव के भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके इन प्रॉब्लम के साथ आ गए हैं, जबकि पहले ये सब चीज़ें उतना नहीं थी। तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा कारण खान पान चेंज होने से ये सब आया है वर्तमान में।
0: मतलब जितने भी पैकेज्ड फूड हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं वो हमारे पेट की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं।
1: आप अभी भी राजस्थान जाइएगा, जो उनके ट्रेडिशनल होटल होते हैं वो खाना खाने से पहले आपको ढेर सारा मक्खन और गुड़ देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये आयुर्वेद में परंपरा है कि पहले आप स्टमक को क्लेद करिए, स्मूथ करिए, उसके बाद देन खाना खाइए, तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा।
0: दक्षिण भारत में भी चावल और घी मिलाकर के सबसे पहला निवाला वो खाने की परंपरा है, जिससे आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो गला है ओएसोफेगस है वो नरम हो जाए, नम हो जाए,
1: स्मूथ रहे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, मॉडर्न साइंस में जब से एक कोलेस्ट्रॉल का आया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, तो अधिकांश डॉक्टर इस ये कह के डरा देते हैं कि आप कम खाइए, जबकि अभी भी नई रिसर्च भी आई है साइंटिस्ट के द्वारा कि जो गाय का घी होता है उसमें ना के बराबर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है।
0: तो हमारे श्रोताओं के लिए एक अच्छी खबर है कि घी खाना नुकसानदायक नहीं है।
1: हाँ, कम से कम गाय का घी खाना नहीं।
0: तो सबसे बड़ी चीज कि यदि आप अपने खाने में फाइबर्स, हरी पत्तेदार चीजें और घी का समावेश रखेंगे तो कब्ज की समस्या कम
1: काफी हद तक कम रहेगी।
0: और साथ में आपने बताया कि वर्कआउट भी बहुत जरूरी है।
1: हाँ बिल्कुल, उससे इंटेस्टाइनल मूवमेंट आपकी अच्छी रहती है, नेचुरली डाइजेशन बिल्कुल अच्छा रहेगा सारा।
0: एसिडिटी की समस्या आपने बताई थी, अम्ल पित्त आपने नाम बताया था कि आयुर्वेद में से अम्ल पित्त कहते हैं, ये कैसे शुरू होती है और इसका कारण क्या है?
1: एक्चुअली हम लोग जो भी खाना खाते हैं, हमारे नेचर ने ये सिस्टम किया कि खाना सबसे पहले हमारी ईसोफेगस से स्टमक में जाता है। स्टमक में मेनली गैस्ट्रिक जूस बनता है जो काफी ज्यादा एसिडिक होता है, HCl होता है वो, और उसका pH जो रहता है वो 2 से 3 तक रहता है। 2 और 3 pH एसिड बहुत हायर एसिडिक माना जाता है। अगर हम उसमें अपनी फिंगर डाल दें तो फिंगर जल जाए,
0: अच्छा
1: इतना एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन नेचर ने पहले से ही स्टमक को उसके चारों ओर एक म्यूकस मेम्ब्रेन बनाई है, उसको म्यूसिन का सीक्रेशन बनाया है, तो काफी हद तक उसका उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। कई बार हम लोग जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हम लोग मीट खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है और स्टमक खुद मांस का बना हुआ वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होता उससे, तो उसका ये स्टमक पे एक लेयर बनाई हुई है। तो नेचर ने उसके 2-3 उद्देश्य हैं मेन, एक तो जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं उसमें जो भी बैक्टीरिया जा रहे हैं या कुछ तो वो पूरी तरह से डेड कर दें, दूसरा वो डाइजेशन के लिए तो है ही। उसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग डाइट लेते हैं हमारे स्टमक में कुछ सेल होती हैं, ऑक्सेंटिक सेल कहलाती हैं, पैराइटल सेल, वो ब्रेन से एक ऑर्डर आता है कि हम लोग खाना खा रहे हैं तो वो ऑक्सेंटिक सेल HCl का सीक्रेशन करने लगती हैं एसिड का, केवल उतने समय तक जितना फूड है डाइजेस्ट हुआ, देन वो सेल सप्रेस हो जाती हैं और बंद। अब क्या हो गया है कि हम लोग स्ट्रेस में हैं या बहुत सारी इसकी पैथोलॉजी होती हैं, उसकी वजह से ऑक्सेंटिक सेल हाइपर एक्टिव होकर 24 आवर एसिड का सीक्रेशन करने लगती हैं, तो हम लोग खाली पेट हैं तो भी एसिड बन रहा है। तब हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं, उसके रूट कॉज ढूंढते हैं कि क्यों हो रहा है, तो उसी को हम लोग फिर हाइपर एसिडिटी कहते हैं। तो कई लोग जैसे ड्रिंक्स कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो निकोटिन का सेवन, उससे भी गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो जाते हैं तो उससे भी फिर ये प्रॉब्लम आती हैं, है ना। कई लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है लेट के ही खाना खा रहे हैं, तो जो हमारा स्टमक का पोर्शन होता है मेनली लेफ्ट साइड में होता है, तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो राइट साइड करवट करके सोते हैं, तो इसलिए ये भी कहा गया है कि भोजन करने के बाद हमेशा आपको लेफ्ट करवट सोना चाहिए, तो क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है मुख्य रूप से लेफ्ट साइड को कवर करता है, तो जब वो फुलफिल होगा खाना से जो भी आपने डाइट लिया है तो वो प्रेशर देके राइट में आएगा तो डाइजेशन फिर प्रभावित होता है। तो इसलिए एक दिनचर्या में ये भी रखें कि अगर आप खाना खाने के बाद लेट रहे हैं तो पहले तो ये कहा गया आयुर्वेद का ही सिद्धांत है कि खाना खाने के तुरंत बाद ना लेटें, कुछ देर थोड़ा सा घूमें, देन उसके बाद कम से कम 45 मिनट तक आराम करें और वो भी लेफ्ट करवट में करें। तो लेफ्ट करवट में क्या होता है, लेफ्ट जो कर्वेचर होता है स्टमक में उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सेंटिक सेल होती हैं, तो जितना भी एसिड बनाता है वो पूरा फूड पर यूज हो जाता है, तो उतना फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, कई बार किसी लोगों को गैसेस की प्रॉब्लम बहुत होती है, फ्लैटुलेंस की समस्या, वो भी गैस्ट्रिक अल्सरेशन की वजह से स्टमक फुल हो गया, या उनको पहले से ही ओबेसिटी है तो उनके पेट पे एक ओमेंटम करके लेयर होती है फैटी लेयर, वो ज़्यादा मोटी है, तो उसका पूरा प्रेशर स्टमक पे पड़ता है। जब स्टमक पे प्रेशर पड़ेगा तो पूरा प्रेशर डायफ्राम पे डालती है। डायफ्राम हमारी एक रचना है जो पेट के नीचे के ऑर्गन को, इंटेस्टाइन को, लंग्स और हार्ट से अलग करती है, तो वो डायफ्राम पे जब प्रेशर पड़ता है तो जो हमारी खाने की जो फूड ट्यूब होती है वो प्रेशराइज होके ऊपर की ओर धकेलती है, स्टमक का कुछ पोर्शन ऊपर की ओर धकेलता है, जिसको हाइटस हर्निया कहा जाता है। हाइटस हर्निया की वजह से भी कभी कभी लोगों को पूरे टाइम हाइपर एसिडिटी होती रहती है। तो हाइपर एसिडिटी के बहुत सारे कॉज होते हैं, रूट कॉज होते हैं, तो वो तो हम लोग फिर चिकित्सा के दौरान देखते हैं कि किसी को क्यों हो रहा है। जनरली जितने भी आप मसाले वाली सब्जियां ज़्यादा खाते हैं तो जो हेल्दी पर्सन है, जिनका पूरा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जिनको पहले से ही गैस्ट्रिक अल्सर हैं, छोटे मोटे छाले हैं, तो वो बिल्कुल प्रभावित करेंगे, वो एसिडिटी लाएंगे। तो ये भी आप सोसाइटी में सुनिए, कई लोग कहते हैं मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, तो उनका स्टमक काफी हेल्दी है, पहले से ही हेल्दी डाइट लेते रहे हैं, तो ये भी एक कारण होता है।
0: डॉक्टर साहब, इस कारण पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक है और वो ब्रेक है गीत के लिए। सेहत की बात हम करेंगे लेकिन गीतों के साथ करेंगे, तो अब आप बताएं कि आपको अगला गीत हमारे श्रोताओं को कौन सा सुनवाना है।
1: हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो उस समय एक दूजे के लिए फिल्म आई थी, तो उसके गाने सुनना बहुत अच्छा लगता था,
0: तो उसके तो सारे गाने बहुत अच्छे हैं उस फिल्म के।
1: तो उसका बाली उमर को सलाम, ये वाला सुनते हैं।
0: तो मतलब आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बार बार लौट कर अतीत में जा रहे हैं, अपने कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं।
1: उस समय ज्यादा एंजॉय करते थे, अब लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि अब तो नए गाने आए वो उतना सुनना अच्छा भी नहीं लगता, तो धीरे धीरे नए पे भी आएंगे अभी।
0: तो चलिए डॉक्टर साहब, आपकी पसंद का ये जो गीत है बाली उमर को सलाम, हम अपने श्रोताओं की नजर कर रहे हैं। श्रोताओं, डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: इस खूबसूरत गीत के लिए डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लौटते हैं वापस सेहत की बात पर। आपने बताया कि व्यक्तिगत विभेद होता है लोगों में, कोई व्यक्ति तला भुना ज़्यादा खा लेता है उसे परेशानी उतनी नहीं होती है, लेकिन कोई व्यक्ति थोड़ा भी खाता है उसे परेशानी ज़्यादा होती है, ये क्यों होता है?
1: हाँ, ये एक्चुअली सभी व्यक्तियों की अलग अलग प्रकृति होती है, जिसको सामान्य लोग कहते हैं कि मेरी तासीर गर्म है, मेरी ठंडी है, ये सब यूज होता है। आयुर्वेद में हम लोग प्रकृति बोलते हैं इसको, तो किसी की बातज प्रकृति होती है, किसी की पित्तज और किसी की कफज, तो हम लोग इस टाइप से निर्धारित करते हैं। हमारे आयुर्वेद में पूरे रोग और आहार विहार सभी दोषों पर आधारित होते हैं, तो हम लोग ये भी एनालिसिस करते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कि कोई व्यक्ति किस प्रकृति का है। और चिकित्सा में भी वही सिद्धांत लागू होते हैं कि हम लोग एक ही औषधि से एक पेशेंट को ठीक करते हैं, तो उसी औषधि से उसी जैसा रोग दूसरे पेशेंट को नहीं ठीक कर सकते। कई बार हम लोग टीवी पे या पेपर में ऐड देख लेते हैं कि ये एसिडिटी की मेडिसिन बड़ी फेमस है, तो वो केवल एक सेल करने का उनका तरीका होता है, वो चिकित्सक के थ्रू ही फिक्स होता है। तो ये कॉमन ड्रग बना दिए हैं, अगर आपको सही चिकित्सा लेनी है तो वो मेरे हिसाब से आप हर व्यक्ति का एक एनालिसिस करके ही लें कि दोष कैसे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। हम लोगों के यहाँ आयुर्वेद में साल भर का एक ऋतुचर्या फिक्स की गया है। हमारे अलग अलग ऋतु होती हैं, आप ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, तो हमारे यहाँ ऋतु के अकॉर्डिंग भी पूरा आहार विहार फिक्स किया है कि इन दिनों ये आहार ना लें। हम लोगों के आयुर्वेद में जो कार्तिक मास होता है, इसके पीरियड को थोड़ा खाने पीने के लिए बहुत सेंसिटिव कहा गया। हमारे एक शब्द यूज हुआ है कि इसमें कार्तिक मास के जो अंतिम 7 दिन हैं और उसके बाद एक अगहन मास शुरू होता है उसके प्रारंभिक 8 दिन हैं, इनमें आहार विहार बहुत लिमिटेड रखना चाहिए, खान पान बहुत हल्का। इसके लिए एक शब्द यूज किया आयुर्वेद में, यम दंष्ट्रा। दंष्ट्रा मतलब काटना, यमराज। तो अगर आपने गलत आहार विहार किया तो आप यम दंश के भी शिकार हो सकते हैं।
0: अच्छा।
1: चिकित्सा की दृष्टि से मैं आज ही अनुभवता हूँ, दीपावली के बाद ढेर पेशेंट हम लोग के पास पेट के स्पेशली, और दूसरा चूंकि सीजन चेंज होता है, थोड़ा सा ठंडा आता है, तो एलर्जी के बहुत ज्यादा आते हैं। तो सबसे ज्यादा हम लोग ये भी देखते हैं कि जिन लोगों को पहले से ही कफ की प्रॉब्लम होती है उनको इन दोनों एलर्जी भी बहुत बढ़ती है, तो वो भी हम लोग पेट से जोड़ के रखते हैं कि आपने दीपावली पे कफ वाली चीज़ें ज़्यादा खाई हैं। जितनी भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं, मैदे से बने आइटम या जनरली दूध से बने आइटम बहुत सारे, ये हमारे शरीर में थोड़ा सा कफ को बढ़ाते हैं, तो कफ बढ़ेगा तो तुरंत छींकें और एलर्जी दूसरी चीज़ें शुरू होती हैं।

0: मैं उज्जैन में रहा हूँ, मेरा वहीं से ग्रेजुएशन था, वहाँ त्यौहार बहुत होते हैं। तो वहाँ पर एक त्यौहार आता है ऋषि पंचमी, वहाँ पर महिलाएं एक अपामार्ग करके प्लांट होता है, उससे सारी महिलाएं मंजन करती हैं, दांतुन करती हैं। तो उस वक्त मैं आयुर्वेद में नया नया गया था, तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्यों,
1: ये क्या है।
0: हाँ, जब आयुर्वेद हम लोगों ने पढ़ा तब ये जाना अपामार्ग में एक विशेष क्षार होता है, अगर उसको एक बार कोई इसकी मंजन कर दे तो किसी भी टाइप का दांतों में इन्फेक्शन हो वो लगभग ख़त्म हो जाता है एक ही बार में। तो हमारे त्योहारों में कई खान पान की चीज़ें चिकित्सा से भी जुड़ी हुई हैं,
1: बहुत
0: तो
1: हो।
0: एक बार कोई करता है उसको तो कई बार वो स्वस्थ रहता है साल भर। तो इसी टाइप से आप देखिएगा, पहले प्राचीन समय में सर्दियों के दिनों में लोग अलसी के लड्डू खाते थे,
1: बिल्कुल।
0: अब भूल गए हम लोग, अमेरिका में वो फ्लैक्स सीड बन के गया, फिर वहाँ फ्लैक्स सीड से वापस इंडिया में आया,
1: ओमेगा 3 फैटी एसिड
0: जी
1: बन के
0: हाँ,
1: चला आया।
0: अब वो फ्लैक्स सीड के नाम से फेमस हो गया कि जॉइंट्स आपको हेल्दी रखने हैं, हार्ट अपना हेल्दी रखना है तो फ्लैक्स सीड खाइए। पहले गांव के लोग एक महीने लड्डू खा लेते थे सर्दियों में, साल भर उनके हार्ट हेल्दी रहते थे, घुटने हेल्दी रहते थे। तो आयुर्वेद में इस टाइप की चीजें बहुत बढ़ लेते हैं कि ऋतु के अनुसार ये चीज खा लीजिए तो साल भर आप स्वस्थ रहेंगे।
1: हमारे त्योहारों की आपने बात की तो उसी में एक त्योहार आता है बासोड़ा, जो ये माना जाता है कि उसके बाद आप बासा खाना मत खाइए, क्योंकि ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी आ जाती
0: बिल्कुल
1: है, तो बासा खाना उसके बाद खाना वर्जित होता है, बस तब तक आपने खा लिया तो खा लिया।
0: बिल्कुल,
1: ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे त्योहार हमें सिखाते हैं। आयुर्वेद ने हमारी जीवन शैली को बहुत पहले से प्रभावित करके रखा हुआ है, और आज भी आयुर्वेद हमारे जीवन में उसी तरह पैठ बनाए हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आयुर्वेद में हमारा भरोसा इसी तरह बना रहेगा। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ने से पहले एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं, बताएं कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे। आपने बोला था कि कुछ नए गीतों की तरफ भी आप आएंगे।
0: अभी आज की जो टू आई थी, मुझे उसके भी सारे गाने सुनना अच्छा लगता है
1: जी,
0: तो आप उसमें से सुनवाइए। कई बार मैं मोबाइल में उसकी जनरली इंस्ट्रूमेंटल भी डाल के रखता हूँ, तो वो मैं सुनता रहता
1: हूँ। बहुत खूबसूरत गीत थे अरिजीत और पलक मुछाल के गाए हुए। तो चलिए अपने श्रोताओं को आशिकी 2 का ये खूबसूरत सा गीत अब डॉक्टर साहब की पसंद पे सुनवाए देते हैं। श्रोताओं लीजिए, सुनिए।

0: सेहत की बात तरानों के साथ। इस कार्यक्रम में इस खूबसूरत गीत के बाद हम बात करते हैं डॉक्टर अखिलेश भारद्वाज से। हम बात कर रहे हैं श्रोताओं पेट की बीमारियां और आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। डॉक्टर साहब, अल्सर्स की बात आपने बार बार कही है, पेट में छाले या घाव जैसा कुछ हो जाता है, इसका कारण क्या है और आयुर्वेद इसका किस तरह से उपचार करता है?
1: जी हाँ, मैं इस पर दो तीन रोगों के साथ चर्चा करूँगा, क्योंकि हम लोग ग्वालियर से हैं तो ग्वालियर के आसपास के एरिए में, यहाँ पर यहाँ के पानी में, शिवपुरी का एरिया, भिंड का

0: एक कीटाणु बहुत है जिसको एंट अमीबा हिस्टोलिट का बोलते हैं इस एरिया में। तो हाइपर एसिडिटी एक इसका कॉज है, दूसरा किसी पेशेंट को लगातार अमीबेसिस है तो फिर इसको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं। कई बार पेशेंट कुछ इस टाइप की डाइट ज़्यादा लेते हैं, एल्कोहल युक्त या निकोटीन वाला साथ में जा रहा है डाइट के साथ में, बहुत सारे लोगों की आदत होती है पार्टी में, तो इन लोगों को ये गैस्ट्रिक अल्सर होने का बहुत डर रहता है, सेंसिटिव रहते हैं। कई लोगों का नेचर होता है कि थोड़ा सा स्पाइसी ही हमेशा खाते हैं, तो उन लोगों को भी ये बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोगों को ये चीज़ ज़रूर ख्याल रखना चाहिए हम लोगों की डाइट में, कि एक आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत है कि प्रातःकाल हमेशा ऊषा पान करना है, मतलब आपको पानी पीना चाहिए। दूसरा, मध्य में दोपहर को हमेशा आप तक्र पान करें, मतलब मट्ठे का पान करें, दही का करें, और रात्रि में दुग्ध पान करें। कई लोग कहते हैं सर हम रात्रि में दही खाते हैं, तो उसके नियम कुछ बनाए गए हैं कि हमारे शरीर में दिन के हिसाब से भी वात पित्त कफ रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग कहा है कि दिन में हमारा पित्त बड़ा रहता है, भूख बहुत रहती है, तक्र डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, तक्र में मट्ठा छाछ, तो वो दोपहर को ही खाने को कहा है। आप दूध कभी भी सुबह ना पिए, आयुर्वेद में मना किया है। हम लोग अधिकांश नाश्ते में दूध लेते हैं या बच्चों को भी सुबह देते हैं, वैसे ही सुबह कफ का प्रकोप होता है, दूध थोड़ा कफ को बढ़ाता है, तो इसलिए आयुर्वेद में दूध हमेशा रात्रि को लेने को कहा है। तो हम लोगों के आहार में जनरली इस टाइप की चीज़ें रहती हैं कि जब हमें लेना चाहिए उस वक्त नहीं लेते। कई लोग हमने देखा है पराठे हमेशा रात्रि में ही खाते हैं, है ना, जबकि आयुर्वेद में मना किया गया, आयुर्वेद में रात्रि को हमेशा हल्का भोजन लेने को कहा गया है। तो एक जो गैस्ट्रिक अल्सरेशन के इस टाइप के जो कारण है उसकी वजह से भी हाइपर एसिडिटी बहुत बड़ी है। दूसरा, हम लोग स्टमक बहुत ज़्यादा फुल कर लेते हैं। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि जो हमारा खाने की थैली है उसको केवल 1/3 भोजन करना चाहिए, फिर उसमें लिखा है 1/3 पानी के लिए छोड़ देना चाहिए और बचा हुआ 1/3 वायु के लिए छोड़ दीजिए, खाली स्थान के लिए, ताकि भोजन वहाँ मूव करके डाइजेस्ट कर चुके। हम लोग 1/3 की जगह उसको लगभग फुल ही कर लेते हैं पूरा अच्छे से, तो इसीलिए हम लोगों के यहाँ इस टाइप की समस्याएं एसिडिटी की बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो स्टमक का अपर पोर्शन होता है, कार्डियक एंड जो कहलाता है, वहाँ पर ऑक्सेंटिक सेल सबसे ज़्यादा होती हैं, तो वो प्रभावित होकर फिर वो गैस्ट्रिक अल्सरेशन और दूसरे चीज़ें प्रभावित करती हैं। एक ग्वालियर में क्रॉनिक अमीबेसिस के भी पेशेंट बहुत होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जनरली मैंने अभी आपसे बताया कि यहाँ एंट अमीबा हिस्टोलाइट का बहुत है, उसका पूरा फ्लोरा इंटेस्टाइन में आ जाता है, वो फिर आसानी से नहीं निकलता। तो जनरली पेशेंट की कंप्लेंट होती है, डॉक्टर साहब लैट्रिन कई बार जाना पड़ता है, लैट्रिन में म्यूकस आता है, एसिडिटी बहुत रहती है, पेट फूलता है, तब भी हम लोग ये देखते हैं कि हाइपर एसिडिटी उसको जो है उसका रूट कॉज क्या है उसको फिर हम लोग ट्रीट करते हैं। तो अमीबेसिस के लिए भी, जिसको आयुर्वेद में ग्रहणी या संग्रहणी के नाम से कहा है, उसमें मट्ठे का बहुत ज़्यादा उपयोग करने को कहा है। तक्र जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतने ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ एक नॉलेज के लिए मैं बस बता दूँ एक बात, जनरली जो मट्ठे होते हैं बनाए जाते हैं गाँव में, उसको घंटों फेरा जाता था जो मथनी से, तो उसको टोटली मक्खन निकाला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूक्ष कर दिया, मक्खन फ्री होना चाहिए टोटली, वही आयुर्वेद में उपयोगी कहा गया है,
1: असली तक्र वही है।
0: जनरली हम लोग मिक्सर में डाल के घुमा देते हैं दही को, वो तक्र नहीं है या वो छाछ नहीं है, टोटली मक्खन फ्री होना चाहिए, उसी को भोजन में अत्यंत उपयोगी कहा गया है। तो आप सोसाइटी में देखिए अमीबेसिस के बहुत लोग परेशान हैं, तो अम्लपित्त और हाइपर एसिडिटी के जो रूट कॉज होते हैं एक एक करके अलग अलग पेशेंट में हम लोग अलग अलग टाइप से एनालिसिस करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हमारी मानसिकता होती है खासतौर पर हिंदुस्तानी मानसिकता कि कोई दवा पता चल गई तो उसे हम भी लेना शुरू कर देते हैं, और आयुर्वेद की प्रैक्टिस तो लगभग सभी करने लगते हैं कि तुम त्रिफला खा लो, तुम सिरका पी लो, तुम शहद पी लो, तो क्या ये कितना सही है? एलोपैथी में तो बिल्कुल ही इसे वर्जित माना गया है, क्या आयुर्वेद भी इसे वर्जित मानता है?
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैं वापस अम्लपित्त एसिडिटी पे ही बात करता हूँ, उसके जब तक आपको कारण पता नहीं होंगे तब तक आप उसको ठीक नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों के पास एसिडिटी का कोई पेशेंट आता है, तो हम लोग अभी मैंने आपको कारण भी गिनाए थे, हाइडस हर्निया भी हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है उसका कारण, क्रॉनिक अमीबिसिस भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से भी हाइपर एसिडिटी होती है। तो सबके ट्रीटमेंट अलग अलग रहते हैं, तो आप किसी पेपर में ऐड देख के या उसके अकॉर्डिंग आप चिकित्सा नहीं कर सकते बिल्कुल। तो इसीलिए आपको किसी योग्य चिकित्सक से ही अपना परीक्षण करवा के ही चिकित्सा करानी चाहिए।
1: छोटी मोटी भी यदि कोई समस्या है तो आप चिकित्सक के पास जाएं श्रोता साथियों, न कि अपने आप अपने डॉक्टर बन जाएं, क्योंकि आपके अंदर क्या समस्या पल रही है ये आप बेहतर नहीं जानते। आप सिर्फ लक्षणों को पहचान सकते हैं लेकिन समस्या क्या है वो चिकित्सक ही पहचान सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता एक और गीत सुनना चाहते हैं।
0: हम लोग जब भी कहीं से विदा होते थे, अलग अलग जगह से डिग्री ली है, तो अगर संभव हो सके तो आप चलते चलते जो दूसरा वाला गाना है,
1: मेरे गीत
0: याद रखना
1: फिल्म चलते चलते ही है वो। अच्छा। बहुत सुंदर गीत है, किशोर कुमार का गाया गीत है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से विदाई के समय में वही गीत समझ आता है और गाते हैं और बहुत भावनात्मक संबंध होता है इस गीत के साथ बहुत से लोगों का। तो चलिए, एक खूबसूरत सा ये गीत जो आपको अपने अतीत में ले जा रहा है, एक बार फिर से हम सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।

0: इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश भारद्वाज। हम बात कर रहे हैं पेट की बीमारियां और आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। डॉक्टर साहब, आज की हमारी जीवन शैली बहुत सारी बीमारियों का कारण बन गई है और जीवन शैली से संबद्ध बहुत सी बीमारियाँ बहुत कम उम्र में ही लोगों को आ जा रही हैं, तो इसमें हमें क्या सावधानियाँ रखनी हैं और क्या योग आयुर्वेदिक उपचार में सहायता करता है? ये दोनों सवालों का मेरे ख्याल से लगभग मिलाजुला सा उत्तर है, हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी हाँ जी, बिल्कुल। हम लोग पहले तो ये ख्याल रखें कि अपना जो हमारा पूरा इंटेस्टाइन है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो कैसे हेल्दी रखें। हमारी एलिमेंट्री कैनाल हेल्दी रहे, इसके लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग कहते हैं मुंह में छाले हो गए तो एक विटामिन B12 का या बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट ले लीजिएगा। जो हम लोगों के ड्राई फ्रूट होते हैं मुनक्का, उसमें बहुत अच्छे इस टाइप के कंटेंट्स होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल को बहुत हेल्दी रखते हैं। जो मुनक्के के बीज होते हैं उनमें अल्फा ओमेगा फैटी एसिड बहुत अच्छा होता है, जो जनरली न केवल एलिमेंट्री कैनाल के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक, जो कहते हैं ना दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एलडीएल खराब वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको ख़त्म करता है। तो मैं केवल ड्राई फ्रूट पे जोर देता हूँ, आप कुछ मुनक्के खाइए, कुछ अखरोट खाइए,
0: मुनक्का
1: तो,
0: बीज के साथ,
1: हाँ बीज के साथ खाइए।
0: जनरली मुनक्के का बीज निकाल के फेंक देते हैं
1: जनरली, वो इसलिए पहले सिखाया जाता था, जो बचपन में हम लोगों का अपेंडिक्स का डर बहुत होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा एक ऑर्गन होता है, शायद आपने सुना होगा सभी ने, बर्मीफोर अपेंडिक्स, तो उसमें एक लीमन होती है, लीमन काफी नैरो होती है, तो हम लोग ये डरते हैं अगर मैंने बीज साबुत निकल लिया तो वहाँ फंस ना जाए और फिर अपेंडिसाइटिस ना हो जाए, इसलिए ऐसा कहते थे बीज मत निकल लेना। अगर उसको अच्छे से चबा के निकला जाए तो वो बहुत फायदेमंद है। कई कंपनियां उससे कैप्सूल बनाती हैं हेल्थ के, तो इसीलिए उसके कंटेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। खाना खाने के बाद आप हमेशा भुनी हुई अलसी या सौंफ जरूर खाइएगा, ये आयुर्वेद के सिद्धांत हैं। ये ना केवल डाइजेस्टिव जूस को अच्छे करते हैं, खाने में जो आपका एक्स्ट्रा फैट वगैरह जा रहा है वो कोलेस्ट्रॉल काफ़ी अच्छा कवर करता है। वर्तमान में आप देखिएगा गाल स्टोन बहुत बड़े हैं, लोग कहते हैं सब पित्त की थैली में पथरी हो गया है, वही कारण होता है। पित्त की थैली की जो पथरी बनती है वो मेनली कोलेस्ट्रॉल से बनती है, बाइल साल्ट और कोलेस्ट्रॉल से। तो जितने भी अल्फा ओमेगा फैटी एसिड होते हैं, अखरोट में बहुत होता है, अलसी में बहुत होता है, मुनक्के के बीजों में होता है, तो ये उसको बनने नहीं देते। तो गॉलस्टोन की भी समस्याएं वर्तमान में लोगों को बहुत आ रही है, तो डाइट में ये हमेशा आप रखिएगा। आयुर्वेद का सिद्धांत है रात में हमेशा और हल्का भोजन करें, लघु भोजन करें जितना भी संभव हो सके। अगर आप सुबह उठ के कुछ योगासन अगर रेगुलर कर सकते हैं, पहले तो एक सूर्य नमस्कार करें, अगर जो लोग समझते हैं कर सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक पेट की एक्सरसाइज होती हैं। दूसरे दो तीन आसन हम सिंपल बोलते हैं, भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठें, जो नमाज पढ़ते हैं पैर, केवल एक ही ऐसा आसन है योग में जो भोजन करने के बाद किया जा सकता है, वो है वज्रासन। जनरली इससे काफी हद तक उदर रोग ठीक रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं।
0: श्रोताओं, सेहत की बात तरानों के साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर अखिलेश भारद्वाज हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को पेट से संबंधित आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बहुत अच्छी और सारगर्भित जानकारी दी, इसके लिए हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार डॉक्टर।
1: नमस्कार।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम
1: तो क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेहत की बात तरानू के साथ, पेट की बीमारियों और आयुर्वेदिक उपचार विषय पर आप सुन रहे थे डॉक्टर अखिलेश भारद्वाज से तुलिका शर्मा की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर से प्रसारित हुआ। हम आकाशवाणी ग्वालियर से बोल रहे हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का ये गीत। इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला प्रसारण भोपाल केंद्र से।
3: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गोपालकों को अनुदान राशि वितरित करने के साथ ही गोपालक दीदियों को सम्मानित भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री शाह गोपालक सम्मेलन में उज्जैन में 255 करोड़ की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट के भूमि पूजन के साथ ही भोपाल में प्रोडक्ट प्लांट और शिवपुरी में डेयरी संयंत्र का लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के सेज विश्वविद्यालय में आयोजित एजुकेशन स्कॉलरशिप कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री चौहान मधुमेह के उपचार, नई तकनीक और रिसर्च को लेकर सांची में होने वाले सम्मेलन में भी भाग लेंगे। प्रदेश में आज से 2 दिवसीय सरकार आपके द्वार अभियान के तहत विकासखंड स्तर और नगरीय क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर दिलाया जाएगा। एशियाई खेलों में प्रणवी उर्स ने गोल्फ का स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और एशियाई खेलों के पुरुष क्रिकेट में आज भारत और पाकिस्तान के बीच स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए समाचार लिखे जाने तक 10 ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्कार, हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। विषय है जब हम सड़क पर जाते हैं, यातायात के नियमों का तो लगभग सभी लोग पालन करते हैं और जो नहीं करते हैं उनको परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। पर आप सभी ने ये नोटिस किया होगा कि जो हमारे पालतू जानवर हैं तो वो मवेशी सड़क पर बहुत ही मात्रा में, बहुत ही तादाद में पाए जाते हैं और कई जगह जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो हमें मृत अवस्था में भी मिलते हैं, तो हमारा हृदय बहुत ही द्रवित हो जाता है उसको देखकर। तो उनसे हमें छुटकारा कैसे मिले, यानी अगर हाईवे पे हम जा रहे हैं जी नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: मंदसौर से बोल रहा हूँ मैं, सुरेश कुमार हरवाणी।
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मंदसौर से। मंदसौर
1: कौन बोल रहे हैं?
2: सुरेश कुमार हरवाणी।
1: सुरेश कुमार जी,
2: हाँ मैडम, भाई भाभी दिन दो महीने बाद फोन लगा मेरा।
1: चलिए देखिए, आवाज दो महीने बाद लगा लेकिन आज आपका पहला कॉल है ना, बड़ी खुशी की बात ये।
2: बहुत खुशी बात है, आज दो महीने बाद फोन लगा, रोज कोशिश कर रहा हूँ मैं, आज लग गया फोन मेरा।
1: चलिए सुरेश जी, कैसे हैं आप?
2: बस बढ़िया, गुरु कृपा है,
1: कृपा
2: है हमारे ऊपर सबके ऊपर।
1: क्या काम करते हैं सुरेश जी आप?
2: साड़ी की शॉप है जी मेरी।
1: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। मंदसौर में मतलब साड़ी की शॉप है आपकी?
2: हाँ जी जी हाँ।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। सुरेश जी, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो विषय हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वो विषय है जब हम
2: जब हम
1: हाईवे पर जाते हैं कहीं भी,
2: हाँ,
1: है ना,
2: हाँ,
1: तो हमने देखा है कि बहुत सारे मवेशी वहाँ पर बहुत मात्रा में बैठे रहते हैं,
2: हाँ,
1: और कई जगह पर हमें वो मृत अवस्था में भी मिलते हैं, यानी कोई उनको टक्कर मार के निकल गया है,
2: हाँ,
1: है ना। तो उन सब से बचाव हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि, है ना, सड़क पर इन मवेशियों को बैठने से हम रोक सकें ताकि ना तो वो उनकी जान जाए।
2: अपन गाड़ी चला रहे, अपन को जान से निकलना चाहिए भाई, पशुओं को कुछ नुकसान है और चाहे अपने नहीं आ रहे।
1: नहीं, ये तो हमने स्वयं देखा है कि अपन निकल रहे हैं तो अपन को स्पीड में, थोड़ी सी स्पीड में भी रहते हैं लेकिन मवेशियों को देखकर अपन थोड़ी स्पीड कम कर लेते हैं, लेकिन अचानक से वो आपकी गाड़ी के सामने भी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें तो इतना होश नहीं रहता ना, उठे और चल दिए। तो ऐसा क्या करें कि वो सड़क पर ना हो?
2: ना, तो जो पशु पालक है उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनको पशुओं को नहीं छोड़ना चाहिए सड़क, मतलब
1: है ना। ये तो बहुत ही गलत बात है ना कि सड़क पर बिल्कुल निष्फिक्र होके पशुओं को छोड़ दिया और फिर ना उनकी जान भी जा रही है, तो कभी किसी की है ना पैरों में चोट लग रही है तो वो लंगड़ा के चल रहा है, तो ये देख के अपना हृदय बड़ा वो होता है ना, द्रवित
2: होता। तो वो कभी अपन भी उस पशु को लेके साइड में कर बिठा दे, मतलब उसको चोट लगती है तो अपना ये,
1: लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिठा भी देंगे लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से 20 सड़क पे आके बैठ जाते हैं। और काफी कम से कम अगर आप है ना 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की दूरी पर भी आप जाएं तो आपको कम से कम 200 पशु मिल जाएंगे रास्ते में सड़क पर।
2: हाँ, वो अपन को तो दूर से देख रहे, अपन को जानना चाहिए अपन को भाई गाड़ी अपन चला रहे हैं।
1: ये
2: अपने ऊपर है,
1: बिल्कुल ध्यान तो अपन को रखने की जरूरत है, लेकिन ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसा क्या किया जाए कि वो बीच में बैठे ही ना, है ना।
2: हाँ, तो जो पूरा ट्रैफिक है, वो जो ट्रैफिक यात्रा व्यवस्था, उनको उनके ऊपर पूरा रहता है ध्यान, और जो पशुपालक है उनको जांचना चाहिए भाई, अपन
1: वही
2: जगह नहीं छोड़े, मतलब
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सुरेश जी, हम चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बात पर थोड़ी सी जागरूकता फैले, बस यही उद्देश्य है हमारा। चलिए आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, हम अपने अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं अब। नमस्कार।
2: नमस्कार दीदी।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, देखिए आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार हम और आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हमें फ़ोन काटना पड़ेगा। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी। मैं मालेगांव से तुलसीराम व्यास बोल रहा हूँ। मैं
0: मालेगांव से।
1: हाँ तुलसीराम व्यास बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल आपसे पहले भी बात हो चुकी है मेरी।
0: जी,
1: आप
0: मैं कविता रावत।
1: अच्छा रावत जी, आपसे
0: पहचान ली।
1: बात हो चुकी है मेरी, दो बार हुई है, मेरे पास लिखा हुआ भी है आपका।
0: अरे वाह, क्या बात है! मतलब आप नोट करके रखते हैं तुलसीराम
1: नोट
0: जी।
1: क्या, मैं एक टीचर था ना,
0: हाँ
1: और टीचर की आदत क्या होती है, पेन
0: हाँ
1: और कागज उसके साथ में रहता 24 घंटे। पेन
0: अरे वाह, ये
1: और कागज 24 घंटे उनके साथ में रहना पड़ेगा।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ तो आज का
0: चल,
1: क्या विषय है, कुछ है बताओ आप।
0: हाँ, आज का विषय हमने बड़ा इम्पोर्टेंट है, हम सभी के लिए बहुत ही
1: हाँ
0: महत्वपूर्ण। हम जब है ना सड़क पर जाते हैं अपने वाहनों से, तो रास्ते में बहुत सारे मवेशी बैठे हुए मिलते हैं, जिनकी वजह
1: हाँ
0: से हमको भी डिस्टरबेंस होता है और कई बार वो भी वाहनों की चपेट में आ जाते हैं।
1: बिल्कुल सत्य बात है।
0: तो अगर आप है ना 200 किलोमीटर की दूरी तक भी जाएं, तो आपको कम से कम 200 जानवर मिलेंगे रास्ते में,
1: बिल्कुल
0: तो
1: जानवर,
0: वो
1: बिल्कुल
0: उनके लिए
1: सत्य
0: भी
1: बात,
0: खतरनाक है और जो ड्राइव कर रहा है उसके लिए भी खतरनाक है।
1: बिल्कुल सत्य बात।
0: तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, ये बताइए, थोड़ा इस पर रोशनी डालिए।
1: जैसे रास्ते में जानवर मिलते हैं तो सबसे पहले तो अपने को उन जानवरों को बचाना पड़ेगा,
0: वो तो है ही।
1: और उनको जिस तरह अपना जीवन है उसी तरह जानवरों का भी जीवन समझो। आज अपने जीवन को अपन हर तरह से बचाते हैं,
0: बिल्कुल।
1: अपन अपने जीवन को हर तरह से बचाते हैं, गाड़ी में चलते हैं, उसी तरह जानवरों का भी ख्याल रखो। उनको भी एक ईश्वर ने धरती पर जन्म दिया है,
0: बिल्कुल।
1: जिस तरह अपने को जन्म दिया है उसको भी जन्म दिया है, वो भी एक प्राणी है। वो तो इंसानों से उम्मीद करते हैं, जानवर इंसानों से उम्मीद करते हैं। जानवरों की कभी भी किसी प्रकार से भी अपने हिसाब से, मानवता के हिसाब से उनके प्राण जाना नहीं किए।
0: ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन है ना अंधेरे में कई बार वाहन के सामने वो आ जाते हैं और ड्राइवर को नहीं दिखता, नज़र ही नहीं आता, तो उससे जो ड्राइवर है वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जो जानवर है वो तो होता ही है। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो सड़क पर होना ही नहीं चाहिए ना जानवरों को,
1: नहीं,
0: सड़क उनके
1: अब
0: बैठने के लिए
1: जानवरों को
0: थोड़ी
1: तो
0: ना है।
1: ये बात तो सही है, लेकिन क्या है कि जो ड्राइविंग करता है
0: हाँ जी,
1: वो हॉर्न बजाने से दूसरा काम नहीं करेगा, वो जितना हॉर्न जोर से बजाएगा।
0: हाँ
1: तो हॉर्न बजाने से कभी कभी जो जानवर होता है
0: वो
1: वो
0: विचलित हो
1: एक
0: जाता
1: साइड
0: है,
1: में हो जाता है हॉर्न बजाने से। तो
0: कभी कभी विचलित भी हो जाता है, घबरा के
1: हाँ
0: वो इधर
1: विचलित,
0: उधर भागने लगता है।
1: हाँ बिल्कुल सत्य बात बोली आपने रावत जी। और हम मेरा ये तो विचार है कि किसी भी तरह उसकी सुरक्षा करो जानवर की, बस।
0: सुरक्षा करो और किसी भी तरह ये कोशिश करें कि जिनके भी जानवर हैं वो भी थोड़ी देखरेख करें कि उनके पशु कहीं इधर उधर तो नहीं भटक रहे, कहीं ऐसी जगह तो नहीं बैठे जहाँ से उनकी जान को खतरा हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना
1: सत्य
0: जी?
1: बात बोली आप।
0: चलिए, धन्यवाद, आपसे बातचीत करके
1: देखो
0: बहुत
1: मैं
0: खुशी
1: ना
0: हुई।
1: एक मे, मेरे मैं मेरा एक भाई है, नीमच में रहता है,
0: हाँ
1: SB जैन साहब है, वो रिटायर पोस्टमैन है, वो
0: हाँ
1: रिटायर पोस्टमैन है। वो क्या करते हैं, उनके सामने कभी कोई कुत्ते वगैरह गाय वगैरह आती है
0: हाँ
1: तो वो कभी उसको मारेंगे नहीं, उसको लकड़ी नहीं बताएंगे, उसको अपने जबान से बोलेंगे रोटी साइड में रख देंगे, तो जहाँ रोटी रखी रहेगी तो वो जानवर वहां जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, मतलब रास्ते से उनको हटाने का प्रयास बहुत अच्छा है ये।
1: ये रोटी दोगे तो उनको, जानवरों को भूख तो लगती है,
0: सही बात है।
1: जिस तरह अपने को भूख लगती है उसी तरह जानवरों को लगती है।
0: चलिए आप
1: अगर अपने दरवाजे पर गाय आ जाती है
0: हाँ
1: तो अपन उसको रोटी देते तो वो दोबारा अपने दरवाजे पर ही आएगी।
0: बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ये। चलिए तुलसीराम जी, आपसे बातचीत बहुत लंबी हो गई, हमारे दूसरे श्रोता भी लाइन में हैं, तो इसलिए हम माफी चाहते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका, भगवान खूब भला करे आपका
0: जी। धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन
1: नमस्ते दीदी।
0: बोल रहा है?
1: दीदी मैं आपकी नियमित श्रोता खरगोन से ना मीना दसौंधी बोल रही। जी
0: मीना।
1: दीदी।
0: खरगोन से। और कैसी हैं मीना जी?
1: बस दीदी बढ़िया हूँ। आप बस प्रयास कर रही थी, लग जाए और लग गया। दीदी
0: कितने टाइम बाद लगा है आपका कॉल?
1: मुझे तो करीबन 3-4 महीने हो गए
0: अरे
1: लगे,
0: बाप
1: क्योंकि
0: रे।
1: लगता ही नहीं ना, टाइम हो जाता है, लगा ही नहीं पाती मैं, ट्राई करते करते समय हो जाता है।
0: मीना जी, आज जो विषय हम लेकर आए ना, वो विषय है कि जब हम रास्ते में सड़क पर जाते हैं, हाईवे पे, तो बहुत सारे जानवर सड़क पर बैठे पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हमें भी दिक्कत होती है और जानवरों को भी चोट लगने का खतरा बना रहता है। तो
1: बिल्कुल
0: उनको, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, इस विषय पे अगर आप कुछ रोशनी डाल सकती हैं तो डालिए।
1: दीदी, ऐसा है कि अब जानवर तो बेचारे बेजुबान रहते हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि अपन कहाँ बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं। तो
0: हाँ
1: ये तो जो निकलेंगे वाहन लेके, तो
0: हाँ
1: उनको ही हटकना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा उन्हीं को करना पड़ेगी कि उन्हों या तो वो उनको हटा के साइड से करें या उनको बचा के निकले।
0: वो तो सही है, लेकिन कई बार है ना, रात में अंधेरे में नजर भी नहीं आते जानवर। जैसे अगर ब्लैक कलर का कोई पशु है, काले रंग का, तो वो अंधेरे में एकदम नहीं नजर आता, तो उससे जो गाड़ी चला रहा है उसे भी खतरा रहता है और जानवर को भी खतरा रहता
1: बिल्कुल
0: है।
1: दीदी, खतरा तो रहता है। अगर ज्यादा कम मतलब ऐसा हो जाए कि जानवर बैठा है उसको ठोक दिया, तो अनजाने में तो दुर्घटना
0: हाँ
1: दोनों के साथ होती है, चलाने वाले के साथ
0: वही
1: भी और जानवर के साथ भी। तो
0: वही,
1: रात में भी गाड़ी देख के चलाना चाहिए लाइट के साथ, कि कहीं सामने कोई जानवर तो नहीं है, कहीं
0: वो तो
1: आ तो
0: सही
1: नहीं
0: है,
1: रहा
0: स्पीड
1: है,
0: आपकी
1: बैठा
0: हमेशा
1: तो नहीं है।
0: मेंटेन रहनी चाहिए, ये बात तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या कि वो जानवर रास्ते में ना ही मिले, उनकी एक
1: नहीं
0: अलग
1: ऐसा
0: व्यवस्था
1: तो
0: कर
1: हो
0: दी
1: नहीं सकता,
0: जाए?
1: जानवर है वो तो कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, अब उनको तो अपन कुछ नहीं कर सकते ना।
0: अच्छा चलिए
1: पालतू
0: ठीक है,
1: जानवर है तो उनको घर पे रख सकते पर, लेकिन जंगली जानवरों को तो अपन नहीं कैद कर सकते।
0: बिल्कुल सही बात है। चलिए बस मैं यही जानना चाहती थी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कल
1: दीदी आपका
0: 11 बजे से
1: नाम?
0: अपना प्रोग्राम, कविता रावत
1: जी, कविता दीदी।
0: जी। नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: गांव बिटोड़ा भोयर जिला वाशी महाराष्ट्र से आपके श्रोता योगीराज मस्की बात कर रहे हैं।
0: योगीराज जी, कैसे हैं
1: जी
0: आप?
1: मैडम, बस बढ़िया है मैडम जी। आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और अब आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जाननी थी, क्योंकि आज हमारा जो विषय है ना, उस पे हमें बिल्कुल सही लाइन नहीं मिल पा रही है, सही
1: जी
0: जवाब नहीं मिल पा रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी श्रोता के जरिए वो बात हम तक पहुंच सके जिसको हम जानना चाहते हैं, है ना?
1: तो आज तो भूमिगत जल संरक्षण के लिए जो भी अपने तौर पे जो प्रयास होने चाहिए, ये आज की टैगलाइन होनी चाहिए।
0: क्यों, ऐसा क्यों?
1: इसकी जरूरत ये भी है कि आने वाला समय बड़ा कठिन है।
0: नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन है ना, आज जो हमने विषय लेकर आए हैं वो ये है कि जब हम कहीं जाते हैं सड़क पर अपनी वाहनों
1: जी
0: से, तो
1: मैडम,
0: रास्ते में जो मवेशी पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा कैसे करें?
1: तो उनकी सुरक्षा के लिए तो वैसे तो अब अपन जब भी प्रवास अपन सफर पे है और जहाँ भी हमें गांव देहात से हम गुजर रहे हैं, तो वहाँ जो भी मवेशी आते हैं तो अपनी गाड़ी का जो नियंत्रित जो हमें कानूनन जो भी
0: स्पीड
1: हमें
0: है
1: गति
0: अपनी।
1: दी गई
0: हाँ
1: है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उस गति को नियंत्रित रखकर हमें अपना सफर जारी रखना चाहिए। और जो भी जैसे आपके सीट बेल्ट हुए, आपका हेलमेट हुआ, आप अगर दो पहिये से चल रहे हैं तो आपका हेलमेट जरूरी है, और सीमित आपका जो आपकी सीमित गति बहुत जरूरी है।
0: सीमित गति तो ज़रूरी है, पर क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि वो मवेशी हाईवे पे, एटलीस्ट हाईवे पर ना पाए जाएं, उन्हें वहां
1: तो
0: जाने से
1: हाईवे
0: हम
1: पे
0: रोक
1: तो
0: सकें?
1: वैसे तो बहुत कम, जैसे जो चौड़ाई वाले जो जैसे 4 लेन वाले रास्ते हैं, उन रास्तों पे कमोवेश मवेशी आते हैं, पर जो जंगली पशु है वो पाए जाते हैं
0: बिल्कुल सही
1: ज्यादातर।
0: बात है, बिल्कुल।

0: दोनों के लिए जान की जोखिम वाली बात ही होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए योगीराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम अपने अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। आपसे
0: जी मैडम जी, शुक्रिया,
1: नमस्ते।

कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? विपिन कटारे जी।
1: नहीं, मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से। जी
0: अच्छा, संतोष कुमार राव,
1: मैडम। जी
0: उमरिया मध्य प्रदेश।
1: मैम,
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं मैम।
0: क्या काम करते हैं?
1: मैं लेखन का कार्य करता हूँ आकाशवाणी स्टूडियो शेड्यूल पर।
0: अरे वाह, क्या बात है! शहडोल में आप लेखन का काम करते हैं, मतलब आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं।
1: जी बिल्कुल मैम, माइक्रोफोन के ऑन एयर कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है किसान वाणी कार्यक्रम में, तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो स्टूडियो होता है वो अपने आप में खास महत्व रखता है। माँ सरस्वती का वास होता है वहाँ पर, और जो माइक्रोफोन की ध्वनि ताल तरंगों के माध्यम से शब्दों का उच्चारण करने का मौका मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मैडम।
0: वाकई बहुत अच्छा लगता है, और बहुत खुशी हुई हमें जानकर कि आप भी है ना रेडियो।

0: उसे जुड़ चुके हैं। तो संतोष जी, आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो बड़ा खास है कि जो यातायात करते समय, हम वाहन चलाते समय रास्ते में बहुत सारे मवेशी हाईवे पर बैठे हुए मिलते हैं, एक साथ 10-10, 15-15 बैठे रहते हैं, हर थोड़ी दूरी पर 10-10, 15-15 गायों का झुंड बना रहता है, कई बार वो मृत अवस्था में भी पाई जाती हैं, कुछ लंगड़ा के चल रही होती है, तो बड़ा तब दिल अपना दुखी होता है कि ये क्या है, इन्हें कैसे हम इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस बात पे आप थोड़ा सा अगर बता सकते हैं तो बताइए।
1: जी मैम, खास करके हम लोग जब अपने आसपास ही नज़र डालेंगे तो मवेशियों का एक जुट गट्ठा, मतलब जो जुट होता है इकट्ठे में और रोड के समक्ष आके खड़ा होता है, क्योंकि उस समय जब पानी बरस रहा होता है, अभी मौसम भी डिस्पेंस होता जाता है, तो जब पानी बरसते हैं तो हम ऐसे भी सूखी स्थानों पर जाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे में रोडों के किनारे आना संभव बात है, लेकिन ऐसे में क्या होता है, कई बार वाहन चलाते समय हमें अपनी सावधानी स्वयं रखनी पड़ती है, और मवेशी का जुट्ठा जब आप समक्ष आपके सामने खड़े हो तो उनको थोड़ा सा धैर्य रख करके, यदि आप गाड़ी रोक करके उन्हें किनारे करेंगे तो अवश्य ही आपको रास्ता देंगे, और ऐसे में उनकी जनहानि भी नहीं होगी और आप अपने रास्ता स्वयं निकाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको गाड़ी सावधानी के साथ चलानी होती है और मवेशियों को भी बराबर मात्रा में ध्यान रखा जाए और उनकी निकासी उन्हें किनारे कर दें, तभी अपनी गाड़ी निकाल सकें आप।
0: बिल्कुल सही बात है। चलिए, आपसे ये जानकारी हासिल की हमने, हमें बहुत खुशी हुई, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: मैम, एक बात और जोड़ना चाहूंगा।
0: हाँ, बोलिए
1: जी। जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, मवेशियों का मवेशियों को जो पालने वाले पशु भाई बहन होते हैं वो लोग तो अपना एकत्रित करते हैं, लेकिन जो शहरों की बढ़ती क्रम है उसमें शहरों में ज्यादातर मवेशियां पाई जाती है। इसमें ऐसे में क्या होता है, ज्यादातर मवेशियों के चलते ही दुर्घटनाएं होती हैं, तो ऐसे में हम लोग जब हमारे जैसे युवा साथी हैं उन सभी से अपील करना चाहूंगा कि जरूर वाहन को सावधानी से चलाएं और ऐसे में सड़क हादसों से बचें और मवेशियों को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाएंगे तो आप अपने घर तक जिम्मेदारी के साथ पहुंच पाएंगे।
0: बहुत अच्छी बात, धन्यवाद कॉल करने के लिए संतोष जी। नमस्कार।
1: नमस्ते मैम।

0: मैम इस पे बात आपकी गीत हमारी आज कार्यक्रम है कि क्या है आज?
1: आज बात आपकी गीत हमारे है, लेकिन आपका कॉल कब लगा था इसके पहले?
0: इस पे तो मैम मान लीजिए 1 महीने बाद ही लगा है।
1: अच्छा, फिर कोई बात नहीं, हम आपका कॉल ले पाएंगे। कहाँ से बोल रहे हैं नीरज जी आप?
0: अनूपपुर से बोल रहा हूँ मैम
1: अनूपपुर से। हाँ,
0: जी।
1: और बताइए क्या हाल है आपके?
0: बढ़िया है मैम, बारिश थम गई है, धूप खिली हुई है अपने यहाँ।
1: हाँ, अब तो बारिश बिल्कुल लगभग गई सी है, और
0: जी
1: गर्मी और उमस ने जरूर बहुत बेचैन करके रखा
0: जी जी
1: है ना? गर्मी तो
0: बिल्कुल
1: बहुत पड़ रही है,
0: जी।
1: तो वो तो पितृपक्ष में वैसे भी हर साल गर्मी पड़ती है, ऐसा ही मौसम रहता है।
0: पितृ पक्ष में हमेशा ये मौसम हो जाता है। प्रकृति कैसा कुछ वातावरण भी हो जाते हैं मैम कि अपने साथ घर के साथ अपना फसल को भी लेके आता है।
1: बिल्कुल सही बात है। अच्छा नीरज जी, आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि वाहन चलाते समय हमें सड़क पर, हाईवे पर बहुत सारे मवेशी बैठे पाए जाते हैं, जिससे है ना उनको भी चोट लगने का डर रहता है और हमें खुद को भी, तो उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं?
0: बिल्कुल मैम, हमें पहले बात तो जो आज के प्रदेश में देखा जाए तो अपने घर में जो गौ पाल होते हैं उसको तो बाहर सड़क पर वो जाने नहीं देना चाहिए, अपने घर पे ही रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है, घर पे रखें या फिर है ना आसपास के खेतों में आप चराने के लिए ले जाएं, लेकिन ऐसे सड़क पर ना जाएं, ऐसी थोड़ी व्यवस्था, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था रखनी चाहिए कि वो वाहनों की चपेट में ना आ पाए, है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: मैम, एक बात और जी, मतलब जिस जगह पे उस जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए
1: हाँ
0: कि वहाँ पास जैसे सड़क पर मवेशी रहते हैं उस पर रेडियम लगा दे, रात में दुर्घटनाएं ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए प्रशासनों को, स्थानीय
1: बिल्कुल
0: प्रशासनों को।
1: हाँ प्रशासन, लेकिन हम सबका ये जन जन का मतलब कर्तव्य है कि है ना, जब हम सभी जागरूक होंगे तभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं, है ना?
0: बिल्कुल
1: जिनके भी
0: बिल्कुल
1: मवेशी हैं वो भी रेडियम लगा के रखें अपने जानवरों पर, या कोशिश करें कि वो है ना बीच हाईवे पर जाकर ना बैठें, या फिर कुछ ऐसी रेलिंग बना दी जाए कि वो जानवर उनके अंदर पहुंच ही ना पाए। मुझे
0: बिल्कुल।
1: खुद
0: और
1: समझ में
0: बिल्कुल
1: नहीं आ रहा है कि इनसे कैसे बचाव कर सकते हैं, इसलिए मैंने आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से।
0: मैं ये बचाव है कि थोड़ा सा रात की में ज्यादा दुर्घटनाएं होते हैं तो हमें सावधानी के साथ वाहन चलाना
1: वो
0: चाहिए।
1: तो है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वाहन धीमी गति से चलाएं, थोड़े अलर्टनेस रखें अपनी कि जहाँ दिख रहे हैं दूर से ही हमें बैठे हुए जानवर, तो बहुत ही स्लो होकर निकालें ताकि किसी भी जानवर को कोई क्षति ना पहुंचे। लेकिन फिर भी कई जगह अपन जब जाते हैं कहीं, थोड़ा भी 200 किलोमीटर की दूरी पर भी जाते हैं, तो आपको बहुत सारे जानवर मृत अवस्था में पाए जाते हैं, दिख जाते हैं, और फिर अपना दिल बहुत दुखी होता है, उनसे कैसे बचाव करें?
0: यही है कि जैसे हाईवे में अधिकतम में होती है दुर्घटना घटती है तो हमें वो ये सावधानी के साथ गाड़ी
1: कर सकते
0: चलाना
1: हैं,
0: चाहिए जिससे ऐसे दुर्घटनाएं
1: बिल्कुल
0: ना
1: बिल्कुल,
0: घटे।
1: कोशिश कोशिश यही कर सकते हैं और सबको करनी चाहिए कि अपने अपने जानवरों की सुरक्षा तो अपने हाथ में ले ही, बाकी यदि कोई को भी नजर आता है कि सड़क पर कोई जानवर पहुंच रहा है तो उसे वो वहां से हटाने का प्रयास करे,
0: जी बिल्कुल,
1: ये
0: समाज से
1: सबकी नैतिक
0: जुड़ी
1: जिम्मेदारी
0: जी
1: है ना? चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: नमस्कार सर जी। नमस्ते
0: नमस्ते जी।
1: दीदी, मैं शाजापुर के गांव बोलाई से बोल रहा हूँ। हाँ,
0: शाहजहाँपुर से
1: शाजापुर के बोलाई गांव से बोल रहा हूँ दीदी। दुर्गा
0: जी,
1: शंकर, दुर्गा
0: क्या नाम है आपका?
1: शंकर है दीदी।
0: दुर्गा शंकर।
1: हाँ जी,
0: वाह, क्या बात है, आपके नाम में दुर्गा भी है, शंकर भी है।
1: एक
0: वाह
1: मर्तबा और बात हुई थी, मतलब करीबन हो गए 7-8 महीने हो चुके जब दीदी से बात हुई थी, सुनीता दीदी से।
0: वाह, अच्छा।
1: जब जब का आव लगा हुआ है दीदी से,
0: ओहो, ये तो बहुत ही लंबा समय हो गया है।
1: और बहुत लंबा समय हो गया दीदी। दीदी,
0: काफी। क्या करते हैं दुर्गा शंकर जी आप?
1: मैं तो छोटे मोटे मतलब ऐसा ही रोजगार है मेरा, मतलब जैसे पूजन सामग्री का सामान बेचता हूँ और थोड़ी बहुत खेती है, बस
0: अच्छा
1: ऐसा ही
0: अच्छा
1: काम है मेरा। पूजन
0: चलिए, तो
1: सामग्री का सामान विशेष करके बेचता रहता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि ग्राहक आपकी दुकान पर बहुत आते भी होंगे।
1: हाँ जी दीदी, क्योंकि ये पूजन से संबंधित सामान देवताओं का रहता है, तो दीदियां भी आती है, जेंट्स भी आते हैं, तो मैं
0: बिल्कुल,
1: जाता
0: और
1: हूँ
0: है ना,
1: गांव
0: जो
1: गांव में
0: आते
1: बेचने के
0: होंगे
1: लिए।
0: और जब आपका नाम लेते होंगे तो वो तो तर जाते होंगे, दुर्गा भी और शंकर भी। चलिए, अच्छा, अब आज के विषय पर हम आते हैं। आज का विषय है हमारा कि वाहन चलाते समय जो हाईवे पर बहुत सारे मवेशी बैठे पाए जाते हैं, उनकी
1: जी,
0: सुरक्षा और उनसे अपनी सुरक्षा हमें कैसे करनी चाहिए?
1: दीदी ये तो क्या है कि देखो, इसमें मतलब जो भी मवेशी छोड़ता है, सबसे पहले तो वो मतलब गुनाहगार व्यक्ति है कि हमने उसका दूध निकाल लिया और उसको भगा दिया रोड पे जाकर। अब वहाँ एक ऐसी जगह रहती है कि हवा मिलती है उनको, वाहनों
0: हाँ
1: से चलते हैं ना वाहन,
0: हाँ
1: तो इनसे
0: हाँ
1: हवा मिलती, मच्छर वगैरह नहीं काटते, इसलिए वो जाते बेचारे, उनकी गलती थोड़ी,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: सही बात,
1: भगाएंगे तो कहेंगे तो जाके सुरक्षित जगह बैठेंगे वो।
0: बिल्कुल।
1: अब वहां पे जाकर के क्या होता है कि वाहन बहुत तेज गति में चलते हैं, और ये सुरक्षा थोड़ी क्या है, गवर्नमेंट की नजर में भी होना चाहिए कि या तो इनको कुछ भी सुरक्षित स्थान पे छोड़ा जाए,
0: बिल्कुल।
1: अन्यथा नहीं तो इससे दंड का प्रावधान होना चाहिए इन लोगों के साथ में। क्योंकि
0: और होता ही है ना,
1: एक ही
0: कितनी
1: दिन होता
0: सारी
1: है ना दीदी,
0: लाशें
1: तो वो गाय तो
0: देखने
1: जाती है,
0: मिलती
1: वो
0: हैं
1: तो
0: गायों
1: मरना है,
0: की।
1: चार
0: हाँ,
1: छह लोग दूसरे में निपट जाते हैं परिवार के।
0: वही तो।
1: इस चीज को मतलब मैं तो, मेरा तो यही कहना है कि

0: प्रशासन को बहुत ध्यान देना चाहिए कि ताकि रोड तक नहीं पहुंचे ये चीज। गौशालाएं खुली हुई है वहां छुड़वाना चाहिए इनको, या फिर जो मवेशी जिनकी है उस व्यक्ति को जांच करके वहां पहुंचाना चाहिए। आप मतलब इसका ये सब व्यवस्था होनी चाहिए गवर्नमेंट की नजर में कि ताकि छोड़े नहीं दोबारी मतलब लोग,
1: क्योंकि बहुत जानवरों का इसमें नुकसान है। बहुत जानवर अपंग हो जाते हैं, बहुत मर जाते हैं, बहुत जान जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सच्चाई है। और ये देखकर ही मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मुझे लगा कि आज के कार्यक्रम में मुझे अपने श्रोताओं से इस विषय पे बात करनी चाहिए ताकि कुछ तो हल निकले।
0: एक छोटा सा बछड़ा था उसके, अब मैं गांव देहात क्षेत्र में रहता हूं, पर यहां साजापुर और सुजालपुर मार्ग निकला हुआ है तो काफी वाहन चलते हैं। वो बैठा था उसके पैर पे, जैसे ही मतलब वो गाड़ी चढ़ी मतलब वो खड़ा नहीं हो पाया, ऐसा हो गया। पता उसका कौन ट्रीटमेंट करे, कौन देखने वाला। फिर हमने डॉक्टर को विषय करा, सूचित और सूचना भी करी उसको, गौशाला में छोड़ाया और वो गौशाला में है सुरक्षित अभी फिर आने। पर उसकी जिंदगी तो खराब हो गई।
1: वही
0: कितनी मतलब दुर्दशा है मतलब। और गाय को हम बोलते हैं कि गौ माता की जय बोलते हैं, तो कहाँ जय कहाँ से बोल रहे हो तुम, सब उलट उल्टा हो रहा है। जो सीधा होना का था वो सब गलत हो रहा है।
1: वही बात है कि हम सच में जय जयकार करते हैं और बोलते हैं गाय हमारी माता है, तो हमें अपनी माता की रक्षा करनी चाहिए ना।
0: हाँ वही बात है, उसकी सुरक्षा तो कर ही नहीं रहे, केवल जय बोलने से थोड़ी होता है कुछ भी।
1: सही
0: मार्ग का अनुसरण तो करना पड़ेगा तब जाकर
1: ध्यान रखने की, और सब सबको इसकी इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। और बहुत ये सोचने का विषय है, चिंता का विषय है ये।
0: जी जी बहुत बहुत चिंता का विषय है। मैं तो आपके माध्यम से मतलब कोई भी मतलब अगर कोई अधिकारी वर्ग भी सुनता हो तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अन्यथा मतलब आने वाले समय में,
1: क्योंकि है ना बहुत विकट विकट परिस्थितियां हैं। हम सब जानते हैं कि ये शायद बहुत सभी की नजर में एक छोटी सी बात होगी, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ी चिंता का विषय है, है ना। तो हम सबको इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। चलिए
0: मतलब पर कोई ध्यान देता ही नहीं है, सब निकल जाते हैं, पर थोड़ी देता, वो कुचलने वाला भी निकल जाता है, वो भी नहीं खड़ा रहता है क्योंकि उसको पता है कि लोग जोड़ देंगे यहाँ पे, मारेंगे अपने।
1: एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही और सटीक बात बोली आपने।
0: उसका कौन विचार, वो तो मतलब मुंह से बोल तो सकता नहीं जानवर है वो, पर अपन गौ माता को माता समझते तो फिर उसकी रक्षा करना भी तो हमारा एक धर्म है।
1: बिल्कुल हम सबका कर्तव्य है, इसलिए इस बात पे सभी को गौर करना चाहिए। चलिए आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा दुर्गा शंकर जी, धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। इस कार्यक्रम से अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुआ था। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भूमिका निभाई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अब से कुछ देर बाद भोपाल स्थित बेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गोपालकों को अनुदान राशि वितरित करने के साथ ही गोपालक दीदियों को सम्मानित भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री शाह गोपालक सम्मेलन में उज्जैन में 255 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट के भूमि पूजन के साथ ही भोपाल में प्रोडक्ट प्लांट और शिवपुरी में डेयरी संयंत्र का लोकार्पण भी करेंगे। राज्य में इस साल भी सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत होगी। इसके लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन आज से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। प्रदेश में आज से 2 दिवसीय सरकार आपके द्वार अभियान के तहत विकासखंड स्तर और नगरीय क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविरों में पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। और एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट में भारत आज पाकिस्तान के बीच स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए समाचार लिखे जाने तक 20 ओवर में 6 विकेट पर 211 रन बना लिए थे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम आपको पहला गीत सुनवाने जा रहे हैं फिल्म हाथ की सफाई से। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को सुनने वाले श्रोता हैं डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय और इनका पूरा परिवार। इसी गीत को सुनना चाहा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद रोहित और मोहित ने। स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जे एस नायक, शोभा नायक और इनका समस्त डागला परिवार। आइए आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश फिल्म लोफर से सुमधुर आवाज लता मंगेशकर की, गीत लिखा है नंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी, साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी और प्रियांशी मनवर। इसी गीत को सुनना चाहा है सुलाई माता नगर 40 गांव पांडुरंग से रेखा ताई, सूर्यवंशी, नीरज, आरती ठाकुर और कुमारी नब्या। आप सभी ने सुनना चाहा है ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगली पेशकश है फिल्म एक दूजे के लिए से, सुमधुर आवाज लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की। गीत लिखा है नंद बख्शी ने और इसे संगीतमय बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को आप सभी ने सुनना चाहा है। प्रिय दर्शनी, आकाशवाणी श्रोता संघ रथ चौक बहादुरपुर जिला जलगांव से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र, रविंद्र, सुन्नी मुन्ना और बंडू दादा, इसी गीत को पसंद किया है आप सभी ने। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत राही, श्रीमती सरिता गभाण, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गभाण, प्रणीता गभाण, अर्जुन गभाण और श्वेता सुमित ने। अगले पसंद करने वाली श्रोता हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरूला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, साइमा मुश्तबा और अफिया खान ने। इसी गीत को पसंद किया है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम की अंतिम पेशकश पसंद करने वाले श्रोता हैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और योगेश मालाकार, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म आंधी का ये बहुत खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। शब्द रचना है गुलजार की और संगीत है आर डी बर्मन का।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सरिता को, नमस्कार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक अंतराल का।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की जब्त शुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का भाग दो।

0: मिस्टर कानूनी कुमार एलएलबी अपने ऑफिस में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और रिपोर्टों का एक ढेर लिए बैठे हैं। देश की चिंताओं से उनकी देह स्थूल हो गई है। सदैव देशोद्धार की फिक्र में पड़े रहते हैं। सामने पार्क है, उसमें कई लड़के खेल रहे हैं। कुछ पर्दे वाली महिलाएं भी हैं। फेंसिंग के सामने बहुत से भीख मंगे बैठे हैं। एक चाय वाला वृक्ष के नीचे चाय बेच रहा है।
1: देश की दशा कितनी खराब होती चली जा रही है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, बस दावतें खाना और मौज उड़ाना उसका काम है।
0: कानूनी कुमार पार्क की ओर देखते हैं।
1: अरे, ये कोमल कोमल किशोर सिगरेट पी रहे हैं। ओ शोक, महाशोक। कोई कुछ नहीं कहता, कोई इसको टोकने की कोशिश भी नहीं करता। तंबाकू कितनी जहरीली चीज है, बालकों को इससे कितनी हानि होती है, ये कोई नहीं जानता।
0: कानूनी कुमार तंबाकू की रिपोर्ट देखते हैं।
1: रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितने बालक अपराधी होते हैं उनमें 75% सिगरेट बाज होते हैं। बड़ी भयंकर दशा है, हम क्या करें। लाख स्पीचें दो, कोई सुनता ही नहीं। इसको कानून से रोकना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तंबाकू बहिष्कार बिल पेश करूंगा। काउंसिल खुलते ही वो बिल पेश कर देना चाहिए। लिख लेता हूं।
0: कानूनी कुमार एक क्षण के बाद फिर पार्क की ओर देखते हैं और पर्देदार महिलाओं को घास पर बैठे देखकर लंबी सांस लेते हैं।
1: गजब है, कितना घोर अन्याय, कितना पाशविक व्यवहार। ये कोमलांगी पर्देदार सुंदरियां चादर में लिपटी हुई कितनी भद्दी, कितनी फूहड़ मालूम होती हैं। तभी तो देश का ये हाल हो रहा है। स्त्रियों की मृत्यु संख्या बढ़ रही है, तपेदिक उछलता चला आता है, प्रसूत की बीमारी आंधी की तरह चढ़ी आती है और हमें की आंखें बंद किए पड़े हैं। बहुत जल्दी ऋषियों की ये भूमि, ये वीर प्रसविनी जननी रसातल को चली जाएगी।

0: इसका कहीं निशान भी ना रहेगा। लोग कितने पत्थर हो गए हैं, आंखों के सामने ये अत्याचार देखते हैं और जरा भी नहीं चौंकते। यहाँ भी कानूनी जरूरत है। एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें कोई स्त्री पर्दे में ना रह सके। अब समझ आ गया है कि इस विषय में सरकार कदम बढ़ाए। कानून की मदद के बगैर कोई सुधार नहीं हो सकता, और यहाँ कानूनी मदद की जितनी ज़रूरत है उतनी और कहाँ हो सकती है। पर्दा हटाओ बिल पेश होना चाहिए। जानता हूँ बड़ा विरोध होगा, लेकिन गवर्नमेंट को साहस से काम लेना चाहिए। ऐसे नपुंसक विरोध के भय से उद्धार के काम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। ये बिल भी असेंबली के खुलते ही पेश कर देना होगा। शीर्षक रख देता हूँ, हेतु और उद्देश्य।
1: तभी एक भिखारी दरवाजा खटखटाता है।
2: जय हो सरकार की, लक्ष्मी फूले फूले।
0: हटो, हट जाओ यो भिखारी। अरे कोई काम क्यों नहीं करता?
2: अरे बड़ा धर्म होगा मालिक, मारे भूख के आंखों तले अंधेरा है।
0: चुप रहो भिखारी, हट जाओ सामने से। अभी निकल जाओ, निकल जाओ बहुत दूर।
1: कानूनी कुमार फिर सोचने लगते हैं।
0: ये ऋषियों की भूमि आज भिक्षुकों की भूमि हो रही है। जहां देखिए वहां रेवड़ के रेवड़ और दल के दल भिखारी हैं। ये गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से है। इंग्लैंड में कोई भिक्षुक भीख नहीं मांग सकता, पुलिस पकड़कर कालकोठरी में बंद कर देती है। किसी सभ्य देश में इतने भिखमंगे नहीं हैं। यह अंग्रेजों के अधीन भारत है, जहां ऐसी बातें इस सदी में भी संभव है। कितनी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। रिपोर्ट देखो कितना लिखा है, 50 लाख। 50 लाख आदमी केवल भिक्षा मांग कर गुजर करते हैं, और क्या। ठीक है कि संख्या इसकी दुगनी ना हो, ये पेशा लिखाना कौन पसंद करता है। 1 करोड़ से कम भिखारी इस देश में नहीं है। ये तो भिखारियों की बात हुई जो द्वार द्वार झोली लिए घूमते हैं। इसके बाद टीकाधारी, कोपिनधारी और जटाधारी समुदाय भी तो है, जिनकी संख्या कम से कम 2 करोड़ होगी। जिस देश में इतने हरामखोर मुफ्त का माल उड़ाने वाले, दूसरों की कमाई पर मोटे होने वाले प्राणी हो, उसकी दशा क्यों ना इतनी हीन हो। आश्चर्य यही है कि अब तक देश जीवित कैसे है।
1: कानूनी कुमार इसे फिर नोट करते हैं।
0: एक बिल की सख्त जरूरत है, तुरंत पेश करना चाहिए। नाम हो भीख मंगा बहिष्कार बिल। खूब जूतियां चलेंगी, धर्म के सूत्रधार खूब नोचेंगे, खूब गालियां देंगे, गवर्नमेंट भी कन्नी काटेगी। मगर सुधार का मार्ग तो कंटकाकीर्ण है ही। तीनों बिल मेरे ही नाम से हो, फिर देखिए कैसी खलबली मस्ती है।
1: कानूनी कुमार का दरवाजा फिर खटकता है।
3: चाय बाबूजी, चाय। बाबूजी चाय पियेंगे? आज एक भी ग्राहक नहीं मिला।
0: इतनी बलवर्धक वस्तु और ग्राहक कोई नहीं।
3: इसीलिए तो कहता हूँ बाबूजी, कम से कम एक प्याला तो ले लीजिए, एक प्याला तो पी लीजिए।
0: सभ्य देशों में पानी की जगह चाय पी जाती है।
1: कानूनी कुमार रिपोर्ट देखते हैं।
0: रिपोर्ट देखिए, उसमें क्या लिखा है। इंग्लैंड में 5 करोड़ पाउंड की चाय जाती है। इंग्लैंड वाले मूर्ख नहीं हैं, उनका आज संसार पर आधिपत्य है। इसमें चाय का कितना बड़ा भाग है, कौन इसका अनुमान लगा सकता है। यहाँ बेचारा चाय वाला खड़ा है और कोई उसके पास फटकता भी नहीं। चीन वाले चाय पी पी कर स्वाधीन हो गए, मगर हम चाय नहीं पियेंगे। क्या कल है, गवर्नमेंट का सारा दोष है। अरे कीटों से भरे हुए दूध के लिए इतना शोर मचता है, मगर चाय को कोई पूछता ही नहीं, जो कीट रहित है, उत्तेजक है और पुष्टिकारक है। सारे देश की मति मारी गई है।
1: कानूनी कुमार नोट करते हैं।
0: गवर्नमेंट से प्रश्न करना चाहिए। असेंबली खुलते ही प्रश्नों का तांता बांध दूंगा। प्रश्न है, क्या गवर्नमेंट बताएगी कि गत 5 सालों में भारतवर्ष में चाय की खपत कितनी बड़ी है और

0: उसका सर्वसाधारण में प्रचार करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं?
1: एक रमणी प्रवेश करती है। कटे बाल, आड़ी मांग, रेशमी साड़ी, कलाई पर घड़ी, आंखों पर ऐनक, पांव में ऊंची एड़ी का शू, हाथ में बटुआ, साड़ी में ब्रूच और गले में मोतियों का हार। कानूनी कुमार उससे हाथ मिलाते हैं।
0: हेलो मिसेस बोस।
2: हेलो हेलो।
0: आप खूब आए भाई। आपके तो आलोक में आपकी कविता बड़ी सुंदर थी।
2: जी हाँ।
0: और मैं तो पढ़कर झूम गया। भाई इस नन्हे से हृदय में इतने भाव कहाँ से आ जाते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। भाई शब्द विन्यास की तो आप रानी हैं।
2: जी।
0: रानी, ऐसे ऐसे चोट करने वाले भाव आपको कैसे सूझ जाते हैं?
2: अरे दिल जलता है तो उसमें आप से आप धुएं के बादल निकलते हैं। जब तक स्त्री समाज पर पुरुषों का अत्याचार रहेगा, ऐसे भावों की कमी न रहेगी।
0: क्यों, क्या इधर कोई नई बात हो गई?
2: अरे रोज ही होती रहती है। मेरे लिए डॉक्टर बोस की आज्ञा नहीं है कि किसी से मिलने जाओ या कहीं सैर करने जाओ।
0: ओ।
2: अब की कैसी गर्मी पड़ी कि सारा खून जल गया, पर मैं पहाड़ों पर नहीं जा सकी। और मुझसे ये अत्याचार, ये गुलामी अब सही नहीं जाती।
0: डॉक्टर बोस खुद भी तो पहाड़ों पर नहीं गए होंगे।
2: अरे वो ना जाए, उन्हें धन की हाय हाय पड़ी है। मुझे क्यों अपने साथ लिए मरते हैं? वो क्लब में नहीं जाना चाहते, उनका समय रुपए उगलता है, पर मुझे क्यों रोकते हैं? अरे वो खद्दर पहने, पर मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनने से क्यों रोकते हैं? वो अपनी माता और भाइयों के गुलाम बने रहे, पर मुझे क्यों उनके साथ रो रो कर दिन काटने के लिए मजबूर कर रहे हैं? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अमेरिका में एक कटु वचन कहने पर तलाक हो जाता है। पुरुष ज्यादा देर घर से बाहर आया, स्त्री ने तलाक दिया। वो स्वाधीनता का देश है, वहां लोगों के विचार स्वाधीन है, और ये गुलामों का देश है। यहाँ हर एक बात में उसी गुलामी की छाया है। मैं अब डॉक्टर बोस के साथ नहीं रह सकती। नाको दम आ गया है। इसका उत्तरदायित्व उन्हीं लोगों पर है जो समाज के नेता और व्यवस्थापक बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्त्रियों को गुलाम बनाकर स्वाधीन हो जाए, तो यह अनहोनी बात है ना। जब तक तलाक का कानून न जारी होगा, आपका स्वराज्य आकाश कुसुम ही रहेगा। मुझे धर्म के नाम से घृणा है। इसी धर्म ने स्त्री जाति को पुरुष की दासी बना दिया है। मेरा बस चले तो मैं सारे धर्म की पोथियों को उठाकर गटर में फेंक दूं।
1: मिसेस अय्यर प्रवेश करती हैं। गोरा रंग, ऊंचा कद, ऊंचा गाउन, गोल हांडी की सी टोपी, आंखों पर ऐनक, चेहरे पर पाउडर, गालों पर और ओटों पर सुर्ख पेंट, रेशमी जुराबें और ऊंची एड़ी के जूते। कानूनी कुमार तपाक से मिलते हैं।
0: हेलो मिसेस अय्यर।
3: हेलो मिस्टर कुमार।
0: कहिए किधर की सैर हो रही है? भाई आलोक में आपकी, आपका लेख बहुत सुंदर था, मैं तो पढ़कर दंग रह गया।
3: अच्छा दंग ही रह गए या कुछ किया भी? भाई हम स्त्रियां अपना कलेजा निकाल कर रख दें, लेकिन पुरुषों का दिल है कि पसीजता ही नहीं।
2: सच, बिल्कुल सच कह रही हैं आप।
3: लेकिन सुनिए, इस पुरुष राज का बहुत जल्दी अंत होने वाला है। स्त्रियां अब कैद में नहीं रह सकती। मिस्टर अय्यर की सूरत तुम्हें देखना भी नहीं पसंद करती।
0: मिस्टर अय्यर तो बहुत खूबसूरत आदमी है।
3: अरे अब की वो मुझे जबरदस्ती पहाड़ पर ले गए, वहाँ की ठंड मुझसे सही नहीं जाती है। कितना कहा कि मुझे मत ले जाओ, मगर किसी तरह नहीं माने। मैं किसी के पीछे पीछे परछाई की तरह नहीं चलना चाहती।
0: अब मुझे मालूम हो गया कि तलाक का बिल असेंबली में पेश करना पड़ेगा।
3: आपको मालूम तो हुआ, मगर शायद कयामत के दिन ही आप ये बिल पेश कर पाएंगे।
0: नहीं नहीं मिसेस अय्यर, अब की छुट्टियों के बाद ही ये बिल पेश होगा और धूमधाम के साथ पेश होगा। पुरुषों का अत्याचार बढ़ रहा है, जिस प्रथा का विरोध आप दोनों महिलाएं कर रही हैं, वो अवश्य हिंदू समाज के लिए घातक है। अगर हमें सभ्य बनना है तो सभ्य देशों के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। धर्म के ठेकेदार चिल्लपो मचाएंगे, कोई परवाह नहीं, उनकी खबर लेना आप दोनों महिलाओं का काम होगा। ऐसा बताना कि मुंह ना दिखा सके।
1: मिसेस अय्यर चली जाती हैं।
2: आज इसके घर में घी का दिया जलेगा, बहुत ही कमीनी है। यहाँ से सीधे बोस के पास गई होगी, अब मैं भी चलती हूँ।
1: कानूनी कुमार दोनों सुंदरियों की व्यथा से द्रवित

0: होकर एक कानून की किताब उठाकर उसमें तलाक की व्यवस्था देखने लगते हैं। तभी मिस्टर आचार्य आते हैं, क्लीन शेव, एक आंख पर ऐनक, आधे बांह की खाकी शर्ट, निकर, ऊनी मोजे, लंबे बूट और पीछे एक टेरियर कुत्ता।
1: हेलो मिस्टर आचार्य।
2: हेलो।
1: खूब आए आप। आज किधर की सैर हो रही है? अरे भाई, होटल का क्या हाल है?
2: अजी, होटल की मत पूछिए, कुत्ते की मौत मर रहा हूँ। इतना बढ़िया भोजन, इतना साफ सुथरा होटल, ऐसी रोशनी, इतना आराम, फिर भी मेहमानों का दुर्भिक्ष। समझ में नहीं आता अब कितना रेट घटाऊं। इन दामों में घर में मोटा खाना भी नसीब नहीं हो सकता। उस पर सारे जमाने की झंझट, कभी नौकर का रोना, कभी दूध वाले का रोना, कभी धोबी का रोना, कभी सफाई वाले का। ठहरने वाले यहाँ सारे जंजाल से मुक्त हो जाते हैं, फिर भी आधे कमरे खाली।
1: ये तो आपने बुरी खबर सुनाई आचार्य जी।
2: पश्चिम में क्यों इतना सुख और शांति है, क्यों इतना प्रकाश और धन है? इन्हीं होटलों के प्रसाद से। होटलें पश्चिमी गौरव का मुख्य अंग हैं, पश्चिमी सभ्यता का प्राण है। अगर आप भारत को उन्नति के शिखर पर देखना चाहते हैं तो होटल जीवन का प्रसार कीजिए। इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं
1: जी।
2: जब तक छोटी छोटी घरेलू चिंताओं से मुक्त नहीं हो जाएंगे, आप उन्नति नहीं कर सकते। राजा रईसों को अलग घरों में रहने दीजिए, वो सभी जगह 10 खर्च भी कर सकते हैं। हम अपने सारे मेहमानों की फिक्र अपने सिर लेने को तैयार हैं, फिर भी जनता की आंखें नहीं खुलती
1: जी।
2: इन मूर्खों की आंखें उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक कानून न बन जाए।
1: मैं सोच रहा हूँ जरूर कानून की मदद लेनी चाहिए। एक ऐसा कानून बन जाए कि जिन लोगों की आय 500 रुपए से कम हो, होटलों में रहें। क्यों, ठीक है ना?
2: आप अगर ये कानून बनवा दे तो आने वाली संतान आपको अपना मुक्तिदाता समझेगी।
1: हाँ तो लो, अब की ये कानून भी असेंबली खुलते ही पेश कर दूंगा। बड़ा शोर मचेगा, लोग देशद्रोही और जाने क्या क्या कहेंगे, पर इसके लिए मैं तैयार हूं। अरे कितना दुख होता है जब लोगों को उन्हीं के द्वार पर लुटिया लिए खड़ा देखता हूं। स्त्रियों का जीवन तो नरक तुल्य हो रहा है। सुबह से 10-12 बजे रात तक घर के धंधों से फुर्सत नहीं है। कभी बर्तन मांजो, कभी भोजन बनाओ, कभी झाड़ू लगाओ। अरे फिर स्वास्थ्य कैसे बनेगा, जीवन कैसे सुखी हो, सैर कैसे करें, जीवन के आमोद प्रमोद का आनंद कैसे उठाएं, अध्ययन कैसे करें? आपने खूब कहा, एक कदम में 500 सालों की मंजिल पूरी हुई जाती है।
2: तो आपकी बिल जरूर पेश कर दीजिएगा।
1: अवश्य।
0: कानूनी कुमार अपने ऑफिस की खिड़की के सामने खड़े होकर होटल प्रचार बिल का मसविदा सोचने लगते हैं। अचानक पार्क में एक स्त्री सामने से गुजरती है, 2 बच्चे पीछे चल रहे हैं। उसके पेट के उभार से मालूम होता है कि वो गर्भवती है। उसका दुबला पतला शरीर, पीला मुंह और उसकी मंद गति से अनुमान लगता है कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। उसे देखकर कानूनी कुमार सोचने लगते हैं।
1: इस समाज का, इस देश का और इस जीवन का सत्यानाश हो, जहां रमणियों को केवल बच्चा जनने की मशीन समझा जाता है। इस बेचारी को जीवन का क्या सुख है? कितनी ही ऐसी बहनें इसी जंजाल में फंसकर 32-33 की अवस्था में बीमार होकर संसार यात्रा समाप्त कर देती हैं, जबकि वास्तव में इस उम्र में जीवन को सुखी होना चाहिए। भारत, ये विपत्ति तेरे सिर से कब टलेगी? संसार में ऐसे ऐसे पत्थर दिल मनुष्य पड़े हैं जिन्हें इन दुखियारियों पर जरा भी दया नहीं आती। ऐसे अंधे, ऐसे पत्थर, ऐसे पाखंडी समाज को जो स्त्री को अपनी वासनाओं की वेदी पर बलिदान करता है,

0: कानून के सिवा और किस विधि से सचेत किया जाए? नर हत्या का जो दंड है वही दंड ऐसे मनुष्यों को मिलना चाहिए। अरे मुबारक होगा वो दिन जब भारत में इस नाशिनी प्रथा का अंत हो जाएगा। स्त्री का मरण, बच्चों का मरण और जिस समाज का जीवन ऐसी संतानों पर आधारित हो उसका मरण, ऐसे बदमाशों को क्यों ना दंड दिया जाए? कितने अंधे लोग हैं, बेकारी का ये हाल कि भर पेट किसी को रोटियां नहीं मिलती, बच्चों को दूध स्वप्न में नहीं मिलता, और ये अंधे हैं कि बच्चे पर बच्चे पैदा करते जाते हैं। संतान निग्रह बिल, असेंबली खुलते ही ये बिल पेश करूंगा, संतान निग्रह बिल, प्रलय हो जाएगा ये जानता हूं, पर और उपाय क्या है? क्या उपाय है? दो बच्चों से ज्यादा जिसके हों उसे कम से कम 5 वर्ष की कैद, उसमें 5 महीने से कम काल कोठरी के हों, और जिसकी आमदनी 100 रुपए से कम हो उसे तो संतानोत्पत्ति का अधिकार ही नहीं हो।
1: मन ही मन कानूनी कुमार बिल के बाद की अवस्था से आनंदित हो जाते हैं।
0: कितना सुखमय जीवन हो जाएगा। हाँ, एक दफा ये भी रहे कि एक संतान के बाद कम से कम 7 वर्ष तक दूसरी संतान ना आने पाए, तब इस देश में सुख और संतोष का साम्राज्य हो जाएगा। तब स्त्रियों और बच्चों के मुंह पर खून की सुर्खी नजर आएगी, तब मजबूत हाथ पांव और मजबूत दिल और जिगर के पुरुष उत्पन्न होंगे।
1: तभी उनके कमरे में मिन्नी यानी मिसेज कानूनी कुमार आती हैं। उन्हें देखकर वो जल्दी से रिपोर्ट और पन्नों को समेट लेते हैं और एक उपन्यास खोलकर बैठ जाते हैं।
2: क्या कर रहे हो? वही तुम?
0: उपन्यास पढ़ रहा हूँ, और क्या?
2: तुम सारी दुनिया के लिए कानून बनाते हो, एक कानून मेरे लिए भी बना दो। इससे देश का जितना बड़ा उपकार होगा उतना और किसी कानून से न होगा। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा और घर घर में तुम्हारी पूजा होगी।
0: अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं नाम और यश के लिए ये सब कर रहा हूँ तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि तुमने मुझे रत्ती भर भी नहीं समझा। मैं ये सब देश की सेवा के लिए कर रहा हूँ।
2: नाम के लिए काम कोई बुरा काम नहीं है। तुम्हें यश की आकांक्षा हो तो उसकी मैं निंदा नहीं करूंगी, भूल कर भी नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसी तदबीर बता दूंगी जिससे तुम्हें इतना यश मिलेगा कि तुम उब जाओगे।
0: हाँ।
2: फूलों की इतनी वर्षा होगी कि तुम उसके नीचे दब जाओगे।
0: अरे
2: अरे, गले में इतने हार पड़ेंगे कि तुम गर्दन सीधी न कर सकोगे।
0: हाँ, हाँ, हाँ, कोई मजाक की बात होगी। देखो मिन्नी, काम करने वाले आदमी के लिए इससे बड़ी दूसरी बाधा नहीं है कि उसके घर वाले उसके काम की निंदा करते हो। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से निराश हो जाता हूँ मिन्नी।
2: तलाक का कानून तो बनाने जा रहे हो, अब डर काहे का?
0: फिर मजाक कर रही हो? अरे मैं चाहता हूँ इन प्रश्नों पर गंभीर विचार करो।
2: मैं बहुत गंभीर विचार कर रही हूँ, सच मानो मुझे इसका दुख है कि तुम मेरे भाव को नहीं समझते।
0: ऐसा?
2: मैं इस वक्त तुमसे जो बात करने जा रही हूँ उसे मैं देश की उन्नति के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक समझती हूँ, मुझे इसका पक्का विश्वास है।
0: पूछने की हिम्मत तो नहीं पड़ती।
2: मैं खुद ही कहने आई हूँ, हमारा वैवाहिक जीवन कितना लज्जास्पद है तुम खूब जानते हो। रात दिन रगड़ा झगड़ा मचा ही रहता है, कहीं पुरुष स्त्री पर हाथ साफ कर लेता है तो कहीं स्त्री पुरुष के मूछों के बाल नोचती है, कहीं एक मुंह फुलाए बैठा है तो दूसरा घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहा है। कारण जानते हो क्या है? अरे कभी सोचा है
0: क्या?
2: पुरुषों की रसिकता और कृपणता, यही दोनों ऐप मनुष्यों के जीवन को नरक तुल्य बनाए हुए हैं।
0: अच्छा,
2: जिधर जाती है स्त्रियां पतित हो जाती है। देखो अशांति है, विद्रोह है, बाधा है, साल में लाखों हत्याएं इन्हीं बुराइयों के कारण।

0: और पुरुष, पुरुष शराब पीने लगते हैं, ये बात है कि नहीं?
1: हाँ, बहुत सी बुराइयां ऐसी हैं जिन्हें कानून नहीं रोक सकता। अरे अरे क्या?
0: बाप रे।
1: क्या?
0: अच्छा, क्या आप भी कानून की अक्षमता स्वीकार करते हैं? मैं नहीं समझती थी, मैं तो कानून को ईश्वर से ज्यादा सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान समझती हूँ।
1: फिर तुमने मजाक शुरू कर दिया।
0: अच्छा लो, कान पकड़ती हूँ, अब नहीं हंसूंगी। मैंने उन बुराइयों को रोकने का एक कानून सोचा है।
1: अच्छा?
0: उसका नाम है दंपति सुख शांति बिल।
1: अच्छा,
0: उसकी दो मुख्य धाराएं होंगी और बारीकियां तुम ठीक कर लेना है भाई। उसकी एक धारा होगी कि पुरुष अपनी आमदनी का आधा बिना कान और पूंछ हिलाए स्त्री को दे दे, अगर न दे तो 5 साल कठिन कारावास और 5 महीने काल कोठरी। बोलो मंजूर है?
1: असंभव, तुम प्रकृति को पलट देना चाहती हो। कोई पुरुष घर में कैदी बनकर रहना स्वीकार नहीं करेगा।
0: वो करेगा और उसका बाप करेगा, पुलिस डंडों के जोर से कराएगी, न करेगा तो चक्की पीसनी पड़ेगी। अरे करेगा कैसे नहीं, अपनी स्त्री को घर की मुर्गी समझना और दूसरी स्त्रियों के पीछे दौड़ना, क्या खाला जी का घर है? तुम अभी इस कानून को अस्वाभाविक समझते हो, मत घबराओ, स्त्रियों का अधिकार होने दो, ये पहला कानून न बन जाए तो कहना। स्त्री एक एक पैसे के लिए तरसे और आप गुलछर्रे उड़ाए, दिल लगी है? आधी आमदनी स्त्री को दे देनी पड़ेगी, जिसका उससे कोई हिसाब नहीं पूछा जाएगा।
1: अरे तुम मानव समाज को मिट्टी का खिलौना समझती हो क्या है?
0: कदापि नहीं, मैं यही समझती हूँ कि कानून सब कुछ कर सकता है, मनुष्य का स्वभाव भी बदल सकता है।
1: कानून ये नहीं कर सकता।
0: कर सकता है।
1: नहीं कर सकता।
0: कर सकता है। अगर वो जबरदस्ती लड़कों को स्कूल भेज सकता है, अगर वो जबरदस्ती विवाह की उम्र नियत कर सकता है, अगर वो जबरदस्ती बच्चों को टीका लगवा सकता है, तो वो जबरदस्ती पुरुषों को घर में बंद भी कर सकता है, उसकी आमदनी का आधा हिस्सा स्त्रियों को भी दिला सकता है। तुम कहोगे पुरुषों को कष्ट होगा, जबरदस्ती जो काम कराया जाता है उसमें करने वाले को कष्ट तो होता ही है, तुम उस कष्ट का अनुभव नहीं करते इसलिए वो तुम्हें नहीं अखरता। मैं ये नहीं कहती कि सुधार जरूरी नहीं है, मैं भी शिक्षा का प्रचार चाहती हूँ, मैं भी बाल विवाह बंद करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि बीमारियां न फैले, लेकिन कानून बनाकर जबरदस्ती ये सुधार नहीं करना चाहती। देखो, लोगों में शिक्षा और जागृति फैलाओ, जिससे कानूनी भय के बगैर वो सुधर जाए। आपसे कुर्सी तो छोड़ी जाती नहीं, घर से निकला जाता नहीं, इस तरह सुधार नहीं होगा। हाँ, पराधीनता की बेड़ी और भी कठोर हो जाएगी, समझे?
2: मिसेस कानूनी कुमार चली जाती हैं। कानूनी कुमार उठते हैं और व्याकुल मन लिए कमरे में टहलने लगते हैं।

0: संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की जब्त शुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का दूसरा भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गौपालकों को अनुदान राशि वितरण के साथ ही उज्जैन में बन रहे डेयरी प्लांट का भूमि पूजन और भोपाल में प्रोडक्ट प्लांट का लोकार्पण भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके ही नहीं देखा जा सकता। प्रदेश में इस साल भी सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत होगी। इसके लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन आज से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का आखिरी मुकाबला आज चंडीगढ़ में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। एशियाई खेलों में आज प्रणवी उर्स गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। भारत कुल 80 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और एशियाई खेलों के पुरुष क्रिकेट में आज भारत और पाकिस्तान के बीच स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मैच खेला जा रहा है। ताज़ा जानकारी मिलने तक भारत के दिए 212 रनों के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान ने 13.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 118 रन बना लिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महिला सभा। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की है।

की चादर ओढ़े, धरती मुस्कुराए हरियाली में, फूलों की खुशबू बिखर रही है, भवरे गाए मधुर तान में, झरने झरझर गीत सुनाए, पवन सुनाए मीठी बात, चांद सजाए चांदी की रात, प्रकृति लगे जैसे सुंदर प्रभात। बहनों, इसी जोश और उमंग के साथ हम फिर हाजिर हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो बहनों, स्वीकार कीजिए अर्चना का नमस्कार। बहनों, रक्तदान जीवन दान है। बहनों, यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि मानवता की सच्ची भावना का प्रतीक है। रक्त हमारे जीवन का आधार है। बहनों, शरीर में रक्त का संचार रुकते ही जीवन संकट में पड़ जाता है। दुर्घटना, गंभीर बीमारी, शल्य चिकित्सा और आपातकालीन परिस्थितियों में जब किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है, तब किसी स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिया गया रक्त उसके लिए जीवन की नई किरण बन जाता है। इसलिए बहनों, रक्तदान को निस्वार्थ सेवा और मानवता का महान कार्य माना जाता है। बहनों, हमारे जीवन में धन, वस्त्र, भोजन का दान महत्वपूर्ण है, किंतु रक्तदान का स्थान सबसे विशेष है, क्योंकि बहनों, इससे मनुष्य का जीवन बचाया जा सकता है। अस्पतालों में प्रतिदिन अनेक रोगियों को रक्त की आवश्यकता होती है, विशेषकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों, गंभीर रोगियों, शल्य चिकित्सा कराने वाले मरीजों के लिए समय पर रक्त मिलना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे समय पर रक्तदाता की किसी अनजान व्यक्ति के लिए आशा और जीवन का संदेश लेकर आता है। बहनों, आज भी समाज में रक्तदान को लेकर अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रक्तदान से शरीर कमजोर हो जाता है या स्वस्थ व्यक्ति को हानि पहुंचती है। बहनों, वास्तव में चिकित्सकीय रूप से योग्य व्यक्ति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया रक्तदान सुरक्षित होता है। रक्तदान से पहले स्वास्थ्य कर्मी आवश्यक जांच करते हैं, जिससे रक्तदाता और रक्त प्राप्त करने वाले दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। बहनों, रक्तदान किसी एक व्यक्ति की सहायता नहीं करता, बल्कि पूरे समाज में

0: अनवता और सहयोग की भावना को मजबूत करता है। बहनों, रक्तदान शिविरों का आयोजन करके युवाओं में विशेष रूप से यह संदेश पहुंचाना आवश्यक है कि समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बहनों, रक्तदान केवल रक्त देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि किसी अनजान व्यक्ति को जीवन का अनमोल उपहार देने का माध्यम है। हमारा थोड़ा सा सहयोग किसी के घर की खुशियां लौटा सकता है और किसी माँ की गोद, किसी बच्चे का बचपन या किसी परिवार की उम्मीद बचा सकता है। बहनों, जो व्यक्ति स्वस्थ है, उसे कोई रोग नहीं है, वो बिल्कुल रक्तदान करने के योग्य है। उसे नियमों का पालन करते हुए इस महान कार्य में योगदान देना चाहिए। आइए बहनों, रक्तदान को संस्कार बनाएं और मानवता को जीवन का उपहार दें। आइए बहनों, आज हम रक्तदान के विषय में और भी जानकारी लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर निधि त्रिपाठी से।
1: हमारे समाज में रक्तदान इसलिए जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति मतलब रक्त कभी कभी क्या है कि प्रॉपर नहीं बन पाता किसी किसी बॉडी में। आपातकालीन परिस्थितियों में भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे ऑपरेशन हो गया किसी पर्सन का, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उससे सीवियर एनीमिया में चला जाता है, तो ऐसे लोगों को रक्त की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमारे समाज में जो भी हेल्दी पर्सन है वो रक्त डोनेट करते हैं और ऐसे आपातकालीन परिस्थितियों में उनके थ्रू मदद मिलती है।
0: मैडम, एक स्वस्थ व्यक्ति कितने अंतराल में रक्त दे सकता है?
1: एक हेल्दी पर्सन लगभग 56 से 90 दिनों के अंतराल में रक्तदान दे सकता है।
0: मैडम, रक्तदान के लिए न्यूनतम उम्र और स्वास्थ्य संबंधी क्या आवश्यकताएं होती हैं?
1: न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 18 से लेकर के आप 60 के अंदर तक ब्लड डोनेट कर सकते हो।
0: क्या रक्तदान से शरीर में कमजोरी आती है?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपनी डाइट अच्छे से मैनेज करेंगे तो रक्तदान से कमजोरी नहीं आती है। रक्तदान करने के बाद हमारे शरीर में नए ब्लड सेल्स बनते हैं, आपको बस अपने खाने पे ध्यान देना होता है।
0: रक्तदान करने के बाद शरीर खोए हुए रक्त की पूर्ति कितने समय में करता है?
1: एक व्यक्ति अपने रक्त मतलब शरीर में रक्तदान करने के बाद अपने शरीर में रक्त की पूर्ति 1.5 महीने तक में कर सकता है।
0: किन लोगों को रक्तदान नहीं करना चाहिए?
1: रक्तदान एक हेल्दी पर्सन ही कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन जैसे सीवियर एल्कोहलिक है और स्मोकिंग हो गया, चीविंग हो गई, अगर ये सारी चीज़ें करता है, बैड हैबिट्स में है, तो वो रक्तदान नहीं कर सकता। और भी जैसे कुछ पर्सन हो गए कि जैसे उनको ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं, एचआईवी हो गए और भी जो भी संक्रमण है, ऐसे व्यक्ति भी दान नहीं कर सकते हैं।
0: क्या लड़कियां और महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं? इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है?
1: हाँ, लड़कियां और महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं, पर उनको मतलब अपने डाइट का मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हेल्दी रहे, अपने काम करने के साथ साथ अपने खाने का भी ध्यान रखें।
0: कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए रक्तदानकर्ता को?
1: अगर मेल है तो उसका 14% से लेकर के 18% होना चाहिए। अगर फीमेल है तो उसका 12% से लेकर के 16% होना चाहिए।
0: रक्तदान से पहले और बाद में व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए?
1: रक्तदान करने से पहले इंसान को खान पान का ध्यान रखना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और स्वस्थ आहार ले। 2 से 3 घंटे पहले रक्तदान करने से पहले पौष्टिक और हल्का भोजन करें, कभी खाली पेट रक्तदान नहीं करना चाहिए। रक्तदान के बाद आराम करें और नाश्ता करें, तरल पदार्थ पिए और बैंडेज का ध्यान रखें।
0: रक्तदान से जुड़ी ऐसी कौन सी भ्रांति है जो लोगों को नहीं मानना चाहिए?
1: ज़्यादातर हमारे समाज में क्या होता है कि लोगों को सोचना है कि हम रक्तदान करेंगे तो बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएंगे और हमारे शरीर में खून बनता है कि नहीं बनता है, तो ये सारी जैसे भ्रांतियाँ हैं, तो इनको मतलब बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं, सारी चीज़ें आपके अंदर अच्छे से, आपका ब्लड बन रहा है, तो आप रक्तदान कर सकते हैं और अपने डाइट का बस ध्यान रखना है।
0: एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान कितने लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है?
1: एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान 3 से 4 लोगों की जान बचा सकता है।
0: रक्तदान करते समय सुरक्षा और स्वच्छता के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
1: जैसे हम उसका ब्लड निकालने जा रहे हैं तो जो सुई है या कोई भी ट्यूब है तो पहले से ओपन नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से अपन ग्लव्स वगैरह वेयर करते हैं, अच्छे सैनिटाइज होते हैं, उसके बाद ही उसका ब्लड निकालते हैं। और सुई जो है एक्सपायर भी नहीं होनी चाहिए, अंडर डेज चीज़ें देख के अच्छे से करना चाहिए

0: और त्वचा की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट के सामने ही पैकेट को खोलना चाहिए।
1: लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आप क्या संदेश दे सकती हैं?
0: हम लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि मतलब अपने मन से जो गलत फहमी है इसको निकाल दें कि हम रक्तदान करेंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक हेल्दी पर्सन हैं, अगर अच्छे से खा पी रहे हैं और बैड हैबिट्स नहीं हैं आपके अंदर, कोई भी बीमारी नहीं है, तो आप बेशक रक्तदान करिए। और रक्तदान करने के अंदर कुछ ही महीनों में आपका रक्त बढ़ जाता है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए।
1: मैडम, आपने आप जो जो जानकारी बताई बहुत अच्छी लगी, हमारी बहनों को भी बहुत अच्छी लगी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धरती से लेकर आसमान तक नारी का सम्मान हो, उसके साहस और सपनों का हर पल गुणगान हो। वह ममता भी, वह शक्ति भी, वह जीवन की पहचान, उसके कदमों से रोशन हो घर आंगन और जहान।

बहनों, महात्मा गांधी के विचारों में नारी केवल परिवार की शोभा नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति की महत्वपूर्ण आधारशिला थी। वे नारी को पुरुष के समान सम्मान और अधिकार स्वतंत्रता का अधिकारी मानते थे। गांधी जी का विश्वास था कि जिस समाज में महिलाओं को उचित सम्मान और अवसर नहीं मिलता वह समाज पूर्ण रूप से प्रगति नहीं कर सकता। बहनों, गांधी जी ने नारी को त्याग धैर्य करुणा और शक्ति की प्रतिमूर्ति माना है। बहनों, वे महिलाओं की सहनशीलता और नैतिक शक्ति को समाज परिवर्तन का प्रभावशाली माध्यम समझते थे। उनका मानना था कि नारी में अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया। बहनों, गांधी जी बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज और स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरोधी थे। वे चाहते थे कि महिलाओं को शिक्षा मिले ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बन सकें। उनके लिए नारी की स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी स्वतंत्रता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता भी थी। बहनों, आज जब महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल, प्रशासन और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं, गांधी जी के विचार और भी प्रासंगिक दिखाई देते हैं। नारी को समान अवसर और सम्मान देना केवल महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण और विकसित समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आइए बहनों, आप सुन लेते हैं आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

मानो चेहरा चमके और खूबसूरती निखरे, यह ख्वाहिश आज हर नारी की है, फिर चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। मानो हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा चमके, लेकिन आप सोच रहे होंगे वे कैसे। मानो घर और किचन में बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिनकी मदद से हम चेहरे को चमका सकते हैं। छोटे छोटे उपाय करके हम लाभ पा सकते हैं। पहला उपाय है, एक चम्मच कच्चे दूध में रुई डुबोकर चेहरे को साफ करें। यह एक बेहतरीन नेचुरल क्लींजर का काम करता है जो त्वचा को अंदर से साफ करता है। दूसरा उपाय है, एक चम्मच दही में एक चुटकी हल्दी मिलाकर चेहरे पर 10 मिनट के लिए लगाएं। दही त्वचा को नमी देता है और हल्दी चमक बढ़ाती है। तीसरा उपाय है, टमाटर के एक टुकड़े को चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें और 5 मिनट बाद धो लें। यह चेहरे का कालापन दूर करता है। चौथा उपाय है, एक चम्मच शहद में नींबू के रस की कुछ बूंदे मिलाकर चेहरे पर लगाएं। यह त्वचा को चमकदार और टाइट बनाता है। मैंने पांचवा उपाय है, चावल के आटे में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं और चेहरे पर हल्के हाथों से स्क्रब करें। इससे डेड स्किन साफ होती है और तुरंत ग्लो आता है। बहनों, अच्छी स्किन और अच्छी हेल्थ के लिए आपको अच्छी डाइट लेना पड़ेगी। मौसमी फल और सब्जियों का सेवन करना पड़ेगा और भरपूर नींद लेना पड़ेगी और टेंशन से अपने आप को दूर रखना होगा। तो देखिए, आपके चेहरे में जादुई चमक आ जाएगी। लगाइए और सुन लीजिए ये प्यारा सा गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उर्मिला मिश्रा के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की है। पहले आप सुनेंगे लोक भजन, उसके बाद गैलहाई, और फिर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे दादरा। तो आइए सुनते हैं उर्मिला मिश्रा के गाए हुए कुछ लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे उर्मिला मिश्रा के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको कुछ गजलें सुनवाने जा रहे हैं। हमारे आज के फनकार हैं रविंद्र कुमार मिश्रा। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रविंद्र कुमार मिश्रा के गाए हुए कुछ गजलें। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने ज्वेल थीफ फिल्म से लिया है। इस गीत के लिए आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार एस डी बर्मन।

आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत है आराधना फिल्म से, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत एस डी बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सूनी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भोपाल स्थित भील दशहरा मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान श्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डेयरी और सहकारिता क्षेत्र की कई परियोजनाओं का शुभारंभ और भूमि पूजन करने के साथ ही गौपालकों को 101 करोड़ की अनुदान राशि वितरित की। इस मौके पर भारतीय न्याय संहिता पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग नवीन न्याय संहिताओं के अनुरूप आधुनिक एवं वैज्ञानिक अन्वेषण प्रणाली से परिचित होंगे। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि नई न्याय संहिता लागू होने के बाद एफआईआर होने पर जल्द से जल्द सजा मिल सकेगी।
1: कि हमारी न्याय व्यवस्था तारीख पे तारीख के तानों से जानी जाती थी, मगर विशेषकर बहनों और युवाओं को मैं बताने आया हूँ, 1.5 साल के बाद, इसके पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप कोई भी एफआईआर कराए, सुप्रीम कोर्ट तक दोषी को 3 साल में सजा कराने का काम ये नई न्याय संहिता। और ये जो कानून आए हैं वो भारत के नागरिकों का सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा करने के लिए।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में किसानों और गौपालकों को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं।
2: किसान और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के प्रयास हमने प्रारंभ किए, खास करके पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए। ये बात सही है, हमारे लिए किसान शब्द बोलते ही 2 शब्द जुड़ते हैं, एक खेती और एक किसानी। और आदि काल से खेती मतलब अन्न का उत्पादन और किसानी मतलब दूध से लेकर ये सभी प्रकार की उसकी आय के रास्ते रहते हैं। हमारे राज्य के किसानों के लिए कहां 35 रुपए लीटर में दूध खरीद रहे थे, अब उस सहकारी समितियों के बलबूते पर 55 रुपए लीटर तक का भाव उनको मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 12 वर्ष पूरे कर चुका है। मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण 2014 में आज ही के दिन विजयादशमी के अवसर पर हुआ था। हाल ही में मन की बात का 138वां एपिसोड प्रसारित किया गया। पिछले 12 वर्षों में मन की बात ने देश भर में हो रहे सकारात्मक बदलावों को सामने लाने और नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का एक अनूठा मंच प्रदान किया है। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देश भर के ऐसे लोगों की प्रेरक कहानियां साझा करते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव ला रहे हैं। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर किया जाता है। प्रदेश भर में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन आज से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। किसान ग्राम पंचायत सहकारी समितियों और सुविधाओं केंद्रों पर निशुल्क पंजीयन करा सकेंगे, जबकि एमपी ऑनलाइन पर सीएससी से अधिकतम 50 रुपये शुल्क देकर पंजीयन की सुविधा भी रहेगी। प्रदेश में नागरिकों को शासकीय सेवाएं उनके गांव और वार्ड पर स्तर पर सहज, पारदर्शी, संवेदनशील एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार का आयोजन किया जा रहा है। अभियान में आज ग्रामीण क्षेत्रों में विकासखंड स्तर पर और कल रविवार 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में वार्ड एवं जोन स्तर पर मेगा सेवा सेतु शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट में आज खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में खरीफ वर्ष 2026 में कोदो कुटकी के उपार्जन के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर किसान पंजीयन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होगी। रायसेन में पंचायत उपचुनाव में वार्ड 3 के पूजा राकेश चौकसे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लक्ष्मण लोधी को 4,900 वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दी। आगरमालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद पर उप निर्वाचन में मतगणना में भाजपा के प्रदीप सोनी ने कांग्रेस के विष्णु प्रसाद पाटीदार को 960 मतों से हराकर जीत दर्ज की है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75% से 80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में US इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफ़ी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
3: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अभी तक, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत चार साढ़े चार वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप्ड विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि कोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है इस बात की जानकारी देंगे।
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थी को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आइए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
6: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि ये में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपका पास है ना नहीं पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CFS में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जनरल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे न छूटे।
7: A faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there, we are moving towards the developed economy. We can call ourselves a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
8: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाईपास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: अपडेट रहे, आगे रहें, expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
10: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर

फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह और भेजती हूँ आप तक मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मौसम करवट ले रहा है, बारिश विदा हो रही है और ठंड की गुलाबी सी दस्तक कुछ दिनों में ही हम महसूस करेंगे। अक्टूबर का जो महीना है वो मौसम की एक अलग तासीर लेकर आता है, आपको भी लगता है ना? और मौसम के बदलने के साथ मन का मौसम भी बदलता है, क्योंकि त्योहारों की आहट आ जाती है। तो बड़ा ही रोशन सा, बड़ा खुशनुमा सा ये महीना होता है अक्टूबर का। आज इसकी 3 तारीख है। तो चलिए, इस बदलते मौसम के साथ जो मन का मौसम बदलता है और जो हमारे दिलों में एक गुनगुनाहट पैदा होती है, उसी की वानगी आपकी फरमाइश कार्यक्रम है, क्योंकि वही गीत आप पसंद करते हैं और उसकी फरमाइश हमें लिख भेजते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताऊं कि किन श्रोताओं की फरमाइश पर आज के कार्यक्रम का पहला गीत हमने चुना है, उसके बाद गाने की डिटेल। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। और पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफी मंसूरी। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं बॉयफ्रेंड फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने। उनकी नजर की जुम्बिश से बन जाते हैं शोले भी शबनम, सारी दुनिया भूल गई है, याद करें अब किस किस को हम।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है कैफी आजमी ने, संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने, फिल्म का नाम है हकीकत। सुनने की ख्वाहिशमंद हैं छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इसी गीत को पसंद करते हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, और गोला बाजार बक्सर से ये खत आया हुआ है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और कान्हा जी आर्य। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत। ये कह कह के हम दिलों को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिलों को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं।

कहीं ये वो तो नहीं, इंतज़ार की खूबसूरत घड़ियाँ कैफी आज़मी की कलम से निकली हुई। आइए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का नाम है, इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन, और पसंद आप सबकी है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर राही, सरिता गम्हाणकर, प्रिंस एकांश गम्हाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गम्हाणकर, प्रणीता गम्हाणकर, अर्जुन गम्हाणकर, टुक टुक श्वेता, सुमित गम्हाणकर, और बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गम्हाणकर और ध्वनि गम्हाणकर परी। और ये चिट्ठी आई हुई है बाबा बैजनाथ धाम से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी और रोशनी केशरी। और ये खत आया हुआ है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले का। तो आइए आप सब की फरमाइश पर लव इन टोक्यो फिल्म का गीत सुनते हैं, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। जहाँ देखो जिधर देखो वही आलम वही जलवा, मेरी आंखों में रहता है कोई मेरी नज़र होकर,

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपके पसंदीदा गीतों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: सेना।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन दोस्तों की फरमाइश पर है। बक्सर से मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना और सानवी। शाहूनगर यवतमाल से इसी गीत को पसंद करते हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। ये खत आया हुआ है बहादुरपुर जिला जलगांव से। लिखने वाले श्रोता हैं संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र, रविंद्र सोनार, सनी मुन्ना और बंडू दादा। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं पारसमणि फिल्म का गीत। इस गीत के लिए आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं। गीत को लिखा है असद भोपाली ने और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया।

फिल्म का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म इज्जत से। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पसंद आप सबकी है। मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीना जी, स्वप्निल और अजय खिरोडकर। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी। मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलार अंसारी, मोहम्मद जुबैर अंसारी। दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी। और महोबा से बलराम दास अहिरवार, कस्तूरी, आराधना, सोनिका, उपमा और नैतिक वर्मा।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में डेयरी और सहकारिता क्षेत्र की कई परियोजनाओं का शुभारंभ और भूमि पूजन करने के साथ ही गोपालकों को 101 करोड़ की अनुदान राशि वितरित की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में 5वें क्वार्टरली आर्थिक सम्मेलन में कहा कि स्वस्थ बैलेंस शीट और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समर्थन में भारतीय वित्तीय प्रणाली बहुत सुदृढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात आज 12 वर्ष पूरे कर रहा है। मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण 2014 में आज ही के दिन विजयादशमी के अवसर पर हुआ था। हाल ही में मन की बात का 138वां एपिसोड प्रसारित किया गया। प्रदेश में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन आज से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। किसान ग्राम पंचायत, सहकारी समितियों और सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन करा सकेंगे। प्रदेश में नागरिकों को शासकीय सेवाएं उनके गांव और वार्ड स्तर पर सहज, पारदर्शी, संवेदनशील एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला थम गया है, लेकिन दिन में गर्मी और रात में ठंडक का असर एक साथ महसूस हो रहा है। और एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट में आज खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीत लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी रीवा द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:45, 8:35 और रात 10:20। शाम 6:30 होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, जनसेवा से देश सेवा। हमारा ये विशेष कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:00। रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम साहित्य भारती, और दिल्ली से ही रात 10:00 सुनिए एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:25 पर आप सुनेंगे बुंदेली समाचार। किसान भाइयों के लिए किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:30 पर। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे, विगत 23 सितंबर 2026 को देवास कृषि विज्ञान केंद्र के स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित भेंट वार्ताएं। आप कौन सुनवाएंगे? प्रगतिशील कृषक श्री जगदीश नागर से बागवानी फसलों से भरपूर आय विषय पर बातचीत। साथ ही डॉक्टर के एस भार्गव से बातचीत का विषय होगा चने की उन्नत बुवाई तकनीक। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, ओटीटी वेब्स और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5:00 अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उर्मिला मिश्रा के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उर्मिला मिश्रा के गाए हुए कुछ लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत है। इस कार्यक्रम में आज आप चंद गजलें सुनेंगे। फनकार हैं रविंद्र कुमार मिश्रा। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की है।

0: आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में डेयरी और सहकारिता क्षेत्र की कई परियोजनाओं का शुभारंभ और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि एक वर्ष पहले प्रारंभ हुई श्वेत क्रांति 2 के अंतर्गत देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 75,000 नई डेयरियां स्थापित की जाएंगी, जिनमें सबसे अधिक डेयरियां मध्य प्रदेश में स्थापित होंगी। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में नगर वन विकास के लिए कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड के बीच MOU का आदान प्रदान किया गया। प्रदेश में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन आज से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। किसान ग्राम पंचायत, सहकारी समितियों और सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन करा सकेंगे। प्रदेश में नागरिकों को शासकीय सेवाएं उनके गांव और वार्ड स्तर पर सहज पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार का आयोजन किया जा रहा है। एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट में आज खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीत लिया है। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का आखिरी मुकाबले में आज चंडीगढ़ में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 22.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना लिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विज्ञान लोक।

नमस्कार। विज्ञान लोक कार्यक्रम के एक और अंक के साथ हम हाजिर हैं आज, और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में

0: सूचना तकनीक की भूमिका, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री योगेश पंडित जी। आप लीगल साइबर एक्सपर्ट के तौर पे मध्य प्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम में एज ए साइबर एक्सपर्ट के रूप में कार्यरत हैं। योगेश पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हम बात करते हैं सूचना तकनीक की, सूचना तकनीक के विकास और विस्तार के बाद जिस तरीके से आज आम जनमानस इससे जुड़ा हुआ है, हम पूरे विश्व को एक गांव में डिफाइन कर सकते हैं, तो सूचना तकनीक आखिर क्यों और किस तरह से इम्पोर्टेंट है?
1: जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सूचना तकनीक ना सिर्फ हमारे जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि हमारे पूरे कार्य प्रणाली को ज़्यादा अधिक तेज, व्यवस्थित, पारदर्शी और डेटा पर आधारित मूल्यों पर काम करने के लिए हमें प्रबल बनाती है। साथ ही साथ जो भी ऐसी तकनीक हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज हो गई हमारी, वो हमारी सीधी पहुंच बनाती हैं राज्य एवं केंद्र सरकार के साथ। तो पहली चीज़ तो एक बात हो गई कि तकनीक का उपयोग हमारे रोज़मर्रा के कार्य प्रणाली के लिए करना, आपके मनोरंजन से लेके, ज्ञान पाने से लेके, कोई कोर्स करने से लेके, ट्रेनिंग करने से लेके, व्यापार करने से लेके, या गवर्नमेंट की किसी भी सुविधा को मुहैया करने तक सारी चीज़ें अब आप एक बटन के क्लिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये एक समावेश में मैंने आपको थोड़ा सा बताया।
0: योगेश जी, जैसे कि आपने बताया कि अगर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि सरकार की जो मंशा है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है वहाँ तक उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जानकारी वहाँ तक पहुँचे, उनका लाभ वहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ पे किस तरीके से सूचना तकनीक की भूमिका है?
1: जी देखिए, सरकार का एक मत है कि वो 5 साल में एक बार अपने व्यक्तियों से, अपने नागरिकों से ना मिले, निरंतर उनके साथ जुड़े रहें, उनके साथ बने रहें, जिसके लिए अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग भी अब किया जा रहा है और लोग भी अपना जो व्यू पॉइंट है, अपना मत है, सीधे साझा कर सकते हैं गवर्नमेंट से। इनफैक्ट किसी भी एजेंसी के माध्यम से और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारी चीज़ें वो सीधे संपर्क में आ सकते हैं, और ऐसे तमाम सुविधाएं हैं, पोर्टल्स के माध्यम से उन सुविधाओं को जान भी सकते हैं और सीधे उसके बारे में आप कोई भी आपके सवाल हो तो आप सीधे वहां पर उसको रेज कर सकते हैं। और आपका एक टोकन सिस्टम के माध्यम से काम होता है, एक समय सीमा पर काम होता है, आपको एक टोकन जनरेट कर दिया जाता है, जब तक उसका निराकरण नहीं होता तब तक आप उसको वैलिडेट करा सकते हैं, पुनः उसको चालू करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हमारे लिए ज़्यादा बेहतर बनाती हैं हमारी सुविधाओं को।
0: सूचना तकनीक की बात कर रहे हैं, इसकी भूमिका इस तरह से खासकर सरकारी तंत्र में कि उसकी जो क्रियान्वयन में तेज और पारदर्शी, त्वरित और पारदर्शी। अब चूंकि हर आदमी के पास में तकनीक है
1: जी,
0: मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये तकनीक के माध्यम से वो सीधे जुड़ना चाहता है। जब सीधे जुड़ता है तो वो ये सारी चीज़ों को जो है उसी समय उसके सामने वो देखना चाहता है, समझना चाहता है, तो निश्चित तौर पे उसका फायदा भी उसको उसी समय वो अपेक्षा करता है कि वो मुझे मिले। तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकारी तंत्र में आज महत्वपूर्ण हैं और लोग जानना चाहते हैं?
1: जी, जैसे कि आपने कहा कि त्वरित और व्यवस्थित और पारदर्शी सुविधा हमारे नागरिक तक पहुंचे, ये ध्येय लेके जब अपन चल रहे हैं, तो सबसे प्रमुख सुविधा जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जिसको DBT स्कीम बोलते हैं, ठीक है, और इसको प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। अब DBT स्कीम में क्या है, पहले अपन इसको समझें। DBT स्कीम हमें ये कह रही है कि इसमें 56 मंत्रालय डिजिटली आपसे कनेक्टेड है और जो भी सुविधाएं हैं, जो भी बेनिफिशियरी है यानी लाभार्थी है, उसको ये सुविधा सीधे उसके खाते में दर्शाई जाती है। और कोई भी ऐसी बेनिफिट है, चाहे आप LPG कनेक्शन देख लें या अन्य कोई भी ऐसे बेनिफिशियरी स्कीम देख लें, इसमें DBT पोर्टल के माध्यम से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और आपको इसमें अलग से कोई कंप्यूटर का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल पर ही बटन दबा के बड़ी आसानी से इस डेटा को हासिल कर सकते हैं। तो ये पहली जो स्कीम मैंने आपको बताई वो है DBT स्कीम्स। ऐसे अन्य स्कीम्स बहुत सारी हैं जो अलग अलग अलग अलग सुविधाओं पर फोकस्ड है।
0: निश्चित तौर पे जैसे कि DBT के बारे में हम सुनते हैं, जानते हैं कि आम आदमी के लिए कितना उपयोगी है, और हमारी जो आजकल समाज में डे टू डे के कार्यों में डीबीटी का उपयोग होता है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से इसका हम लाभ उठाएं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचना तकनीक किस तरह से यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि सही व्यक्ति तक सही लाभ पहुंचे।
1: बहुत अच्छा सवाल है आपका, जिस पर हमारा उद्देश्य है पारदर्शिता को बेहतर समझना। अब देखिए, हमारी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है या डिजिटल बैंकिंग जो सुविधा सरकार ने अनेकों योजनाओं के माध्यम से जो चालू की है, इसमें हम पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करें? तो पहली बात देखिए, मान लीजिए कि सरकार ने किसी, पहली बात तो पात्र व्यक्ति को चुना और उसको आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया। अब पारंपरिक व्यवस्था में क्या होता था कि आवेदन लेने के बाद, स्वीकृति हुई, उसके बाद भुगतान जो है वो कई स्तरों तक कागजी प्रक्रिया में अटक जाता था। तो जिसके निराकरण के लिए डिजिटल व्यवस्था शुरू की गई और इससे लाभार्थी का जो विवरण है वो डिजिटल सिस्टम में दर्ज होता है। उसकी पात्रता सुनिश्चित करने के बाद, आवश्यक सत्यापन के बाद, तुरंत जो राशि है उसके बैंक खाते में भेजी जा सकती है। उदाहरण के रूप में आपको मैं एक और स्कीम बताना चाहूंगा जो कि है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब ये भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको हम लोग PMJDY के नाम से भी जान। अब इसका उद्देश्य सिर्फ बैंकिंग, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन या अन्य वित्तीय चीजों तक सीमित नहीं है और ज्यादा भी इसमें अब बढ़ गया है। सितंबर 2026 में जो सरकारी आंकड़े हैं इनके अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत लगभग 59 करोड़ लाभार्थी दर्ज हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें इनका बैंक खाता, डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान का पूरा नेटवर्क जो है उसकी सारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के आधार पर संचालित भी किया जा रहा है।
0: योगी जी, एक बात और, एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चूंकि ये वित्तीय लेन देन के मामले में हम बात कर रहे हैं, सूचना तकनीक कितना प्रभावी है, तो एक चीज आप ये समझाएं कि आखिर ये जो वित्तीय लेन देन है इसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, खासकर इसकी सुरक्षा। जैसे हम बैंकों से लेन देन करते हैं, हम अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से लेन देन करते हैं, तो यहाँ सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, और जो क्रियान्वयन में निगरानी होती है ये किस तरीके से हम करें।
1: अब देखिए, आपने बहुत सीधा सवाल किया है जो सुरक्षा पर फोकस्ड है, और सुरक्षा हमारा प्राथमिक जिम्मेवारी है, जिसके लिए अभी मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 70B द्वारा क्रिएटेड जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसका गठन भी हाल ही में करा है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको सीधे सीधे बताने का प्रयास करता हूँ। पहली चीज़ तो देखिए, एक हो गया हमारा होम डिपार्टमेंट जो भारत भर में तमाम तरीकों से काम कर रहा है, जिसको हम लोग पुलिस भी कहते हैं, लेकिन होम के अंदर बेसिकली 5 से 7 डिपार्टमेंट्स आते हैं, इनको हमें समझने की जरूरत है। इसी के साथ, चूंकि हमारे सारे नागरिक, हमारे सारे अधिकारी, हमारे सारे लोग मोबाइल से ज्यादा जुड़े हुए हैं, मोबाइल उनका पहला एक संपर्क सूत्र है, कुछ भी होता है मोबाइल उठाते हैं, उस पर सर्च करते हैं, AI का इस्तेमाल भी करने लग गए हैं और अन्य चीजें भी, तो मोबाइल पे जो चीज आप देख रहे हो वो सुरक्षित रहे इसके लिए बहुत सारे चीजों को चेक किया जाता है। अब लाभ आप तक पहुंचे इसके कैसे काम करता है, और सुरक्षा, दोनों पहलू मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज तो देखिए, डिजिटल प्रणालियां ठीक तरह से काम करें इसके लिए गवर्नमेंट ने अपना एक डिजिटल डेटाबेस बनाया हुआ है, data.gov.in, ये भारत सरकार का वो डिजिटल डेटाबेस है जिसके माध्यम से आप पहचान प्रमाणीकरण उचित तौर पे कर पाते हो। और तीसरा चरण है जिसमें बैंकिंग या भुगतान प्रणाली ठीक तरह से काम है, और अंतिम चरण होता है कि योजना ठीक तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही, इस पे निगरानी रखी जा सके, यानी पारदर्शिता। तो ये सारे पहलू जो हैं, हम किसी एक पोर्टल का उदाहरण लेके समझ लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए ई श्रम का पोर्टल है या आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल है, तो सारे पोर्टल्स की जो सिक्योरिटी ऑडिट है वो भारत सरकार की ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है STQC, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ये सुनिश्चित करती है। और जो भी हमारा साइबर ढांचा है ये साइबर हमलों से सुरक्षित रहे, हमारे ऐसी चीजों पर जो साइबर हमले हैं ये हमें क्षति ना पहुंचा पाए, इसकी निरंतर जांच भी की जाती है और तुरंत इसके ऑडिट भी किए जाते हैं, और सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स को एक ऑडिट सर्टिफिकेट भी भेजा जाता है जिसके माध्यम से, और इनको ये निरंतर कराना होता है। ऐसा नहीं कि आपने जीवन में साल में एक बार आपने ऑडिट करा लिया, आप फुर्सत पाए, ऐसा नहीं, आपको निरंतर ऑडिट करानी, क्योंकि साइबर हमले नए नए रूप लेते जा रहे हैं और इसमें बहुत सारे खतरे बढ़ जाते हैं।
0: हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है योगेश जी की, अगर सपोज कोई गलती आम नागरिक या जो बेनिफिशरीज हैं जो उन योजनाओं में जाकर लाभ लेना चाहते हैं, अगर गलती से ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे साइबर एक्सपर्ट के रूप में कैसे कहेंगे कि इस इन गलतियों से कैसे बचें, और ये गलतियाँ ना, अगर गलतियाँ हो जाती हैं तो फिर कहाँ और कैसे उनको कैसे बचा जाना चाहिए?
1: ठीक है, भारत शासन के तमाम जो भी पोर्टल हैं इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रमुख पोर्टल हैं, आप कोशिश करें, सुनिश्चित करें आप इंटरनेट पर जाएं, उनको सर्च करें, सर्च इंजन में जाके सर्च करें और गवर्नमेंट पोर्टल पर जाके ही उस सुविधा का इस्तेमाल करें। अन्य एप्स को जाके प्ले स्टोर पे अगर आप ढूंढते हैं, हो सकता है कोई फर्जी ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हो और वो इंस्टॉल करने के बाद आपका डाटा कहीं भी जा सकता है। कुछ ऐसे पोर्टल्स मैं आपको नाम लेके बता देता हूँ, जैसे कि DBT पोर्टल के बारे में मैंने आपको काफी बार बताया, PM किसान पोर्टल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में मैंने कुछ आपको मेंशन करा, ई-श्रम पोस्टर है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए जो हमारा डेटाबेस है, फिर PM आवास योजना है, मनरेगा पोर्टल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, फिर हमारा एक माई स्कीम पोर्टल है जो सारी स्कीम्स को आप समझने के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल बना हुआ है माई स्कीम के नाम से, और अभी नव संचालित उमंग ऐप भी है जिसको भी आप यूज कर सकते। अब पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि जेन्यून पोर्टल पर जाके ही सुविधा का उपयोग करें, ये बात मैंने आपसे रखी। और दूसरा, जैसे कि बहुत अच्छा सवाल यहाँ आपने पूछा है कि अगर हमसे भूलवश कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसमें हमारे जो पहचान है उसकी चोरी हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं साइबर अपराध में आइडेंटिटी थेफ्ट
0: जी,
1: तो अगर इस तरह की प्रकरण सामने आते हैं तो मैं आपको क्रमबद्ध तरह से बताता हूं कि क्या आपको करना है। देखिए, सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए हमारा उद्देश्य, गवर्नमेंट स्कीम कैसे काम कर रही है, आपने टेक्नोलॉजी को यूज करा, आप लाभार्थी की पहचान हुई, आपने आवेदन किया, आपने सत्यापन किया, आपको स्कीम मिली, पारदर्शिता सुनिश्चित की गई, और फिर अब अंतिम हमारा चरण है नागरिक सुरक्षा, या हमारा डेटा सुरक्षित रहे। तो पहला चरण मैंने आपको बताया, गलत ऐप उपयोग ना करें, फर्जी वेबसाइट पर ना जाएं, जिसको बोलते हैं फिशिंग वेबसाइट, फर्जी वेबसाइट लोग बना सकते हैं, बैंक की गवर्नमेंट पोर्टल की नकली वेबसाइट बनाई जा सकती है, कुछ शब्द बदल दिए जाते और नकली ऐप या नकली वेबसाइट तैयार की जाती है जिसको फिशिंग हमला भी बोलते हैं, इससे बचें। दूसरा, आपको अगर कॉल करके कोई किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताता है, आपसे जानकारी हासिल करने का प्रयास करता है, तो आप उसको पूर्णतः अस्वीकार कर सकते हैं, कोई जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है, कोई OTP बताने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट आपको अपना नाम बताने की जरूरत भी नहीं है। आज के समय में क्या हो गया है, साइबर अपराधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, आपका मोबाइल नंबर वहां डाल के आपका नाम हासिल कर सकते हैं। नाम हासिल करने के लिए आपको अब सिर्फ एक ऐप की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कोई भी UPI ऐप अगर देखें, जितने श्रोता अगर सुन रहे हैं तो कोई भी UPI ऐप अगर आप देखें, किसी भी संदिग्ध नंबर को उठाकर अगर आप किसी UPI ऐप में ले जाते हो और वहाँ पे ऑप्शन आता है आपको पे टू मोबाइल नंबर, संदिग्ध नंबर उठाया आपने, कॉपी किया, वहाँ पे टू मोबाइल नंबर पर आपने उस नंबर को पेस्ट किया, उस व्यक्ति का आपको बैंक से जुड़ा हुआ नाम मिल जाता है। ऐसी स्थिति में क्या जो बैंक धारक है वो असुरक्षित हो गया? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एक सिक्योरिटी फीचर है जिसको इसलिए डाला गया है कि आप सही व्यक्ति को पैसा पहुंचा रहे हो, पहली बात। दूसरा, अगर आपसे कोई टेक्निकल खामी हो जाती है, उदाहरणतः बड़ी सरलता से आपको बताऊंगा, एक व्यक्ति है वरिष्ठ जन है और वो किसी को 500 रुपए भेजना चाहते थे, अब वो एक पेमेंट ऐप का नाम नहीं ले रहा मैं इसलिए क्योंकि अनेकों UPI ऐप है, अब उस पेमेंट ऐप पे जाके उनने 500 लिखा, भूलवश उनसे एक जीरो और ऐड हो गया, जो कि अक्सर हो जाता है, 5000 रुपए चले गए साहब उनका, अब उनको तो जीवन में कष्ट बढ़ गया, वो भागे भागे संबंधित थाने पहुंचे तो उनको ये बताया गया कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये साइबर अपराध का प्रकरण नहीं है, ये बेसिकली ग्रीवियंस है, कोई भी गवर्नमेंट ऐप, पेमेंट ऐप, बैंकिंग या कोई भी ऐसी सुविधा इस्तेमाल करते वक्त, सोशल मीडिया में भी इनफैक्ट ये ऑप्शन है, आपसे कोई गलती हो जाती है आप ग्रीवियंस रजिस्टर करिए, उसका निराकरण हो जाएगा। आप अगर साइबर अपराध रजिस्टर करोगे तो अनेकों साइबर सेल जो भारत भर में काम कर रहे हैं उन्हें मजबूरन उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज करना पड़ेगा, तो प्लीज इन चीजों से बचें, सावधान रहें। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज आपको खत्म करने के लिए एक चीज और बोलूंगा, अपनी सुविधाओं का जो आप पासवर्ड बनाएं वो थोड़ा मजबूत पासवर्ड बनाएं, बहुत बेकार सा पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग क्या करते हैं, माता पिता के नाम, बच्चों के नाम, स्पाउस का नाम, मतलब पति पत्नी का नाम हो गया किसी का, बच्चों के नाम हो गए, है ना, ऐसे नाम रखते हैं, या बहुत सरल पासवर्ड रख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ऐसे पासवर्ड ना रखें, ये 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर ऐसे पासवर्ड तोड़ लिए जाते हैं, मजबूत पासवर्ड रखें, स्पेशल सिंबल का उपयोग करें और एक डायरी मेंटेन करें जहां आप अपने महत्वपूर्ण पोर्टल पासवर्ड को संरक्षित कर सकें। तो ये कुछ आयाम है जिसके माध्यम से आप साइबर सुरक्षित रह सकते।
0: योगेश जी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़रूरी बातें हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, खासकर सरकारी योजनाएं, जो आम लोगों से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनका लाभ वो कैसे लगे, और खासकर आपने बताया कि सिर्फ गवर्नमेंट ऐप जो हैं उन योजनाओं के लिए जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं उनके माध्यम से अगर हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो लाभार्थी हैं उनके माध्यम से अगर वो उन योजनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा सुरक्षित हैं। यहाँ पे सरकारी तंत्र है तो सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि आपके द्वारा जो सूचना प्राप्त की जा रही है या आप जो सूचना उसमें डाल रहे हैं वो पूर्णतः गोपनीय भी रखे जाएंगे, तो सुरक्षा

0: और ये गोपनीयता दोनों का ध्यान रखा
1: दोनों
0: गया
1: को एक साथ लेके चला जा रहा है।
0: चलते चलते मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो तमाम सारी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की मंशा है कि त्वरित और पारदर्शी तरीके से, पारदर्शी बहुत जरूरी है क्योंकि अब चूंकि तुरंत आपको प्राप्त करना है तो आप ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ये सही है कि नहीं।
1: पारदर्शिता के बारे में आपने बहुत अच्छी बात आपने कही कि सुविधाओं का जो आधिकारिक सरकारी पोर्टल, एक तो आप उसको यूज करें और जो अधिकृत सेवा केंद्र है, अगर आप कभी आपको
0: जी
1: कंप्यूटर या मोबाइल चलाने में अगर आपको असुविधा हो रही है तो आप जो आधिकारिक ऐसे सेवा केंद्र हैं जिसको CSCs कॉमन
0: जैसे लोक सेवा केंद्र के रूप में
1: उन पोर्टल्स का आप उपयोग करें। इसके लिए CSC कहलाते हैं, ये कॉमन सर्विस सेंटर्स, इनका आप उपयोग करें। ग्राम स्तर पर भी ये सेंटर्स ओपन किए गए हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करें और तमाम जो स्कीम्स हैं आप यहाँ से भी इनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर कोई फ्रॉड या किसी ऐसे परेशानी में आप सामना करते हैं तो आप cybercrime.gov.in पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1930 है।
0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, खासकर तकनीक के साथ जो आम लोग, आज हम शिक्षित वर्ग की हम बात तो करते हैं लेकिन ऐसी पॉपुलेशन है हमारे पास जो अभी भी दूर दराज के लोग हैं जो सीधे सरकारी तंत्र में आप इस तकनीक के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने दी है। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सूचना तकनीक की भूमिका निश्चित तौर पर हम सबके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी जानकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की।
1: सभी को धन्यवाद। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान लोक, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले आप सुनेंगे चंबल की कसम, इस फिल्म का गीत, और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे दूरियां फिल्म का नगमा।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की जब्त शुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का दूसरा भाग।

0: होती चली जा रही है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, बस दावतें, खाना और मौज उड़ाना उसका काम है।
1: कानूनी कुमार पार्क की ओर देखते हैं।
0: अरे ये कोमल कोमल किशोर सिगरेट पी रहे हैं। ओ शोक, महाशोक। कोई कुछ नहीं कहता, कोई इसको टोकने की कोशिश भी नहीं करता। तंबाकू कितनी जहरीली चीज है, बालकों को इससे कितनी हानि होती है, ये कोई नहीं जानता।
1: कानूनी कुमार तंबाकू की रिपोर्ट देखते हैं।
0: उफ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितने बालक अपराधी होते हैं उनमें 75% सिगरेट बाज होते हैं। बड़ी भयंकर दशा है, हम क्या करें। लाख स्पीचें दो, कोई सुनता ही नहीं। इसको कानून से रोकना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तंबाकू बहिष्कार बिल पेश करूंगा। काउंसिल खुलते ही वो बिल पेश कर देना चाहिए। लिख लेता हूं।
1: कानूनी कुमार एक क्षण के बाद फिर पार्क की ओर देखते हैं और पर्देदार महिलाओं को घास पर बैठे देखकर लंबी सांस लेते हैं।
0: गजब है, कितना घोर अन्याय, कितना पाशविक व्यवहार। ये कोमलांगी पर्देदार सुंदरियां चादर में लिपटी हुई कितनी भद्दी, कितनी फूहड़ मालूम होती हैं। तभी तो देश का यह हाल हो रहा है। स्त्रियों की मृत्यु संख्या बढ़ रही है, तपेदिक उछलता चला आता है, प्रसूत की बीमारी आंधी की तरह चढ़ी आती है और हमें की आंखें बंद किए पड़े हैं। बहुत जल्दी ऋषियों की ये भूमि, ये वीर प्रसविनी जननी रसातल को चली जाएगी। इसका कहीं निशान भी न रहेगा। लोग कितने पत्थर हो गए हैं, आंखों के सामने ये अत्याचार देखते हैं और जरा भी नहीं चौंकते। यहां भी कानूनी जरूरत है। एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें कोई स्त्री पर्दे में ना रह सके। अब समझ आ गया है कि इस विषय में सरकार कदम बढ़ाए। कानून की मदद के बगैर कोई सुधार नहीं हो सकता, और यहां कानूनी मदद की जितनी जरूरत है उतनी और कहां हो सकती है। पर्दा हटाओ बिल पेश होना चाहिए। जानता हूं बड़ा विरोध होगा, लेकिन गवर्नमेंट को साहस से काम लेना चाहिए। ऐसे नपुंसक विरोध के भय से उद्धार के काम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। यह बिल भी असेंबली के खुलते ही पेश कर देना होगा। शीर्षक रख देता हूं, हेतु और उद्देश्य।
1: तभी एक भिखारी दरवाजा खटखटाता है।
2: जय हो सरकार की, लक्ष्मी फूले फूले।
3: हटो, हट जाओ यो भिखारी। अरे कोई काम क्यों नहीं करता।
2: अरे बड़ा धर्म होगा मालिक, मारे भूख के आंखों तले अंधेरा है।
3: चुप रहो भिखारी, हट जाओ सामने से। अभी निकल जाओ, निकल जाओ बहुत दूर।
1: कानूनी कुमार फिर सोचने लगते हैं।
0: ये ऋषियों की भूमि आज भिक्षुकों की भूमि हो रही है। जहां देखिए वहां रेवड़ के रेवड़ और दल के दल भिखारी हैं। ये गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से है। इंग्लैंड में कोई भिक्षुक भीख नहीं मांग सकता, पुलिस पकड़कर कालकोठरी में बंद कर देती है। किसी सभ्य देश में इतने भिखमंगे नहीं हैं। यह अंग्रेजों के अधीन भारत है, जहां ऐसी बातें इस सदी में भी संभव है। उफ, कितनी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। रिपोर्ट देखो कितना लिखा है, 50 लाख। 50 लाख आदमी केवल भिक्षा मांग कर गुजर करते हैं, और क्या। ठीक है कि संख्या इसकी दुगनी ना हो, ये पेशा लिखाना कौन पसंद करता है। 1 करोड़ से कम भिखारी इस देश में नहीं है। ये तो भिखारियों की बात हुई जो द्वार द्वार झोली लिए घूमते हैं। इसके बाद टीकाधारी, कोपिनधारी और जटाधारी समुदाय भी तो है, जिनकी संख्या कम से कम 2 करोड़ होगी। जिस देश में इतने हरामखोर मुफ्त का माल उड़ाने वाले, दूसरों की कमाई पर मोटे होने वाले

0: प्राणी हो उसकी दशा क्यों ना इतनी हीन हो। आश्चर्य यही है कि अब तक देश जीवित कैसे है।
1: कानूनी कुमार इसे फिर नोट करते हैं।
0: एक बिल की सख्त जरूरत है, तुरंत पेश करना चाहिए। नाम हो भीख मंगा बहिष्कार बिल। खूब जूतियां चलेंगी, धर्म के सूत्रधार खूब नोचेंगे, खूब गालियां देंगे, गवर्नमेंट भी कन्नी काटेगी। मगर सुधार का मार्ग तो कंटकाकीर्ण है ही। तीनों बिल मेरे ही नाम से हो, फिर देखिए कैसी खलबली मस्ती है।
1: कानूनी कुमार का दरवाजा फिर खटकता है।
2: चाय बाबूजी, चाय। बाबूजी चाय पियेंगे? आज एक भी ग्राहक नहीं मिला।
0: इतनी बलवर्धक वस्तु और ग्राहक कोई नहीं।
2: इसीलिए तो कहता हूँ बाबूजी, कम से कम एक प्याला तो ले लीजिए, एक प्याला तो पी लीजिए।
0: सभ्य देशों में पानी की जगह चाय पी जाती है।
1: कानूनी कुमार रिपोर्ट देखते हैं।
0: रिपोर्ट देखी, उसमें क्या लिखा है? इंग्लैंड में 5 करोड़ पाउंड की चाय जाती है। इंग्लैंड वाले मूर्ख नहीं है, उनका आज संसार पर आधिपत्य है। इसमें चाय का कितना बड़ा भाग है कौन इसका अनुमान लगा सकता है? यहाँ बेचारा चाय वाला खड़ा है और कोई उसके पास फटकता भी नहीं। चीन वाले चाय पी पी कर स्वाधीन हो गए, मगर हम चाय नहीं पियेंगे। क्या कल है, गवर्नमेंट का सारा दोष है। अरे कीटों से भरे हुए दूध के लिए इतना शोर मचता है, मगर चाय को कोई पूछता ही नहीं, जो कीट रहित है, उत्तेजक है और पुष्टिकारक है। सारे देश की मति मारी गई है।
1: कानूनी कुमार नोट करते हैं।
0: गवर्नमेंट से प्रश्न करना चाहिए, असेंबली खुलते ही प्रश्नों का तांता बांध दूंगा। प्रश्न है, क्या गवर्नमेंट बताएगी कि गत 5 सालों में भारतवर्ष में चाय की खपत कितनी बड़ी है और उसका सर्वसाधारण में प्रचार करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं?
1: एक रमणी प्रवेश करती है। कटे बाल, आड़ी मांग, रेशमी साड़ी, कलाई पर घड़ी, आंखों पर ऐनक, पांव में ऊंची एड़ी का शू, हाथ में बटुआ, साड़ी में ब्रूच और गले में मोतियों का हार। कानूनी कुमार उससे हाथ मिलाते हैं।
0: हेलो मिसेस बोस।
3: हेलो हेलो।
0: आप खूब आए। भाई आपके तो आलोक में आपकी कविता बड़ी सुंदर थी।
3: जी हाँ।
0: और मैं तो पढ़कर झूम गया। भाई इस नन्हे से हृदय में इतने भाव कहाँ से आ जाते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। भाई शब्द विन्यास की तो आप रानी हैं, रानी। ऐसे ऐसे चोट करने वाले भाव आपको कैसे सूझ जाते हैं?
3: अरे दिल जलता है तो उसमें आपसे आप धुएं के बादल निकलते हैं। जब तक स्त्री समाज पर पुरुषों का अत्याचार रहेगा, ऐसे भावों की कमी न रहेगी।
0: क्यों, क्या इधर कोई नई बात हो गई?
3: अरे रोज ही होती रहती है। मेरे लिए डॉक्टर बोस की आज्ञा नहीं है कि किसी से मिलने जाओ या कहीं सैर करने जाओ। अब की कैसी गर्मी पड़ी कि सारा खून जल गया, पर मैं पहाड़ों पर नहीं जा सकी। और मुझसे ये अत्याचार, ये गुलामी अब सही नहीं जाती।
0: डॉक्टर बोस खुद भी तो पहाड़ों पर नहीं गए होंगे।
3: अरे वो ना जाए, उन्हें धन की हाय हाय पड़ी है। मुझे क्यों अपने साथ लिए मरते हैं? वो क्लब में नहीं जाना चाहते, उनका समय रुपए उगलता है, पर मुझे क्यों रोकते हैं? अरे वो खद्दर पहने, पर मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनने से क्यों रोकते हैं? वो अपनी माता और भाइयों के गुलाम बने रहे, पर मुझे क्यों उनके साथ रो रो कर दिन काटने के लिए मजबूर कर रहे हैं? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अमेरिका में एक कटु वचन कहने पर तलाक हो जाता है। पुरुष ज्यादा देर घर से बाहर आया, स्त्री ने तलाक दिया। वो स्वाधीनता का देश है, वहां लोगों के विचार स्वाधीन है, और ये गुलामों का देश है। यहाँ हर एक बात में उसी गुलामी की छाया है। मैं अब डॉक्टर बोस के साथ नहीं रह सकती, नाको दम आ गया है। इसका उत्तरदायित्व उन्हीं लोगों पर है जो समाज के नेता और व्यवस्थापक बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्त्रियों को गुलाम बनाकर स्वाधीन हो जाए, तो ये अनहोनी बात है ना। जब तक तलाक का कानून न जारी होगा, आपका स्वराज्य आकाश कुसुम ही रहेगा। मुझे धर्म के नाम से घृणा है। इसी धर्म ने स्त्री जाति को पुरुष की दासी बना दिया है। मेरा बस चले तो मैं सारे धर्म की पोथियों को उठाकर गटर में फेंक दूं।
1: मिसेस अय्यर प्रवेश करती हैं। गोरा रंग, ऊंचा कद, ऊंचा गाउन, गोल हाडी की सी टोपी, आंखों पर ऐनक, चेहरे पर पाउडर, गालों पर और ओटों पर सुर्ख पेंट, रेशमी जुराबें और ऊंची एड़ी के जूते। कानूनी कुमार तपाक से मिलते हैं।
0: हेलो मिसेज अय्यर।
4: हेलो मिस्टर कुमार।
0: कहिए किधर की सैर हो रही है? भाई आलोक ने आपकी आपका लेख बहुत सुंदर था, मैं तो पढ़कर दंग रह गया।
4: अच्छा दंग ही रह गए या कुछ किया भी? भाई हम स्त्रियां अपना कलेजा निकाल कर रख दें, लेकिन पुरुषों का दिल है कि पसीजता ही नहीं।
3: सच, बिल्कुल सच कह रही हैं आप।
4: लेकिन सुनिए, इस पुरुष राज का बहुत जल्दी अंत होने वाला है। स्त्रियां अब कैद में नहीं रह सकती। मिस्टर अय्यर की सूरत तुम्हें देखना भी नहीं पसंद करती।
0: मिस्टर अय्यर तो बहुत खूबसूरत आदमी है।
4: अरे अब की वो मुझे जबरदस्ती पहाड़ पर ले गए, वहाँ की ठंड मुझसे सही नहीं जाती है। कितना कहा कि मुझे मत ले जाओ मत ले जाओ, मगर किसी तरह नहीं माने। मैं किसी के पीछे पीछे परछाई की तरह नहीं चलना चाहती।
0: अब मुझे मालूम हो गया कि तलाक का बिल असेंबली में पेश करना पड़ेगा।
4: आपको मालूम तो हुआ, मगर शायद कयामत के दिन ही आप ये बिल पेश कर पाएंगे।
0: नहीं नहीं मिसेज अय्यर, आपकी छुट्टियों के बाद ही ये बिल पेश होगा और धूमधाम के साथ पेश होगा। पुरुषों का अत्याचार बढ़ रहा है, जिस प्रथा का विरोध आप दोनों महिलाएं कर रही हैं, वो अवश्य हिंदू समाज के लिए घातक है। अगर हमें सभ्य बनना है तो सभ्य देशों के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। धर्म के ठेकेदार चिल्लपो मचाएंगे, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। उनकी खबर लेना आप दोनों महिलाओं का काम होगा, ऐसा बताना कि मुंह ना दिखा सके।
1: मिसेज अय्यर चली जाती हैं।
3: आज उसके घर में घी का दिया जलेगा, बहुत ही कमीनी है। यहाँ से सीधे बोस के पास गई होगी, अब मैं भी चलती हूँ।
1: कानूनी कुमार दोनों सुंदरियों की व्यथा से द्रवित होकर एक कानून की किताब उठाकर उसमें तलाक की व्यवस्था देखने लगते हैं। तभी मिस्टर आचार्य आते हैं। क्लीन शेव, एक आंख पर ऐनक, आधे बांह की खाकी शर्ट, निकर, ऊनी मोजे, लंबे बूट और पीछे एक टेरियर कुत्ता।
0: हेलो मिस्टर आचार्य।
5: हेलो।
0: खूब आए आप। आज किधर की सैर हो रही है? अरे भाई होटल का क्या हाल है?
5: जी होटल की मत पूछिए, कुत्ते की मौत मर रहा हूँ। इतना बढ़िया भोजन, इतना साफ सुथरा होटल, ऐसी रोशनी, इतना आराम, फिर भी मेहमानों का दुर्भिक्ष। समझ में नहीं आता अब कितना रेट घटाऊं। इन दामों में घर में मोटा खाना भी नसीब नहीं हो सकता। उस पर सारे जमाने की झंझट, कभी नौकर का रोना, कभी दूध वाले का रोना, कभी धोबी का रोना, कभी सफाई वाले का। ठहरने वाले यहाँ सारे जंजाल से मुक्त हो जाते हैं, फिर भी आधे कमरे खाली।
0: ये तो आपने बुरी खबर सुनाई आचार्य जी।
5: पश्चिम में क्यों इतना सुख और शांति है, क्यों इतना प्रकाश और धन है? इन्हीं होटलों के प्रसाद से। होटलें पश्चिमी गौरव का मुख्य अंग हैं, पश्चिमी सभ्यता का प्राण है। अगर आप भारत को उन्नति के शिखर पर देखना चाहते हैं तो होटल जीवन का प्रसार कीजिए। इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं
0: जी।
5: जब तक छोटी छोटी घरेलू चिंताओं से मुक्त नहीं हो जाएंगे आप उन्नति नहीं कर सकते। राजा रईसों को अलग घरों में रहने दीजिए, वो सभी जगह 10 खर्च भी कर सकते हैं। हम अपने सारे मेहमानों की फिक्र अपने सिर लेने को तैयार हैं, फिर भी जनता की आंखें नहीं खुलती
0: जी।
5: इन मूर्खों की आंखें उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक कानून न बन जाए।
0: मैं सोच रहा हूँ जरूर कानून की मदद लेनी चाहिए। एक ऐसा कानून बन जाए कि जिन लोगों की आय 500 रुपए से कम हो होटलों में रहें, क्यों? ठीक है ना?
5: आप अगर ये कानून बनवा दे तो आने वाली संतान आपको अपना मुक्तिदाता समझेगी।
0: हाँ तो लो, अब की ये कानून भी असेंबली खुलते ही पेश कर दूंगा। बड़ा शोर मचेगा, लोग देशद्रोही और जाने क्या क्या कहेंगे, पर इसके लिए मैं तैयार हूँ। अरे कितना दुख

0: होता है जब लोगों को उन्हीं के द्वार पर लुटिया लिए खड़ा देखता हूँ। स्त्रियों का जीवन तो नरक तुल्य हो रहा है। सुबह से 10-12 बजे रात तक घर के धंधों से फुर्सत नहीं है। कभी बर्तन मांजो, कभी भोजन बनाओ, कभी झाड़ू लगाओ। अरे फिर स्वास्थ्य कैसे बनेगा, जीवन कैसे सुखी हो, सैर कैसे करें, जीवन के आमोद प्रमोद का आनंद कैसे उठाएं, अध्ययन कैसे करें। आपने खूब कहा, एक कदम में 500 सालों की मंजिल पूरी हुई जाती है।
1: तो आपकी बिल जरूर पेश कर दीजिएगा।
0: अवश्य।
2: कानूनी कुमार अपने ऑफिस की खिड़की के सामने खड़े होकर होटल प्रचार बिल का मसविदा सोचने लगते हैं। अचानक पार्क में एक स्त्री सामने से गुजरती है, दो बच्चे पीछे चल रहे हैं। उसके पेट के उभार से मालूम होता है कि वो गर्भवती है। उसका दुबला पतला शरीर, पीला मुंह और उसकी मंद गति से अनुमान लगता है कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। उसे देखकर कानूनी कुमार सोचने लगते हैं।
0: हाँ, इस समाज का, इस देश का और इस जीवन का सत्यानाश हो, जहां रमणियों को केवल बच्चा जनने की मशीन समझा जाता है। इस बेचारी को जीवन का क्या सुख है? कितनी ही ऐसी बहनें इसी जंजाल में फंसकर 32-33 की अवस्था में बीमार होकर संसार यात्रा समाप्त कर देती हैं, जबकि वास्तव में इस उम्र में जीवन को सुखी होना चाहिए। भारत, ये विपत्ति तेरे सिर से कब टलेगी? संसार में ऐसे ऐसे पत्थर दिल मनुष्य पड़े हैं जिन्हें इन दुखियारियों पर जरा भी दया नहीं आती। ऐसे अंधे, ऐसे पत्थर, ऐसे पाखंडी समाज को जो स्त्री को अपनी वासनाओं की वेदी पर बलिदान करता है, कानून के सिवा और किस विधि से सचेत किया जाए? नर हत्या का जो दंड है, वही दंड ऐसे मनुष्यों को मिलना चाहिए। अरे मुबारक होगा वो दिन जब भारत में इस नाशिनी प्रथा का अंत हो जाएगा। स्त्री का मरण, बच्चों का मरण और जिस समाज का जीवन ऐसी संतानों पर आधारित हो, उसका मरण, ऐसे बदमाशों को क्यों ना दंड दिया जाए? कितने अंधे लोग हैं, बेकारी का ये हाल कि भर पेट किसी को रोटियां नहीं मिलती, बच्चों को दूध स्वप्न में नहीं मिलता, और ये अंधे हैं कि बच्चे पर बच्चे पैदा करते जाते हैं। संतान निग्रह बिल, असेंबली खुलते ही ये बिल पेश करूंगा, संतान निग्रह बिल। प्रलय हो जाएगा ये जानता हूं, पर और उपाय क्या है? क्या उपाय है? दो बच्चों से ज्यादा जिसके हों, उसे कम से कम 5 वर्ष की कैद, उसमें 5 महीने से कम काल कोठरी के हों, और जिसकी आमदनी 100 रुपए से कम हो, उसे तो संतान उत्पत्ति का अधिकार ही नहीं हो।
2: मन ही मन कानूनी कुमार बिल के बाद की अवस्था से आनंदित हो जाते हैं।
0: हा, कितना सुखमय जीवन हो जाएगा। हाँ, एक दफा ये भी रहे कि एक संतान के बाद कम से कम 7 वर्ष तक दूसरी संतान ना आने पाए, तब इस देश में सुख और संतोष का साम्राज्य हो जाएगा। तब स्त्रियों और बच्चों के मुंह पर खून की सुर्खी नजर आएगी। तब मजबूत हाथ पांव और मजबूत दिल और जिगर के पुरुष उत्पन्न होंगे।
2: तभी उनके कमरे में मिन्नी यानी मिसेज कानूनी कुमार आती हैं। उन्हें देखकर वो जल्दी से रिपोर्ट और पन्नों को समेट लेते हैं और एक उपन्यास खोलकर बैठ जाते हैं।
3: क्या कर रहे हो? वही तुम?
0: उपन्यास पढ़ रहा हूँ, और क्या?
3: तुम सारी दुनिया के लिए कानून बनाते हो, एक कानून मेरे लिए भी बना दो। इससे देश का जितना बड़ा उपकार होगा, उतना और किसी कानून से न होगा। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा और घर घर में तुम्हारी पूजा होगी।
0: अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं नाम और

0: यश के लिए ये सब कर रहा हूं तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि तुमने मुझे रत्ती भर भी नहीं समझा। मैं ये सब देश की सेवा के लिए कर रहा हूं।
1: नाम के लिए काम कोई बुरा काम नहीं है। तुम्हें यश की आकांक्षा हो तो उसकी मैं निंदा नहीं करूंगी, भूल कर भी नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसी तदबीर बता दूंगी जिससे तुम्हें इतना यश मिलेगा कि तुम उब जाओगे।
0: हाँ।
1: फूलों की इतनी वर्षा होगी कि तुम उसके नीचे दब जाओगे।
0: अरे
1: अरे, गले में इतने हार पड़ेंगे कि तुम गर्दन सीधी न कर सकोगे।
0: हाँ, हाँ, हाँ, कोई मजाक की बात होगी। देखो मिन्नी, काम करने वाले आदमी के लिए इससे बड़ी दूसरी बाधा नहीं है कि उसके घर वाले उसके काम की निंदा करते हो। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से निराश हो जाता हूँ मिन्नी।
1: तलाक का कानून तो बनाने जा रहे हो, अब डर का है का?
0: फिर मजाक कर रही हो? अरे मैं चाहता हूँ इन प्रश्नों पर गंभीर विचार करो।
1: मैं बहुत गंभीर विचार कर रही हूँ, सच मानो। मुझे इसका दुख है कि तुम मेरे भाव को नहीं समझते।
0: ऐसा?
1: मैं इस वक्त तुमसे जो बात करने जा रही हूँ उसे मैं देश की उन्नति के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक समझती हूँ। मुझे इसका पक्का विश्वास है।
0: पूछने की हिम्मत तो नहीं पड़ती।
1: मैं खुद ही कहने आई हूँ। हमारा वैवाहिक जीवन कितना लज्जास्पद है तुम खूब जानते हो। रात दिन रगड़ा झगड़ा मचा ही रहता है। कहीं पुरुष स्त्री पर हाथ साफ कर लेता है तो कहीं स्त्री पुरुष के मूछों के बाल नोचती है। कहीं एक मुंह फुलाए बैठा है तो दूसरा घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहा है। कारण जानते हो क्या है? अरे कभी सोचा है
0: क्या?
1: पुरुषों की रसिकता और कृपणता, यही दोनों ऐप मनुष्यों के जीवन को नरक तुल्य बनाए हुए हैं।
0: अच्छा,
1: जिधर जाती है स्त्रियां पतित हो जाती है। देखो, अशांति है, विद्रोह है, बाधा है। साल में लाखों हत्याएं इन्हीं बुराइयों के कारण होती है। और पुरुष शराब पीने लगते हैं, ये बात है कि नहीं?
0: हाँ, बहुत सी बुराइयां ऐसी हैं जिन्हें कानून नहीं रोक सकता। अरे अरे क्या?
1: बाप रे,
0: क्या?
1: अच्छा, क्या आप भी कानून की अक्षमता स्वीकार करते हैं? मैं नहीं समझती थी, मैं तो कानून को ईश्वर से ज्यादा सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान समझती हूँ।
0: फिर तुमने मजाक शुरू कर दिया।
1: अच्छा लो, कान पकड़ती हूँ, अब नहीं हंसूंगी। मैंने उन बुराइयों को रोकने का एक कानून सोचा है।
0: अच्छा?
1: उसका नाम है दंपति सुख शांति बिल।
0: अच्छा,
1: उसकी दो मुख्य धाराएं होंगी और बारीकियां तुम ठीक कर लेना है भाई। उसकी एक धारा होगी कि पुरुष अपनी आमदनी का आधा बिना कान और पूंछ हिलाए स्त्री को दे दे, अगर न दे तो 5 साल कठिन कारावास और 5 महीने काल कोठरी। बोलो मंजूर है?
0: असंभव, तुम प्रकृति को पलट देना चाहती हो। कोई पुरुष घर में कैदी बनकर रहना स्वीकार नहीं करेगा।
1: वो करेगा और उसका बाप करेगा। पुलिस डंडों के जोर से कराएगी, न करेगा तो चक्की पीसनी पड़ेगी। अरे करेगा कैसे नहीं, अपनी स्त्री को घर की मुर्गी समझना और दूसरी स्त्रियों के पीछे दौड़ना क्या खाला जी का घर है? तुम अभी इस कानून को अस्वाभाविक समझते हो, मत घबराओ। स्त्रियों का अधिकार होने दो, ये पहला कानून न बन जाए तो कहना। स्त्री एक एक पैसे के लिए तरसे और आप गुलछर्रे उड़ाए, दिल लगी है? आधी आमदनी स्त्री को दे देनी पड़ेगी जिसका उससे कोई हिसाब नहीं पूछा जाएगा।
0: अरे तुम मानव समाज को मिट्टी का खिलौना समझती हो क्या है?
1: कदापि नहीं, मैं यही समझती हूँ कि कानून सब कुछ कर सकता है, मनुष्य का स्वभाव भी बदल सकता है।
0: कानून ये नहीं कर सकता।
1: कर सकता है।
0: नहीं कर सकता।
1: कर सकता है। अगर वो जबरदस्ती लड़कों को स्कूल भेज सकता है, अगर वो जबरदस्ती विवाह की उम्र नियत कर सकता है, अगर वो जबरदस्ती बच्चों को टीका लगवा सकता है, तो वो जबरदस्ती पुरुषों को घर में बंद भी कर सकता है। उसकी आमदनी का आधा हिस्सा स्त्रियों को भी दिला सकता है। तुम कहोगे पुरुषों को कष्ट होगा, जबरदस्ती जो काम कराया जाता है उसमें करने

0: वाले को कष्ट तो होता ही है। तुम उस कष्ट का अनुभव नहीं करते, इसलिए वो तुम्हें नहीं अखरता। मैं ये नहीं कहती कि सुधार जरूरी नहीं है। मैं भी शिक्षा का प्रचार चाहती हूँ। मैं भी बाल विवाह बंद करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि बीमारियां न फैले, लेकिन कानून बनाकर जबरदस्ती ये सुधार नहीं करना चाहती। देखो, लोगों में शिक्षा और जागृति फैलाओ, जिससे कानूनी भय के बगैर वो सुधर जाए। आपसे कुर्सी तो छोड़ी जाती नहीं, घर से निकला जाता नहीं, इस तरह सुधार नहीं होगा। हाँ, पराधीनता की बेड़ी और भी कठोर हो जाएगी, समझे?
1: मिसेस कानूनी कुमार चली जाती हैं। कानूनी कुमार उठते हैं और व्याकुल मन लिए कमरे में टहलने लगते हैं।

संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति क्रम में दूसरा भाग। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 88.32 मीटर साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। शाम के 5 बजने को है, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में डेयरी और सहकारिता क्षेत्र की कई परियोजनाओं का शुभारंभ और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि हम मध्य प्रदेश को पूर्णतः नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश को मादक पदार्थों के जाल से पूरी तरह मुक्त करने के लिए आज हम एक सूक्ष्म एवं ठोस कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। प्रदेश में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन आज से शुरू हो गया। किसान 17 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत, सहकारी समितियों और सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन करा सकेंगे। प्रदेश में नागरिकों को शासकीय सेवाएं उनके गांव और वार्ड स्तर पर सहज पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जनभागीदारी से जोड़ने में भूमिका निभाई है। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का आखिरी मुकाबले में आज चंडीगढ़ में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 33 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन बना लिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे नमस्ते योजना और जीन एडिटिंग के विषय में। साथ ही होंगी कुछ अन्य जानकारियां और सुनवाएंगे कुछ गीत भी। दोस्तों, महात्मा गांधी जी स्वच्छता को ईश्वर की भक्ति के समान मानते थे। उन्होंने सफाई और सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए आजीवन कड़े प्रयास किए। उन्होंने कभी भी सफाई के काम को छोटा नहीं समझा। वो अपने आश्रमों में खुद भी साफ सफाई करते थे। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को समाज का महत्वपूर्ण अंग माना। महात्मा गांधी जी ने समाज से छुआछूत की भावना को मिटाने के लिए अछूत उद्धार का काम किया। समाज को प्रेरित किया कि सफाई के काम को किसी विशेष वर्ग की जिम्मेदारी ना समझें। दोस्तों, नमस्ते योजना सफाई कर्मचारियों के लिए ही लाई गई है। ये भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्य योजना है। ये मुख्य रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य है हाथ से मैला ढोने की प्रथा का अंत करना, शून्य मृत्यु दर, मशीनीकृत सफाई यानी सीवर और सेप्टिक टैंकों की हाथ से की जाने वाली खतरनाक सफाई को पूरी तरह से समाप्त करना, सफाई के काम को आधुनिक मशीनों और तकनीक से जोड़ना। सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिक और कचरा बिनने वाले कर्मचारी इसके लाभार्थी हैं। इन्हें कई लाभ मिलते हैं, जैसे सफाई कर्मचारियों को काम के दौरान सुरक्षा के मुफ्त पीपीई किट और आधुनिक उपकरण दिए जाते हैं। लाभार्थियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। इन्हें सुरक्षित और मशीनीकृत सफाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। कौशल प्रशिक्षण के दौरान 3,000 रुपए प्रतिमाह का वजीफा भी दिया जाता है। दोस्तों, यदि कोई कर्मचारी खुद की स्वच्छता मशीनरी या वाहन खरीदना चाहता है या कोई वैकल्पिक रोजगार शुरू करना चाहता है तो उसे सरकार द्वारा पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत वेकअप सिड फिल्म से शंकर महादेवन की आवाज में।

दोस्तों, अब हम जानेंगे जीन एडिटिंग के बारे में। जीन एडिटिंग एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसके जरिए वैज्ञानिक किसी भी जीव जैसे इंसान, पौधे, जानवर या बैक्टीरिया के डीएनए में बदलाव कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जैसे हम कंप्यूटर पर किसी टेक्स्ट फाइल को खोलकर उसमें गलत शब्दों को हटा देते हैं या नए शब्द जोड़ देते हैं, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक इस तकनीक से जीवित कोशिकाओं के अनुवांशिक कोड को बदल या सुधार कर सकते हैं। जीन एडिटिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन तरीकों से काम करती है। डीएनए के किसी हानिकारक या खराब हिस्से को काटकर अलग करना, किसी विशेष गुण को बढ़ाने के लिए एक नया जीन शामिल करना, किसी खराब हो चुके जीन को सुधार कर उसे नए सही डीएनए में बदलना। इसके लिए वैज्ञानिक मॉलिक्यूलर सीजर्स आणविक कैची यानी विशेष एंजाइमों का उपयोग करते हैं जो डीएनए को सटीक जगह से काटते हैं। आज के समय में क्रिस्पर कैस9 सबसे लोकप्रिय, सटीक और सस्ती जीन एडिटिंग तकनीक मानी जाती है। दोस्तों, इसके जरिए कैंसर, एड्स और कई अनुवांशिक बीमारियों का इलाज खोजने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उपयोग कृषि में भी हो रहा है। फसलों की पैदावार बढ़ाने, उन्हें सूखा रोधी और कीटों से सुरक्षित बनाने के लिए इसका उपयोग हो रहा है। दोस्तों, अब हम सुनते हैं ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, खामोशियां फिल्म से।

0: दोस्तों, अब हम युवा श्रोता एकता द्विवेदी से जानेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कूली शिक्षा में उपयोग के विषय में।
1: नमस्कार, मैं एकता द्विवेदी, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज मैं बताऊंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में। इससे हमारी पढ़ाई और व्यक्तिगत विकास में बहुत मदद हो रही है। स्कूल के बाद घर पर होमवर्क करते समय अगर कोई डाउट हो तो हम एआई टूल्स से किसी भी समय कठिन विषयों को आसान भाषा में समझ सकते हैं। यदि हमारी कोई भाषा कमज़ोर है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश और कुछ को हिंदी समझने में यदि समस्या होती है, उसे एआई की मदद से अपनी स्थानीय भाषा में समझ सकते हैं।

0: 3D विजुअल्स, लाइव परफॉर्मेंस और यहाँ तक कि अपनी साधारण ड्राइंग को खेल खेल में पढ़ सकते हैं। इससे इंटरेस्ट भी बढ़ता है। ये हमारे गणित के सवालों को भी आसान भाषा में समझा देता है। यह हमारा भविष्य है और आने वाले समय में ये दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। एक स्टूडेंट के रूप में हमें इसका यूज़ केवल अपनी जानकारी बढ़ाने और नई चीज़ें सीखने के लिए करना चाहिए, ना कि पूरी तरह हमें इस पर निर्भर होना चाहिए। यदि हम AI का समझदारी से उपयोग करेंगे तो इससे बहुत मदद मिलेगी।
1: दोस्तों, अब हम सुनते हैं ये गीत जिद फिल्म से सुनिधि चौहान और शारिब साबरी की आवाज में।

दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्तंभ रोजगार सूचना की ओर। कैनरा बैंक ने अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 1 अक्टूबर 2026 और आखिरी तिथि 17 अक्टूबर 2026 है। शैक्षणिक योग्यता भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। कुल पद है 3500। न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। अगली भर्ती है बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद के लिए। प्रारंभिक तिथि 10 सितंबर 2026 और आखिरी तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष है। शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर या इंजीनियरिंग की डिग्री। कुल पद है 205। दोस्तों अब सुनते हैं ये गीत अनाड़ी फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है युववाणी, यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

युवा श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5:30 होने को हैं, लेते हैं छोटा सा अंतराल।

0: या काजवानी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: दस लाख की लॉटरी मुझे
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में सौमी फिल्म से। इस गीत के बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

और अब सुनिए बम्बई का बाबू फिल्म का ये नगमा मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में। मसरूर सुल्तानपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई है SD वर्मन ने।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार एकांश का भोपाल का कार्यक्रम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। विशेषज्ञ हैं श्री रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, भेंटकर्ता अभिषेक कटियार।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ यह सफर निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए इन प्रयासों का असर लोगों की जिंदगी में भी दिखाई पड़ता है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक मिसाल से रूबरू करा रहे हैं जहां सरकार की सोच और योजना ने जमीन पर बदलाव की तस्वीर सामने रखी है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, जिसने देश की कई महिलाओं, विशेषकर देश की ग्रामीण अंचलों की महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। श्रोताओं, किसी भी समृद्ध समाज और सशक्त देश का आधार हमारी नारियां ही होती हैं, ये तो हम सब जानते हैं। घर की रसोई में कंडे और लकड़ी के धुएं के बीच काम करती हमारी माताओं बहनों की तकलीफ को दूर करने और उनके जीवन में समृद्धि का नया उजाला लाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के संकल्प के साथ शुरू हुई इस योजना ने न केवल ग्रामीण और गरीब महिलाओं को बीमारियों से मुक्ति दिलाई है, बल्कि उनके समय की बचत कर उन्हें आत्मनिर्भरता की राह भी दिखाई है। इस दूरदर्शी योजना, इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों और मध्य प्रदेश में इसके व्यापक विस्तार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी। रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार अभिषेक जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया।
1: रंजन जी, चर्चा की शुरुआत करते हुए हम बात करते हैं इस योजना के संकल्प

0: स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इसके साथ वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। इस क्रांतिकारी योजना ने ग्रामीण और गरीब महिलाओं की दिनचर्या और उनके जीवन स्तर में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया है।
1: अगर इस योजना को देखें अभिषेक जी, तो एक दशक से ऊपर हो गया
0: जी।
1: मार्च 2016 में योजना लागू हुई थी
0: जी,
1: और मैं तो स्वयं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ अभिषेक जी।
0: जी,
1: मैंने देखा है कि भोजन एक बहुत ही श्रम श्राद्ध
0: जी
1: और बहुत तकलीफ दे चीज हुआ करती थी। कारण है कि धुएं के बीच में रह करके लकड़ी जल रहा है, कोयला हो, उपला हो, उसमें भोजन बनाना, और खासकर जो जिम्मेदारी हमने देखा कि जो हमारा सामाजिक ढांचा है
0: जी,
1: उसमें महिलाएं ही चाहे भोजन बनाती हैं, चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का भोजन हो
0: जी,
1: शाम का चाय हो, रात का भोजन हो
0: जी,
1: तो पूरा उनका दिन भर पूरा का पूरा समय उस धुएं के बीच में उनका बीतता था
0: जी।
1: धीरे धीरे LPG आया, लेकिन LPG का जो विस्तार था वो निम्न वर्ग तक नहीं पहुंच पाया था
0: जी।
1: लेकिन जो वंचित वर्ग है, तो इस ये जो स्कीम आई PM उज्ज्वला योजना, इसने वंचित वर्ग को भी अपने अंदर शामिल किया, और इसके वजह से गांव में, कस्बों में और दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर LPG पहुंचने लगी है। लेकिन अगर केवल हम इसको LPG स्कीम कहेंगे तो गलत होगा
0: जी।
1: LPG स्कीम नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदलने वाला एक स्कीम है, क्योंकि ये महिलाओं की एक शक्ति बचा रहा है, उनको बीमारियों से बचा रहा है, एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है, जिस समय को और स्वास्थ्य को, ऊर्जा को बचाकर अपने कोई नए स्किल डेवलप कर सकती हैं
0: जी,
1: परिवार में अन्य काम में लगा सकती हैं और परिवार को आगे बढ़ा सकती हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो अगर पिछले समय को देखेंगे, जो धुएं की बात हो रही थी
0: जी,
1: और जो उपले की बात हो रही थी, उससे किनारे हट करके, उससे आगे बढ़ करके LPG को घर घर में ले जाकर इस योजना ने पहुंचाया है, जिससे महिलाओं को खासकर राहत मिली है
0: जी।
1: और वो समाज का और समाज के साथ आगे देश के जो GDP है या जो ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है।
0: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, और इसी को देखकर ही जो इस योजना का संकल्प रखा गया है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन अगर होगा तो बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और महिलाएं अपनी उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने स्किल डेवलपमेंट में करेंगी, वो कहीं ना कहीं देश के विकास में योगदान भी दे रही हैं। पारंपरिक लकड़ी और उपले के धुएं से हमारी माताओं बहनों के स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर असर पड़ता था, इसकी अभी हमने चर्चा भी की। केंद्र सरकार की इस पहल से आज करोड़ों घर धुआं मुक्त हुए हैं और उनके स्वास्थ्य तथा दीर्घायु पर एक सुखद प्रभाव पड़ा है, इसको किस प्रकार से देखते हैं?
1: जैसे स्वास्थ्य की बात हुई थी अभिषेक जी, हम लोग लगातार कर रहे हैं और आपने अच्छी योजना अभी शुरू की है, जो सारे स्कीम्स को सामने ला रहे हैं आप
0: जी।
1: तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, लोग पता नहीं होता था, जब खाना उपले से, लकड़ी से, कोयले से बनता है, तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है कि जो हवा में छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स हैं
0: जी,
1: बहुत छोटे, जो कि आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं,
0: माइक्रो कण
1: जी, वो फेफड़ों के जरिए आपके अंदर पहुँच कर ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और श्वसन संबंधी बीमारियों को पैदा करते थे
0: जी।
1: और उसकी वजह से होता क्या है, अगर आपको सांस की बीमारी हो गई
0: जी,
1: तो श्वसन ही तुम्हारे जीवन का आधार है
0: जी।
1: तो अगर वो आपको श्वसन संबंधी समस्या हो गई तो आपको दिक्कत क्या है, आपकी ऊर्जा का ह्रास होगा, आपको अन्य बीमारियां भी होंगी, क्योंकि फेफड़े से तो पूरा आपका ब्लड
0: सर्कुलेट
1: और सर्कुलेट होता है सब कुछ। तो ये जो चीजें थी, पहले इतना अवेयरनेस भी नहीं था और अवेयरनेस का ऑप्शन नहीं था किसी के पास
0: जी।
1: तो खाना तो आपको बनाना ही है, भोजन बनाना ही है, भोजन करना है
0: जी।
1: तो ये जो धुएं से जो मुक्ति मिली महिलाओं को खासकर, उससे ये जो बीमारियों, और इसमें शोध हुआ है, इस शोध बताता है कि जो ब्रांकाइटिस होती थी महिलाओं को खासकर इसकी वजह से, धुएं की वजह से
0: जी,
1: तो LPG के यूज करने के बाद, LPG को यूज करने के बाद उनकी बीमारियों की संख्या में बहुत कमी आई,
0: कमी आई।
1: तो इस तरह से देखा जाए, बीमारी की बात हुई, श्रम की बात हुई, श्रम बढ़ा उनका, ऊर्जा की बात की, स्किल उन्होंने डेवलप किया, तो इस पूरे, अगर आप पूरे उसको देखेंगे तो वाकई क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में आया है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। केंद्र सरकार ने अभी उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत करके इसके नियमों को और भी सरल और सहज बना दिया है, जिसमें बिना किसी कठिन कागजी कार्रवाई के बड़ी आसानी से कनेक्शन मिल रहा है। इस जनहितैषी कदम से देश के प्रवासी परिवारों को भी बहुत बड़ी राहत मिली है, इसको किस प्रकार से देखते हैं?
1: प्रवासी परिवारों को देखते हुए ही इसका विस्तार किया गया
0: जी।
1: जैसे अगर आप कहीं बाहर जाते

0: फिर वही दिक्कत होती है कि आपको एलपीजी आपके पास है नहीं,
1: जी
0: परिवार के पास बच्चे भी रहते हैं आपके साथ, महिलाएं भी होती हैं जो
1: जी
0: जाके श्रम करती हैं बाहर जाके, तो क्या करें आप? फिर बाहर जाके आपको लकड़ी या उपला या
1: जी
0: फिर और किसी चीज़ पे जो पारंपरिक चीज़ें हैं उसको आपको यूज करना पड़ता था, फिर उसी साइकिल में आप फंस जाते थे,
1: जी
0: वही बीमारी वही दिक्कतें।
1: जी
0: तो माइग्रेटेड लेबर्स को भी अब एलपीजी मिल सकता है क्योंकि आपकी आईडी क्रिएट हो गई है, आपके
1: जी
0: पास पूरा कार्ड है
1: जी
0: और कार्ड आप दिखा करके वहाँ पे आप ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो आपको सब्सिडी मिलती है
1: जी
0: 300 रुपये का, वो सीधे खाते में जाता है, तो आप कहीं भी रहें आप खाते में पहुँच जाएगा।
1: जी
0: और अगर मान लीजिए आप 14.2 का जो सिलेंडर होता है उस नहीं आपको लेना है या नहीं मिल रहा है, आपको 5 किलो का सिलेंडर मिल रहा है,
1: जी
0: तो जो आपको सब्सिडी है उसी हिसाब से
1: लेस होके मिल
0: लेसों के
1: जाएगी
0: लिए मिल जाएगा, आपको
1: जी।
0: खाते में जाएगा, तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, कहीं ना कहीं ये प्रवासी मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हो रही है, ताकि उनको उनके दूसरे राज्यों में भी जाकर गैस उपलब्ध हो पा रही है। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों और दूरदराज के गांवों की अगर बात करें, तो वहां तक एलपीजी गैस सिलेंडर की पहुंच को सुनिश्चित करना एक बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि है। कुछ वर्षों पहले हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। राज्य में उज्ज्वला योजना के इस व्यापक विस्तार से हमारी ग्रामीण बहनों के जीवन में कितनी सुगमता आई है।
0: और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आपने बोला है अभिषेक जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में
1: जी
0: देखा जाए तो यहाँ पे 21% से ज़्यादा यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है,
1: जी
0: और उसको ध्यान में देते हुए अगर देखा जाए तो ट्राइबल पॉपुलेशन को, उसमें से काफ़ी जो माइग्रेशन होता है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
1: जी
0: मध्य प्रदेश में योजना लागू हुई वो शहडोल से लागू हुई,
1: जी
0: शहडोल ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है,
1: जी
0: तो एक तरह से देखा जाए तो ट्राइबल के लिए एक तरह से एक सिंबॉलिक था कि देखिए हम आप कितनी चिंता करते हैं सरकार
1: जी
0: के पार्ट पे। देखा
1: जी
0: जाए शहडोल से लागू हुआ, जैसे झाबुआ की बात मैंने की, अलीराजपुर की, धार, जितने भी ट्राइबल एरिया हैं वहाँ से माइग्रेशन होता है, बेहतर ज़िंदगी की तलाश में बाहर जाते हैं पैसे कमाने, फिर आप खेती करते हैं फिर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश को, और जो आपने बात की कुछ समय पहले तक गाँव गाँव में नेटवर्क सोचा भी नहीं जा सकता था,
1: जी
0: लेकिन चूंकि उज्ज्वला आ गया,
1: जी
0: आपको सिलेंडर देना है तो जो एजेंसी के लोग हैं
1: जी
0: वो खुद चाहते हैं कि वहाँ जा गांव में अपना नेटवर्क स्थापित करें,
1: जी
0: तो गाड़ियों से वो लोग घर पे सप्लाई करते हैं।
1: जी
0: पहले सोचते थे कि कौन जाए गांव में,
1: जी
0: हमारा नेटवर्क क्यों हो वहाँ पे, पैसे
1: जी
0: खर्चा करना पड़ेगा,
1: जी
0: लेकिन चूंकि एलपीजी जा रहा वहाँ पे
1: जी
0: उज्ज्वला की वजह से
1: जी
0: तो नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं लोग वहाँ पे,
1: जी
0: ये बड़ी अच्छी बात हुई है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, कहीं ना कहीं इससे उनके गांव तक पहुंच भी कंपनियों की पड़ी और कंपनियों के ग्राहक भी बढ़े। केंद्र सरकार की कई सारी योजनाओं की सफलता में जो एक बहुत बड़ी भूमिका है वो डीबीटी की है, यानी प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण। सीधे जो भी सब्सिडी या छूट की रकम है बिना किसी बिचौलिए के सीधे हितग्राहियों के खातों में भेजी जाती है। उज्ज्वला योजना की सफलता में इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। इस पारदर्शी व्यवस्था को किस प्रकार से देखते हैं?
0: जैसा कि मैंने बताया अभिषेक जी, सबसे अच्छी बात है कि डीबीटी है,
1: जी
0: आपको जो भी सब्सिडी मिलना है
1: जी
0: आपके खाते में आ जाता है, आप जो भी आप व्यवहार करते हैं एजेंसी से वो पैसा दिया आपने, तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि जो पैसा आपको सब्सिडी मिलना है उसके बीच में कोई है,
1: जी
0: और ये सुनिश्चित है कि आपको सुनिश्चित स्कीम सुनिश्चित करती है कि आप खाते में पैसा आएगा। और जैसे मैंने एक और चीज़ बताया था कि आपके पास अगर आपको नहीं अवेलेबिलिटी दिख रही है बड़े सिलेंडर की 14.2 किलो वाली, तो आप
1: जी
0: छोटा भी ले सकते हैं, ले सब्सिडी उसी हिसाब से भी आपके खाते में आएगी,
1: जी
0: तो एक अच्छी बात है। और एक और अच्छी चीज़ बात हुई है डीबीटी की वजह से, कहें लोगों में भरोसा बढ़ा है स्कीम में कि
1: जी
0: नहीं ठीक है पैसा आ रहा है, हमें कम पैसा देना पड़ रहा है स्कीम के
1: जी
0: लिए, उनको स्वास्थ्य लाभ तो हो ही रहा है।
1: जी
0: और दूसरी बात है कि जो स्कीम की जो व्यापकता बढ़ी उसमें तक सरकार ने साथ में भी प्रयास किया कि आपने स्कीम तो ले लिया
1: जी
0: लेकिन रिफिल तो करवाइए,
1: जी
0: भाई आप रिफिल नहीं करवाएंगे तो स्कीम की सफलता कैसे होगी, फिर
1: जी
0: आप उसी साइकिल में फंस जाएंगे।
1: जी
0: तो अभी जो बाद में एक सर्वे हुआ था 2019 और 2020 में,
1: जी
0: उसमें देखा गया कि जो 3 रिफिल लोग भरवाते थे
1: जी
0: उसकी संख्या बढ़ के 4.47 हो गया, अब 5 मान लीजिए,
1: जी
0: तो रिफिल संख्या बढ़ी है,
1: जी
0: मतलब लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है स्वास्थ्य के प्रति और अपने भोजन के प्रति भी,
1: जी
0: और जो टाइम बचता है,
1: जी
0: और जो सरकार की स्कीम है कि जहां आप हैं वहीं पे आपको स्वच्छ रसोई मिल रही है,
1: जी
0: तो इसको देखते हुए स्कीम की व्यापकता उसकी उपयोगिता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
1: अगला सवाल है मेरा, सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए एलपीजी पंचायतों और अभियानों का ग्रामीण महिलाओं में कितना नया आत्मविश्वास आया है कि वे आज पूरी सुरक्षा के साथ आधुनिक रसोई अपना रही हैं?
0: नहीं, उसका इंटेग्रल पार्ट है।
1: जी
0: देखिए हम लोग तो चूंकि सब LPG यूज करते हैं
1: जी,
0: तो कोई भी स्कीम अगर हो या कोई भी चीज़, कोई फैसिलिटी अगर हम यूज कर रहे हैं तो साथ में कई चीज़ें जुड़ी होती हैं
1: जी।
0: तो आपने देखा होगा कि घर में भी हम चेक करते हैं कि जहाँ पे सिलेंडर रखा है लीकेज तो नहीं हो रहा है, पाइप है पुराना तो नहीं हो गया है, उसमें तो लीकेज नहीं हो गया है, कहीं किसी चूहे ने काट तो नहीं लिया है
1: जी,
0: गंध कैसी आ रही है
1: जी।
0: तो उसको जो इसकी बात हुई है LPG पंचायत इसको नाम दिया गया है, उसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए है
1: जी।
0: और दूसरी बात एक और चीज़ है, ये गैस के उपयोग के साथ साथ गैस कैसे उपयोग करें, LPG कैसे उपयोग करें कि कम ऊर्जा में हम ज़्यादा उसका
1: यूज कर पाए
0: उसका लाभ ले पाए
1: जी।
0: क्योंकि आप लगातार गैस यूज कर रहे हैं और खर्च ज़्यादा हो रहा है, उसका आउटपुट कम हो रहा है
1: जी।
0: तो उसमें गैस से संबंधित LPG संबंधित जितनी चीज़ें हैं, उसका लीकेज है, रख रखाव है, उसका पाइप है, नाब है,
1: किस प्रकार के बर्तन अप्लाई करें,
0: स्टोव है, कैसे बर्तन यूज करें, हर प्रोग्राम को कवर करता है, हर एस्पेक्ट कवर करता है। तो इसलिए LPG पंचायत इसका नाम दिया गया, बड़ा अच्छा नाम है
1: जी।
0: और ये महिलाओं में काफी जागरूकता पैदा कर रहा है और उसका इंटेग्रल पार्ट है
1: जी।
0: और मुझे लगता है कि आगे लगातार ये चलता रहेगा और इससे महिलाएं भी लाभान्वित होंगी, सभी लोग लाभान्वित होंगे।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अब हम अपनी चर्चा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा बड़े ही संक्षेप में हम अब इस चर्चा को समाप्त करें। पेड़ों की कटाई में कमी और लकड़ी का उपयोग बंद होने से ये योजना पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन घटाने में भी मील का पत्थर साबित हुई है। अभी तक ये पूरे वैश्विक छवि बनी हुई थी कुछ वर्षों पहले कि भारत जो है कार्बन उत्सर्जन में काफ़ी आगे है और पूरी दुनिया में काफ़ी बड़ा योगदान देता है कार्बन उत्सर्जन के लिए, लेकिन ऐसी योजनाओं के माध्यम से हम कार्बन उत्सर्जन को लगातार घटा रहे हैं और केंद्र सरकार के जो ग्रीन इंडिया का संकल्प है वो इस योजना के माध्यम से एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, इसको किस प्रकार से देखते हैं सर?
0: जो एक स्टडी 2018 में हुई थी जब ये स्कीम 2016 में चालू हुआ था
1: जी,
0: तो देखा गया कि करीब 18.5 से लेकर के 33.5 लाख टन
1: जी
0: जो एमिशन है CO2 का
1: जी
0: वो कम हुआ है। उसमें दो कारण है, LPG तो वही है, धुएं से मुक्ति मिली है, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है
1: जी।
0: उसका पेड़ों कटाई जाहिर रकम हुई है और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है अभिषेक जी 2025 का जो सर्वे है वो बताता है कि LPG का यूज बढ़ा है पूरे भारत में। और जो फायरवुड है जिसको हम लकड़ी बोलते हैं, जलने वाले जो ईंधन में यूज करते हैं
1: जी,
0: वो 5% के आसपास कम हुआ है। तो जब साफ फिगर दिख रहा है और जो आंकड़े दिखा रहे हैं, स्टडी दिखा रही है, उसमें साफ दिखा रहा है इन्वायरमेंट हमारा लाभान्वित हुआ है
1: जी।
0: अगर इन्वायरमेंट ठीक है तो हम ठीक हैं
1: जी,
0: तो इन्वायरमेंट को हम बचा रहे हैं, इन्वायरमेंट हमें बचा रहा है
1: जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। महिला सशक्तिकरण और नारी सम्मान को केंद्र में रखकर बनाई गई उज्ज्वला योजना ने भारत के ग्रामीण सामाजिक परिदृश्य को बदलने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक सार्थक चर्चा हुई निश्चित रूप से। रंजन जी आपने बहुत ही गहराई और स्पष्टता से बताया कि किस प्रकार उज्ज्वला योजना केवल एक गैस कनेक्शन देने की योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत में नारी सम्मान, बेहतर स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी क्रांति बन चुकी है। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हमें अपना मूल्यवान समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और श्रोताओं इसी के साथ आज का यह विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नारी सम्मान स्वास्थ्य और समृद्धि का आधार यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल का कार्यक्रम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। विशेषज्ञ थे श्री रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, भेंटकर्ता थे अभिषेक खटियार। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर

0: दम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 5:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
5: पेश इस घंटे की खास खबरें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज भोपाल में डेयरी और सहकारिता क्षेत्र की कई परियोजनाओं का शुभारंभ और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि हम मध्य प्रदेश को पूर्णतः नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश को मादक पदार्थों के जाल से पूरी तरह मुक्त करने के लिए आज हम एक सूक्ष्म एवं ठोस कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। प्रदेश में नागरिकों को शासकीय सेवाएं उनके गांव और वार्ड स्तर पर सहज पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन आज से शुरू हो गया। किसान 17 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत, सहकारी समितियों और सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन करा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भूमिका निभाई है। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला थम गया है, लेकिन दिन में गर्मी और रात में ठंडक का असर एक साथ महसूस हो रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
4: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। नीचे सुनिए यशदास की आवाज में सुनैना फिल्म का ये नगमा। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

परवरिश, लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा, जिसे आवाजें दी हैं आशा भोंसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अब सुनिए जानी दुश्मन फिल्म का ये गीत। वर्मा मलिक के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

और अब सुनिए मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर, आशा भोसले, महेंद्र कपूर की, गीत अनजान का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

बप्पी लहरी की आवाज़ में आप सुनिए कॉलेज गर्ल फिल्म का ये गीत। शिव कुमार सरोज के लिखे गीत की धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यही कार्यक्रम आप 7:15 भी सुन सकेंगे। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
2: प्रिय मित्रों, आज के इस वर्तमान युग में मनुष्य प्रतिदिन बहुत से कार्यों को करता है और उसके जीवन में वो इतना व्यस्त होता है कि हर दिन उसके पास कोई ना कोई काम करने के लिए होता है। वो मेहनत करता है, प्रयास करता है और अपने जीवन में वो थक भी जाता है। हम सभी कभी ना कभी अपने जीवन में आलस्य का अनुभव करते हैं। कई बार हम जानते हैं कि कोई काम हमें करना चाहिए लेकिन फिर भी उसे हम टालते रहते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में उस काम को नहीं करना चाहते हैं। आलस्य ऐसा ही होता है। न्यूटन का एक गति का नियम है और ये नियम इस बात को बताता है कि जो वस्तु रुकी हुई है वह रुकी रहना चाहती है और जो वस्तु चल रही है वह चलती रहना चाहती है, जब तक कोई बाहरी शक्ति उसे बदलने के लिए मजबूर ना करे। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। कुछ लोग अपने काम को शुरू करने और पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं लेकिन कुछ लोग काम को शुरू करने में कठिनाई महसूस करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। आलस्य धीरे धीरे हमारी आदत और जीवन शैली बन सकता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को आलस्य के इस प्रलोभन से सावधान रहना चाहिए और अपने समय, जिम्मेदारियों और जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हम आलस्य के बारे में बात करेंगे और कैसे हम आलस्य को अपने जीवन से

जीवन में बहुत ही अधिक आरामदायक स्थिति में रहना पसंद करते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि चीजें जिस तरह चल रही हैं उसमें कोई बदलाव हो। जी हाँ दोस्तों, ये होता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन यानी कि आरामदायक स्थिति। आरामदायक स्थिति एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कभी कोई विकास नहीं हो सकता। जो काम आप हमेशा करते आए हैं वही करना आसान होता है, लेकिन इससे आपको वह विकास नहीं मिल पाता जिसकी आप इच्छा रखते हैं। विकास के लिए आवश्यकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कठिन कार्य को करने का प्रयास करें। आलस्य हमारे जीवन में बहुत सी कमियों को लेकर आती है। आलस्य हमारे शारीरिक जीवन पर प्रभाव डालती है। शारीरिक जीवन के साथ साथ ये हमारे आर्थिक जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। जो लोग आलस्य छोड़ देते हैं उन्हें अच्छी सेहत के साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिलता है। यदि मनुष्य आलसी है तो उसे अपने जीवन में बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है। एक बार एक धनी व्यक्ति था और ये धनी व्यक्ति बहुत ही आलसी था। उसने हर काम करने के लिए नौकर रखे हुए थे। वह दिन भर पलंग पर पड़ा रहता था और आराम करता था, खाता पीता था और सोता था। शारीरिक मेहनत ना होने की वजह से धीरे धीरे उसका मोटापा बढ़ने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। मोटापे के साथ उसे कई बीमारियां भी हो गई, सेहत खराब होने लगी। घर के नौकरों को भी मालूम था कि मालिक आलसी है, बिस्तर पर पड़ा रहता है और खाता है, पीता है, सोता है, तो उन्होंने भी बेईमानी करना शुरू कर दिया। अब उस धनी आदमी को स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था, क्योंकि ये धनी व्यक्ति अपने उन नौकरों पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन उसका दोस्त मिलने के लिए आया। घर आया दोस्त जानता था कि व्यक्ति बहुत आलसी है। उसने देखा कि धनी सेठ बीमार है और उस सेठ ने मित्र से इन परेशानियों को दूर होने का उपाय पूछा। मित्र बहुत समझदार था। उसने कहा कि उपाय तो है, लेकिन तुम वह कर पाओगे या नहीं? सेठ बोला कि मैं ठीक होने के लिए कुछ भी करूंगा, तुम बस मुझे उपाय बताओ। मित्र ने कहा कि रोज सुबह अपने गांव में एक सुनहरा पक्षी आता है, तुम्हें रोज सुबह उसके दर्शन करना है। उसके दर्शन करने से तुम्हारी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। अगले दिन ये धनी व्यक्ति सुबह उठता है और उस पक्षी को देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस दिन उसे वह सुनहरा पक्षी नहीं दिखाई दिया। अगले दिन सुबह सेठ फिर उठा और उस पक्षी को देखने के लिए आगे बढ़ा और उस पक्षी को खोजने लगा। अब रोज सेठ सुबह सुबह जल्दी उठकर पक्षी को खोजने के लिए निकल पड़ता था। सुबह जल्दी उठने और बाहर जाने से उसकी शारीरिक मेहनत से उसकी सेहत सुधरने लगी। नौकर भी सेठ को देखकर ईमानदारी से काम करने लगे थे। इस तरह सेठ का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक होती चली गई, क्योंकि अब उसके नौकर पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को कर रहे थे। एक दिन सेठ का मित्र वापस मिलने के लिए आया तो सेठ ने कहा कि मित्र, तुमने जो कहा था कि वह सुनहरा पक्षी रोज गांव में आता है, मैं कई दिनों से रोज उसको देखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया। मित्र ने कहा कि जब से तुमने सुबह उठकर घूमना शुरू किया है तुम्हारी सेहत ठीक हो गई है और नौकर भी ईमानदारी से काम करने लगे हैं, तुम्हारी जीवन शैली सुधर गई है और तुम्हें आर्थिक नुकसान भी नहीं उठाना पड़ रहा, यानी कि अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई है। यही वह सुनहरा पक्षी है जिसने तुम्हारा जीवन बदल दिया है। प्रिय मित्रों, आपका आरामदायक क्षेत्र ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, आरामदायक क्षेत्र एक सुंदर स्थान है, लेकिन वहां कभी कोई विकास नहीं होता। आरामदायक क्षेत्र आपको सुरक्षित तो महसूस करा सकता है, लेकिन वह आपकी प्रगति को रोक देता है। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी क्षमता को पहचानना चाहते हैं, तो आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक विकास हमेशा सुविधा से नहीं बल्कि संघर्ष और साहस से जन्म लेता है। ये कंफर्ट जोन यानी कि आरामदायक स्थिति वह स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित, सहज और तनाव मुक्त महसूस करता है। यहां कोई बड़ा जोखिम नहीं होता और सब कुछ परिचित होता है, लेकिन यही सुविधा धीरे धीरे व्यक्ति की प्रगति को रोक देती है। यदि हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी केवल उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितना परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक हो। एक कर्मचारी नए जिम्मेदारियों को लेने से डरता है। एक व्यापारी नए काम को शुरू करने से डरता है।
इन सभी स्थितियों में व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन

0: में रह रहा होता है। लेकिन ये आरामदायक स्थिति हमारा शत्रु कैसे है? ये हमारी क्षमता को सीमित कर देती है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रतिभाएं और योग्यताएं दी हैं। जब हम केवल आसान कार्य करते हैं तो हमारी वास्तविक क्षमता कभी सामने नहीं आती। ये हमें परिवर्तन से डरना सिखाती है। नई परिस्थितियां हमें असहज महसूस कराती है, इसलिए हम पुराने तरीकों को भी अपनाए रखते हैं, जबकि विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। ये आलस्य और टालमटोल को बढ़ावा देता है। जब सब कुछ आरामदायक लगता है तो हम कठिन निर्णय लेने और मेहनत करने से बचने लगते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। ये सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। नई बातें सीखने के लिए गलतियां करनी पड़ती हैं। लेकिन आरामदायक स्थिति हमें गलतियों से बचाता है, लेकिन उसी के साथ सीखने के अवसर भी छीन लेता है। लेकिन प्रश्न यह है कि विकास कहाँ होता है? वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। नया कौशल सीखना, लोगों के सामने बोलना, कठिन परिस्थितियों में खड़े रहना, कठिन जिम्मेदारियों को स्वीकार करना, असफल होने के डर के बावजूद प्रयास करते रहना और ईश्वर पर विश्वास रखना। शुरुआत में ये सब कठिन लगते हैं, लेकिन यही अनुभव हमें मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। किसी ने कहा है, आलसी हाथ निर्धनता लाते हैं परंतु परिश्रमी हाथ समृद्धि लाते हैं। इसका अर्थ केवल आर्थिक गरीबी ही नहीं है। आलसी व्यक्ति अवसरों को खो देता है, अपने कार्य को टालता रहता है और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं निभाता, और इसका परिणाम यही होता है कि वह आर्थिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक रूप से भी पीछे रह सकता है। परंतु परिश्रमी हाथ समृद्धि लाते हैं। परिश्रमी व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी, लगन और समय पर पूरा कर लेता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे उन्नति करता है, लोगों का विश्वास जीतता है और ईश्वर की दी हुई योग्यताओं का सही उपयोग करता है। यहाँ समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि सम्मान, सफलता, स्थिरता और ईश्वर के द्वारा मिलने वाली वो आशीषें हैं जो ईश्वर ने मनुष्य के लिए रखी हैं। इस पूरे अंश में हम इस बात को देखते हैं कि आलसी व्यक्ति के स्वभाव का बहुत ही प्रभावशाली और कभी कभी हास्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है। एक और कहावत है और उसमें कहा गया है, आलसी कहता है मार्ग में सिंह है। वास्तव में वो एक बहाना बना रहा है। हो सकता है कि मार्ग में कोई सिंह ना हो, लेकिन आलसी व्यक्ति काम पर जाने या अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए काल्पनिक खतरों का बहाना बनाने लगता है। आज के समय में ऐसे बहाने हो सकते हैं, जैसे कि अभी सही समय नहीं है, मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते, अगर मैं असफल हो गया तो कल से शुरू करूंगा। प्रिय श्रोताओं, आलस्य अक्सर डर या बहानों के पीछे छिपा होता है। लेकिन आलस्य से बचने के लिए हम अपने जीवन में क्या करें? सबसे पहली चीज, बहाने बनाने की बजाय हम पहला कदम उठाएं। छोटे छोटे कार्यों को भी समय पर पूरा करने की आदत डालें। कठिनाइयों को अवसर समझिए, रुकावट नहीं। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको अनुशासन, परिश्रम और विश्वास योग्यता का जीवन जीने की सामर्थ्य दे। प्रतिदिन ऐसा कार्य करें जो आपको थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगे। असफलता से डरने की बजाय उससे सीखें। नए अवसरों के लिए हाँ कहना सीखें। याद रखिए, असुविधा अक्सर विकास की शुरुआत होती है। जहाँ सुविधा प्राप्त होती है वहीं से विकास आरंभ होता है। विश्वास आपको वहां ले जाता है जहाँ आराम कभी नहीं ले जा सकता। जब हम अपने जीवन में उस आरामदायक स्थिति से बाहर निकलते हैं, तभी हमारा चरित्र, विश्वास और क्षमता विकसित होती है। प्रिय श्रोताओं, आलस्य को दूर करने का तरीका तभी समझ आ सकता है जब पहले हम इस बात को समझ लेंगे कि हम आलसी क्यों हो रहे हैं। तो किस प्रकार से हम उन आदतों को बदल सकते हैं और आलस्य को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं? पहली चीज, ऐसे लक्ष्य बनाएं जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। लक्ष्य हमेशा यह समझने में मदद करते हैं कि हमें क्या हासिल करना है और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। इसलिए शुरुआत में एक या दो छोटे और स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। उसी प्रकार से धैर्य और दृढ़ता विकसित करें। जीवन में सफल लोग हमेशा प्रेरित महसूस नहीं करते हैं। कई बार उनका भी मन काम करने का नहीं होता है, लेकिन वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। इसे दृढ़ता कहा जा सकता है। अर्थात किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए कठिनाइयों के बावजूद लगातार प्रयास करते रहें। इसे विकसित करने के लिए अपने काम में रुचि खोजिए, नियमित अभ्यास कीजिए और छोटी छोटी आदतों को लगातार दोहराएं। जब हम किसी अच्छे काम को नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे वह हमारी आदत बन जाता है। और अंतिम चीज, अपने समय और ऊर्जा में संतुलन बनाए रखें। हमारे पास समय तो सीमित है लेकिन हमारी ऊर्जा भी सीमित है। जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं और आराम, नींद, व्यायाम और सही भोजन को नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे थकान और तनाव बढ़ने लगता है। इसलिए प्रोडक्टिव यानी अच्छा और प्रभावी जीवन जीने के लिए केवल समय का प्रबंध करना पर्याप्त नहीं होता है, अपनी ऊर्जा का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रिय श्रोताओं, इस तरीके से हम अपने जीवन में आलस्य को दूर कर सकते हैं और एक अलग ही एनर्जी अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप भी अपने विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमें लिख सकते हैं।
1: अब हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फ़ोन नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827। तो आप मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर का गाया हुआ घर फिल्म का ये गीत। गुलजार के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है राहुल देव फरमन ने।

और अब सुनिए कॉलेज गर्ल फिल्म का ये नगमा बप्पी लहरी की आवाज में, संगीत बप्पी लहरी का और गीत शिव कुमार सरोज का।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रसारण तक प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12,22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और वर्ष 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक

0: पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीय नागरिकों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ईरान विवाद समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम की कीमतें कम हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण, 97 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता। वहीं अंतिम पंघाल ने महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 352 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज की इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। पहले 7:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8 बजे सुनिएगा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:35 पर और 10:20 पर। रात 9:30 बजे साहित्य भारती कार्यक्रम और 10 बजे एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम और अब नज़र डालते हैं कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। पहले सुनिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। आपकी फरमाइश प्रसारित किया जाएगा कल दोपहर 12 बजे। 12:30 बजे संग्रहालय के अंतर्गत सुनिएगा मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति क्रम में तीसरा भाग। कल दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 बजे लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत और 5:02 पर युववाणी। ये चारों ही कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। 2:30 बजे सुनिएगा बच्चों का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुना जा सकेगा कल 5:33 पर, 6 बजे, रात 8 बजे और 8:35 पर। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत 7:30 बजे से आप सुन सकेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय है रबी फसलों की तैयारी एवं कृषि समसामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर रतनदीप सोनी। कल रात 9:30 बजे रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। 8:15 बजे सुनिएगा कार्यक्रम डगर विकास की, ये कार्यक्रम आकाशवाणी सागर की प्रस्तुति है। विषय रहेगा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। कल रात 10 बजे एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएंगी। 10:20 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में कल सुबह 8:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे रफीक खान का वायलिन वादन। 9:30 बजे सुनिएगा सिंधियत जी सुरहाण कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे मनोज कृपलानी का काव्य पाठ, साथ ही सुनिएगा चर्चा और सिंधी गीत। कल सुबह 10 बजे प्रसारित होगी जिले की चिट्ठी और 10:05 पर सामुदायिक गान शिक्षण पाठ में हम आपको सुनवाएंगे संस्कृत गीत, रचना होगी डीवी कृष्ण शास्त्री की और 10:30 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में डेयरी और सहकारिता क्षेत्र की कई परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी के लिए प्रदेश में ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन आज से शुरू। सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार के तहत कल नगरीय क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। और एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में डेयरी और सहकारिता क्षेत्र की कई परियोजनाओं का शुभारंभ और भूमि पूजन किया। इस दौरान सिंगल क्लिक से उज्जैन में 255 करोड़ की लागत से 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट का भूमि पूजन, भोपाल में डेयरी प्रोडक्ट प्लांट, अत्याधुनिक प्रयोगशाला और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट के सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि श्वेत क्रांति 2

0: के अंतर्गत देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 75,000 नई डेयरियां स्थापित की जाएंगी, जिनमें सबसे अधिक डेयरियां मध्य प्रदेश में स्थापित होंगी।
1: हमने श्वेत क्रांति 2 की शुरुआत की है। इसमें हम नई 75,000 सहकारी डेयरियां गांवों में बनाएंगे और 46,000 डेयरियों को मजबूत करेंगे। 75,000 नई डेयरियां बनाने में सबसे ज्यादा डेयरी मेरे मध्य प्रदेश में बनने वाली है।
0: उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2029 के बाद प्रदेश में नशे के लिए जगह नहीं होगी और राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए विस्तृत योजना पर काम किया जा रहा है।
1: हम मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाना कर माताओं को कहने आया हूं, 2029-31 दिसंबर के बाद आपके बेटे बेटी के लिए मध्य प्रदेश में नशे की जगह ही नहीं होगी, उनका उज्जवल भविष्य होने वाला।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत चयनित वृंदावन ग्रामों में पशुपालकों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्कृष्ट पशुपालक को 1,00,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
2: प्रत्येक विकास खंड में चयनित वृंदावन ग्राम में पशुओं की प्रतियोगिता कराई जाएगी। जो अच्छा पशुपालक है 1,00,000, उसके बाद दूसरे वाले को 50,000, उसके बाद तीसरे वालों को 25,000, ये 313 ही ब्लॉक के अंदर ये प्रतियोगिता कराई जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण 2014 में आज ही के दिन विजयादशमी के अवसर पर हुआ था। हाल ही में मन की बात का 138वां एपिसोड प्रसारित किया गया। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देशभर के ऐसे लोगों की प्रेरक कहानियां साझा करते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव ला रहे हैं। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर किया जाता है। प्रदेश में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन आज से शुरू हो गया। किसान 17 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत, सहकारी समितियों और सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन करा सकेंगे, जबकि एमपी ऑनलाइन और सीएससी से अधिकतम ₹50 शुल्क देकर पंजीयन की सुविधा भी रहेगी। अब समाचारों, वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: प्रदेश में नागरिकों को शासकीय सेवाएं उनके गांव और वार्ड स्तर पर सहज, पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार का आज ग्रामीण क्षेत्रों में विकासखंड स्तर पर आयोजन किया गया। कल नगरीय क्षेत्रों में वार्ड एवं जोन स्तर पर मेगा सेवा सेतु शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर किसानों, ग्रामीणों, श्रमिकों, महिलाओं, वंचितों एवं कमजोर वर्ग को विभिन्न शासकीय कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता से मुक्त करना है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा है कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य के प्रति सजग और जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। आज भोपाल के मिसरूद में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का मूल ध्येय जनसेवा के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं पहुँचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ ये सफर निरंतर जारी है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे ग्वालियर सहित देश भर में बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे सुधारों के बारे में। तो आइए और अधिक जानते हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता नवीन श्रीवास्तव से।
4: ग्वालियर सहित देश भर में एनपीए में रिकॉर्ड गिरावट और बैंकिंग सुधारों का असर साफ देखा जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्टों के अनुसार देश के बैंकिंग सेक्टर में पिछले 5 वर्षों में एनपीए में 50% से अधिक गिरावट दर्ज की गई है। जून जुलाई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकों का ग्रॉस एनपीए घटकर 1.8% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। बैंकिंग क्षेत्र में कड़े रिकवरी नियमों और ऋण मूल्यांकन सुधारों के कारण सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बैंकों की स्थिति मजबूत हुई है। मध्य प्रदेश और ग्वालियर क्षेत्र में सक्रिय बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट NPA देश में सबसे कम 0.13% दर्ज किया गया है। NPA कम होने के कारण ग्वालियर के स्थानीय

0: सराफे व्यापारियों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लोन प्रवाह में सुधार हुआ है। प्रादेशिक समाचार के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव।
1: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि भारत को ऐसे पूंजी बाजार की जरूरत है जो पूंजी जुटाने, जोखिम का प्रबंधन करने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में सक्षम हो। नई दिल्ली में आज कमोडिटी और कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 12वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS की शुरुआत के बाद नियामक डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी के दिन सेटलमेंट प्राइस तय करने में जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर रहा है। एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट में आज खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत के दिए 212 रनों के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की टीम 192 रन ही बना सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 के एशियाई खेलों में अपना खिताब बरकरार रखने पर पुरुष क्रिकेट टीम को बधाई दी है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला थमने के साथ ही दिन में गर्मी और रात में ठंडक का असर एक साथ महसूस हो रहा है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे चला गया है, जबकि बड़वानी और धार समेत कुछ इलाकों में दिन का तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा मेरा योगदान थीम पर विभिन्न सेवा एवं जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। गुना जिले में आज मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान एवं सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री जन विश्वास एवं सेवा संकल्प अभियान के तहत आगरमालवा जिले के ग्राम पालखेड़ी में आज आयोजित शिविर में 137 ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हुआ। रायसेन में होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन और मेरा युवा भारत के संयुक्त तत्वावधान में आज 7 दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। मुरैना जिले के सभी विकासखंडों में शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए सेवा सेतु अभियान के तहत शिविर लगाए गए। खंडवा जिले के हरसूद में वीरांगना रानी दुर्गावती एवं गोंडवाना साम्राज्य की ऐतिहासिक गौरव यात्रा का आयोजन 3 से 5 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी सुनबे वाले हमारे सभी किसान भैया बहनों को महेश भैया की राम राम। भैया रहूं, आज हम किसान वाणी कार्यक्रम लेखो हाजिर भए हैं और सबसे पहले तो हम आप भरों को बता दें कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह चल रहा है और जो सप्ताह बड़ो महत्वपूर्ण है। कैसे कि हमारे जो वन्य जीव है बिनको संरक्षण, बिनको संवर्धन, बिनको दाना पानी, बिनको रहवास और बिनकी सुरक्षा, ये सभी चीज़न को हमें ध्यान रखनो है और इके लाने हमें कोशिश ये करनो है कि हमारे वन्य जीव जहाँ जहाँ हैं उन्हें बढ़िया संचरण की जगह मिले, बढ़िया वे चहलकदमी करते हुए पूरे जंगल में घूमें फिरें खाएं पिए और हाँ कोशिश जो करें कि बिनकी सुरक्षा को दायित्व भी हमारा है। इके लाने जो है अगर कहूँ ऐसी गतिविधि आपको दिखाई दें कि बिन से जो है नुकसान हो रहा है हमारे वन्य जीवों को, तो कोशिश करें कि जो है वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके। और जब हम जो है पहल कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी कर रहे हैं, है ना, तो हम कोशिश जो ही करें कैसे कि धीरे

0: अब भैया देखो, लोकगीत तो आपने सुन लो है नहीं, और अब हमारा मन जो करो है कि कछु ऐसी बातचीत आपको सुनवाई जाए, इससे आपको लगे कि हमारे जो प्रगतिशील किसान भाई हैं, वे भी जो है खेती किसानी में दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं। और देखो, जब बढ़िया बातचीत है, कृषि विज्ञान केंद्र देवास में स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित जब बातचीत है, हमारे मनोज सक्सेना भैया ने जो है बातचीत करी है, ये प्रगतिशील किसान है जगदीश नागर, इनसे बागवानी फसलों से भरपूर आय ई विषय पर बातचीत करी है। तो अपन सभी मिलकर सुनते हैं कैसे कि जो प्रगतिशील कृषक है भी जो है अपनी जब बातें बताते हैं तो दूसरे किसान भैयारों के लाने वो एक तरह से जो है नज़ीर बन जाते हैं, मिसाल बन जाते हैं, कैसे कि ये ही किसान भाई हैं जो खेती किसानी में नित नए प्रयोग करते हैं और प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं। तो सुनते हैं जगदीश नागर से मनोज सक्सेना की जब बातचीत।
1: किसान भाइयों, हम एक सफल किसान से बात करने जा रहे हैं जो देवास जिले के हैं। आपका नाम है जगदीश नागर। जगदीश जी,

0: आपका बहुत बहुत स्वागत
1: नमस्ते,
0: है।
1: नमस्ते सर।
0: उद्यानिकी की फसलें लगा के किसान किस तरीके से बहुत अधिक लाभ कमा सकता है?
1: मैं हमारे देश के किसानों से यही कहना चाहता हूँ, अगर हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे तो परंपरागत खेती को छोड़कर खेती को विधिकरण उन्नत खेती के लिए हमको उद्यानिकी में प्रवेश करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। उद्यानिकी फसल एक ऐसी फसल है जो हमेशा किसान को एक नगद और अच्छा दाम मिलता है, चाहे उसके पास एक बहुत बड़ी मोटी खेती ना हो, छोटी खेती हो। मेरे जीवन में मैंने जो अपनाया है अपने जीवन में अपना निजी तौर पर, उसको मैं प्रैक्टिकल के अनुरूप आपके माध्यम से मेरे देश के किसानों को बताना चाहता हूँ कि वो भी मेरे जैसे सक्षम बने और अच्छे से किसानों को हम बताएं।
0: आज जैसे आपके बारे में कहा जाता है कि आप फूलों की खेती बहुत अच्छे व्यापक पैमाने पे कर रहे हैं।
1: जी जी।
0: फूलों की खेती करने का आपके मन में जो एक विचार आया,
1: जी,
0: वो क्यों आया और शुरुआत कैसे करी और इस समय कौन से फूल आप लगा रहे हैं?
1: सर, सबसे पहले तो क्या है कि जब हम खेती करते हैं
0: जी,
1: कोई सी भी उद्यानिकी की, तो हमारे जिस एरिया रहती है, मेरी खेती सबसे पहले बता दूं सर कि ड्रिप और मल्चिंग की खेती है पूरी खेती।
0: वाह।
1: ड्रिप मल्चिंग की खेती से हमको ये फायदा है कि अभी जैसे मैं आया हूँ, वहाँ ड्रिप चल रही है, खाद भी चल रहा है, पानी भी चल रहा है, चाहे वहाँ नहीं रहेंगे हमको मालूम है इस खेत में हमको 2 घंटे चलाना, 1 घंटे चलाना, और उससे खेती में लागत कम आएगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा, पानी की बचत होगा, समय की भी बचत होगा। हमने जब सर मैं अब गेंदे की खेती बताई, मेरे जब आलू खेत से निकाले, मैंने आलू निकालने के बाद तुरंत खेत को मैंने अच्छा हाक जोत कर बेड बनाया, बेड में ड्रिप मल्चिंग लगाई, ड्रिप मल्चिंग से मैंने उसमें सर गर्मी में खीरा लगाया, हाँ खीरा ककड़ी लगाया, और खीरा ककड़ी की उम्र है 2 महीने, 1 महीने 32 दिन में, आज हमने 20 का उसका ट्रांसफर की चौपाई की है, तो हम 32-35 दिन में मार्केट में खीरा बेचना चालू कर देते हैं, और मात्र खीरा 1 बीघे में हम 100 क्विंटल खीरा निकाल देते हैं, और औसतन उसका भाव अगर हमको 15 रुपये मिलता है तो हमको 1 बीघे में 1.5 लाख की खेती हो जाती, हम उसमें 50,000 अगर खर्चा भी काट देंगे तो 1 लाख रुपये हमको उसका शुद्ध मुनाफा मिल जाएगा। सर जैसे ये खेती खत्म हुई इसकी, तो हमने तुरंत वहाँ से बेले निकाल दिए, हमने प्लानिंग किया कि अब हमको इसमें क्या करना चाहिए, हमने तत्काल नर्सरी फोन लगाया कि भैया हमको 7,000 पौधे चाहिए गेंदे के, जो और टेनिस बॉल में है ऑरेंज गेंदा लगाया लेमन का मैंने अभी, तो 2 बीघे का उसमें सर मैंने गेंदा लगाया और वो उसमें 2 बीघे में 7,000 पौधे लगे, और वो 2.5 रुपये का एक पौधा, 3.5 रुपये का एक पौधा मुझे मिला, 3.5 रुपये का एक पौधा मिला, और 55 दिन के अंदर हमने उसको मंडी में गेंदा बेचना चालू कर दिया। सर मैं गेंदे की खेती इसलिए करना चाहता हूँ कि उसमें 0 मेंटेनेंस, कोई उसमें ऐसा खर्चा नहीं। देखिए हमारे पास ड्रिप मल्चिंग लगी हुई थी, केवल हमको वो उसमें हमने 1 लाख रुपये बीघे खेती कर ली, निकाल दिया, अगर हमने कहीं ना कहीं 2 बीघे में वापस गेंदे लगाए हैं तो उसमें सर 7,000 पौधे आए हैं, और 7,000 पौधे आए हैं तो एक पौधा अपने जीवन काल में अगर 2 किलो पौधा दे, फूल देगा, फूल देगा तो 7 × 14 मतलब 140 क्विंटल उसमें हम गेंदा बेचेंगे, तो इनमें कुल मिला के मेरा कम से कम मार्केट में अगर 20 रुपये किलो भी औसत गेंदा बिका उसके जीवन काल का, उसका जीवन काल मतलब 2 महीने का, तो 140 क्विंटल होता है, 140 क्विंटल अगर होएगा और 20 रुपये किलो मिलेगा तो 14×28 2,80,000 रुपये का मेरा वो गेंदा की खेती हो जाएगी। सर देखिए 1 साल नहीं हुआ, 6 महीने नहीं हुआ, इधर खीरा कर लिया, फिर गेंदा लगाया, अब गेंदा लगाने के बाद में मैं देखूंगा कि इस समय मेरे 1 महीने की गेपिंग जारत क्या हो रहा है, तो उसमें मैं जो सरसों रहती है उस छेद में मैं सरसों डाल दूंगा, तो सरसों इतनी इतनी बड़ी हो जाएगा मार्केट में 1 महीने में सरसों बेच दूंगा, फिर उस खेत को निकालने के बाद में सर उसमें फिर पुनः मैं खरबूजा लगाऊंगा, तो खरबूजा भी अगर लगाऊंगा सर तो खरबूजा की उत्पादन 70 क्विंटल 80 क्विंटल पर बीघे की होती है और 25 रुपये किलो इस बार मेरा खेत में से बिका, तो 1.5 लाख रुपये बीघा का खेती वो हो जाती है। तो कुल मिला के मेरा किसानों से यही कहना है कि हम कोई सी भी खेती करें, उद्यानिकी की खेती करेंगे, हमारा नगद रुपया आएगा मंडी से, हमारे घर में कोई किसी भी प्रकार की, परिवार बड़ा है छोटा है पैसा लगता है, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, मोबाइल रखना है, 4-व्हीलर से घूमना है, पेट्रोल रोज चाहिए, घर की सारी व्यवस्था तो खर्चा थे, अगर वही परंपरागत खेती हम करेंगे तो ना तो हमारे बच्चे का हम पालन पोषण कर पाएंगे, ना ठीक से हम कपड़े पहन पाएंगे, ना बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे, तो मेरा तो

0: किसान बंधु से निवेदन है कि समय अनुसार हमको परंपरागत खेती को चयन करते हुए उद्यानी की फसल में हमको आना चाहिए। और उद्यानी की फसल देखिए सर, ये कोई सी भी क्रॉप लगाते हैं, चाहे खीरा ककड़ी लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, पत्ता गोभी लगा, ये मतलब हमारी 45 दिन में क्रॉप चालू हो जाती है, नगद भुगतान आने लग जाता है। और हमारा देवास 7 किलोमीटर, हमारी खुद की गाड़ी दिन भर में अभी लोड होएगा, सुबह 7 बजे लगा देंगे, फिर चला जाएगा। एक बेटा उसमें लगा है, उसको मंडी से तो 10-20 हज़ार रुपये रोज की वो सब्जी बेचती है।
1: छोटा किसान है आपको जो सुन रहा है, आपसे प्रेरणा ले, 2 एकड़ 1 एकड़ का किसान है, उसका हमेशा यही कहना होता है कि बहुत छोटी जमीन का काश्तकार हूँ, कैसे करूँ क्या करूँ, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सर, उसके लिए आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जिस किसान के पास अगर 1 एकड़ है, 2 एकड़ जमीन, 3 एकड़ है, उसके लिए उसका जीवन में 50,000 रुपये कमाना मामूली बात है सर। वो सबसे अच्छी खेती कर सकता है, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद, जितनी छोटी खेती है उतना अधिक वो लाभ कमा सकता है। क्योंकि जब मैंने आपको बताया सर पहले कि अब अगर हम ड्रिप मल्चिंग से करेंगे, हमारे मालवा में हम एकड़ से नहीं चलते, बीघे से चलते हैं। अगर वास्तविक मेरे पास 3 बीघे जमीन है, 3 बीघे जमीन है, आपको दिखने में लग रहा है कि 3 बीघे जमीन बहुत छोटी जमीन है, 3 बीघा से मेरा, पर वो 3 बीघा जमीन हमारा जीवन सुधार देगी सर। देखिए, सबसे पहले 3 बीघा जमीन हमने 3 पार्ट बनाए, एक गर्मी में जून में हमने फर्स्ट खीरा लगाई, एक में अगर जून में हमने खीरा लगाई, जुलाई में हमारा खीरा चालू हो जाता, अगस्त में फिर वापस उसमें खीरा लगाएंगे, खीरा 2 बार करने के बाद उसमें हम टमाटर लगा सकते हैं वापस, 3 फसल हो गई। फिर एक दूसरी फसल है, उसमें हमने अभी टमाटर लगाए 1 बीघे का, सर 1 बीघे का अगर हमने टमाटर लगाया, उसमें 3,000-3,500 पौधे लगते टमाटर के। आज जब पौधा हमने आज लगाया है तो 60 दिन के बाद में टमाटर पक के वो मार्केट में बेच सकते हैं। 1 बीघे में अच्छा टमाटर उत्पादन निकालेंगे तो 1,000 कैरेट हम निकाल सकते हैं, और कम से कम हमारी केयर नहीं हुई तो भी हम 700 कैरेट निकालेंगे सर। आज के रेट में, आज वर्तमान की स्थिति में, आज दिनांक की स्थिति में 500 रुपये कैरेट हमारे टमाटर बिक रहा है। अगर हम 1,000 कैरेट बेचेंगे तो कितना जाएगा, 5 लाख जाएगा। 2 महीने में अगर हमने 1,000 कैरेट निकाल दी, उस 1 बीघा में से 5 लाख का हमको बेचा, अब 5 लाख में से हम 1 लाख रुपये खर्चा कर देंगे, फिर भी हमको 4 लाख रुपये मिलेगा। और फिर 1 बीघा जमीन और है हमारे पास, 1 बीघा जमीन और है, अगर 1 बीघा जमीन में हम उसमें पत्ता गोभी लगा देते हैं उदाहरण के लिए, तो 1 बीघा पत्ता गोभी लगाएंगे तो 1 बीघा में 20,000 उसके पौधे लगेंगे, 1 बीघा में 20, और 1 रुपये का एक पौधा मिलता है। बीज अगर हम तैयार नर्सरी से लाएंगे तो 20,000 रुपये में हमने उसकी चुपाई कर दी, और वही हमारा 45 दिन में पत्ता गोभी चालू होता है तो आज की कंडीशन में हमारा वो 20 रुपये किलो बिकता है। मैं क्योंकि 20 रुपये किलो नहीं, 10 रुपये किलो बिके, तो अगर एक पौधा हमारी, एक गोभी वो 10 रुपये की बिकी तो 20,000 गोभी कितने की होगी सर, वो सीधी 1 लाख रुपये की हो गई। तब जब हमने 1 लाख करके 2 बार खीरा किया, 2 लाख उसमें कमाए, टमाटर में भी 4 लाख रुपये कमाए, और इधर गोभी में भी 1 लाख रुपये कमाए, फिर जाके सर हम वापस दिसंबर में वो खेती साफ करके, पूरी खेती हाथ जोत करके फिर से बेड बनाया, फिर से बेसल डोज डाले, फिर से पन्नी लगाई, फिर हमने उसमें खरबूजा लगाया। खरबूजा हमारा 3 महीने में खरबूजा का गेम खत्म होता है, जुलाई 11 में फिर फ्री हो जाएंगे, और 1 बीघे में खरबूजा निकलता सर 75 कुंटल 70 कुंटल 80 कुंटल, और 20 रुपये किलो बिकता, तो वही 1.5-2 लाख रुपये बीघा का है, तो अगर 1.5 लाख रुपये बीघा का है तो 3 बीघा का है तो 4.5 लाख रुपये का हमने खरबूजा बेच दिया, 4.5 लाख है, 1 लाख खर्चा काट दो सर, 3.5 लाख रुपये फिर बचेंगे। करना किसान को है, लाभ का धंधा कैसे बनाना चाहिए वो हमारी अगर योजना से हम चलेंगे तो जरूर खेती का लाभ का धंधा बनाएंगे, और सबसे जो छोटा किसान है वो सबसे अच्छी खेती करके हम उद्यानिकी से अच्छा लाखों रुपये इस हिसाब से कमा सकते हैं।
1: बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार
2: भैया। देखो, रवि के मौसम में चना बड़ी महत्वपूर्ण फसल होते, और ज़्यादातर हमारे जो प्रदेश के किसान भाई हैं वो चना की बहुत आयत में फसल लेते। मनु, चना की फसल में कई बातों को ध्यान रखने पड़े। पहली चीज़ तो जो है कि उन्नत किस्मों को चयन आपको करना है, अच्छी किस्म आप लगाए हैं तो चना भरपूर उत्पादन दे, नहीं तो फिर बार बार उकठा को रोग लग जाते या दूसरी बीमारियाँ लग जाते या फिर जो है ईल या रोग व्याधि हो जाते हैं, तो ये सब बातों को हमें ध्यान रखने हैं। मनोहा, जो विषय विशेषज्ञ भी अगर हमारे लाने बताते हैं तो वह कछु बात अलग होते हैं। तो देखो नहीं, मनोज भैया ने कृषि विज्ञान केंद्र देवास में ही कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर के एस भार्गव जी से बात करी है। तो जब बातचीत अपन सभी मिलकर सुना थे चना की उन्नत बुआई तकनीक जो विषय है,
1: मेरे साथ हैं किसान भाइयों के एस भार्गव जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवास में। सर, मैं जानना चाहता हूं कि चने की बुआई करने की सही विधि क्या है।
3: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि चना की जो फसल है ये बहुत ही सेंसिटिव फसल कही जाती है, अपने देखा जाए तो खासकर पाले की स्थिति में। तो दूसरा, दिनों दिन हम देख रहे हैं कि चना का रकवा है या उत्पादन भी कम हो रहा है, रकवा भी कम होता जा रहा है, किसान भाई उससे दूर भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं के निदान के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि चने में एक सबसे ज़्यादा जो आती है उमलने की बीमारी, जिसे किसान भाई कहते हैं उमटा रोग आ गया। तो उमलने की जो बीमारी है, जैसे हमारी भाषा में कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में बिल्ट की जो समस्या है, तो इसका निदान आप जब आ जाए बिल्ट, उसके बाद किसान भाई हमारे पास पूछने के साथ इसका किस तरह से निदान करें, तो उसके लिए प्रबंधन करना पड़ेगा अपने को शुरू से। तो बुआई से अगर अपन देखें प्रबंधन करें तो निश्चित ही हमें उसमें बहुत सारी सफलता मिल सकती है, उसको हम रोक सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि चना की बुआई बहुत बड़ा महत्व काम करती है। कई किसान भाई ऐसे हैं कि चना की बुआई जल्दबाजी में करते हैं, बिल्कुल जल्दबाजी में बुआई नहीं करना चाहिए। खेत को तैयार करने के बाद, और एक जिसे हम बोलते हैं फर्श विधि है या रेज्ड बेड पद्धति, जिसे सामान्य भाषा में गरड़ पद्धति बोलते हैं और मेड़ नाली पद्धति बोलते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि दो एक मतलब मेड़ बनती है जो कि ऊंची रहती है थोड़ी, लगभग जमीन से जब अपन बुआई करेंगे तो जमीन से लगभग 6 इंची के आसपास ऊंची रहेगी वो, और बीच में एक नाली बनेगी, उस नाली में से आप सिंचाई भी आसानी से दे सकते हैं। इस विधि का करने से फायदा क्या होता है कि देखिए बात ये कहते हैं कि जब पौधा स्वस्थ होगा तो निश्चित ही उसमें रोग कम आएंगे। तो इस विधि में पौधा स्वस्थ होता है। स्वस्थ क्यों होता है पौधा, क्योंकि जब पौधा किसी ऊंची जगह पर रहता है तो उसमें हवा का आवागमन, जो जड़ों में जो जड़ों को सांस लेने की हवा की जरूरत होती है वो अच्छे से मिलती है। और दूसरा, जब हम सिंचाई देते हैं तो जो सिंचाई का जो जल है वो तना से टकराता नहीं है, जड़ों से संपर्क नहीं आता, सीधे सिर्फ नमी उसके संपर्क में आती है, जिसके कारण पौधा उत्पादन अच्छा करेगा, उसका मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वस्थ अच्छा रहेगा पौधा का, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो निश्चित ही उत्पादन में वृद्धि होगी। गरड़ पद्धति होती क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल जो हमारे पीछे वाले जो टाइल्स रहते हैं सीड ड्रिल में, उसके पीछे हम एक इस तरह की जुगाड़ बना देते हैं कि जो कि जो मिट्टी है मिट्टी को थोड़ा सा धकेलता है, नहीं समेटता है, वो नाली बनाता है, वो नाली वाली जो मिट्टी को मेड़ पे चढ़ाता है, और एक मेड़ के ऊपर हम दो चांस आसानी से, चांस यानी कि कतार जिन्हें बोलते हैं, एक मेड़ के ऊपर दो कतार हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें दूरी का बहुत बड़ा महत्व होता है कि दूरी कितनी रहनी चाहिए। एक जो मेड़ हमारी बन रही है, जिसे हम लोग रेज्ड बोलते हैं, रेज्ड बेड बोलते हैं, तो जो ऊंची क्यारी जो है उसमें हमें दो जो निकलना, उसकी जो चौड़ाई रहती है लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर रखी जाती है, और जो उस पर कतार से कतार के बीच की दूरी लगभग हम 30 से 35 सेंटीमीटर रख सकते हैं। जब नाली बनती है तो नाली में भी हमारी थोड़ी जगह छूटती है, लेकिन नाली बनने से फायदा क्या होता है, जैसे हम लोग वैज्ञानिक बोलते हैं कि बॉर्डर इफेक्ट, हर कतार को हमें एक बॉर्डर इफेक्ट मिलता है। बॉर्डर इफेक्ट मिलने से क्या होता है, पौधे को हवा समुचित मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, और जिसके कारण कि कीड़े बीमारी कम आते हैं। और जो बॉर्डर इफेक्ट में आपने कभी भी देखा होगा कीड़े बीमारी जो भी चीज़ें होती है बॉर्डर पर कम आती हैं, अंदर ज्यादा रहती है। तो इसमें क्या, हर हमारी जो लाइन है या चांस जिसे बोलते हैं, उसको एक बॉर्डर इफेक्ट का प्रभाव मिलता है, जिसके कारण कि उसमें रोग कीड़े बीमारी कम आएंगे। साथ ही नाली जो रहती है, नाली में सिंचाई करेंगे, इसमें चना में रेज वेट प्रति एक फायदा, अल्टरनेट आप सिंचाई भी कर सकते हैं, एक नाली में पानी देंगे, दूसरी नाली को छोड़ दें, फिर तीसरी में पानी दें, तो इस तरह से क्या होगा, पानी की लगभग आपको 70% के आसपास पानी लगेगा, मतलब 30 से 40% पानी की बचत भी हो जाती है। तो इस विधि में पानी बचत अच्छा बचता है, उत्पादन में भी अगर आप देखें, इस हमने गेहूं में भी लगाया है, कई किसान भाइयों खेतों पर चना में भी लगाया है, लगभग 25 से 35-40% तक इसमें उत्पादन में वृद्धि मिलती है। थोड़ी सी एक समस्या कई किसान भाई हमें जो बताते हैं कि साहब इसमें हमें एक समस्या आती है, वो समस्या ये है कि कटाई में थोड़ी समस्या आती है, वो भी हार्वेस्टर के कारण बस, और कुछ इस विधि में कोई समस्या नहीं। किसान भाई थोड़ा अगर मजदूरों से कटवाते हैं तो थोड़े कोई समस्या नहीं है, हार्वेस्टर भी अगर थोड़ा कोशिश करेगा तो आसानी से चला सकता है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि मिलेगी। और कानपुर के हमारे वैज्ञानिक भी आए थे, उनकी अनुशंसा ये है कि जिस विधि जिसमें हम गरड़ पद्धति से चना लगा रहे हैं उसमें हमें उमलने की बीमारी भी कम आती है, क्योंकि पौधा स्वस्थ रहता है तो निश्चित उमलने की बीमारी कम आती है।
1: जैसा कि आपने कहा कि चने की फसल में अगर हम मेड़ नाली पद्धति से लगाएंगे तो उबरा रोग लगने की संभावना कम होती है,
3: उम्टा जो बिल्ट
1: ये इसको आजकल इसकी वैसी किस्में भी आ गई हैं।
3: हाँ, तो कुछ जो हमारी नई किस्में हैं, जैसे किस्में चल रही है जैसे RBG 204 है, RBG 202 है, तो इस तरह की जो वेराइटी में कम उमलता है चना। लेकिन दूसरा मैं बताना चाहूँगा, अगर चना को गहरा बोएंगे, जिस खेत में चना थोड़ा गहरा डालेंगे मतलब, तो उसमें भी उमलने की बीमारी कम आएगी, और निश्चित ही जब हम गरड़ विधि से लाते हैं मेड़ पर लगाते हैं तो चना गहरा ही जाएगा हमारा, तो उसमें भी उमलने की बीमारी आपको कम आएगी।
1: अच्छा, किस मिट्टी को आप अच्छा मानते हैं चने की फसल के लिए?
3: देखिए, चने की फसल के लिए हमारे जो देवास की बात करें या मालवा की जो बात करें, मालवा रीजन के लिए चना बहुत अच्छी मिट्टी है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें जुताई

0: की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा जुताई करना भी नहीं चाहिए। चने में जो ढेले वाली मिट्टी रहती है उसमें चना बहुत अच्छे से हो जाता है।
1: और पानी की कितनी ज़रूरत होती है?
0: पानी चना में, देखिए पानी चना में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक तो अंकुरण के समय उसमें थोड़ी सी नमी होना चाहिए, और फिर आपको अगर दो पानी दे देते तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा दो पानी कब देना चाहिए? एक तो लगभग 40 से 45 दिन के आसपास, जब हमारी किस्म ब्रांचिंग होती है। दूसरा पानी जब पॉट फॉर्मेशन, जैसे अपने देसी भाषा बोलते हैं घेटा बनते समय, तो उस समय ये दो पानी अगर मिल जाता है चना बहुत अच्छा। जहाँ आप सिंचाई ज़्यादा देंगे, या उसको दूसरा बात कहें, सिंचाई ज़्यादा होगी या आप जो उर्वरक ज़्यादा देंगे, जब वो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। पानी बहुत ज़्यादा दे देंगे तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो फल बिल्कुल भी नहीं बनेगा उसका।
1: आजकल बाजार में डॉलर चना की बहुत डिमांड है।
0: जो हमारा मुख्य चना है, जो हमारा काबुली चना, उसको लगाना चाहिए। बहुत सारी हमारी वेरायटी है, जैसे कृपा करके एक वेरायटी है, हमारी यूनिवर्सिटी की वेरायटी है काबुली चना की, उन वेरायटियों को आप उपयोग करें। कीट नियंत्रण के लिए मैं बताना चाहूंगा, एक हमारे यहाँ एक भ्रांति आ गई है कि हम साहब दवाई डालेंगे तभी कीट नियंत्रण होगा, ऐसा नहीं है। दवाई के साथ साथ ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का काम करना चाहिए। जैसे कि थोड़ा खूटियाँ भी गाड़ दो उसमें, जिससे कि चिड़िया आके बैठेगी तो इल्लियों को खा जाएगी। एनपी वायरस है उसका छिड़काव करें। जब उसमें फूल बनना हो या उसमें जब आपका पॉड फॉर्मेशन हो, उस समय बिल्कुल इल्ली का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कीटनाशक दवा आप समय से डाल देंगे, आपका ETL लेवल देख लें कि एक हमारा एक मीटर में कितनी इल्लियाँ आ रही हैं, उस हिसाब से आप दवाई डाले। कई किसान भाई क्या होता है, जब इल्ली बहुत मोटी हो जाती, बड़ी हो, बहुत ज़्यादा फैल जाए, देखते ही नहीं किसान खेत पर जाए। खेत में जाएं, जो हमारा एक गमछा रहता है जो किसान भाई डालते हैं, उस साफ या टावल जो भी बोलते हैं, उसको बिछा ले, वो लगभग 1.25 मीटर की होती है, उस पर दोनों तरफ से मार के देखे, तो उसमें अगर इल्लियाँ दिख रही हैं, जब इल्ली हल्की हो तो कोई भी कीटनाशक डाल दें, जितना भी कोई भी मतलब जो पेस्टिसाइड डालेंगे तो उससे निश्चित फायदा हो जाएगा उसको। लेकिन जब बड़ी हो जाती तब डाल दें। लेकिन मेरा कहना है कि आप समन्वित प्रयास करें। उसमें मैंने कहा था खूटियाँ भी गाड़ दें। खूटियाँ गाड़ने से क्या हुई, चिड़िया आके बैठेगी, इल्लियाँ खा जाएगी। चिड़िया एक दिन में अपने वजन के बराबर इल्ली खाती है, क्योंकि जो आदमी जैसे जो चलता है उसको कम भोजन लगता है, जो दौड़ता है उसे ज़्यादा भोजन लगेगा। इसी तरह चिड़िया जब उड़ती है तो उसको भोजन ज़्यादा लगता है, तो अपने वजन के बराबर इल्लियाँ खाएगी। लेकिन आजकल क्या, हमने बैठने की व्यवस्था ही खत्म कर दी चिड़ियों के, कोई दवाई डालने चिड़िया मार जाए, जब आप कोई कीटनाशक डालेंगे तो इल्ली भी खाएगी, इल्ली चिड़िया खा जाती है, तो उनको ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो कोशिश करें, समन्वित प्रयास करना चाहिए।
2: भैया रो, एक बात हम आपको जरूर बताना चाहते, जब बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एग्री स्टैक को नाउ आपने जरूर सुनो होइए, अगर नहीं सुनो होइए तो हम बता देते कि एग्री स्टैक का होते। भारत सरकार द्वारा शुरू करोगे कृषि क्षेत्र को जो एक डिजिटल डेटाबेस और प्लेटफॉर्म हुई है, इमें खेती को आधार कार्ड भी जाए कह सकते हैं, यानी कि पूरी जानकारी इमें होते हैं। एग्रीस्टेक को मुख्य अर्थों और उद्देश्य की अगर बात करें तो एक तरह से जो डिजिटल पहचान होते हैं, ई के तहत देश के हर किसान को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या दी जाते हैं और सारे डेटा को एकीकरण एक ही जगह हो जाते हैं, यानी कि किसानन की व्यक्तिगत जानकारी, इनकी जमीन को रिकॉर्ड और वे कौन कौन सी फसलें लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ वे जाके जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, जिस सारा डेटा को एकीकरण भी जो है एग्रीस्टेक जो ID होते हैं उनमें हो जाते हैं। और फिर ई की सबसे बड़ी खासियत होती है भैया रो कि ई को उद्देश्य सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और राहत राशि को सीधो पारदर्शी लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाना है, यानी कि जब बड़ी महत्वपूर्ण ID होते हैं, अगर आपने नहीं बनवाई है तो जरूर बनवाएं और एग्री स्टेक से जरूर जुड़े। तो भैया रो, आज की किसान वाणी में इतो ही, और अगले कार्यक्रम में हम पुनः मिले हैं। तब तक महेश भैया को दे आज्ञा, राम राम।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे हैं?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसानवाणी
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।
1: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 17वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, सीमाओं से शहरों तक जुड़ता भारत। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली के पूर्व उप परिवहन आयुक्त अनिल चकारा और पूर्वोत्तर मामलों के जानकार सुविमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री और 12 वर्ष देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभालते हुए उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने की मुहिम को दिशा दी है और जन सेवा से देश सेवा के मूल मंत्र के साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को बल और गति प्रदान की है। आज जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में हमारा विषय है जुड़ता भारत, सीमाओं से शहर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे विविध और विस्तृत देश को आपस में जोड़ने, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों को मुख्य धारा में शामिल करने और देश के हर क्षेत्र, हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए मूलभूत ढांचे के विकास में हुई तेज प्रगति के लिए पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, दिल्ली के पूर्व डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल चकारा और नॉर्थ ईस्ट मामलों के विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
3: नमस्कार।
2: आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं पीएम गति शक्ति पर एक विशेष रिपोर्ट।
4: सड़क, रेल, बंदरगाह या हवाई अड्डा अगर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना अलग अलग और आपसी समन्वय के बिना बनाई जाए तो परियोजनाओं के बीच तालमेल की कमी और कनेक्टिविटी में अंतर जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को की गई। इसका उद्देश्य देश में बुनियादी ढांचे की योजना को एकीकृत करना और सड़क, रेल, बंदरगाह, जल मार्ग, बिजली, दूर संचार तथा अन्य क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। पीएम गति शक्ति के तहत जियो स्पेशल डेटा, जीआईएस आधारित डिजिटल मैपिंग और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों को किसी परियोजना की योजना बनाते समय मौजूदा बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और संभावित बाधाओं की बेहतर जानकारी मिलती है। अगस्त 2026 तक 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका था और 3291 डेटा लेयर्स को एकीकृत किया गया है। इसका एक अहम हिस्सा है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी NPG या केंद्र सरकार की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है ताकि योजना के स्तर पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, विभिन्न परियोजनाओं के बीच तालमेल और डेटा आधारित निर्णय सुनिश्चित किया जा सके। रेलवे में भी पीएम गति शक्ति के सिद्धांतों का इस्तेमाल परियोजना नियोजन में किया जा रहा है। मार्च 2026 तक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेलवे की 300 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी जिनकी कुल लंबाई लगभग 13,808 किलोमीटर थी। इनमें 51 नई रेल लाइंस, 17 गेज कन्वर्जन और 232 डबलिंग परियोजनाएं शामिल थी। इस तरह पीएम गति शक्ति का मूल विचार है अलग अलग परियोजनाओं को अलग अलग देखने के बजाय पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को एक साथ देखकर योजना बनाना।
2: ये कहें कि प्रेरणात्मक अवसर है और अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का जिस तरह से वहां पर समृद्धि आई वो सबके सामने सर्वविदित है और उसी लय में जिस तरह से उन्होंने मूलभूत ढांचे के विकास को हमारे देश में गति दी है पिछले 12 वर्षों में, उसको आप कैसे देखते हैं, आप कैसे आंकते हैं सुविमल जी?
5: आपके सारे श्रोताओं को मेरे तरफ से नमस्कार। ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने ये सार्वजनिक जीवन में 25 साल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सारे देश को जोड़ने का जो प्रयास किया हुआ है और विशेषकर मैं समझता हूँ कि उत्तर पूर्व भारत में जो बदलाव आया है पिछले 12 साल में वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर पूर्व में एक हताश होते थे कि हम जो मेन स्ट्रीम शब्द यूज होता है इस्तेमाल जो होता है उसमें वो जुड़े नहीं है, वो किसी तरीके से इनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये जो प्रयास रहे हैं सारे उत्तर पूर्व में सड़क से जोड़ना, हवाई अड्डों नया बनाना, रेलवे को आगे ले जाना, कितने सारे राज्यों में रेलवे नेटवर्क के ये कई सालों में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंक्लूसिव अप्रोच ऑफ गवर्नेंस होता है, इसका बड़ा प्रतीक है और प्रधानमंत्री जी का ये कार्यकाल में यह दर्शाता है कि लोगों को जोड़ने के लिए आज जो हम बोलते हैं कि कनेक्टिविटी का महत्व बड़ा भूमिका होता है, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से 2014 में अगर आप जाते हैं तो देखते थे कि क्वालिटी जो बैंडविड्थ का भी नॉर्थ ईस्ट में मिलता था, आज हर जगह अरुणाचल जाइए या त्रिपुरा जाइए, मिजोरम जाइए, कहीं भी जाइए आप कर सकते हैं। मैंने तो एक बार बजट का आधा घंटा पूरा डिबेट पहाड़ के ऊपर बैठ के नेटवर्क से यूज किया। तो इस तरीके से उत्तर पूर्व भारत में बहुत सारे बदलाव लाए और ये प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा कामयाबी रहा उत्तर पूर्व को कम समय में जोड़ने के लिए।
2: अनिल जी आपके पास आते हैं, जैसा सुबिमल जी ने कहा कि कनेक्टिविटी को बहुत बल दिया है प्रेजेंट सरकार ने, और खासकर ऐसे एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में जो पहले मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े माने जाते थे, उनको मुख्य धारा में लाया गया है। अगर हम जो पैन इंडिया जो स्कीम लाई गई कनेक्टिविटी के लिए, लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम रहा है सरकार का, जिसमें इतने सारे विभाग, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, इसका परम उद्देश्य आप क्या मानते हैं, इसको कितना क्रांतिकारी मानते हैं?
3: सबसे पहले मेरा श्रोतागण को नमस्कार। और जहां तक पीएम गति शक्ति का जो प्रोजेक्ट पिछले 5-4 साल से शुरू हुआ है, तो इसमें देखा है कि एक क्रांति है। इसमें क्या है कि अभी तक सब अलग अलग साइलोज में ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था, और हमारे देश में हाईवेज हमने बनाए हैं और अच्छे हाईवे बनाए हैं, लेकिन अगर हम उनको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो भी हमारी एफिशिएंसी उसकी नहीं मिलेगी। अब हमारा देश का जो अगर देखा जाएगा, अब तो नहीं रहा, पहले वर्ल्ड का हाईएस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश में होता था और वो 14% से के अबव था, लेकिन आज वो घटकर जो हर साल 2% से ज्यादा घट रहा है, इससे और भी ज्यादा घटेगा। जो इसका टारगेट है वो 6% तक लाना है, तो 6% तक लाने के लिए हमारे को हाईवेज जो थे वो स्टैटिक थे, अब वो डायनेमिक बने। डायनेमिक में का मतलब हुआ कि उसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का इंटीग्रेशन किया, यानी कि अगर हमारी एक वायबिलिटी, सपोज हमारे को 2000 किलोमीटर जाना है या 1000 किलोमीटर जाना है, तो अगर हम अलग अलग ट्रक्स लोड को लेके जाएंगे, अभी भी हमारा जो ट्रक का लोड है वो 80% ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन देश में है, लेकिन जिस टाइम ये मल्टी मॉडलर हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारा जो 20% जो गुड्स का है तो वो शेयर बढ़कर 40% हो जाए, और 40% होते ही हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हो सकता है अभी 1 या 2 साल में हम 9% से कम भी ले आएंगे। और इसमें हमारे को जो भी उसमें हाईवेज की एमिनिटीज बनाना है, इंटरचेंज पॉइंट बनाना है, हमारे को उसकी कनेक्टिविटी के साथ में जीआईएस की जरूरत है, हमारे को टेलीकम्युनिकेशन की जरूरत है, और जो हमारे को एक ड्राइवर्स का जैसे पूल की जरूरत है, और लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की जरूरत है, तो इस सबका इंटीग्रेटेड हाईवेज की एमिनिटीज और फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये पूरे देश में जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद में हमारा देश, मैं आपको आज इस चैनल के थ्रू एक उम्मीद कर सकता हूं, और उम्मीद के साथ में मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम को जो पीएम गति शक्ति है, वर्ल्ड लर्न करेगा, सीखेगा।
2: सुबिमल जी आप क्या कहना चाहेंगे, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है, जिसमें हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको, इनलैंड वाटरवेज, सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया गया है, और ताकि बिल्कुल निर्बाध कनेक्टिविटी हो लोगों के लिए, गुड्स के लिए, ये किस तरह से आपको ये अप्रोच जरूरी लगता है अभी की जरूरतों के लिए, और हमारे इकोनॉमी के लिए इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है?
5: सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रयास रहे और अभी अनिल साहब ने भी ये बताया कि एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करके जितने क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी उनको जोड़ा जा रहा है, और किस तरीका से हम ये जो नेटवर्क्स है इसको ऑप्टिमाइज करें, इसको किस तरीका से संतुलित रूप से अपने जो रिसोर्सेस भी रहते हैं उसको भी हम उसी हिसाब से खर्च करें। तो हम अगर देखें तो इससे समय भी कम लगेगा प्रोजेक्ट्स के लिए और पैसा भी कम लगेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी जिस मात्रा में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सारे देश में ली है, अगर आप देखें गतिशक्ति, पीएम गतिशक्ति प्रोग्राम में करीब 400 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया गया था और करीब 19 लाख करोड़ का जो प्रावधान था उनके लिए, उसमें से करीब 250 ऑलरेडी सैंक्शनड है और 200 इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जब एक कॉमन अप्रोच आप लेते हैं और जहाँ आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ये देश के लिए बहुत फायदा होता है। और यही प्रयास से आज जब टेक्नोलॉजी हर तरीका हर क्षेत्र में मिल रहा है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होता है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में भी, कनेक्टिविटी में भी, लास्ट माइल में भी, और जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है कनेक्टिविटी का, तो इस सारे जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कामयाबी है।
2: एक और एस्पेक्ट है जो हमने इन 12 वर्षों में देखा है कि बहुत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हुए हैं और बहुत दुर्गम जगहों पर इस्टेब्लिश हुए हैं। जो एक प्राइम एग्जांपल है अटल टनल, अटल टनल को अनिल जी अगर हम आपके पास आए, किस तरह से आप देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं? ये पूरे विश्व की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल है 10,000 फीट से ऊपर, और जिस तरह का ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी दे रही है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं?
3: मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जब हम चाहे वो हिमाचल से जाना होता था लद्दाख को, और केलोंग जैसे हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है, जस्ट इसके बाद जो अटल टनल के बाद शुरू होता है, आज से करीबन 35-40 साल पहले सर्विस इंजीनियर था हिमाचल प्रदेश में, और मुझे पता था कि मनाली से केलोंग जाने में पूरा एक दिन लगता था, और एक दिन लगने की वजह से वहाँ का जो सब्जियाँ थी, वहाँ का जो और रॉ मटेरियल जो सप्लाईज होनी होती थी, तो वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाती थी और उसमें लैंडस्लाइड होता था। और जो अब जब से ये सोलंग नाला से हमारी कनेक्टिविटी बनी है, तो आज 3 घंटे में पहुँचते हैं, यानी कि जो 12 घंटे का जो ट्रेवल था वो 9 घंटे हमारे बच गए, और कनेक्टिविटी इतनी फास्ट हो गई कि जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो इतना कम हुआ। और फिर क्या था कि आप मनाली के बाद आगे कोई टूरिज्म नहीं था, आज अटल टनल ने एक ऐसा टूरिज्म का रास्ता खोला है कि जो लद्दाख, जो ऐसा लगता था कि आप बाय रोड पता नहीं कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, सेफ पहुंचेंगे या नहीं, और आज लद्दाख की कनेक्टिविटी हमारी इतनी आसान हो गई है कि कुछ लगता ही नहीं है कितनी जल्दी वहां पहुंच गए हैं। और डेवलपमेंट उस एरिया का, केलोंग जो बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र था, आज वहां पर वी आर फाइंडिंग बेटर होटल देन मनाली। तो ये जो डेवलपमेंट आ रहा है,
2: 6 महीने के लिए बंद हो जाता था रोहतांग पास, उसको ओवरकम किया है और कनेक्टिविटी निर्बाध बनी है।
3: यस, अब रोहतांग पास तो बाईपास हो चुका है, तो नीचे से टनल जा रही है, अब जिसको रोहतांग जाना है जाए, अदरवाइज पहले तो इट वाज फोर्सिबली गोइंग ओवर देयर, तो वो सारी चीजें बनते हैं।
2: तो सुबिमल जी, सिमिलरली अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सेला टनल जो 2024 में शुरू हुई, इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं वहाँ के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए और वहाँ की इकोनॉमी के लिए और वहाँ के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी?
5: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सेला टनल पृथ्वी की सबसे लंबी बाईलैंड टनल है और ये ऑल वेदर रोड है तवांग, तो हमारा तवांग के साथ जो कनेक्टिविटी है अगर सारे सीजन्स में अवेलेबल है, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा बात है। दूसरी बात यह है कि एक अरुणाचल में ये दो जो ट्विन टनल्स है, ये सेला टनल एक एक किलोमीटर की है और एक 1.5 किलोमीटर की करीब, इससे थोड़ा ज्यादा है, 13,000 फीट ऑल्टीट्यूड में, इस तरीका का कैपेबिलिटी जो आज हमारे पास है और ऑल वेदर रोड बनाने का, तो अरुणाचल का कनेक्टिविटी, अरुणाचल का सिक्योरिटी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा महत्व है। और आज साल भर लोग उससे आगे जा रहे, तवांग का एक टूरिस्ट वैल्यू भी है और सिक्योरिटी वैल्यू भी है, तो ये दोनों जो टूरिस्ट का इनफ्लो, हालांकि वेदर के हिसाब से कुछ सीजन्स होते हैं टूरिस्ट के, लेकिन साल भर में लोग का आना जाना है, तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ा कामयाबी है, क्योंकि इससे और कई सारे उस तरह और कनेक्टिविटी के लिए छोटे छोटे फीडर रोड्स ये जितने हो रहे वो भी एक्टिव होते जा रहे हैं, तो अरुणाचल के और बॉर्डर कनेक्टिविटी विशेषकर बहुत आगे बढ़ रहा है इससे।
2: इसके अलावा अभी आप जो थोड़ी देर पहले नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, उसमें जिस तरह से पीएम डिवाइन जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स आए हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ने 3,746 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, जिसमें से 2,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, ये पूरा जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, इनलैंड वाटरवेज बढ़े हैं, इससे आपको लगता है कि अब नॉर्थ ईस्ट न सिर्फ कहें कि मेन स्ट्रीम से जुड़ गया बल्कि एक ग्रोथ इंजन बनने का उसमें पोटेंशियल है पूरे भारत के लिए?
5: बिल्कुल बने रहा है। आपने डोनर मिनिस्ट्री का जिक्र किया, लेकिन डोनर मिनिस्ट्री के अलावा भी एक प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार की 54 मिनिस्ट्री की मिनिमम 10% एक्सपेंडिचर इनको नॉर्थ ईस्ट में करना होता है, और ये जो आपकी फंडिंग इनकी तरफ से गए तो हर क्षेत्र में हर राज्य में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स हुए। दूसरी बात आते है कि ये जितने पैसा देते हैं तो उसका जो एक अकाउंटेबिलिटी होता है वो आज के डेट में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद ये एक जो फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है उसका जो अकाउंटेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं आता है तो आगे का हिस्सा भी नहीं जाता है। तो डोनर मिनिस्ट्री का जो अकाउंटेबिलिटी रिकॉर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी कुछ कर रहा है, या निरामेक जैसा संस्थान जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे प्रयास रहे कि एक्सपेंशन के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी लाए तो हमारा जो रिसोर्स स्पेंडिंग है नॉर्थ ईस्ट में बहुत इम्प्रूव है। दूसरी बात है कि सड़क का जो निर्माण हुआ है अभी, या रेल का वहां जो निर्माण हुआ है, इस साल की मैं बता सकता हूँ कि अभी 96% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन नॉर्थ ईस्ट में हो चुके हैं। जब 2014 में सरकार आए थे प्रधानमंत्री की, तब नॉर्थ ईस्ट में जो रेलवे थे, मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेन ब्रॉडगेज कन्वर्शन काम चल रहे थे, एक लमडिंग सिलचर का एक 196 किलोमीटर जैसे, वो 16 साल तक कंप्लीट नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी आने के साथ साथ एक साल में उसको कंप्लीट करके 2016 से वहां से ट्रेन जाता है। उस कनेक्टिविटी के बाद मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भारत की रेलवे नेटवर्क में जुड़ गए। दूसरी बात, अगर आप हाईवे की वो ले तो वहाँ सिर्फ 91,000 किलोमीटर से 1,46,000 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन हुई, यानी कि 61% ग्रोथ रहे हैं इन कई सालों में। और सड़क की क्वालिटी भी बहुत अच्छा, मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत घूमते रहता हूँ तो मैं कुछ कुछ सड़क में जब जाते लगते है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हाफलोंग सिलचर जो सिर्फ 100 किलोमीटर की रोड है, आज पिछले 20 साल से अब 6 घंटा से कम में उस से जाने से कुछ स्ट्रेचेस ऐसे खराब थे, पिछले 2 महीना से आप उस स्ट्रेच को 1.5 घंटा में क्रॉस कर रहे, तो कितना फर्क पड़ रहा है
2: आम जनता के लिए, व्यापारियों के लिए, फार्मर्स के लिए, इसीलिए टूरिज्म के लिए,
5: बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स नॉर्थ ईस्ट में निकल के आ रहे हैं इसी की कनेक्टिविटी करके, क्योंकि वो गाँव से हाईवे तक आप आ रहा है और इसके बाद आगे मूवमेंट कर रहा है और आगे अपना प्रोड्यूस कहीं बेच के या कहीं जमा देके अगर वापस फिर सेम डे में जा सकता है, तो उससे मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन की तरह होता है, मोटिवेशन। बहुत सारे नए फार्मिंग एक्टिविटीज शुरू हुए, यू नो, बिटलनाट के लोकल फार्मिंग, बंबू की लॉट ऑफ नए एंटरप्रेनर्स आ रहे हैं। तो
2: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि जन सेवा से देश सेवा विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारी चर्चा का विषय है जुड़ता भारत सीमाओं से शहर तक। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल शिकारा और नॉर्थ ईस्ट मामलों के विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं। और अब अनिल जी, जैसा भी सुविमल जी जिक्र कर रहे थे कि फास्ट ट्रैक किया है इस सरकार ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो शुरू हो गए थे लेकिन वो लंबित थे। इवन अटल टनल की जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पहले उसका 300 मीटर्स पर ईयर की स्पीड से उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2040 तक जाकर वो समाप्त होती, और अब इन्होंने 1400 मीटर्स पर ईयर के गति से उसको बनाकर 2020

0: इसमें जो कंप्लीट किया, आपको लगता है कि ये फास्ट ट्रैकिंग एंड टाइमली डिलीवरी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पहलू है सरकार का?
1: जी, जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जो पहले प्रोजेक्ट तो ये पहले का ही था
0: जी,
1: मुझे लग रहा है कि ये 2005 या 2006 से ये शुरू हो चुका था, उससे भी पल के पहले। तो उस टाइम में एक जो एक मोटिवेशन, एक ड्राइव, जो एक एंथुसियाज्म हमारे जो वर्कफोर्स में होने की जरूरत थी वो नहीं था। अभी आपने हाफलॉन्ग की बात की, जैसे नॉर्थ ईस्ट में गया तो मुझे बताया गया कि आप उस स्ट्रेच से ना जाएं क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस ये वजह थी। और इसी तरह से जो और दूसरे हमारे प्रोजेक्ट से, जैसे ये बोगीबिल ब्रिज बना, अब हमारे जो प्रोजेक्ट में गति जो आ रही है वो एक उस पावर के साथ में आ रही है कि सरकार की एक बैकिंग है, सरकार का एक मोटिवेशन है। वो जो मोटिवेशन है वो हमारे प्रोजेक्ट को बिफोर शेड्यूल लेके आ रहा है और हम वी आर क्रिएटिंग वंडर्स। तो ये सरकार का एक फर्क आया है और हमें देखने का महसूस होता है, क्योंकि मेरा जो पिछले 40 साल से ज्यादा मैं सरकार में काम करता रहा था, और जो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट, चाहे वो मैं दिल्ली सरकार से और जो भारत सरकार के दूसरे प्रोजेक्ट में थे, खास करके नॉर्थ ईस्ट में मैं पहले से एसोसिएटेड था। अब एक जैसे एक हमारे सिलचर में एक प्रोजेक्ट था, जैसे कि सुनील साहब ने बताया कि वहाँ के लोगों को एक नया, जो चाहे वो फार्मर्स हैं चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट जो अभी बन के आ रहे हैं, तो उसके साथ में एक हमारा वहाँ पर सिलचर में एक प्रोजेक्ट जो था वो इट वॉज डेड प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट अभी पिछले 3 साल से आईकैट ने सिलचर में लिया है, एंड वी आर क्रिएटिंग फैक्ट्री ऑफ ड्राइवर्स ओवर देयर, वी आर क्रिएटिंग फैक्ट्री ऑफ टेक्नीशियंस सो दैट अवर एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड। तो ये जो एक फास्ट ट्रैक पर एक चेंज ओवर आया है, तो और वो सिलचर जो है इट विल ऑल्सो टेक केयर फॉर मिजोरम, इवन मणिपुर, असम के साथ में मेघालय, तो ये सबको मिला के वो जो एक हब बनेगा, तो वहां पर हम एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड जो विजन असम सरकार का और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का था कि वहां का जो ड्राइवर्स है नॉट ओनली टू सर्व द कंट्री बट अब्रॉड ऑल्सो। तो ये वाले सारे चीजें जो एक चेंज पूरे एंथुसियाज्म पूरे लोगों में आया है, तो इट इज वंडरफुल, अनइमेजिनेबल।
0: जी ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि, और इस जोश की वजह से हम रेलवेज में भी देख रहे हैं कि ट्रैक रिन्यूअल और स्पीड एनहांसमेंट के लिए जो ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं उसमें गति बहुत है। वंदे भारत ट्रेन्स ने एकदम रेवोल्यूशनाइज कर दिया है ट्रेन ट्रैवल को। एक और चीज, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की भी बात है, और सुबिमल जी 1674 लोकोमोटिव्स प्रोड्यूस किए गए वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में, तो आपको लगता है कि मेक इन इंडिया का असर भी हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं?
2: जी, जो प्रयास रहा कि एक मेक इन इंडिया और दूसरा इंडिजनाइजेशन, अगर आप रक्षा के क्षेत्र में जाए वहां भी ये प्रयास हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो सामान लगते हैं राउटर से लेके सब कुछ वो भी लोकल प्रोडक्ट है, और रेलवे लोकोमोटिव्स, रेलवे कोचेस, रेलवे ट्रैक्स, हर में जो R&D की प्रयास होके लोकल प्रोडक्ट्स बन रहा है, लोकल सप्लाई चेन की जो नेटवर्क बनाया जा रहा है उससे काफी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम कम समय में और जिस तरीके से हमें रेलवे की एक्सपेंशन प्लान्स है। अब मैं फिर भी अगर नॉर्थ ईस्ट का भी उदाहरण देता हूँ, इस साल नॉर्थ ईस्ट की बजट रेलवे की करीब 11,500 करोड़ रुपया के है, तो वहाँ जिस तरीका से आज ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाया गया है, क्योंकि हर सारे राज्य में सबका डिमांड बढ़ते रहता है, नॉर्थ एक रेलवे एक पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव प्रोजेक्ट रहता है, और लोगों का कनेक्टिविटी, जैसा कि मैंने त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम की बात की, तो इन सब के लिए अलग अलग ट्रेन जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में एक वाइब्रेंट सेक्टर रेलवेज में देखा जा रहा है, उसमें लोकल एंटरप्रेन्योर्स भी सप्लाई चेन में आ रहा है, तो इसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो जरूर हो रहा है, लेकिन और एक बड़ी बात है कि जो पहले नौजवान को मौका नहीं था और बहुत समय वो हथियार भी ले, आज वो नहीं हो रहा है, आज वो सामने आ रहा है
0: जी।
2: तो उससे समाज में भी एक बड़ा सुधार हो रहा है धीरे धीरे।
0: तो इसी संदर्भ में जो नॉर्थ ईस्ट के अकॉर्ड्स हुए हैं, जो समझौते हुए हैं पिछले 12 वर्षों में, वो भी आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है?
2: बिल्कुल, हमारा गृह मंत्री जी अमित शाह जी जब से आए तब से वन ट्रैक एफर्ट से ये प्रयास रहा कि जितने सारे मिलिटेंट ग्रुप्स है, देखिए उनके कुछ खौफ थे बहुत सालों से और कुछ लोग इसका फायदा भी उठाए है, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर उत्तर पूर्व को शांत रखना है, उत्तर पूर्व में उन्नति होना है, तो इनको फर्स्ट बिठा के बात करो क्या प्रॉब्लम्स है। और मैं कई लोगों को मैंने देखा कि वो जब यहाँ आते थे बात करते थे, इसके बाद बड़ा खुश होके वापस जाते थे कि एक इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिस तरीके से एक के बाद

0: एक ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हो रहे थे, उससे और अलग उग्रवादी ग्रुप को भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई सुनते हैं। बट सबसे बड़े बात ये है कि जो इनको वादा किया जाता है कि आपका सेटलमेंट के हिसाब से आपका रिहेबिलिटेशन कैडेट्स के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, इनको ये एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ये सारा वादा टाइम बाउंड मैनर में होता है और गृह मंत्री जी की वहां से ये मॉनिटर होता है, उससे ये कॉन्फिडेंस बहुत आया। और अगर आप देखें बहुत सारे ऐसे जो सेटलमेंट हुए, ये जो बड़ा सेटलमेंट हुए पिछले 2019 से, उनमें से बहुत लोग सार्वजनिक जीवन में भी आए, बहुत लोग एंटरप्रेन्योर्स भी बने हैं, तो ऐसे समाज की भी फायदा हुए। और ये जो एक तनावपूर्ण स्थिति हमेशा वहां होता था, वो आज वो नहीं है।
1: और अनिल जी, अगर हम आपने वाइब्रेंट वर्ड यूज किया अभी सुविमल जी, तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो शुरू किया वर्तमान सरकार ने, जिसके तहत जो सीमा के पास जो गांव है उनको पहले कहा जाता था लास्ट विलेज, अब कहते वो कहते हैं कि ये फर्स्ट विलेज है, और जिस तरह का उनके लिए प्रोविजन है वहां पे डेवलपमेंट के लिए, और वो कहते हैं कि ये तो हमारे आईज और इयर्स है, कितना बड़ी बात है ये एक एटीट्यूड चेंज में भी और वहां के विकास के लिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए हमारा जो आर्मी ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, और इन्होंने एक स्कीम भी चलाई है कि जो बॉर्डर विलेजेस है उनका टूरिज्म, तो उनके टूरिज्म में क्योंकि एक सेफ्टी की बात होती है, तो उसके लिए जब सेना हमारी उसको एक जिम्मेवारी लेती है, तो आज की तारीख में हम देखेंगे जो नई जनरेशन है, तो नई जनरेशन हमारी जो शिमला मनाली नहीं जा रहा, वो बॉर्डर विलेजेस में जा रहे हैं टूरिज्म के लिए। वो उनके लिए आज जिसको आपने बताया ना कि फर्स्ट विलेज, तो फर्स्ट विलेज पे हर जो चाहे वो यंग या जेंजी जिसको हम बात कहें, तो जेंजी अपने आके ये बताता है कि जी मैं इस स्टेट के इस फर्स्ट विलेज पे गया, जो दूसरा वो कहता है अच्छा तुम वहां गए तो मैं और उससे एक्सट्रीम जगह पे जा रहा हूँ। तो ये एक जो कंपटीशन चला है, इससे अब वो जो उन विलेजेस में ना तो वहां पर पहले एजुकेशन थी, ना वहां पर कोई एम्प्लॉयमेंट का स्कोप था, या कोई किसी तरह की और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, अब वो टूरिज्म ने उनको इन हाउस अपॉर्चुनिटी दी है, एंड दे आर मेकिंग गुड सॉर्ट ऑफ ब्रेड एंड बटर टाइप, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जिस तरह के मोटल्स बनाते हैं, तो उन लोगों ने अपने हॉस्पिटलिटी अब उन्होंने जिम्मेवारी ली है, और जिसकी वजह से हमारे जो बॉर्डर विलेजेस है दे आर मोर पिकनिक टूरिज्म स्पॉट देन द सिटीज ऑफ देयर कैपिटल।
1: बिल्कुल। एक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कनेक्टिविटी की हम जैसे बात कर रहे हैं, जो हाईवेज में इतनी ज्यादा गति से बढ़े हैं, अगर हम देखें तो 61% के करीब बढ़ गए हैं जब 2014 और मार्च 2006 के बीच, अब लगभग 1,500 किलोमीटर के हमारे हाईवेज हैं, और 4 लेन जो हाईवेज है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। भारतमाला जो परियोजना है, कैसे देखते हैं आप इस कहें कि जो रोड कनेक्टिविटी है उस पर इतना जो बल दिया जा रहा है ताकि पूरा देश आपस में जुड़ पाए?
0: देखिए, ये रोड कनेक्टिविटी वाजपेयी जी की समय से एक मैं कहता हूँ बड़ा फोकस्ड एरिया रहा बीजेपी सरकार की, एनडीए सरकार की, और उस समय जितने हुए अभी मोदी सरकार के टाइम में ये और गति से ये काम हुआ है। और रोड की लेंथ के अलावा क्वालिटी ऑफ द रोड, जो मैं समझता हूँ बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आजकल गाड़ियां जो आ रहे हैं वो बड़ा उसमें भी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे बढ़ा हुआ है, तो एक हाई स्पीड रोड्स आपको क्वालिटी रोड्स चाहिए होता है, लेन्स ज्यादा चाहिए होता है, वॉल्यूम बढ़ गए तो उससे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि हर कॉरिडोर्स जो बने हैं लोगों में एक गाड़ी लेके सड़क में जाना देश भर में, ये कमी देखो दिल्ली बॉम्बे में आजकल बहुत लोग चले जाते हैं चला के, क्योंकि एक तो थ्रिल फैक्टर होता है कि रोड सही है, लेकिन साथ साथ में जो बिजनेस भी होते हैं, जो अलग अलग पोर्ट्स होते हैं बीच में, जो अलग अलग शहर या गांव में भी लोग जाते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि एक वाइब्रेंसी रहता है कि इस क्षेत्र में। और एक बात जो मैं देखता हूँ, जो रोड की हाईवेज की जो मेंटेनेंस है उसमें भी बहुत सुधार आया है। पहले आप जो जिस स्पीड में ये रेक्टिफिकेशन करेक्शन होते थे, आज वो बहुत जल्दी होते, तो मतलब ओवरऑल एक रोड क्षेत्र में और सेफ्टी को नजर में रखते हुए तो एक प्रयास रहे है।
1: तो इससे आपको लगता है कि जो नए नए इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सरकार हमेशा छोटे जो उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देती है, उनके लिए बहुत आसान होता है अपना सामान, या इवन फैक्ट्रीज के लिए जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचे, फैक्ट्री से जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट्स तक पहुंचे, सप्लायर्स तक पहुंचे, तो बहुत सहूलियत है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है बिजनेस वर्ल्ड के लिए भी।
0: जहां रेल नहीं है या बहुत जगह जहां रेल भी है वहां रोड नेटवर्क्स की इम्प्रूवमेंट होने के बाद हम देखे हैं कि

0: और बहुत दूर दूरस्थ इलाके के लोग भी आज एंटरप्रेन्योर्स हो रहे हैं और बाहर आके अपने सामान दे पा रहे हैं, या अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए भी इनकी मटेरियल्स भी ये मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये टू वे ट्रैफिक रोड क्षेत्र में उन्नति के लिए हो रहे हैं।
1: एक और जो बहुत फ्लैगशिप कहें कि जो स्कीम रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है एस्टेब्लिशमेंट, वो है चेनाब अंजी खांड रेल लिंक जो हिमालयाज में बना है। इसके बारे में आप बता सकते हैं, विश्व का कह रहे हैं कि हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है चेनाब, कितना ये बड़ी उपलब्धि है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, हमारी सरकार के लिए।
2: जब से ये कनेक्टिविटी हमारा श्रीनगर के साथ में बना है, तो ये अब मात्र 4 घंटे का, कटरा से 4 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं, जहां पर 12 घंटे लगते थे। और जब इसका जो आर्क ब्रिज को अगर आप देखेंगे, तो वहां जाके ऐसा लगता है जैसे मैं कि सपनों की दुनिया में हूं। और उसके अंदर उसमें जब ट्रेन गुजरती है और जो उसके पैसेंजर्स जब वो सीनरी देखते हैं कि दो पहाड़ों के बीच में, क्योंकि रेलवे लाइन दिखती तो नहीं है नीचे से, तो उसको वो दिखता है कि नीचे एक नदी बह रही है और आप हवा में है, क्योंकि ये एक सिग्नेचर ब्रिज की तरह से है। और नीचे उसका आर्क तो हमारे को एरियल व्यू से दिखता है, बट वो ऐसा दिखता है कि मैं पहाड़ों में कहां पर पहुंचा हूं। ये ऐसा सीन तो ना कोई सड़क है ना कुछ, आप पहाड़ के बीच में से और एक कुछ किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, तो उसके बीच में आप निकल के जा रहे हो। और तो वो देखने में ऐसा लगता है कि रमणीय है। हमेशा सेब के सीजन में श्रीनगर में बारिश आती थी, जिसकी वजह से वहां पर काफी जो सड़ जाता था उनका मटेरियल, और अब वो जो है, अगर वो बारिश आएगी बट वो जो गुड्स ट्रेन्स के थ्रू इसको फ्रेट को लेके आएंगे, और तो हमारी सप्लाईज मेंटेन रहेगी और वहां के फार्मर्स को बारिश का नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारा देश के लिए एक ऐसा स्वर्णिम अंश है जो कि हमने इतने सालों में सोचा भी नहीं था, वो हमारे सपने पूरे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी।
1: बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग मार्वल है, 260 किलोमीटर पर आवर तक की हवा को वो रिजिस्ट कर सकता है, और जो अंजी खाड ब्रिज है वो भी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन में ही पड़ता है, वो अर्थक्वेक्स को विदस्टैंड कर सकता है, और वो भी फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। सो आपको लगता है कि ये सब हमारा एक शोकेस करते हैं भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक क्षमता है, एक बढ़ती मजबूती है पूरे विश्व में भी।
2: यस, अभी क्या था कि जो वंदे भारत के जो इस ब्रिज के सिबुर रहमान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 10 दिन पहले, तो तब उन्होंने बताया था कि ये अर्थक्वेक के साथ में इसके ऊपर हमारा, बोले जी हमारे पास इतना इंतजाम है कि वो उस चीज के लिए भी हमने सेफ्टी का ध्यान रखा है। जैसा कि आपने बताया कि नेचुरल कैलामिटीज वगैरह और इंजीनियरिंग मार्वल्स, ये सारी चीजें हैं, तो हमारी सेफ्टी इज ऑल्सो इंश्योर्ड बाई द पुलिस एंड डिफेंस फॉर दिस ब्रिज ऑल्सो अलॉन्ग विद द आइकॉनिक व्यू ऑफ दिस ब्रिज।
1: सुबिमल जी, आपके पास आते हैं, जैसा आप कह रहे थे कि अब नॉर्थ ईस्ट पूरे हमारे देश से जुड़ गया है, जिससे उनके व्यापार को फायदा होता है, आवाजाही में फायदा होता है, टूरिज्म को फायदा होता है, साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया और आसियान कंट्रीज जो है उनके साथ भी एक जो जुड़ाव है वो अब संभव हो पा रहा है।
0: बिल्कुल हो पा रहा है, हो भी रहा है। ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी सरकार की है उस साउथ एशियन कंट्रीज के साथ लिंकेजेस बढ़ाने के लिए, वो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य को अलग अलग इनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से इनको तैयार किया जा रहा है। मेघालय की लकाडोंग हल्दी है, वहाँ के एक बड़ा स्पेशल हल्दी है, मिजोरम की जिंजर, सिक्किम की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नागालैंड की कॉफी, इसमें प्राथमिकता दे के, फंडिंग दे के, उसमें R&D करके लिंकेजेस कैसे आगे जा सकते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट हो सकते हैं, इसमें बहुत प्रयास हो रहा है। इसमें जो अब नए सारे एंटरप्रेनर्स ये सारे क्षेत्र में इन राज्यों से आ रहे हैं, इनके साथ साथ किस तरीके से राइस प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। अभी थाईलैंड से एक एडुकेशन की कोऑपरेशन के लिए गुवाहाटी और शिलोंग में पिछले हफ्ते बड़े एक डेलीगेशन आए थे वहां की यूनिवर्सिटीज की, तो इस तरीके से जो कनेक्टिविटी है उसमें प्रयास हो रहे।
1: क्या देखते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से जुड़ाव का पूरा, जैसा आपने वर्ड यूज किया कि जोश के साथ जो ये कार्य चल रहा है, आपको लगता है कि यही नींव होगी विकसित भारत की, इसके बल पर ही हम विकसित भारत बन पाएंगे 2047 तक?
2: पहले उन लोगों का, जब मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले, तो उनको हमारा देश भारत एक अलग देश लगता था, और आज वो लोग प्राउडली लीड करते हैं कि ये देश हमारा है। तो ये वाला चीज का जो चेंज मैंने जो देखा है, तो यस आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी कैन यूनाइटेडली से विकसित भारत।
1: सुभिमल जी, आप तो कुछ कहना चाहेंगे?
0: मैं ये कहूंगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रयास रहे, इसके साथ साथ और सारे कुछ प्रोजेक्ट्स रहे, जैसे डिजिटल पेमेंट्स आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में दूर दराज इलाका में वो पेमेंट कर पा रहे हैं, फिर साथ साथ में आपके आधार के जो ऑथेंटिकेशन, इनसे इन लोगों का बीच में एक एम्पावरमेंट की सेंस आती है कि हम भी सबके साथ एक साथ जुड़े हुए। जो प्रयास रहे है

0: विभिन्न तरीकों से पूरा भारत अब आपस में जुड़ रहा है।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 17वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा सीमाओं से शहरों तक जुड़ता भारत। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली के पूर्व उप परिवहन आयुक्त अनिल चिकारा और पूर्वोत्तर मामलों के जानकार सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संकेत।

इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। 10:20 पर आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुनः सुन सकेंगे। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: In quarter one, gross NPAs of banks are at multi-decadal low.
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गोशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
6: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम हो गई। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
7: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
6: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
8: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
6: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सेकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मिथ के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मिथ की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
9: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
10: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा।

आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोड और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold, and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. For India, Captain Harmanpreet Singh netted 2 goals, while Jugraj, Hardik and Shilanand scored 1 goal each. In men's cricket, India won the gold, defeating arch rivals Pakistan by 19 runs in the T20 final at Nishin. Wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57-kilogram gold after edging out North Korea's world champion Chong Song Han 11-7 in a fierce final. Kumkum Mohod won the individual gold medal in the women's recurve archery event. In golf, Pranavi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in the women's individual title. India also bagged silver in the team event. Wrestler Antim Panghal sealed a silver medal in the women's 53-kilogram category. Deepak Punia won bronze in the men's 97-kilogram freestyle wrestling event after defeating Mongolia's Gan Khuyag Ganbatar. Archer Neeraj Chauhan got bronze in the men's individual recurve event. With these impressive performances, India climbed to 4th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 85, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. Prime Minister Narendra Modi congratulated the men's cricket team on retaining their title at the Asian Games 2026. In a series of social media posts, Mr. Modi said this is indeed a joyous occasion for the nation. He also wished the team members for their future endeavours. Mr. Modi said the 2026 Asian Games have been truly special for Indian hockey. He congratulated the men's hockey team on retaining the Asian Games gold with a commanding victory in the final. The Prime Minister congratulated Pranavi Sharat Urs on winning India's first ever gold in women's individual golf at the Asian Games. He also congratulated Kumkum Anil Mahod on becoming the first Indian woman to win the recurve individual gold at the 2026 Asian Games. The Prime Minister congratulated Aman Sehrawat for scripting history by winning India's first ever Asian Games gold in the men's 57-kilogram freestyle wrestling event. He expressed happiness that 6 decades later, India's back on the podium in the men's 97-kilogram freestyle wrestling event at the Asian Games. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Marathwada and Vidarbha, some more parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Telangana and North Interior, Karnataka during the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India's economic strength and resilience have been built over past decades through fiscal prudence, infrastructure investment and consistent reforms. Union Minister Amit Shah says full implementation of the Bharatiya Nyaya Sanhita will transform India's criminal justice system. In Andhra Pradesh, 4 workers killed in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City. At the Asian Games, Indian men's hockey and cricket teams win gold medals. Wrestler Aman Sehrawat, archer Kumkum Mohod and golfer Pranavi Urs also clinch gold. India win 5 gold, 2 silver, 2 bronze medals today, climb to 4th place in medal tally with 85 medals, including 21 gold. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मालियाती एहतियात, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी और मुसलसल इस्लाहात के जरिए पिछली एक दहाई के दौरान भारत में इक्तिसादी ताकत और इस्तेहकाम आया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के मुकम्मल नफाज से भारत के फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में यकसर तब्दीली आएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में एक निजी सनती यूनिट में बॉयलर फटने के हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की हॉकी और क्रिकेट टीमों ने सोने के तमगे जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम महोद और गोल्फ खिलाड़ी प्रणवी उर्स ने भी सोने के तमगे हासिल किए। भारत ने आज सोने के 5, चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते। इसके साथ ही भारत सोने के 21 तमगों समेत कुल 85 तमगे जीतकर तमगों की फहरिस्त में चौथे मकाम पर पहुंच गया है। और अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा है कि मालियाती एहतियात, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी, बैंककारी इस्लाहात, खिदमात की फराहमी के बेहतर निजाम और मुसलसल इस्लाहात के जरिए पिछली एक दहाई के दौरान भारत में इक्तसादी ताकत और इस्तेहकाम आया है। नई दिल्ली में मुनक़िदा पांचवें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत ने GST, दिवालिया और दिवालियापन से मुतअल्लिक ज़ाबते और चार लेबर कोड्स के जरिए मुल्क के इक्तसादी निज़ाम को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता चार बरसों के इक्तसादी सतह पर नामसायद हालात का सामना मजबूत बुनियादी इक्तसादी हालात के साथ किया है। उन्होंने इस ज़िम्न में माली साल 2026-27 की पहली समाही में हकीकी GDP की 7.8% शरह तरक्की का जिक्र किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF के अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर कर्ज में इजाफे के रुझान के बरअक्स भारत के मजमूई सरकारी कर्ज का तनासुब GDP के मुकाबले में 2026 में 83.4% से कम होकर 2031 में 77.7% रहने का इम्कान है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मवेशी परवरी के शोबे के लिए एक मुकम्मल इको निज़ाम तैयार कर रही है। इसके तहत गोबर से बायोगैस और नामियाती खाद तैयार करने से लेकर डेयरी मसनूआत की प्रोसेसिंग और उन्हें मंडी तक पहुंचाने की सहूलत फराहम की जा रही है ताकि देही मईशत को नई रफ्तार फराहम की जा सके। भोपाल में रियासती सतह के गौपालक सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि मवेशी पालने वाले अफराद इमदाद बाहमी की वजारत की तश्कील से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वालों में शामिल हैं। मुल्क में फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के मुकम्मल नफाज के बाद भारत का फौजदारी इंसाफ का निज़ाम दुनिया के जदीद तरीन निज़ाम में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि BNS के मुकम्मल नफाज के बाद FIR दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमात का फैसला 3 साल के अंदर किया जा सकेगा।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की नई इमारत और सेंट्रल विस्टा के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
3: सेंट्रल विस्टा जदीद तरक्याती प्रोजेक्ट नई दिल्ली में मरकजी इंतजामिया और शहरी इलाके को नए सिरे से तैयार करने का एक बड़ा मनसूबा है। इस मनसूबे का मकसद सरकारी कामकाज को ज्यादा मौसर और आसान बनाना है। इसके लिए सरकारी दफातर को जदीद, बेहतर और जरूरत के मुताबिक बनाया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की तमाम 51 वजारतों, 10 कामन सेंट्रल सेक्रेटरियट में यकजा किया जाएगा। इससे अफसरान और मुलाजमीन सरकारी दस्तावेजात और सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल हो सकेंगे। नई पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किया था। नई पार्लियामेंट की इमारत की तामीर में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से हासिल किए गए सामान और मवाद का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के नजरिए की अक्कासी करता है। इस इमारत में अब सेंगुअल है, जिसे इक्तदार की मुंतकली की अलामत समझा जाता है। इस इमारत के 6 दाखिली दरवाजे हैं, जिनके नाम कदीम रिवायती मखलूकात के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें गच, अशु, ग्रोन, मकर, शार्दुल और हंस शामिल हैं। नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीय शहरियों की उम्मीदों और ख्वाबों की अक्कासी करती है।
2: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
3: माहौलियात के लिए साजगार होना इस मरकजी मंसूबे का अहम जुज है। इस मंसूबे के आसपास के पूरे माहौल को सरसब्ज और शादाब रखने में काफी मुआवनत हासिल होगी। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: आंध्र प्रदेश के सिरी सिटी के सत्यवेदु मंडल में एक बॉयलर के फटने से चार मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। दो मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए जबकि तीन को शदीद जख्मी हालत में करीब के अस्पतालों में दाखिल कराया गया जिनमें से दो दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। दीगर मजदूरों को इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में रखा गया है। वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस वाक़े पर इंतहाई गम का इजहार किया है। उन्होंने सीनियर हुकाम को मुतासर अफराद के अहल खाना को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी है। गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर ने महलूकीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश जाहिर की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय फजाइया के सरबराह एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि आलमी सतह पर कशीदगी के मौजूदा दौर में जब हर मुल्क कम मकदार में गोला बारूद और तैयारों के साथ साथ ऑपरेशनल निज़ाम और महदूद लॉजिस्टिक ज़राए के साथ काम कर रहा है, खुद किफालत आज की एक बुनियादी ज़रूरत है। नई दिल्ली में फजाइया के चौरानवीं योम तासीस से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फजाइया के सरबराह ने कहा कि खुद किफालत हासिल करने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस ताल्लुकात से मुतालिक मशावरती कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और रूस के दरमियान कसीर जहती तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। इनमें तजारत सरमायाकारी तवानाई राबिताकारी सकाफत और अवाम से अवाम के रवाबी जैसे शोबे शामिल हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए भारत की हिमायत को उजागर किया। वजारत तालीम ने क्लासिकी जबानों के मुताले के लिए महारत के 5 मराकज़ कायम करने को मंजूरी दी है। ये मराकज़ क्लासिकी आसामी, क्लासिकी बंगाली, क्लासिकी मराठी, क्लासिकी पाली और क्लासिकी प्राकृत जबानों के लिए कायम किए जाएंगे। इन मराकज़ का मकसद इन जबानों पर आला सतह की तहकीक, कदीम जबान व अदब को डिजिटल शक्ल में महफूज करना और इन जबानों के बारे में मालूमात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नई दिल्ली जिले में अवाम की हिफाजत अमनो

सामान और गाड़ियों की बिला रुकावट आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की दफा 163 नाफिज है। एक अवामी नोटिस में नई दिल्ली के डीसीपी ने कहा कि गैर मजाज इज्तिमाआत, अवामी तकारीर, नारेबाजी, जुलूस, मुजाहरे, धरने और दिगर मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। पुलिस ने मजीद कहा कि आज के लिए किसी भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई है और न ही ऐसे किसी एहतजाज के बारे में नई दिल्ली जिला पुलिस को पहले से कोई इत्तला मौसूल हुई है। दिल्ली पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो मस्कूरा हुक्म की सख्ती से पाबंदी करें और पुलिस के साथ तआवुन करें। वज़ीर आला नायब सिंह सैनी के हमरा हरियाणा के तमाम बीजेपी अरकान असेंबली ने आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ अहम मौजूदात पर बामानी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान आवाम की बेहतर से बेहतर खिदमत करने और अवामी फलाह बहबूद की खातिर मजीद मुअसर अंदाज में काम करने पर भी तबादले ख्याल किया गया। अमरीका ने 50 ऐसे मुल्कों की फहरिस्त जारी की है जिनके शहरियों को सियाहती वीज़ा और कारोबारी वीज़ा के लिए $20,000 तक वीज़ा बॉन्ड देना होगा। भारत को इससे मुस्तस्ना रखा गया है जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे जनूबी एशियाई ममालिक इसमें शामिल हैं। अमरीकी महकमे खारजा ने कल इन मुल्कों की एक तब्दील शुदा फेरी जारी की जिनके शहरियों को B1-B2 वीज़ा के लिए क्वालिफाई करने पर मालियाती बॉन्ड जमा करने होंगे। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकल में कल कहीं कहीं शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा कि अगले दो दिन के दौरान मराठवाड़ा और विदर्भ के बाकी इलाकों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक के शुमाली अंदरूनी इलाकों से जनूब मगरबी मानसून के खत्म होने का इम्कान है। भारत ने जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सोने के 5, चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। भारत ने जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सोने के 5, चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते। हॉकी में भारत ने मलेशिया को 5-1 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता और 2028 में लॉस एंजलिस में मुनक़िद होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने T20 फाइनल में रवायती हरीफ पाकिस्तान को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता है। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने मर्दों के 57 किलोग्राम के जुमरे में शुमाली कोरिया के आलमी चैंपियन चुंग सॉन्ग हान को फाइनल में 11-7 से शिकस्त दी। खवातीन के इनफरादी तीरंदाजी मुकाबले में कुमकुम महोद ने सोने का तमगा जीता। गोल्फ में प्रणवी उर्स ने खवातीन के इनफरादी खिताब में एशियाई खेलों में सोने का तमगा जीतने वाली भारत की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। भारत ने भी टीम मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल कर लिया है। पहलवान अंतिम अंघल ने खवातीन के 53 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। दीपक पुनिया ने मर्दों के 97 किलोग्राम के जुमरे में मंगोलिया के गैन कुमाएंग बाजार को शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता। तीरंदाज नीरज चौहान ने मर्दों के इनफरादी रिकर्व मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल किया है। मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत तमगों की फहरिस्त में भारत चौथे मकाम पर पहुंच गया है। भारत के तमगों की तादाद 85 हो गई है जिसमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। ने कहा कि ये कामयाबी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि मर्द और खवातीन दोनों टीमें चैंपियन हो गई हैं। न्यू चंडीगढ़ के मुलापुर में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैन अलावामी मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज के सामने जीत के लिए 352 रन का निशाना रखा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रा 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 351 रन बनाए। KL राहुल ने बगैर आउट हुए 87 गेंदों में शानदार 129 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 92 रन और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन बनाए। अंशुल कंबोज ने अपना पहला एक रोजा बैन अलावामी मैच खेला। इसी तरह नीतीश रेड्डी की टीम में वापसी हुई है। मोहम्मद सिराज भी सीरीज में अपना पहला मैच खेल रहे हैं। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम ने अब से कुछ देर पहले तक 31 ओवर्स में 3 विकेट पर 216 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मालियाती एहतियात, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी और मुसलसल इस्लाहात के जरिए पिछली एक दहाई के दौरान भारत में
اقتصادی طاقت اور استحکام آیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارتیہ نیائے سنہتا کے مکمل نفاذ سے بھارت کے فوجداری انصاف کے نظام میں یکسر تبدیلی آئے گی. آندھرا پردیش کے سری سٹی میں ایک نجی صنعتی یونٹ میں بوائلر پھٹنے کے حادثے میں 4 مزدوروں کی موت ہو گئی ہے. ایشیائی کھیلوں میں بھارتی مردوں کی ہاکی اور کرکٹ ٹیموں نے سونے کے تمغے جیتے. پہلوان امن سہراوت، تیرانداز کمکم مہود اور گولف کھلاڑی پرنوی ارس نے بھی سونے کے تمغے حاصل کیے. بھارت نے آج سونے کے 5 چاندی کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا.

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, पर ऐसा मन मिला कि जरा से प्यार में डूबा रहा और जीवन बीत गया। साहित्य के आकाश पर कुछ हस्ताक्षर ऐसे होते हैं जिनकी रचनाएं समय की धूल में धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि वक्त के साथ और अधिक प्रखर होती चली जाती हैं। इस वर्ष हम भारतीय कविता के शिखर पुरुष कवि रत्न कुंवर नारायण का जन्मशती वर्ष मना रहे हैं। कुंवर नारायण का संपूर्ण रचना कर्म इस बात का साक्षी है कि एक संवेदनशील रचनाकार अपने युग के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ से किस प्रकार संवाद स्थापित करता है। चक्रव्यूह, आत्मजयी, अभिज्ञेय और कुमार जीव तक उनकी कविताओं में पौराणिक कथा संदर्भों के माध्यम से आधुनिक समाज के जटिल अंतर विरोधों और मानवीय विडंबनाओं का बेहद गंभीर अंकन मिलता है। पर वहाँ कविता भी है। वो जहाँ एक ओर मनुष्य के नितांत एकांत और आंतरिक संघर्ष पर विमर्श करते हैं, वहीं दूसरी ओर युग जीवन की उथल पुथल को भी पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी कविता का मुख्य स्वर बनाते हैं। कुंवर नारायण के इसी सृजनात्मक लेखन शैली के अलग अलग अंतः सूत्रों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामेश्वर राय।
1: कुंवर नारायण भाषा के स्तर पर, विचार के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर हमें समृद्ध करते हैं कि उनकी भाषा ठहरी हुई भाषा नहीं है। जिस तरह से हिंदी कविता में छायावाद की भाषा को आप फ्रेम कर सकते हैं, आप उसको पढ़कर कह सकते हैं कि ये छायावाद की भाषा है या ये प्रसाद की भाषा है, ये महादेवी की भाषा है। कुंवर नारायण की रचनाएं भाषा को एक निश्चित ढांचे या मुहावरे में कैद कर लेने की छूट नहीं देती। इसलिए उनकी भाषा के तीन तहें हैं। दरअसल पहली तह वो है जहाँ पर कुंवर नारायण की कविताओं का मिजाज दार्शनिक है। उस दार्शनिकता को व्यक्त करने के लिए कुंवर नारायण जिस भाषा को विकसित करते हैं वो अभिजात्य संस्कृतनिष्ठ भाषा है, वो आत्मजयी की भाषा है। दूसरा, कुंवर नारायण की कविताएं खास तौर पर जो इतिहास पर हैं, जैसे उन्होंने फतेहपुर सीकरी पर, दिल्ली पर, लखनऊ पर जो कविताएं लिखी, उनकी कविताओं में उर्दू के शब्द आते हैं, डिक्शन भी उनका उर्दू के करीब जाता है। और तीसरे तरह की वे कविताएं हैं जहां पर वो जीवन के सामान्य अनुभवों को दर्ज करते हैं, वहां बोलचाल की भाषा भी है। तो आप देखेंगे कि कुंवर नारायण की कविताएं कविताओं की भाषा परतदार भाषा है, जिसमें तत्समता भी है, जिसमें उर्दू भी है और जिसमें बोलचाल की भी है। निर्भर करता है कि वो कविता किस विषय पर, किस इलाके में लिखी गई है। मोटे तौर पर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि भाषा एक अलग किस्म की चीज़ है और अंतर्वस्त्र कुछ अलग किस्म की चीज़ है। जिस प्रकार किसी भी छिलके को उसके फल से अलग नहीं

0: की भाषा में संकोच, शालीनता और एक गहरी मध्यम आँच थी, मानो वे शोर से किसी दूर एकांत में बैठकर खुद अपने ही वजूद से बहस कर रहे हों। आज जब हमारी युवा पीढ़ी एक अजीब से मानसिक भंवर और लगातार पीछा करते सेल्फ डाउट से गुजर रही है, तो कुंवर नारायण की ये ठहरी हुई लेखन शैली एक मुकम्मल इलाज की तरह सामने आती है। वो हमें सिखाते हैं कि हर उलझन का तुरंत जवाब पाना जरूरी नहीं, कभी कभी सवालों के साथ चुपचाप जीना भी एक बड़ी बौद्धिक ताकत है। और अब इस दार्शनिक था से बाहर निकलकर साहित्य के कुछ और पन्ने पलटते हैं, एक दूसरे अध्याय का रुख करते हैं। साहित्य लेखन में शालीनता और तहजीब के नाम पर हमेशा से कुछ तयशुदा लकीरें खींच दी जाती हैं, खास तौर पर तब जब बात एक स्त्री के लिखने, बोलने और सोचने की हो। लेकिन उन तमाम गढ़ी हुई सीमाओं को अपने बेबाक अक्खड़ कलम से बीच से चीर देने का हुनर अगर किसी ने सबसे पहले आजमाया तो वो थी इस्मत चकताई। सुनिए हमारी ये प्रस्तुति, कागजी है पैरहन।
1: आने वाली 24 तारीख उर्दू कथा साहित्य की उन ग्रैंड डेम की याद को समर्पित है जिन्होंने पितृ सत्तात्मक साचों को पहली बार बौद्धिक धरातल पर चुनौती दी।
2: बदायूं के रूढ़ीवादी कुनवे की तंग दीवारों से लेकर जिंदगी भर की आजमाइशों तक इस्मत का वजूद मुसलसल बगावत था।
1: छुई मुई, बैलेंस शीट और उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर ने उस मध्यम वर्गीय यथार्थ को कागज पर उतारा जिससे मुख्य धारा का साहित्य अक्सर आंखें चुरा लेता था।
2: उन पर अश्लीलता के इल्जाम मढ़े गए और अदालतों के कटघरे खड़े किए गए।
1: मगर अदालत में पेशियों के उस दौर के बीच भी सादत हसन मंटो के साथ उनकी वो बेपरवाह संगति इस बात की गवाही थी कि वो किसी भी कानूनी पहरे से दबने वाली कथाकार नहीं थी।
2: और आगे चलकर जब वक्त ने उनके इस विद्रोही साहस के महत्व को स्वीकार किया तो साहित्य में उनके इस अनूठे अवदान के लिए उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी सम्मान से भी अलंकृत किया गया।
1: अदब की इस महफिल में इस्मत चुगताई के तीखे फलसफे और उनकी कहानियों के ताने बाने को अपनी दस्तकारी से सजा रहे हैं कलाकार उदित यादव और आमना।
3: जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खिलने में है निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। इस्मत से मेरी पहली मुलाकात के नक्श अभी तक दिलो दिमाग में महफूज हैं। बहुत ही सादा लिबास में थी, छोटी कन्नी की सफेद धोती, सफेद जमीन का काली खड़ी लकीरों वाला चुस्त ब्लाउज, हाथ में छोटा पर्स, पाँव में बगैर एड़ी का ब्राउन चप्पल, मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक, छोटे मगर घुंघराले बाल, जरा सा मुस्कुराने पर भी गालों में गड्ढे पड़ जाते थे।
4: इस्मत पर लिखने के दौरे पड़ते हैं, ना लिखे तो महीनों गुजर जाते हैं, पर जब दौरा पड़े तो सैकड़ों सफ़े उसके कलम के नीचे से निकल जाते हैं। खाने पीने नहाने धोने का कोई होश नहीं रहता, बस हर वक्त चारपाई पर कोहनियों के बल औंधी लेटी अपने टेढ़े मेढ़े आराब और इमला से बेनियाज खत में कागज़ों पर अपने ख्यालात मुंतकिल करती रहती है। टेढ़ी लकीर जैसा तूल तवील नावल मेरा ख्याल है इस्मत ने कुछ 7-8 नशिस्तों में ख़त्म किया था। उसका कलम और उसकी ज़बान दोनों बहुत तेज़ हैं, लिखना शुरू करेगी तो कई मर्तबा उसका दिमाग आगे निकल जाएगा और अल्फाज बहुत पीछे हाफते रह जाएंगे। बातें करेगी तो लफ्ज़ एक दूसरे पर चढ़ते जाएंगे। शेखे बगाड़ने की खातिर अगर कभी बावर्ची खाने में चली जाए तो मामला बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तबीयत में चूंकि

0: बहुत ही उजलत है, इसलिए आटे का पेड़ा बनाते ही सिकी सिकाई रोटी की शक्ल देखना शुरू कर देती है। इस्मत की तबीयत में जिद है, बिल्कुल बच्चों की सी। पहले शादी से इनकार करती रही, जब आमादा हुई तो बीवी बनने से इनकार किया। बीवी बनने पर जो तो रजामंद हुई तो माँ बनने से मुनकिर हो गई। तकलीफें उठाएगी, सोबतें बर्दाश्त करेगी, मगर जिद से कभी बाज नहीं आएगी। मैं समझता हूँ ये भी उसका एक तरीक़ा है, जिसके ज़रिए वो ज़िंदगी के हकायक से दो चार होकर बल्कि टकरा कर उनको समझने की कोशिश करती है। वो कहती है,
1: भाई मैं बोल्ड इसलिए हूँ क्योंकि भाइयों के साथ पली थी। सीना, पिरोना, काढ़ना और बुनना, इन सब चीज़ों में मेरा कभी जी ही नहीं लगा। और रोने, गला फाड़ कर चिल्लाने में हम सब भाई बहनों को खासी महारत हासिल थी। हमारी अम्मा बौखला कर हमारा कहना मानने पर मजबूर हो जाती। हमें अपनी इस ताकत का शिद्दत से एहसास था। बच्चे रो पीट कर ही अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं।
0: अम्मा के हाथ अगर पड़ जाऊं तो खामखा ही मार देती थी। हम पूछते कि भाई क्यों मारा है, हमने कुछ भी शरारत नहीं की, तो जवाब में कहती, आज नहीं की तो कल करोगी। लेकिन फिर भी बड़ी प्यारी लगती थी। पता नहीं इतना मारती थी तब भी मुझे क्यों इतनी अच्छी लगती थी।
1: खैर साहब, बचपन जैसे तैसे बीता। ये कभी पता न चला कि लोग बचपन के बारे में ऐसे सुहाने राग क्यों अलापते हैं। बचपन नाम है बहुत सी मजबूरियों का, महरूमियों का। बड़े होकर एक पोजीशन बनती है जो नाइंसाफियों का मुकाबला करने की ताकत बख्शती है। 8 बड़े भाई बहनों की शफकतें झेलने के बाद बड़े होने का बेचैनी से इंतजार था। जब घर में छोटे भांजे भतीजे पैदा होने लगे तो अपनी बुजुर्गी का एहसास नहायत तसल्ली बख्श साबित हुआ।
0: मेरी बहनें नहायत सुघड़ थीं। उर्दू, फारसी, कुरान शरीफ के अलावा कशीदकारी, बुनाई, सिलाई और खाने पकाने में मशा, और मैं नहायत फुहड़। भाइयों की नकल में पेड़ों पर चढ़ना, साइकिल दौड़ाना, हर जगह मुझे अपनी शिकस्त का एहसास होता। उन्हें भी मुझ पर तरस क्यों आता आखिर? मैं अब्बा की शह पर उनकी बराबरी पर तुली हुई थी। अजीम भाई हमेशा के बीमार ही थे। मैं लड़की होने की वजह से भाइयों के साथ ना निभा सकती थी और वो बीमारी की वजह से मजबूर थे। पर साहब उन्हें कुछ मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने मुझे बताया कि लड़के तो बैल होते हैं, तुम बैल क्यों बनो, पढ़ाई में तुम उनसे टक्कर लो, वहां तुम उन्हें मार लोगी। फिर उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाना शुरू किया। 2 बार मुझे डबल प्रमोशन दिलवाया। उनकी शह पाकर मैंने कुरान का तर्जुमा, हदीसें और इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी और अपने अब्बा के बुजुर्ग दोस्तों के बीच बैठकर अपनी ताज़ा ताज़ा मालूमात का इजहार करना शुरू किया। मगर अब्बा की शह पाकर मैंने अपने वालिद के मुअम्मरी दोस्तों की सोहबत में बहुत कुछ सीखा।
1: मेरी अम्मा को मेरी हरकतें एक आंख ना भाती थी। मेरे अंजाम की उन्हें सख्त फिक्र थी। ये मर्द मार बातें औरतों को जेब नहीं देती। वो इतनी गहराई से ना इन बातों को समझती थी और ना समझा सकती थी। मगर मुझे मालूम हुआ कि मेरी अम्मा क्यों डरती थी। ये मर्द की दुनिया है, मर्द ने बनाई और बिगाड़ी है। औरत एक टुकड़ा है उसकी दुनिया का, जिसे उसने अपनी मोहब्बत और नफरत के इजहार का जरिया बना रखा है। वो उसे मूड के मुताबिक पूछता भी है और ठुकराता भी है।
0: मैंने अपनी जिंदगी के नहायत दिलचस्प और नहायत ही कठिन लम्हे लिखने के सहारे झेले हैं। ये कलम मेरा रज़ाक भी है और हमदम भी, तन्हाई का बोलता चालता दोस्त भी। उसकी मौजूदगी में मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। मैं जब चाहूँ इस उड़न खटोले के जरिए जिसे चाहूँ बुला लूँ, और जब वो आए तो जी चाहे उनसे कहूँ, हंसाऊँ, रुलाऊँ या जी जलाकर खाक कर दूँ, फिर मूड आए तो पुर्जा पुर्जा करके फना कर दूँ, कठपुतलियों की तरह पुतले बनाकर जैसे चाहूँ नचाऊँ।
1: मैंने चोरी चुपके जब अंगारे पढ़ी, रशीद आपा ही मुझे एक ऐसी हस्ती नजर आईं जिन्होंने मुझ में खुद एतमादी पैदा की। मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। अलीगढ़ की छोटी जहर आलूद फिजा में वो बड़ी बदनाम थी। मेरी साफगोई को उन्होंने सराहा और फिर मैंने उनकी बताई हुई किताबें चाट डाली। फिर मैंने लिखना शुरू किया और मेरा ड्रामा फसादी साखी में छपा। उसके बाद और कहानियां लिखी और कोई कहानी

0: कहानी रद्द नहीं हुई। एकदम मुझ पर एतराज होने लगे, लेकिन रिसालों से मेरी कहानियों की मांग बढ़ने लगी। मैंने एतराजात की कोई परवाह न की। मंटो के फोन से मालूम हुआ कि उस पर भी मुकदमा चला है, उसी कोर्ट में उसी रोज उसकी भी पेशी है। फिर सफिया और मंटो दौड़े आए। मंटो निहायत हशाश बशाश, जैसे किसी ने विक्टोरिया क्रॉस दे दिया हो। मैं दिल में बड़ी नादिम थी, बज़ाहिर बहादुरी जता रही थी, मगर मंटो से मिलकर शाहिद की भी ढारस बन गई और मुझे बड़ी तसल्ली हुई। दिल में तो धकड़ पकड़ हो रही थी, मगर मंटो ने वो शह दी कि मेरा भी डर निकल गया। कहने लगा, अरे एक ही तो मार्खे की चीज़ लिखी है आपने। अमा शाहिद, तुम भी क्या आदमी हो यार, तुम भी चलना, तुमने जाड़ों का लाहौर नहीं देखा।
1: चुप करो मंटो साहब, सफिया नर्वस होने लगी और फिर मुगलजात के भरे खत कुत का तांता लग गया। ऐसी अनोखी पेचदार भारी भरकम गालियां कि मुर्दे के सामने बक दी जाएं तो उठकर भाग जाए। मुझे ही नहीं, मेरे पूरे खानदान को, शाहिद को और मेरी 2 महीने की बच्ची को, कि उसकी पैदाइश की खबर कहीं छप गई थी। मुझे अपनी डाक से डर लगता था, जैसे लिफाफों में सांप बिच्छू और अजगर बंद हों। डरते डरते खत खोलती, अगर सांप बिच्छू दिखाई पड़ते तो 2 लफ्ज़ पढ़कर खत जला देती। अगर शाहिद के हाथ खत पड़ जाता तो फिर तलाक की नौबत आ जाती। मुझे अपने जुर्म का एतराफ़ था, सिर्फ मंटो एक ऐसा वाहिद इंसान था जो मेरे इस बुजदिलाना रवैये पर भड़क उठता था। मैं खुद अपने खिलाफ थी और वो मेरी हिमायत करता था। तरक्की पसंदों ने ना मुझे फटकारा ना मेरी तारीफ की, और मुझे इस रवैये से बड़ा इत्मीनान होता था। मैं खुशकिस्मत हूँ कि जीते जी मुझे समझने वाले पैदा हो गए। मंटो को तो पागल बना दिया गया, तरक्की पसंदों ने भी उसका साथ ना दिया। मुझे तरक्की पसंदों ने ठुकराया नहीं और ना ही सर पर चढ़ाया। मैं बहुत आसूदा हाल थी, फिल्मों से हमारी बहुत अच्छी आमदनी थी और अदबी मौत या जिंदगी की परवाह ना थी। और वैसे मैं तरक्की पसंदों की खुद भी चमची बनी हुई थी और बड़े जोर शोर से इनकलाब ला रही थी।
0: पतरस बुखारी ने इस्मत के बारे में लिखा था कि हमें इस बात को तस्लीम करने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि इस्मत की शख्सियत उर्दू अदब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कुछ ऐसी पुरानी फसीलों में रखने डाल दिए हैं कि जब तक वो खड़ी थी कई रास्ते नजरों से ओझल थे। इस कारनामे के लिए उर्दू जानने वालों को ही नहीं बल्कि उर्दू के अदीबों को भी उनका एहसान मंद होना चाहिए।
1: इस्मत फुहश निगार है। हल्का हल्का तंज और मजा इस्मत के स्टाइल की मुमताज खूबियां हैं। इस्मत तलवार की धार पर चलती हैं, उन पर बहुत कुछ कहा गया है और कहा जाता रहेगा। कोई उन्हें पसंद करेगा, कोई नापसंद, लेकिन लोगों की पसंदीदगी और नापसंदीदगी से ज्यादा अहम चीज इस्मत की तख्लीकी कुव्वत है। बुरी भली जैसी भी है, कायम रहनी चाहिए। अदब का कोई जुग्राफिया नहीं, उसे नक्शों और खाकों की कैद से जहां तक मुमकिन हो बचाना चाहिए।
0: कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं,
1: तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं,
0: तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं,
1: तेरी

0: अभी आपने सुनी इस्मत चगताई के बागी और बेखौफ जीवन पर आधारित एक जीवंत दास्तान कागजी है पैरहन, जिसे प्रस्तुत किया उदित यादव और आमिना ने। साहित्य की इस दुनिया के भी अजीब रंग हैं। अगर आप इस्मत आपा के उपन्यासों और कहानियों के पन्नों को पलटें, तो वहां चांद कोई आसमान का सजावटी खिलौना नहीं, बल्कि वो किरदारों के अकेलेपन का खामोश गवाह बनता चलता है। जैसे उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर में शमन का कमरा हो, या फिर उनकी कहानियों में कोठरियों की घुटन, जहां आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा और खिड़की से झांकता वो चांद ही पात्रों की तन्हाइयों का इकलौता हमराज होता है। शरद पूर्णिमा की रात, जब गगन धुले हुए दूधिया प्रकाश से नहाया सा रहता है, जब इस रात की ठंडी और रेशमी चांदनी आंगन की सिलवटों को छूती है, तो हवा में एक अजीब सा नशा और खामोशी घुल जाती है। ये सिर्फ शरद का चांद नहीं, बल्कि सदियों से कवियों की रूह में उतरता वो जादुई एहसास है, जो हर दिल की अनकही धड़कनों को अल्फाज दे जाता है। महाकवि कालिदास के मेघदूत से लेकर रीतिकाल के कवियों तक, और आधुनिक काल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में, जहां चांद कभी सपने की तरह उतरता है, या फिर हरिवंश राय बच्चन या शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में वो तन्हाई और प्रेम का हमसफर बनकर चमकता है, दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हो या फिर सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति चित्रण, हर बड़े रचनाकार ने शरद पूर्णिमा के इस चांद को अपनी संवेदनाओं का आईना बनाया है। आइए चांद और कविताओं के इसी रुपहले ताने बाने को सुनते हैं हमारी अगली लघु प्रस्तुति चांद कविताओं का हम सफर में।
1: सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक कविता है चांदनी चुपचाप। चांदनी चुपचाप सारी रात सूने आंगन में जाल रचती रही, मेरी रूपहीन अभिलाषा अधूरेपन की मध्यम आंच पर नचती रही, व्यथा मेरी अनकही आनंद की संभावना के मनश्चित्रों से परचती रही। मैं दम साधे रहा, मन में अलक्षित आंधी मचती रही, प्रातः बस इतना कि मेरी बात सारी रात उघड़ कर वासना का रूप लेने से बचती रही।
2: शरद पूर्णिमा की रात, आसमान में खिला चांद और उसकी चांदनी। भारतीय साहित्य में चांद का ये रूप सिर्फ प्रकृति का सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक बेहद ही आत्मीय माध्यम भी रहा है।
3: भक्ति काल के कवियों से लेकर आधुनिक दौर के रचनाकारों तक, चांद ने प्रेम, विरह, स्मृति और जीवन के अनेक भावों को शब्द दिए हैं। कविता में चांद के इसी बदलते रूप और उसके साहित्यिक उपख्यानों पर एक नजर डाल रही हैं डॉक्टर रिजवाना फातिमा, पूर्व शिक्षिका, दिल्ली विश्वविद्यालय।
4: हिंदी कविता में चांद केवल आकाश में चमकने वाला एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि वह प्रेम, सौंदर्य, विरह, स्मृति, कल्पना, अकेलेपन और मानवीय संवेदनाओं का एक बहुआयामी प्रतीक है। चांद को किस रूप में देखा जाता है, ये कवि की दृष्टि उसकी भावभूमि, सामाजिक संदर्भ और काव्य परंपरा पर निर्भर करता रहा है। चांद को सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता रहा है। चांद का उज्ज्वल चेहरा, उसकी शीतलता, उसकी आभा, प्रेम की कोमलता तथा आकर्षण को वो व्यक्त करती है। लेकिन इसके साथ ही भक्तिकालीन कविता की अगर मैं बात करूँ तो सूरदास, उन्होंने वहाँ पर चांद को खिलौने के तौर पर प्रयुक्त किया है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, कृष्ण जिद कर रहे हैं अपनी माता से कि वो चांद रूपी खिलौना लेना चाहते हैं। चांद जो है वो प्रतीक रहा है मानवीय संवेदनाओं का, जो मानवीय रिश्ते हैं हम रीतिकाल से निकल कर के रीतिकालीन कविता की तरफ जब आते हैं तब देखते हैं कि वहाँ पर चांद जो है वो विरह और अकेलेपन के साथ में प्रिय व्यक्ति की भी याद दिलाने का कार्य करता है, नायिका के मुख के सौंदर्य की भी बात करता है। उदाहरण के तौर पर बिहारी की कविता को लिया जा सकता है। कहते हैं, पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्य रहे आनन उपजास। मतलब कि नायिका का जो मुख है उसकी आभा के सामने चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़ रही है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि नायिका के घर के आसपास जो आसपास हमेशा ही पूर्णिमा बनी रहती है क्योंकि उसका मुख का उजाला ही इतना देख है। चांद से भी श्रेष्ठ नायिका का मुख है। ये केशव ने रामचंद्र का में सीता के मुख के सामने चंद्रमा को दोषयुक्त सिद्ध किया है। तो कुल मिलाकर के जो चांद है वो हमें अलग अलग रूपों में आता हुआ दिखाई देता है कविता।
2: शरद पूर्णिमा के चांद का भारतीय साहित्य और परंपरा में विशेष आध्यात्मिक महत्व भी है। शरद पूर्णिमा की चांदनी में छिपे इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए सुनिए दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर निशा नाग पुरोहित को।
5: शरद चांदनी मेरा अंतः स्पंदन तुम भी क्षण क्षण जी लो। यह जीवन केवल वही जीवन नहीं है जो इस लोक में बिताया गया है। शरद चांदनी का महत्व आध्यात्मिक भी है। इस आध्यात्म में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कृष्ण रूपी परमात्मा, गोपिकाएं रूपी आत्माएं और उन सब का मिलजुल कर होने वाला नृत्य अर्थात शरद चांदनी का यह सुंदर उत्सव बहुत आगे तक आध्यात्मिकता को छू लेने वाला है। मणिपुरी रास लीला में शरदोत्सव का या शरद रास का विशेष महत्व है। आगे अपनी कविता में लिखते हैं, शरद चांदनी बरस रही है अंजलि भर पी लो तुम भी क्षण क्षण जी लो। शरद ऋतु यही तो वो है जिसकी कवियों ने लेखकों ने बहुत प्रशंसा की है।
3: सदियां बीत गईं, दौर बदल गए, लेकिन चांद को निहारने और उसे शब्दों में पिरोने का सिलसिला आज भी जारी है। कभी वो प्रेम का प्रतीक बनता है तो कभी विरह और स्मृतियों का।
2: ये चांद है जो हर दौर में कवियों की कल्पना को रोशनी देता रहा है और आज भी कविताओं में अपनी जगह बनाए हुए है।
3: काव्य वाचन स्वर सौम्या वाजपेयी, छात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं हूँ प्रांजल।
0: चांद, कविताओं का हम सफर। अभी आपने सुनी ये विशेष लघु प्रस्तुति। ऋतुओं के बदलते रंगों के बीच जब हवाओं में त्योहारों की आहट और मौसम में गुलाबी सी ठंड घुलने लगती है तो ये महीना अपने साथ केवल ऋतु परिवर्तन की ही अनुभूति नहीं लाता बल्कि साहित्य की उन अमर स्मृतियों को भी हमारे सामने लाता है जिनकी आभा समय बीतने के साथ और गहरी होती जाती है। वो नाम हमारी भाषा में होते हैं, हमारी स्मृतियों में होते हैं और कभी कभी हमारे अपने अनुभवों में भी। सबसे पहले स्मरण कथा सम्राट प्रेमचंद का, जिन्होंने साहित्य को गांव, खेत और आम जीवन की धड़कनों से जोड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने कविता को रूढ़ बंधनों से मुक्त कर उनमें स्वाधीन चेतना, विद्रोह और करुणा के स्वर भरे। शीला शुक्ल, जिन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से समाज की विरूप विसंगतियों को सामने रखा। भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य के भीतर के द्वंद और जीवन के जटिल प्रश्नों को स्वर दिया। आधुनिक हिंदी कहानी और वैचारिक बहस को नया तेवर देने वाले पुरोधा राजेंद्र यादव। असरार उल हक मजाज, जिनकी शायरी में रूमानी संवेदना के साथ अपने समय की बेचैनी भी दर्ज है। तन्हा दिलों और संघर्षशील इंसानों के पक्ष में बेबाक और खूबसूरत गीत लिखने वाले साहिर लुधियानवी और अपनी सादगी भरी जुबान से जिंदगी के फलसफे को आम आदमी तक पहुंचाने वाले नायाब रचनाकार निदा फाजली। इन सभी साहित्यिक विभूतियों की स्मृति और उनके अमूल्य साहित्यिक अवदान को नमन करते हुए साहित्य भारती का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों की स्पर्धाएं आज तकरीबन समाप्त हो गईं। दो सप्ताह का खेल मेला, शानदार जानदार प्रदर्शन की खुशी तो कहीं चूक जाने का गम, या फिर अपने तई हर संभव प्रयास न कर पाने का मलाल, यही तो खेल है। खेलों का रोमांच है, खेलों का जुनून है, उनका जादू है। खेल आपको खुद को साबित करने का दूसरा मौका भी जरूर देता है, किसी दूसरी जगह किसी दूसरे समय। एक और बड़ी बात, ऐसे खेल मेले दूर दराज के खिलाड़ियों से मिलने, सोच को साझा करने, आत्मीयता जगाने का भी अवसर देते हैं और अपनी संस्कृति को दूसरे तक पहुंचाने का भी। आईची नगोया एशियाई खेलों पर अपनी दैनिक हाइलाइट्स के साथ उपस्थित हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। पुरुष हॉकी में भी स्वर्ण पदक आया और 2028 ओलंपिक का टिकट भी। क्रिकेट में भारत की बादशाहत बरकरार, बना चैंपियन। कुश्ती में आज तीनों रंग के एक एक पदक आए। गोल्फ में हुआ कमाल, प्रणवी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, टीम रजत भी। आर्चरी में कुमकुम का कमाल, महिला स्वर्ण पदक पे निशाना लगाया। पुरुष हॉकी में भारत ने आज गजब का फाइनल खेला मलेशिया के विरुद्ध, 5-1 से धमाकेदार जीत और एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल पाया और पहली बार महिला और पुरुष दोनों गोल्ड मेडल भारत ने एक ही गेम में जीते। लेकिन पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में चिर प्रतिद्वंदी थे आमने सामने भारत और पाकिस्तान। पिछले काफी समय से भारत इस प्रतिद्वंदिता में लगातार हैवीवेट बना रहा है और आज भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। भारत की जीत और स्वर्ण पदक की पूरी आशा थी जो खिलाड़ियों ने आसानी से पूरी कर दी। पहले बैटिंग कर 200 प्लस का स्कोर खड़ा करके मैच की मीमांसा मेघा से।
2: इंडिया हैव कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन क्रिकेट एट द एशियन गेम्स। द इंडियन मेंस टीम डिफीटेड पाकिस्तान बाय 19 रन्स इन द फाइनल टू सक्सेसफुली डिफेंड देयर एशियन गेम्स टाइटल। बैटिंग फर्स्ट, इंडिया पोस्टेड एन इंपोजिंग 211 फॉर 6। अभिषेक शर्मा लेड द चार्ज विद अ ब्लिस्टरिंग 61 ऑफ 28 डिलीवरीज, इंक्लूडिंग 7 सिक्सेस एंड 3 फोर्स। ही ब्रॉट अप हिज हाफ सेंचुरी इन ओनली 20 बॉल्स। तिलक वर्मा प्रोवाइडेड द फिनिशिंग फ्लरिश विद एन अनबीटन 51 ऑफ 22 बॉल्स, हेल्पिंग इंडिया क्रॉस द 200 मार्क। Pakistan's trees got off to a difficult start as India's spinners made early inroads. Akshar Patel picked up two important wickets, leaving Pakistan struggling at 76 for 3 at the halfway stage. Hasan Nawaz kept Pakistan's hopes alive with a fighting 96, but India held their nerve to restrict Pakistan to 192 for 6. This victory completes India's cricket double at the Games. The women's team had earlier defeated Sri Lanka by a commanding 147 runs in the final. Two teams, two gold medals and another successful Asian Games campaign for Indian cricket.
1: हॉकी में कल हमने महिलाओं का हुनर देखा तो आज पुरुषों की बारी थी। हाँ, रणनीति कल से अलग थी, सिर्फ रक्षण नहीं, आक्रमण से भरपूर टीम पूरा चढ़कर खेली और दिखाया कि हमारी तो आज की नीति है आक्रमण करो गोल कमाओ। एक परफेक्ट मैच खेला भारत ने आज, खासकर हाफ टाइम के बाद के दोनों क्वार्टर्स में तो भारतीय हॉकी की धनक पूरे मैदान में गूंज रही थी। हूटर बजा तो वो भारत के इन एशियन गेम्स में 5-1 से अपने 5वें स्वर्ण पदक का जयघोष था वो। पहले क्वार्टर की शुरुआत संयत तरीके से हुई, एक दूसरे को आंकने में ज्यादा मूव नहीं बने। खेल ने रंग पकड़ा करीब 10 मिनट के बाद, पहला पेनल्टी कॉर्नर रोक दिया गया। फिर हरमन ने दिखाया कि क्यों उन्हें पेनल्टी कॉर्नर्स और ड्रैग फ्लिक का किंग कहा जाता है। लेकिन हॉकी प्रेमी इस लीड का आनंद ले पाते तब तक प्रत्याक्रमण हुआ मलेशिया का। शैलो सिल्वेरियस ने शानदार फील्ड गोल कर दिया, बिल्कुल हाफ वॉली स्टाइल में उन्होंने शॉट मारा। सेकेंड क्वार्टर में मलेशिया ने हमले बनाए लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा किया भारत ने। दो पेनल्टी कॉर्नर भी उन्हें मिले लेकिन रक्षण ने बेकार कर दिए। फिर भारत के हमले हुए, पेनल्टी कॉर्नर मिला, इस बार जुगराज ने लिया। उन्होंने अपनी ड्रैग फ्लिक की स्पीड दिखाई, दाहिनी ओर के गोल पोस्ट को खड़का दिया। हाफ टाइम का स्कोर 2-1। तीसरे क्वार्टर से भारतीय टीम पूरे रंग में आ गई और मलेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। एक के बाद एक मूव बनाए, हरमन का एक पुश मनदीप को गया और उनका शॉट मलेशिया के डिफेंडर के शरीर से लगकर गोल के सामने और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हार्दिक ने गोलकीपर को छकाता हुआ जन्नाटेदार शॉट लगाया और भारत 3-1 से आगे। अब भारतीय फैंस को थोड़ी राहत की सांस मिली क्योंकि हॉकी में एक गोल का अंतर तो आप जानते हैं, आप चैन से नहीं बैठ सकते। फोर्थ क्वार्टर में मलेशिया के पास एक ही च्वाइस बची थी, ऑल आउट अटैक पर जाने की। शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की, लेकिन भारतीय रक्षण पूरी तरह मजबूत और अभेद्य था और बहुत जल्द ही भारतीय ही पूरे मैदान पर छा गए। एक के बाद एक आक्रमण करते हुए मलेशिया मैच में दिखा ही नहीं। एक बार तो 4 पेनल्टी कॉर्नर्स एक के बाद एक मिले। फिर एक भारतीय हमले में अभिषेक ने एक शानदार दौड़ लगाई, गेंद के साथ बिल्कुल बेस लाइन के पैरेलल, और उसके बाद पास भेजा गोल के सामने खड़े हुए शिलानंद लाकरा को, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और भारत 4-1 से आगे। स्वर्ण पदक तो बिल्कुल पक्का सा हो गया, लेकिन हमले जारी रहे और पेनल्टी कॉर्नर आया तो हरमन ने डी पर इस बार सिर्फ 3 खिलाड़ी रखे। समय उनको पूरा मिला और सीधा गोली की तरह जन्नाटेदार शॉट लगाया उन्होंने, स्कोर को कर दिया 5-1। इत्तेफाक से ये वो समय था जब भारतीय इन गेम्स में अंतिम बार किसी मैदान में थे, यानी खेलों से शानदार विदाई ली 5-1 से सुनहरी जीत के साथ और ओलंपिक खेल 2028 के प्रवेश टिकट के साथ। जय हो भारतीय हॉकी की। गोल्फ में कल ही प्रणवी ने लीड बना ली थी, पहले स्थान पर आ गई थी। आज 10वें होल से उन्होंने शुरुआत की और संयम, एकाग्रता, सटीक स्ट्रोक्स और खुद पर पूरा काबू रखते हुए अपने लीड को बनाए रखा और इतिहास रच डाला। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी अर्श के अर्श तक पहुंचने की कहानी साक्षी मंडवाल से।
3: प्रणवी ओर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा आल्सो क्लेम द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर इन 2002। द 24 ईयर ओल्ड लॉन्ग वेट फाइनली केम टू एन एंड विद प्रणवी ओर गेटिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी ओर्स हेल्ड हर नर्व्स टू win the women's individual golf gold medal, finishing the 4-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Jin Ruining, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory. Let's remind all of you once again that Pranavi Urs, Aditi Ashok and Deeksha Dagar also claimed the silver medal in the women's team event in golf today.
1: लड़कियों का जादू तीरंदाजी में भी बना रहा, वो कथा तो सबको पता है, अर्जुन और मछली की आंख की। अमरावती महाराष्ट्र की 17 बरस की कुमकुम को भी लगता है बस टारगेट बोर्ड का सेंटर ही दिख रहा था। आज तीसरा पदक, वो भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। कुमकुम के सनसनाते तीरों का बयान कर रही हैं मेघा।
2: Indian archery has signed off from the Asian Games with another historic performance, and at the center of it is 17-year-old Kumkum Anil Mohod. Kumkum clinched the gold in the women's individual recurve event, defeating South Korea's Oh Ye-jin in a dramatic shoot-off. With the scores tied at 5-all, the Indian teenager produced a perfect 10 while her opponent managed an 8. Earlier, Kumkum had defeated reigning world champion Kang Chaeyoung in the quarterfinals and China's Chu Xingyi in the semi finals. Her victory makes her the first Indian archer to win an individual recurve gold medal at the Asian Games. She's also secured an individual recurve quota place for India at the Los Angeles 2028 Olympics. And there was more to celebrate in the men's competition. Neeraj Chauhan defeated compatriot Dheeraj 6-4 in an all-Indian bronze medal contest. Neeraj fought back from 4-2 down to secure his place on the podium. For Kumkum, this was her third medal of the Games, following gold in women's recurve team event and silver in mixed team event. India's archery contingent finishes with 9 medals, 5 gold, 2 silver and 2 bronze, a campaign that underlines India's growing strength across both recurve and compound category.
1: पहलवानों ने भी भारतीय पदकों का ढेर बड़ा करने का बीड़ा उठा रखा था। आज 5 पहलवान थे, 2 रेसलर फाइनल में पहुंचे तो 2 कांस्य पदक के मैट पर। दांव पेंचों का सारा विवरण शाहिद आजमी से।
4: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कुश्ती का अभियान शानदार अंदाज में समाप्त हुआ। भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही अमन सहरावत की, जिन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। फाइनल में अमन का सामना उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग से हुआ। अमन ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और 4-1 की बढ़त बना ली। हालांकि चोंग सोंग सोंग ने वापसी करते हुए स्कोर 7-6 कर दिया। मुकाबले के आखिरी मिनट में रोमांच अपने चरम पर था। दबाव के इस दौर में अमन ने बेहतरीन टेकडाउन लगाकर 4 अंक हासिल किए और स्कोर 11-7 कर दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़त कायम रखी और भारत के लिए स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में अमन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने जापान के यामातो ओगावा को 20-9 और कजाकिस्तान के नूरदानात एतानोव को 12-1 से हराया। सेमीफाइनल में 2-6 से पिछड़ने के बाद ताजिकिस्तान के एयाल बेलोबेउस्की के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 14-8 से जीत दर्ज की। हांगझोउ एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने इस बार अपने पदक का रंग बदलकर स्वर्ण कर दिया। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें जापान की मोए क्योका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की साकिब जमाल एसबोसिनोवा को 8-0 से और सेमीफाइनल में चीन की जिन जांग को 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस रजत के साथ अंतिम ने एशियन गेम्स में अपना दूसरा पदक हासिल कर लिया। आपको बता दें हांगझोउ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उधर पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुया गनबातार को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में 8-9 की करीबी हार के बाद दीपक ने शानदार वापसी की और लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा। हालांकि 74 किलोग्राम वर्ग में सागर जगलान कांस्य पदक से चूक गए। उन्हें कजाकिस्तान के नुरकोजा कैपानो ने 5-0 से हराया और सागर चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले रेपेचाज में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रजामबेक जमालो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई थी। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में मनीषा क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जहां उन्हें जापान की अकारी फुजिनामी से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भारतीय कुश्ती ने कुल 6 पदक के साथ अपना अभियान पूरा किया। आपको बता दें पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 पदक जीते थे।
1: वॉलीबॉल में 5वें-6ठे स्थान के लिए भारत की भिड़ंत थी थाईलैंड से। कड़ा मुकाबला हुआ, 5 सेट तक चला। सेट पॉइंट्स की कहानी प्रेरणा शर्मा से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को 5वें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक चले इस 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड ने निर्णायक सेट 17-15 से जीतकर 5वां स्थान हासिल किया, जबकि भारत 6ठे स्थान पर रहा। मुकाबले की शुरुआत थाईलैंड ने बेहतर तरीके से की। उसने पहला सेट 25-19 से अपने नाम किया। भारत ने हालांकि दूसरे सेट में तुरंत वापसी की और 25-17 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे सेट में थाईलैंड ने फिर बढ़त हासिल की और 25-21 से सेट जीतकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत के सामने अब मुकाबला बचाने की चुनौती थी और टीम ने चौथे सेट में एक बार फिर दमदार वापसी की। भारत ने यह सेट 25-17 से जीता और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद फैसला 5वें और निर्णायक सेट में होना था। यहां दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत के पास मैच पॉइंट के मौके भी आए, लेकिन टीम उन्हें जीत में बदल नहीं सकी। थाईलैंड ने आखिरी पलों में धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 17-15 से अपने नाम कर लिया।
1: रग्बी सेवन में भी महिलाएं क्लासिफिकेशन रैंक के लिए खेल रही थी। 2 मैच खेले, दोनों का विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: Indian women defeated Singapore for the 5th to 8th placing 22-5. India won the first half convincingly and commandingly by defeating Singapore 17-5 and also owned the second half by completely demolishing Singapore 5-0, thereby winning the match in straight games 2-0. The Indian women's match in rugby sevens for the 5th 6th placing later happened with Kazakhstan, in which Kazakhstan easily defeated India 20-0. Both the halves went to Kazakhstan with the scoreline reading 10-0, 10-0 and finally, the Indian women finished on the 6th place.
1: ताइक्वांडो में 2 लड़कियां थीं। कल से संघर्ष में जुटी हुई कशिश मलिक और दूसरी ज्योति यादव। पदक की उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन संघर्ष की उम्मीद जरूर थी। हुआ क्या, जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
3: कशिश मलिक बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 kg राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026 इन ताइक्वांडो। शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड। इन द वुमेन्स 67 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन ताइक्वांडो, ज्योति यादव लॉस्ट टू कैनेला 0-2। शी वाज दस नॉक्ड आउट एंड इंडियाज कैंपेन इन द स्पोर्ट एंडेड विद दिस लॉस।
1: सेलिंग में भारत ने 3 पदक पाए हैं। आज गर्ल्स डिंगी में माही वर्मा थी। माही की नाव कितना भागी जानते हैं मेघा से।
2: इन सेलिंग 16-year-old माही वर्मा फिनिश 6th ओवरऑल इन द गर्ल्स डिंगी इवेंट एज अ कंपटीशन कंक्लूडेड टुडे। माही कंप्लीटेड द 12 रेस ओपनिंग सीरीज विद 75 टोटल पॉइंट्स एंड 57 नेट पॉइंट्स। She finished 8th in opening series race 12.
1: और अब भारत के लिहाज से पदक तालिका की फाइनल स्थिति।
2: Courtesy of a late search that saw them add 9 medals, including 5 gold, India signed off the day in 4th place with 85 medals, 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India and Uzbekistan at the moment stand level on 21 gold medals. But India are on the 4th place thanks to their higher silver medal count. China finish on top of the table, followed by host Japan and South Korea.
1: आज सही अवसर है भारत को मिले पदकों की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालने का। कहीं उम्मीदें पूरी हुई, कहीं उम्मीद से कम रहे, तो कहीं उम्मीद से बढ़कर आए। भारतीय पदकों की विवेचना मेघा से।
2: बियॉन्ड द मेडल्स एंड द फाइनल स्टैंडिंग्स, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर इंडिया एट दीज एशियन गेम्स हैज बीन द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू जनरेशन। Of the 310 athletes making their Asian Games debut, 83 have won medals, 43 women and 40 men. That means more than one in every four Indian debutant has returned with a medal. Between them, these first-timers have contributed 41 medals across 12 sports, 14 gold, 12 silver and 15 bronze. And several performances have broken new ground for India. Suchika Tharyal won India's first ever Asian Games medal in mixed martial arts, taking bronze in the women's traditional 60 kg category. Jaymina's men's singles bronze gave India its first ever medal in soft tennis. Shooting produced several breakthroughs as well. India won its first ever women's team and mixed team medals in skeet, while Suruchi Singh and Kamaljeet Singh struck gold with an Asian Games record in the 10-meter air pistol mixed team. Neeru Dhanda and Kanan Chennai added another first, winning India's maiden mixed trap gold with an Asian Games record in the final. There were significant firsts elsewhere as well. Satnam Singh and Salman Khan delivered India's first ever Asian Games medal in the men's double sculls, while Baranika Alangova's bronze was India's first ever Asian Games medal in pole vault. In squash, Anahat Singh became the first Indian woman to reach the Asian Games singles final, eventually taking silver. And Indian archery reached another landmark. Ankita Bhakat, Kumkum Mohod and Kirti Sharma won India's first women's recurve team gold at the Asian Games. Kumkum followed it up today with individual recurve gold, becoming the first Indian archer to win an individual recurve title at the Asian Games. There were breakthroughs in sailing and boxing as well. Netra Kumaran claimed bronze in women's dinghy, while Lovlina Borgohain delivered India's first Asian Games gold in the women's 75 kg boxing category. Netra's bronze was a maiden Asian Games medal in a fourth appearance. There were milestones beyond first. Mirabai Chanu's silver ended India's 28-year wait for an Asian Games medal in weightlifting. Savan Barwal brought India its first men's marathon medal in 44 years, and the women's hockey team reclaimed Asian Games gold after a 44-year wait.
1: करीब 2 सप्ताह तक एशिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाएं आईची नगोया में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की नई कहानियां रचने में लगी रहीं, बेहतर से और बेहतर होने की कोशिश करती रहीं। जो नहीं जीत पाए उनके लिए उदास होने का समय तो हो सकता है, लेकिन निराश होने का नहीं, क्योंकि खेलों का संदेश ही यही है, कल आप फिर ऊपर आ सकते हैं। और फिर विशाल एशिया की बहुरंगी संस्कृतियों का मिलन स्थल भी तो था ये। भारत ने अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक छाप भी जरूर ही छोड़ी। अब कल इन खेलों के अवसान का दिवस है। नगोया के पालोमा मिजुहो पार्क स्टेडियम में भव्य रंगारंग समापन समारोह होगा, लेकिन ये खेल आंदोलन तो शाश्वत है, चलता ही रहेगा। खेल ज्योति विदा लेगी। खेलों को सांकेतिक रूप से दोहा, जो 2030 खेलों का आयोजक है, उसे हैंडओवर किया जाएगा। जापान खासकर आईची नगोया की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हुए कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, समापन उद्घोष होगा और सारे खिलाड़ी एक मेक होते हुए एक दूसरे को गलबहिया डालकर विदा देंगे, चमकती आंखों में भविष्य के प्रदर्शन के सुनहरे सपनों के साथ। समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली शूटर नीरु ढांडा, जिन्हें खास तौर पर फिर जापान भेजा जा रहा है भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने। तो उम्मीद करते हैं आपने आकाशवाणी पर हर दिन हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा, पसंद किया होगा। कल इस श्रृंखला के अंतिम कार्यक्रम के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे अनुपम पाठक को आज्ञा दें, शुभ रात्रि। एडिटर विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान।
0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुनिए चंबल की कसम फिल्म का ये नगमा, बोल साहिर के और संगीत खयाम का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अब सुनिए कस्मे वादे फिल्म का ये नगमा। गुलशन बावरा के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है आर डी वर्मन ने।

हम किसी से कम नहीं। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई है आर डी वर्मन ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अगला गीत घरों दा फिल्म से रूना लैला की आवाज, नक्श लियालपुरी का गीत और जयदेव का संगीत।

दूसरा आदमी। लीजिए सुनिए इस फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी को, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और राजेश रोशन का संगीत।

और कार्यक्रम का अंतिम नगमा द ग्रेट गैम्बलर से अमिताभ बच्चन की आवाज़ आशा भोंसले की साथ में शरद कुमार और साथियों आनंद पक्षी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 11 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने GST, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्र

0: ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस NPA कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
1: And foreign exchange reserve at about 766 billion US dollars.
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12,00,000 करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mr. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the four labor codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
1: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter one. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low, and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
4: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Samhita BNS is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today. In Andhra Pradesh, 4 workers were killed and another was critically injured in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City of Satyavedu Mandal today. The blast occurred inside a factory in the special economic zone. 2 workers died on the spot while 3 others were critically injured and shifted to a nearby hospital. 2 of the injured later succumbed to their injuries during treatment. The remaining worker is undergoing treatment in the intensive care unit. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed shock over the incident. India won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan today. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold, and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. For India, Captain Harmanpreet Singh netted 2 goals, while Jugraj, Hardik and Shailanand scored 1 goal each. In men's cricket, India won the gold, defeating arch rivals Pakistan by 19 runs in the T20 final at Nishin. Wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57-kilogram gold after edging out North Korea's world champion Chong Song Han 11-7 in a fierce final. Kumkum Mohod won the individual gold medal in the women's recurve archery event. In golf, Pranavi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in the women's individual title. India also bagged silver in the team event. Wrestler Antim Panghal sealed a silver medal in the women's 53-kilogram category. Deepak Punia won bronze in the men's 97-kilogram freestyle wrestling event after defeating Mongolia's Ganghuya Ganbatar. Archer Neeraj Chauhan got bronze in the men's individual recurve event. With these impressive performances, India has climbed to 4th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 85, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the men's cricket team on retaining their title at the Asian Games 2026. In a series of social media posts, Mr. Modi said that this is indeed a joyous occasion for the nation. He also wished the team members for their future endeavours. Mr. Modi said, "The 2026 Asian Games have been truly special for Indian hockey." He congratulated the men's hockey team on retaining the Asian Games gold with a commanding victory in the final. The Prime Minister also congratulated Pranavi Sharat Urs on winning India's first ever gold in women's individual golf at the Asian Games. Mr. Modi also congratulated Kumkum Anil Mohod on becoming the first Indian woman to win recurve individual gold at the 2026 Asian Games. Prime Minister also congratulated Aman Sehrawat for scripting history by winning India's first ever Asian Games gold in the men's 57-kilogram freestyle wrestling event. Mr. Modi expressed happiness that 6 decades later, India is back on the podium in the men's 97kg freestyle wrestling event at the Asian Games. And that is the end of this news bulletin.
5: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं. हमारे स्टूडियोज की घड़ी में इस समय 11:10 हुए हैं. अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है. कल सुबह 5:55 पर इन्हीं मीटर्स पर हम पुनः उपस्थित होंगे. अब हमें अनुमति दीजिए. जय हिंद.